0: अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वाशिंगटन का दौरा। ट्रंप ने किया था दावा, तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी लगाई थी गुहार। क्या अगले 15 दिनों में श्रीराम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को चेतावनी दी है। राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिन तक धैर्य रखने को कहा है। योगी का दावा है कि SIT अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
1: CCTV फुटेज नदारद है, क्योंकि CCTV से CC का राज खुल जाएगा। CC का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
2: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के भी चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है BJP और ऐसे।
3: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
4: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
5: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
4: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच BJP के राज में पूरा होता है।
6: आज हमारे राम आ गए हैं।
7: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
4: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी BJP को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर BJP घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो BJP राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में BJP पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की BJP को हुई, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े BJP के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे, आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
3: गहना, रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
8: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
9: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया?
4: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
10: 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
4: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
5: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
11: राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हूं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
4: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
12: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
11: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
13: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: एक ओर यूपी में चंदा विवाद पर राजनीति चल रही है तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें खत्म नहीं हो रही, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद रुचिवीरा के नाम की भी एंट्री हो गई है।
14: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचिवीरा भी अब भड़की नजर आ रही है।
15: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
14: रुचिवीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
15: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
14: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
16: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता।
17: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
14: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
0: खबर कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोप की है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दल पर लग रहे हैं, तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने लगे हैं।
4: राहुल गांधी की राजनीतिक संगठन चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, एक सीट पर जेएमएम के बैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
18: So, JMM कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई दुराई नहीं। I'm unhappy because गठबंधन is not intact.
19: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कांग्रेस सीपीआई वाले पे गलत है।
20: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, बात लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
21: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें,
22: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
4: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
23: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए, तो
24: चोर बोले जोर से। कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग, जो है कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही साठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
4: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती, यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं, बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया, झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है, तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है, केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
22: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी गठबंधन में, इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
4: और कांग्रेस कहती है किसी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया, बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब 21 जून को होने वाले नीट री एग्जामिनेशन की यह खबर है। पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच ये एग्जाम सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, ऐसे में सरकार परीक्षा को लेकर हर तैयारी कर रही है, प्रयास करने में लगी है। परीक्षा से पहले कल तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की यह तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहे, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पेपर लीक से तो छात्र परेशान रहते ही हैं, अब परीक्षा होने और रिजल्ट निकलने के बाद पूछे गए प्रश्नों को गलत मानकर भर्ती एजेंसीज की तरफ से डिलीट करने की घटनाओं से परेशान। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें 10 से लेकर 25 प्रश्न तक गलत पूछे जाने के कारण से डिलीट नहीं किए जा रहे हों। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, भर्तियां कोर्ट में अटक रही हैं।
4: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है, साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
5: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन नहीं होगा।
6: मैंने जो फर्स्ट आंसर की थी उससे मेरे 188 क्वेश्चन थे, लेकिन अब दोबारा जो आंसर की इन्होंने रिवाइज की उसमें मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के आंसर चेंज हुए। इस वजह से मैं अब फिर पीछे, मुझे नंबर का नुकसान हुआ है, 8 नंबर मेरे फिर गए, 180 पे आ गए हूँ। इस वजह से मुझे लग रहा है अब की बार भी मैं इसी कारण रह जाऊंगा। दो बार मैं इस पीड़ा को झेल चुका हूँ।
7: ये पता नहीं किन को तो पेपर सेट करने के लिए बैठा देते हैं, उनको खुद को इतना ज्ञान नहीं है कि सुंदर सिंह गुर्जर है या सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। ये तो बेसिक सी चीज है जो उनको समझनी चाहिए।
4: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले दो बार रद्द हुई। 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ, रिजल्ट दोबारा जारी हुआ, नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है।
8: कुछ सवालों को बोर्ड ने गलत माना था, हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया, रिजल्ट रिवाइज हुआ कोर्ट के आधार पर। तो उसमें सर हमारे जो नंबर मार्क्स थे वो पूर्व चयनितों से अधिक थे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके नंबर कम हो गए। अब कोर्ट ने उनको हटाने से मना कर दिया, वो यथावत नौकरी पे हैं और हमारे ज्यादा नंबर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमको पोस्टिंग नहीं दी।
9: मेरे पास में सर आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये लास्ट चांस है। मैं 2006 से भर्तियों देखती आ रही हूँ, लेकिन हर बार एक नंबर दो नंबर से गवर्नमेंट के इन सब सिस्टम की वजह से रह जाती हूँ सर।
4: आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
10: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए?
4: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
11: होना नहीं चाहिए और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है और उस पर कंट्रोल उस सेटर का होता है और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो ये बात पीड़ादायक भी है, मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह मैं हल नहीं कर पाया।
4: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
12: बेरोजगार पहले पेपर लीक से परेशान थे, मगर अब परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछकर उसे डिलीट करने का नया स्कैम चल रहा है। एक ही परीक्षा में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसे गलत करार देकर डिलीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले को हम ब्लैकलिस्टेड कर दिए हैं, मगर इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: और अब खबर अमेरिका इसराइल के रिश्तों में आई खटास की। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, इस दौरान ट्रंप ने इसराइल की कई बार तारीफ की, लेकिन ट्रंप की जुबान इसराइल को लेकर आजकल बेहद सख्त तल्ख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल भी नहीं होता। अमेरिका और इसराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को ये पसंद नहीं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से उठ न जाए।
4: क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इसराइल की दोस्ती?
13: Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal.
4: Iran deal ki wajah se kya duniya mein akela pad gaya hai Israel?
13: Israel has the right to defend itself, but fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region.
4: 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन 3 महीनों में ही ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। 3 महीने पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल को इस कदर कड़े शब्दों में सबके सामने धमका देंगे।
13: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
14: J.D. Vance ka Israel par ye gussa Netanyahu sarkar mein mantri Ben Gvir aur Smotrich ki alochna ke baad phuta jinhone Iran ke saath hue samjhaute ki kadi alochna ki uske aur Hezbollah ke khilaf aakramak karwai jari rakhne ki wakalat karte hue kaha ki Israeli sainikon ki maut ke baad Ben Gvir ne bola har Israeli maa ke ek aansu ke badle hazar Lebanani maao ko rona chahiye pura Lebanon jalna chahiye अमेरिका को भी संदेश देते हुए बेन ग्वीर ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इसराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इसराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल को इस समझौते से अलग रखा उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।
13: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
14: माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का अनदेखा किया उसके बाद इसराइल में नेतन्याहू की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू के तमार बेन ग्वीर जैसे मंत्री खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ये हमारी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देता है। इस तरह सिर्फ तीन महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी टूटती दिखती है। एक बात साफ हो गई कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और समझौते की कोशिशों ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद को सामने ला दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलाके में तनाव कम करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और उसके साथी संगठनों के खिलाफ इसराइल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि अगर लेबनान में इसराइल नहीं रुका और ये समझौता ईरान ने तोड़ा तब ट्रंप का इसराइल को लेकर क्या रुख होगा? क्या तब इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी दुनिया अमेरिका और इसराइल के बीच में सुनेगी?
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने क्रश और उद्धव शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर भी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस ने हमारे विलय का सवाल ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी के समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न लें कानून। नीट रीटेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का जायजा, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। और इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वॉशिंगटन दौरा, ट्रंप ने किया तत्वावधान, तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी ने लगाई थी गुहार।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। वाराणसी में एक सीएनजी पंप में आग लगी और आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि 40 फीट की ऊंचाई तक लपटे नजर आई है। हादसा उस वक्त समय हुआ था जब एक गाड़ी में सीएनजी भरी जा रही थी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बाद यहां भगदड़ मची, कर्मचारी जान बचाकर भागने लगे। शुरुआती जांच के बाद कहा यह गया है कि गैस लीक और गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, और हालांकि आग लगने के सही कारणों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के पेट्रोल पंप की, ये तस्वीरें सीएनजी पंप में जहां जबरदस्त आग लगी, और आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताया जा रहा है। गाड़ी में सीएनजी भरते समय हादसा हुआ है। कई लोग पहले से ही सीएनजी स्टेशन पर मौजूद थे। अच्छी बात रही है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली है कि सीएनजी उस वक्त भरी जा रही थी जब यह हादसा हुआ। तस्वीरें देखिए और किस तरीके से आग लगातार बढ़ती चलेगी। लोग यहां दौड़ते हुए नजर आए क्योंकि सीएनजी पंप होने की वजह से लोगों को डर था कि हो सकता है इतनी गर्मी में ये रूप और ज्यादा विकराल धारण करे आग, और कुछ और कारों को या फिर आसपास के एरिया को भी चपेट में ले। अच्छी बात ये रही कि समय रहते ही इस आग पर काबू पा लिया गया। लंदन के उत्तर में दो ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हुए। टक्कर वाली जगह पर इमरजेंसी सर्विस की टीमें तुरंत ही पहुंच गई थी और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि जो वेबसाइट से जानकारी मिली है उसके अनुसार दोनों ही ट्रेनें लंदन के सेंट पैनक्रॉस स्टेशन की ओर दक्षिण दिशा में जा रही थी और तभी बेडफोर्ड शहर के बाहर उनकी टक्कर हुई है। आपातकालीन सेवाओं ने घटनास्थल पर कई तरह के संसाधन तैनात कर दिए हैं, जिनमें ईस्ट ऑफ इंग्लैंड एम्बुलेंस सर्विस की एयर एम्बुलेंस है, खतरनाक घटनाओं से निपटने वाली टीम भी है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर इन तमाम संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां जबरदस्त तरीके से दो ट्रेनें जोरदार तरीके से भिड़ी हैं, जिसमें एक शख्स की जान चली गई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। एक और बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कोलकाता से, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जबरदस्त तरीके से झड़प देखी गई है। जानकारी ये मिली है कि अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचने वाले थे, उससे पहले टीएमसी बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए, आमने सामने आ गए। आरोप यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया था क्योंकि अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले यहां पर वो पहुंचे थे अंडे लेकर। इससे पहले भी आपको याद होगा टीएमसी के तमाम जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, अभिषेक बनर्जी के साथ साथ अलग अलग जगहों पर इसी तरह से लोगों की तरफ से उनका घेराव किया जाता है, अंडे पत्थर उन पर फेंके जाते हैं। और यहां तृणमूल कांग्रेस का कहना यह है कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो यहां पहुंचे हुए थे अंडे लेकर अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले। काफी देर तक जबरदस्त हंगामा होता रहा, काफी मुश्किलों से इस पूरे मामले को शांत कराया गया।
1: देखिए ये तो हर जगह में देखने को मिल रहा है, मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, कानून जो दोषी है उनको सजा देगी।
0: क्या अगले 15 दिनों में राम मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को भी चेतावनी दे दी है और राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिनों तक धैर्य रखने के लिए कहा है। योगी का दावा यह है कि SIT अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
2: CCTV फुटेज नदारद है क्योंकि CCTV से CC का राज खुल जाएगा। CC का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
3: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और
4: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं।

0: अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
1: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
2: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
1: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
3: आज हमारे राम आ गए हैं।
4: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
1: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे, आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
5: गहना, रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
6: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
7: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया?
1: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
8: 15 दिन और देख ले, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
1: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
9: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
1: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री

0: आगे बढ़ते हैं। दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
1: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते में चलने वाले बहुत दुखी हैं।
2: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं।
3: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
4: तो एक तरफ यूपी में चंदा विवाद पर सियासत लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें भी खत्म नहीं हो रही हैं, जिसमें अब समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के नाम की भी एंट्री हुई है।
5: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही हैं।
6: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
5: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
6: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
5: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
7: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता।
8: कोई सीरियस नहीं लेता है, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
5: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
4: और अब यह खबर है कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर लगाए जाते विश्वासघात के आरोपों के बारे में, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार की हार को लेकर आरोप तेजस्वी यादव और लेफ्ट के दलों पर लगाए जा रहे हैं। तो जवाब में कांग्रेस के ही साथी कांग्रेस को आईना दिखाने में लगे हैं।
9: राहुल गांधी की राजनीतिक संगठन चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, 1 सीट पर जेएमएम के बैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया। प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया।
10: सो जेएमएम कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई दुराई नहीं। आई एम अनहैप्पी बिकॉज़ गठबंधन इज नॉट इंटैक्ट।
11: 100% हमको ये लगता है कि के राजू जी के मिली भगत से ही कांग्रेस से वोटिंग करवा दिया उधर, और ये आरोप आरजेडी और कम्युनिस्ट सीपीआई वाले पे गलत है।
12: देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने पता करके ही बोला होगा, और इस तरह की अफवाहें हैं, लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें।
13: आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें,
14: कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है।
9: कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
15: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
16: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग जो है, कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही सांठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
9: इंडिया गठबंधन में तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती। यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया। झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी। महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था। पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है। केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
18: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
19: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
20: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
21: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
22: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
23: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
22: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आई वांट टू रिंग, वेट कम।
24: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
25: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मार मार के यहाँ बिठाया हुआ।
24: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
26: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चा बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1 लाख रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
24: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
0: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, और जितने भी इनवॉइसेस हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
24: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: कौन से ग्रह के अस्त होने पर मानसिक बीमारियां हो जाती हैं? कौन से ग्रह के अस्त होने पर जीवन में सुख की कमी हो जाती है? और कौन से ग्रह के अस्त होने पर रोजगार में बाधा आती है? क्या होता है ग्रहों का अस्त होना और क्या होता है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
3: 50 states, 1 national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
6: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: To right field, and it will leave.
6: From the first pitch of the season to the stretch run.
7: And that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

बार फैशन की दुनिया में ट्रेंड नए कलेक्शन का नहीं डिस्काउंट का चल रहा है। जिन सेल का इंतजार ग्राहक जुलाई में किया करते थे, उनकी एंट्री जून में ही हो गई है। वजह भी दिलचस्प है। महंगाई ने जिस तरह से घर का बजट बिगाड़ा है, उससे लोग कपड़ों और लाइफस्टाइल शॉपिंग से पहले दो बार सोच रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि फैशन ब्रांड्स को ग्राहकों को लुभाने के लिए समय से पहले ऑफर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल बीते दो महीनों में फैशन सेक्टर की बिक्री करीब 30% घट गई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और रोजमर्रा के खर्च बढ़ने से लोगों ने लाइफस्टाइल शॉपिंग कम कर दी है। कई बड़े ब्रांड्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर 40% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। ग्राहक खर्च तो कर रहा है, लेकिन पहले जैसी बेफिक्री नहीं दिख रही। खरीदारी से पहले कीमत, जरूरत और वैल्यू को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। यही वजह है कि रिटेल सीजन खत्म होने का इंतजार करने की जगह बीच सीजन में ही स्टॉक निकालने की रणनीति अपना रहे हैं। कमजोर मांग के बीच कंपनियों का फोकस ग्राहकों को स्टोर और ऐप तक खींच कर लाना है, और इसके लिए डिस्काउंट का तरीका भी बदल गया है। सभी प्रोडक्ट्स पर कीमतें घटाने की जगह चुनिंदा आइटम्स पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिससे बिक्री भी बढ़े और मार्जिन पर ज्यादा असर भी ना पड़े। चुनिंदा स्टॉक पर डिस्काउंट देकर इन्वेंट्री कम करने की कोशिश हो रही है। 1+1 और 1+2 ऑफर से खरीदारी बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। आकर्षक डील्स के जरिए स्टोर्स में फुटफॉल बढ़ाने की तैयारी हो रही है। मार्जिन बचाने के लिए सीमित और टारगेटेड छूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलचस्प बात है कि मौजूदा सुस्ती के बावजूद भारतीय फैशन मार्केट लॉन्ग टर्म में काफी मजबूत नजर आता है। डेटा के मुताबिक 2021 में भारतीय फैशन बाजार का आकार 7.5 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 11.4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। यही वजह है कि कंपनियां मांग में आई इस अस्थायी कमजोरी को बड़े मौके में बदलने की कोशिश कर रही हैं, और इसके लिए नए कलेक्शन भी पहले लॉन्च किए जा रहे हैं और सीजन एंड सेल का कैलेंडर भी बदल रहा है। फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ महंगाई और बढ़ते घरेलू खर्च ने ग्राहकों को सोच समझकर खर्च करने पर मजबूर किया है, दूसरी तरफ फैशन कंपनियां डिस्काउंट और ऑफर्स के सहारे बिक्री की रफ्तार वापस लाने में जुटी हैं। अब आने वाले त्योहारी सीजन में ग्राहक कितना खर्च कर सकता है, इस पर पूरे सेक्टर की नजर टिकी रहेगी। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
4: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन कप शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
3: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
4: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। वेट कम।
5: भारतीयों का सोने सा रिश्ता सदियों पुराना है। सुख हो या दुख, शादी हो या ब्याह, या फिर कोई त्योहार, गोल्ड हमेशा हमारी पहली पसंद रहा है। संकट के समय ये पीली धातु सबसे बड़ा सहारा बनती है, लेकिन देश के इस चहेते गोल्ड को लेकर अंदरों हलचल बहुत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। इस अपील के साथ ही सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद भारतीय सराफा बाजार में हलचल मची हुई है, क्योंकि महंगे गोल्ड से दूरी बनाते ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्वेलर्स सोने पर करीब 450 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट दे रहे हैं। जिन डीलर्स के पास कम ड्यूटी पर मंगाया गया सोने का पुराना स्टॉक है, वो मांग बढ़ाने के लिए ग्राहकों को भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। बड़े ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस में भी कटौती कर रहे हैं। फिलहाल शादी ब्याह की वजह से बड़े स्टोर्स में खरीदारी जारी है, लेकिन छोटे रिटेलर्स इस बदलाव से काफी परेशान हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक ड्यूटी बढ़ने से इंटरनेशनल और घरेलू कीमतों में बड़ा अंतर आ गया है, और कस्टम ड्यूटी बढ़ने से इस साल सोने की मांग 50 से 60 टन तक गिर सकती है। सरकार ने सोने के भारी इंपोर्ट को रोकने और विदेशी मुद्रा की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है, लेकिन इस कड़े फैसले का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। टैक्स बढ़ने की वजह से देश में सोने की तस्करी का खतरा बढ़ गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI और कस्टम विभाग की टीमें अलर्ट पर हैं। एयरपोर्ट पर लगातार सोने की अवैध खेप पकड़ी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में जो चौंकाने वाले आंकड़े और तरीके सामने आए हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। स्मगलर्स सोने को छिपाने के लिए चॉकलेट के पैकेट, वाटर बॉटल, प्रेस और स्पेशल बॉडी बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्करी के सिंडिकेट आम यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ को लालच देकर कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि जब भी घरेलू बाजार में सोने के दाम बढ़ते हैं या फिर टैक्स में बढ़ोतरी होती है, तो स्मगलिंग के जरिए मुनाफा कमाने वाले गैंग सक्रिय हो जाते हैं। मुनाफा बढ़ने पर ये सिंडिकेट ड्रग्स छोड़कर गोल्ड की तस्करी में लग जाता है। सुरक्षा टीमें पैसेंजर्स के बर्ताव और उनके ट्रैवल पैटर्न पर नजर रखकर इन पर शिकंजा कस रही है। सरकार की नई पॉलिसी और प्रधानमंत्री की अपील ने देश के गोल्ड मार्केट को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस अपील को कितना मानती है और स्मगलिंग पर लगाम लगाने में एजेंसियां कितनी कामयाब होती हैं। आज तक ब्यूरो।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच योगी का बड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने क्रश और उद्धव शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर भी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस ने हमारे विलय का सवाल ही नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी के समर्थक, दिल्ली से अभिषेक बनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी, मंत्री सुकांता की नसीहत, हाथ में न लें कानून। नीट रीटेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का जायजा, कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट। और इटली अमेरिका में बड़ी दूरी, मेलोनी पर ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्री ने रद्द किया वॉशिंगटन दौरा, ट्रंप ने किया ततावाद, तस्वीर खिंचवाने की मेलोनी ने लगाई थी गुहार। लंदन के उत्तर में दो ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हुए। टक्कर वाली जगह पर इमरजेंसी सर्विस की टीमें तुरंत ही पहुंच गई थी और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि जो वेबसाइट से जानकारी मिली है उसके अनुसार दोनों ही ट्रेनें लंदन के सेंट पैनक्रॉस स्टेशन की ओर दक्षिण दिशा में जा रही थी और तभी बेडफोर्ड शहर के बाहर उनकी टक्कर हुई है। आपातकालीन सेवाओं ने घटनास्थल पर कई तरह के संसाधन तैनात कर दिए हैं, जिनमें ईस्ट ऑफ इंग्लैंड एम्बुलेंस सर्विस कि एयर एम्बुलेंस है, खतरनाक घटनाओं से निपटने वाली टीम भी है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर इन तमाम संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके। और आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सीएनजी पंप में भीषण आग लगी थी और आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि 40 फीट की ऊंचाई तक लपटे नजर आने लगी थी। हादसा उस वक्त हुआ जब एक गाड़ी में सीएनजी भरी जा रही थी और देखते देखते आग में पूरी की पूरी कार आग की चपेट में आ गई। विकराल रूप इस आग ने धारण कर लिया था, कर्मचारी भागने लगे थे। आपको बता दें कि भगदड़ सी यहां सीएनजी स्टेशन पर नजर आई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गैस लीक और गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और उसके बाद और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि यहां पर कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों की पुष्टि अभी ऑफिशियली नहीं की गई, लेकिन तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरह का मंजर उस समय रहा होगा सीएनजी स्टेशन पर जब इस आग में भयानक तरीके से आग लगी। एक और बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कोलकाता से, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जबरदस्त तरीके से झड़प देखी गई है। जानकारी ये मिली है कि अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचने वाले थे, उससे पहले टीएमसी बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए, आमने सामने आ गए। आरोप यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया था क्योंकि अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले यहां पर वो पहुंचे थे अंडे लेकर। इससे पहले भी आपको याद होगा टीएमसी के तमाम जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, अभिषेक बनर्जी के साथ साथ अलग अलग जगहों पर इसी तरह से लोगों की तरफ से उनका घेराव किया जाता है, अंडे पत्थर उन पर फेंके जाते हैं। और यहां तृणमूल कांग्रेस का कहना यह है कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो यहां पहुंचे हुए थे अंडे लेकर अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले। काफी देर तक जबरदस्त हंगामा होता रहा, काफी मुश्किलों से इस पूरे मामले को शांत कराया गया।
1: देखिए ये तो हर जगह में देखने को मिल रहा है, मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, कानून जो दोषी है उनको सजा देगी।
0: मंदिर का दान और चढ़ावा चुराने वालों के नाम पता चल जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यही दावा किया है। उन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने वालों को भी चेतावनी दे दी है और राम भक्तों से भी सिर्फ 15 दिनों तक धैर्य रखने के लिए कहा है। योगी का दावा यह है कि एसआईटी अपनी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
2: सीसीटीवी फुटेज नदारद है क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप।
3: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल कर चढ़ा कर जो आए भगवान को उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
4: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं सही माने मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
5: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
6: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
5: अयोध्या का राम मंदिर जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
7: आज हमारे राम आ गए हैं।
8: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
5: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे, आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
4: गहना रुपया क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
9: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
10: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया?
5: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
11: 15 दिन और देख ले, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं।
5: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला है समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
6: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
5: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राम लला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं। दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम है जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
2: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
12: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
13: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: और अब बात करेंगे 21 जून को होने वाले नीट री एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि पेपर लीक को लेकर मचे हुए घमासान के बीच ये एग्जाम सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में सरकार परीक्षा को लेकर हर तैयारी दुरुस्त करने की कोशिशों में लगी हुई है। परीक्षा से पहले आज तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की ये तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इसपे साफ तौर पर लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहे, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: से ग्रह के अस्त होने पर मानसिक बीमारियां हो जाती हैं? कौन से ग्रह के अस्त होने पर जीवन में सुख की कमी हो जाती है? और कौन से ग्रह के अस्त होने पर रोजगार में बाधा आती है? क्या होता है ग्रहों का अस्त होना और क्या होता है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
9: दशकों की दुश्मनी, मिसाइलों की गूंज और जंग के मैदान में आमने सामने खड़े दो देश जब अचानक हाथ मिला लें तो दुनिया हैरान रह जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता कुछ ऐसा ही है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया है। दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसने सीमा पर चल रही जंग पर तुरंत विराम लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शांति समझौते के बड़े मायने हैं। समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देश बातचीत के जरिए फाइनल डील तैयार करेंगे। इस करार को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देश इसे अपनी अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के लिए इस डील के मायने अलग हो सकते हैं। समझौते के तहत कुछ बेहद ही अहम शर्तें रखी गई हैं, जिनमें शामिल है अमेरिका की तरफ से 30 दिनों में ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह खत्म करना, ईरान की तरफ से फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित और फ्री रास्ता देना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी रखना और वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इस बीच समझौते के आर्थिक पहलुओं को लेकर भी बड़ी बातें सामने आई हैं। प्रतिबंधों के हटने से ईरान की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन मिल सकता है। डील के मुताबिक अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, साथ ही प्रतिबंधों को हटाने को लेकर भी सहमति बनी है। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का एक बड़ा प्लान तैयार किया जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए वेवर जारी करेगा। ईरान के फ्रीज किए गए पैसों और संपत्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए जारी किया जाएगा। इस भारी भरकम राहत के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को एक नई चिंता भी सताने लगी है। उनका मानना है कि इस फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में भी हो सकता है। वहीं ईरान इस समझौते को अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस डील से हिजबुल्ला और हुरमुज जलडमरू मध्य पर उसका दबदबा बना रहेगा। वहीं आशंका ये भी है कि प्रतिबंधों में ढील मिलने से ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत कर सकता है। ईरान ने हिजबुल्ला को भरोसा दिया है कि फंड रिलीज होने के बाद उसकी फंडिंग बढ़ा दी जाएगी। यानी एक तरफ जहां शांति की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बने हुए हैं। उधर अमेरिका इराक सरकार पर भी दबाव बना रहा है कि वो ईरान समर्थित मिलिशिया पर लगाम लगाए। मिडल ईस्ट में शांति बहाली की ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है, ये तो आने वाले 60 दिनों की बातचीत तय करेगी। लेकिन इस समझौते ने फिलहाल दुनिया को बड़ी राहत जरूर दी है। आज तक ब्यूरो।

0: मानसिक बीमारियां हो जाती हैं? कौन से ग्रह के अस्त होने पर जीवन में सुख की कमी हो जाती है? और कौन से ग्रह के अस्त होने पर रोजगार में बाधा आती है? क्या होता है ग्रहों का अस्त होना और क्या होता है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

लंदन के पास दो ट्रेनों में आमने सामने से टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, कई घायल। टक्कर के बाद राहत और बचाव का काम जारी। कोलकाता एयरपोर्ट पर देर रात सियासी ड्रामा, बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में झड़प। टीएमसी का आरोप, अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने के लिए आए हुए थे बीजेपी के कार्यकर्ता। सुकांता की नसीहत, हाथ में न लें कानून। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ शिंदे और उद्धव। शिंदे बोले, ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ठाकरे का जवाब, कांग्रेस में हमारे विलय का सवाल ही नहीं। चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच योगी का कड़ा दावा, कहा एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए। नीट रीटेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5,500 सेंटर पर सुरक्षा का जायजा। कई राज्यों में छात्रों को फ्री यात्रा की छूट।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे ग्रहों के अस्त होने की। ग्रहों का अस्त होना क्या होता है, कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, और ग्रहों के अस्त होने के लिए क्या करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 3:46 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 9:25 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं राहु काल का समय, प्रातः 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज ग्रहों के अस्त होने की बात कर रहे हैं। ग्रहों का अस्त होना क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, हर ग्रह की एक विशेष गति होती है जिसमें ग्रह तमाम ग्रहों से मिलते रहते हैं, और जब अलग अलग ग्रहों से मिलते हैं तो इस प्रकार योगों का निर्माण होता है। इसमें अलग अलग ग्रहों का संयोग सूर्य से भी होता है, सूर्य से भी मिलते हैं, जिसमें सूर्य के प्रभाव से ग्रह कभी कभी अस्त हो जाते हैं। अस्त का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे सूर्य की रोशनी में आप मोमबत्ती रखें जला करके, तो मोमबत्ती जलेगी जरूर लेकिन उसके प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती। अगर ग्रह नुकसानदायक है तो अस्त होने पे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर ग्रह लाभदायक है तो अस्त होने पर लाभ नहीं दे सकता। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, और सूर्य के सबसे निकट होता है बुध, इसलिए बुध सबसे ज्यादा अस्त होता है। अब जानते हैं अलग अलग ग्रहों के अस्त होने के बारे में। जब चंद्रमा अस्त होता है तब क्या होता है? चंद्रमा अस्त होते हैं अमावस्या के आसपास। चंद्रमा के अस्त होने पर तमाम तरह की मानसिक समस्याएं व्यक्ति को होने लगती हैं। कभी कभी मिर्गी की बीमारी या मानसिक दौरे की बीमारी हो जाती है। चंद्रमा के अस्त होने पर व्यक्ति को स्त्री का और माता का सुख नहीं मिल पाता।
महिलाएं अगर हैं और चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं में विशेष तरह के रोग हो जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं का विशेष सम्मान करिएगा और चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिए और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिए तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। बाकी ग्रहों के अस्त होने

राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

करेंगे कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब जानते हैं कि अगर मंगल अस्त हो तो इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, मंगल अगर कुंडली में अस्त होगा तो आपके आत्मविश्वास में और आपके साहस में कमी आ सकती है। व्यक्ति के संबंध अपने परिवार वालों के साथ, भाई बहन के साथ अच्छे नहीं रहेंगे और व्यक्ति के अंदर कभी कभी अपराध करने की, क्राइम करने की वृत्ति आ जाती है। अगर कुंडली में मंगल दोष है और मंगल अस्त हो गया है तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। अगर आपका मंगल अस्त है तो क्या करेंगे, या तो जमीन पर सोइए या लो फ्लोर के पलंग पर सोइएगा और तांबा किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। जितना संभव हो हनुमान जी की उपासना करें, मंगल के अस्त होने का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त हो गया हो तो इसके प्रभाव क्या होंगे। अगर बुध अस्त है तो व्यक्ति की बुद्धि तेज नहीं होती और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। जिनका बुध अस्त होता है ऐसे लोग हमेशा वहम और दुविधा से घिरे रहते हैं। बुध अस्त होने पर व्यक्ति नकारात्मक विचार रखने लगता है। अगर बुध अस्त होगा तो एक लाइन में समझिए कि सही समय पर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिएगा और बिना तेल मसाले के हरी सब्जियों का प्रयोग करिएगा तो आपको लाभ होगा। बाकी ग्रहों पर भी चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करेंगे। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन

तन के योग बन रहे हैं। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

बना रहेगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के मामलों में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मनीषा वर्मा ने हमें लिखा है, आगरा से लिखती हैं। मनीषा की जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1990, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है आगरा। मनीषा कह रही हैं कि मेरा पारिवारिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है और परिवार वालों से दिक्कतें बहुत होती हैं, ससुराल वालों से, तो क्या ये विवाह चल सकेगा, क्या उपाय करना चाहिए? मनीषा, सबसे पहले बता दें कि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं है, पति के साथ आपका तालमेल मुझे कुल मिला जुला के ठीक दिखाई दे रहा है। इन लॉस के साथ थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अक्टूबर 2026 के बाद से आपका स्थान परिवर्तन होगा और स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, चीजें काफी रास्ते पे आ जाएंगी। सेपरेशन के बारे में विचार ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। जितना ज्यादा से ज्यादा शिव जी की पूजा करेंगी उतना आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपका बृहस्पति अस्त हो तो क्या प्रभाव होते हैं। बृहस्पति अगर अस्त होगा तो व्यक्ति तामसिक वृत्तियों का, खराब आदतों का शिकार होगा। व्यक्ति को पेट की गंभीर समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और अगर आप महिला हैं और आपका बृहस्पति अस्त है तो विवाह होने में और चलने में बड़ी मुश्किल आएगी। अगर आपका बृहस्पति अस्त है तो सूर्य भगवान को नियमित रूप से हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं, किसी न किसी रूप में थोड़ा सा ही सही सोना जरूर धारण करें और अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा और सहायता करिएगा। बृहस्पति के अस्त होने से आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आपका शुक्र अस्त है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र अगर कुंडली में अस्त है तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा, खास तौर से दाम्पत्य सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल प्रभावशाली नहीं होगा, लोग व्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे, व्यक्ति को आंखों की और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या हो सकती है, ये संभावना बनेगी। अगर आपका शुक्र अस्त है तो क्या करेंगे। नियमित रूप से दही का सेवन जरूर करिए,
सुबह स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध लगाइए और अगर शुक्र अस्त है तो माता लक्ष्मी की अधिक से अधिक उपासना करिए, आपको लाभ होगा। शनि के अस्त होने पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आर्थिक रूप से लाभ होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी। फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम पूरा होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

दों से बचाव करें, फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर शनि अस्त हो गया कुंडली में तो इसके परिणाम क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं? अगर कुंडली में शनि अस्त है तो व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष होता है, कदम कदम पर संघर्ष रहता है। व्यक्ति को अपने रोजगार के लिए, अपने करियर के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और शनि अगर अस्त हो गया तो व्यक्ति को कभी कभी घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अस्त है तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक लोहे का छल्ला दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करिए और जो लोग वृद्ध हैं या आपसे नीचे के स्तर के लोग हैं उनकी सहायता जरूर करिएगा। देखिए, कोई ग्रह जब अस्त होता है तो उसके फलों में कमी आ जाती है या वो फल नहीं दे पाता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि कोई ग्रह अस्त होता है सूर्य की वजह से, तो अगर कोई ग्रह अस्त है तो उस ग्रह का फल सूर्य देने लगते हैं। सूर्य के हिसाब से, सूर्य की स्थिति के हिसाब से उस ग्रह का फल मिलना शुरू हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

योग हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि उम्र के 28 वर्ष बीत जाने के बाद कुंडली का मंगल दोष समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा है? देखिए, कुंडली में जो आपके जन्म के समय योग बन जाते हैं या जो कॉम्बिनेशन जो ग्रहों की स्थिति होती है वो जीवन में कभी नहीं बदलती, उसके प्रभाव कम या ज्यादा हो सकते हैं दशाओं के हिसाब से। इसलिए मंगल दोष अगर कुंडली में है तो वो 28 साल के बाद समाप्त नहीं होता है, वो पूरे जीवन भर बना रहता है और उसको समझ करके उसका प्रभाव देख करके तब निर्णय लेना चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 9, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है,
लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, लाभ होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

सिंह राशि के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि के लिए, चिंताएं समाप्त होंगी, परिवार में खुशहाली आएगी। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को, चिंताएं बढ़ सकती हैं, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। आज षष्ठी तिथि है, आज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए और आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और फल का दान करना उत्तम होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

कोलकाता एयरपोर्ट पर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में मारपीट और झड़प हुई। दिल्ली से अभिषेक बनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी। मंत्री सुकांता मजूमदार की नसीहत, हाथ में कोई भी कानून न ले। टीएमसी समर्थकों का आरोप, अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा मानसून सत्र से पहले फैसला सुनाएंगे स्पीकर ओम बिरला। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी। टीएमसी बागियों के खिलाफ अयोग्यता की सौंपी गई हैं 20 याचिकाएं। लोकसभा स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी। टीएमसी बागियों के खिलाफ अयोग्यता की सौंपी गई 20 याचिका। मानसून सत्र से पहले फैसला सुनाएंगे ओम बिरला। टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का रुख किया है। विधानसभा स्पीकर के तौर पर रीता प्रताप बनर्जी की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार। नीट रीटेस्ट से पहले आज देश भर में मॉकड्रिल करेगी एनटीए। 5,500 सेंटर पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों को मुफ्त यात्रा की छूट। रामनगरी अयोध्या में विकास की सौगात। सीएम योगी के 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या में भव्य दिव्य रामायण रेक्स म्यूजियम का लोकार्पण। 8,000 वर्ग फीट में फैले म्यूजियम में श्री राम सीता हनुमान के दिव्य रूपों को मिलेगी झलक। संबोधन के दौरान अयोध्या को बदनाम करने वालों पर बरसे सीएम योगी का। राम जन्मभूमि पर बिना प्रमाण लगाए गए आरोप तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भारत के जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने की खास पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स को दिए विशेष उपहार। नागौरी अश्वगंधा, मेघालय की हल्दी, रामबन के शहद और बनारसी सिल्क स्टोल शामिल। यूथ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं को मंत्र। का रोजगार निर्माण बने राष्ट्रीय अभियान। केंद्र की योजना के तहत लाखों युवाओं के खाते में भेजे गए 2400 करोड़ रुपए। आज और कल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 3 दिवसीय पंजाब के दौरे पर रहेंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर करेंगे मंथन। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पंजाब में बीजेपी की सरकार बनाने का, कानून व्यवस्था सुधारने का दावा किया। बोली पश्चिम बंगाल में विजय भारी, अब पंजाब की बारी। राम मंदिर में चढ़ावा मामले में सीएम योगी ने 500 साल इंतजार किया तो 15 दिन और कर लीजिए। कहा एसआईटी में सब साफ हो जाएगा। आज तक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र। चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया में कोताही। कहा पूरे मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत। सीएम योगी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाई हाजिरी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में मां कामाख्या मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर अखिलेश का तंज। कहा किसी रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की भी एसआईटी जांच होनी चाहिए। यूपी के मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों ही दलों के बीच धक्का मुक्की और नारेबाजी। मऊ कार्यक्रम के दौरान शक्ति प्रदर्शन, नारेबाजी से बढ़ गया था विवाद। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। मऊ में ट्रेन उद्घाटन समारोह में हुए हंगामे पर अखिलेश और बीजेपी पर बाहरी अपराधियों को संरक्षण देने और माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए गए। पटना शहर से बाहर होंगे सभी कोचिंग संस्थान। सीएम सम्राट चौधरी का सेटेलाइट टाउनशिप और एजुकेशनल हब बनाने का बड़ा ऐलान। बिहार में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम सम्राट ने छपरा आनंद विहार एक्सप्रेस दिखाई हरी झंडी। रेल मंत्री ने कहा आने वाले 7-8 सालों में बिहार को मिलेंगी 200 से ज्यादा नई ट्रेनें। पटना को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बड़ी सौगात। हार्डिंग रोड पर बनाएंगे 5 नए प्लेटफॉर्म। बिहार टेंडर घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के ठिकानों पर एसवीयू की छापेमारी। बिहार के बेगूसराय में महिला से गैंगरेप के मामले में डीआईजी का बड़ा एक्शन। थाना प्रभारी सस्पेंड किए गए। जांच के लिए एसआईटी के लिए दोबारा से मेडिकल जांच होगी। बेगूसराय गैंगरेप मामले में पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की बात कही है। पुलिस की लापरवाही पर कार्रवाई और अपराधियों पर जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की गई। बिहार के आर एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन। एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। पुलिस कार्रवाई पर बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाए। शिवसेना ने मनाया अपना 60वां स्थापना दिवस। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों ने अलग अलग रैलियां की। एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट पर साधा निशाना। बोले हमने बाला साहेब के सपनों को किया है पूरा। महायुति मजबूत है। हमें देवेंद्र फडणवीस को अलग करने की कोशिश नाकाम हो गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए कहा यह सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी बची है। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे का पलटवार। कहा राज्य में शिंदे सेना से परेशान है बीजेपी, अराजकता और देश भी।
शिवसेना यूबीटी उद्धव गुट ने विरोधियों को दिया है संदेश का, शिवसेना कोई व्यापार नहीं है बल्कि मराठी अस्मिता हिंदुत्व का की विचारधारा है। बाला साहेब ठाकरे की रखी नींव आज भी अडिग है। हरिद्वार नगर निगम ने 54 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने के घोटाले में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, विजिलेंस जांच में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप साबित। सीएम धामी ने तत्कालीन नगर आयुक्त की बर्खास्त और डीएम के लिए मेजर पनिशमेंट की सिफारिश की, बोले किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। हरिद्वार में सीएम धामी ने विश्व हिंदू परिषद की बैठक में संतों का आशीर्वाद लिया, कुंभ को दिव्य भव्य बनाने और योग दिवस के भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया गया। झारखंड के रांची में भारतीय सेना ने ऑपरेशन दृष्टि के तहत बड़े आई सर्जिकल कैंप का आयोजन किया, 320 से ज्यादा लोगों को मुफ्त सफल नेत्र सर्जरी की गई। भरतपुर के अस्पताल में चाइनीज सोनोग्राफी मशीनों को लेकर डॉक्टर का धरना, बोले चाइनीज मशीनों से मरीजों को नहीं आ रही हैं सही रिपोर्ट्स। महाराष्ट्र कांग्रेस ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट की संवैधानिक वैधता को बॉम्बे हाईकोर्ट में दिए चुनौती, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए। नागपुर में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा कदम, 10,000 टन एल्यूमिनियम प्रेस मशीन की भूमि पूजन किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजना की आधारशिला रखी। रिलायंस कंपनी की 49वीं एजीएम में बड़ा ऐलान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जियो आईपीओ को दिया मंजूरी, चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स को किया वेलकम। ज्वाला में किसानों का अनोखा आंदोलन, कुएं में चारपाई डालकर बैठे किसान, संपूर्ण किसान कर्ज माफी की मांग पर बैठे हुए हैं। पुणे में पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टीम में बड़ी कार्रवाई की, 42 लाख का करीब 84 किलो गांजा बरामद किया गया। मनोज जरांगी सरकार का अल्टीमेटम, 29 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं हुई तो अनावरण अनशन फिर से करूंगा। 58 लाख कुर्वी प्रमाण पत्र और वैलिडिटी की मांग की गई, मनोज जरांगी ने सरकार को दी 29 अगस्त तक की डेडलाइन। जाला में पानी की कमी से किसानों ने 1.5 एकड़ मिर्च की फसल को उखाड़ कर फेंक दिया, कटाई से ठीक पहले जल स्रोत सूखने से सूख गई थी मिर्ची की फसल। पटना के सचिवालय थाने पहुंचे तेज प्रताप यादव, अपने वकील के साथ आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। आरजेडी के पूर्व विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को मिली धमकी, धमकी देने वाला शख्स खुद को लॉरेंस बिश्नोई का सदस्य बता रहे हैं, रोशन आनंद ने लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया है, तीस्ता नदी उफान पर, बांग्लादेश सीमा तक येलो अलर्ट जारी। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूचबिहार और उत्तर बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से जलभराव, एयरपोर्ट जाने वाली मुख्य सड़क पर जलजमाव, ट्रैफिक जैम से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तर 24 परगना में भारी बारिश के बाद धोला थाना जलमग्न, लॉकअप से लेकर आईसी रूम तक भरा पानी, पुलिसकर्मी कठिन हालात में काम करने के लिए मजबूर। पश्चिम बंगाल में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में पानी भरा है, यातायात प्रभावित हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए जारी कर दिया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश हुई है, बारिश ने कई लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में बारिश के बीच दिल्ली में 39 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है तापमान, वीकेंड पर आंधी और बारिश का अनुमान है, येलो अलर्ट जारी। पिछले कुछ समय से दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना है यूपी का बांदा, बांदा में तापमान बढ़ने की वजहों की जांच के लिए जमीन पर उतरी विशेषज्ञों की टीम। असम और अरुणाचल में भारी बारिश से बढ़ गया ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारों पर पहुंचा है पानी, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है।

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
2: After multiple assassination attempts, they can't even get...
3: They're reliable.
4: Always when I need them.
1: To live sports action.
5: One hand jam by LeBron on the break.
6: That's another three, Steph Curry.
1: And your favorite music.
7: Well, the dawn begins to crack.
1: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिंझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
6: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
7: प्लीज बजी पर, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
8: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
7: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजी पर, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग सब कुछ खत्म कर देगी। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के साथ शुरू हुई जंग 109 दिन के बाद 17 जून को बातचीत की मेज पर खत्म हुई। 14 पॉइंट्स वाले समझौते पर साइन हुए। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील पर हस्ताक्षर किए तो ईरानी राष्ट्रपति पजिश्किन ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डील में जीत किसकी है, आखिर समझौता किसके पक्ष में रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप कार्ड फेल रहा, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। तोलमोल में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, वो सारी बातें मनवाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। ट्रंप डींग हाँकते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, डील में ईरान की शर्तें नहीं चलेगी, ईरान को सरेंडर करना होगा, हॉर्मुज सब के लिए खुलेगा, ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन डील में वो सब है जो ईरान चाहता था, मसलन हॉर्मुज 60 दिन टोल फ्री रहेगा और फिर ईरान जॉर्डन मिलकर बनाएगा मैकेनिज्म, यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ईरान में ही डाउनग्रेड होगा। मिसाइल को लेकर ट्रंप ने रुख बदला, अब वो बोल रहे हैं कि जब पड़ोसी देशों के पास मिसाइल है तो ईरान को कैसे रोक सकते हैं, कहां तो फूटी कौड़ी ना देने की अकड़ थी, अब 300 अरब डॉलर ईरान को मित्र देश पुनर्निर्माण के लिए देगा। 14 पॉइंट वाले समझौते की तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत की मेज पर ईरान अपनी कई शर्तें बचाने में कामयाब रहा। सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट, वही रास्ता जिसे लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। ट्रंप कहते थे हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगा, किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा और उसके बाद एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात है जिसमें ईरान और जॉर्डन की भूमिका बताई जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान का यूरेनियम, ट्रंप की मांग थी कि ईरान यूरेनियम बाहर सौंपे, लेकिन डील की शर्तों के मुताबिक यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने के बजाय उसी जगह डिग्रेड करने का रास्ता सामने आया, यानी ईरान की जमीन पर ही प्रक्रिया। तो क्या ये ट्रंप की जीत है या फिर क्या ईरान बिना पूरी तरह झुके अपनी अहम शर्तें बचाने में कामयाब रहा। 109 दिन की जंग के बाद बंदूकें खामोश हैं, लेकिन असली मुकाबला अब नैरेटिव का है। अमेरिका कहेगा हमने ईरान को बातचीत पर मजबूर किया, ईरान कहेगा हमने दबाव के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी, यानी डील हो गई लेकिन जीत की कहानी दोनों देश अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: यूपी में भी क्या शुरू हो गया है ऑपरेशन लोटस? क्या समाजवादी पार्टी में भी महाराष्ट्र जैसी कहानी दोहराने की तैयारी है? बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के कई सांसद बगावत के मूड में हैं और 2027 के चुनाव से पहले सपा में बड़ी टूट हो सकती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है या वाकई समाजवादी कुनबे में एक और दरार पड़ने वाली है? समाजवादी पार्टी में जल्द बगावत का दावा नंबर एक, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार।
1: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।
0: दावा सिर्फ डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं है, यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा में भगदड़ की भविष्यवाणी कर दी। दावा नंबर दो, चुनाव में हार के डर से बीजेपी में आएंगे समाजवादी पार्टी नेता।
2: देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर।
0: राजभर ने अब नया हमला बोलते हुए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा को लेकर भी सवाल खड़े किए। पीडीए कार्यक्रम में उनके नहीं पहुंचने पर राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर असंतोष है और इसी बहाने उन्होंने अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव पर भी निशाना साधा। राजभर का आरोप, पार्टी टूटेगी, और उन्होंने इशारा किया कि शिवपाल यादव ही समाजवादी पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के टूटने की भविष्यवाणी हुई है, क्योंकि समाजवादी परिवार की सियासत में दरार और फिर जुड़ने की कहानी पुरानी है। साल 2012, पार्टी एक परिवार एक, समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती और अखिलेश यादव यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदल गई। 2017 में परिवार की कलह खुलकर सामने आई, चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरी बढ़ी, नतीजा सपा 47 सीटों पर सिमट गई। 2018 में परिवार की लड़ाई ने नया मोड़ लिया, शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद अखिलेश की पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत सकी और फिरोजाबाद जैसी पारिवारिक सीट भी शिवपाल के अलग लड़ने से हाथ से निकल गई। 4 साल बाद कहानी फिर बदली, अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर आए, परिवार फिर साथ दिखा और 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया। अब 2027 से पहले फिर वही सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार अखिलेश यादव अपने कुनबे और सांसदों को संभाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी खेमे की तरफ से एक के बाद एक दावे आ रहे हैं। केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दिनेश शर्मा, सबका दावा अलग अलग लेकिन निशाना एक, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं जो डर जाएगा वही दल छोड़ेगा, बीजेपी के मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। तो यूपी की सियासत में सवाल यही है, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा खेल होगा या फिर ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस का सियासी शोर है? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दशकों की दुश्मनी, मिसाइलों की गूंज और जंग के मैदान में आमने सामने खड़े दो देश जब अचानक हाथ मिला लें तो दुनिया हैरान रह जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता कुछ ऐसा ही है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया है। दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए हैं जिसने सीमा पर चल रही जंग पर तुरंत विराम लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शांति समझौते के बड़े मायने हैं। समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देश बातचीत के जरिए फाइनल डील तैयार करेंगे। इस करार को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देश इसे अपनी अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के लिए इस डील के मायने अलग हो सकते हैं। समझौते के तहत कुछ बेहद ही अहम शर्तें रखी गई हैं, जिनमें शामिल है अमेरिका की तरफ से 30 दिनों में ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह खत्म करना, ईरान की तरफ से फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित और फ्री रास्ता देना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी रखना और वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इस बीच समझौते के आर्थिक पहलुओं को लेकर भी बड़ी बातें सामने आई हैं। प्रतिबंधों के हटने से ईरान की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन मिल सकता है। डील के मुताबिक अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। साथ ही प्रतिबंधों को हटाने को लेकर भी सहमति बनी है। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का एक बड़ा प्लान तैयार किया जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए वेवर जारी करेगा। ईरान के फ्रीज किए गए पैसों और संपत्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए जारी किया जाएगा। इस भारी भरकम राहत के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को एक नई चिंता भी सताने लगी है। उनका मानना है कि इस फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में भी हो सकता है। वहीं ईरान इस समझौते को अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस डील से हिजबुल्ला और हुरमुज जलडमरू मध्य पर उसका दबदबा बना रहेगा। वहीं आशंका ये भी है कि प्रतिबंधों में ढील मिलने से ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत कर सकता है। ईरान ने हिजबुल्ला को भरोसा दिया है कि फंड रिलीज होने के बाद उसकी फंडिंग बढ़ा दी जाएगी। यानी एक तरफ जहां शांति की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बने हुए हैं। उधर अमेरिका इराक सरकार पर भी दबाव बना रहा है कि वो ईरान समर्थित मिलिशिया पर लगाम लगाए। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है, ये तो आने वाले 60 दिनों की बातचीत तय करेगी। लेकिन इस समझौते ने फिलहाल दुनिया को बड़ी राहत जरूर दी है। आज तक ब्यूरो।

0: धमकी के बाद इसराइल हिजबुल्ला में सीज फायर ईरान के साथ हुई डील को आगे बढ़ाने के लिए जिनेवा में होगी बातचीत। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हो रहे हैं रवाना। अगले हफ्ते रूबियो का मध्य पूर्व दौरा। कोलकाता एयरपोर्ट पर देर रात सियासी ड्रामा। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में झड़प। टीएमसी का आरोप अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने के लिए आए थे बीजेपी कार्यकर्ता। सुकंदा की नसीहत, हाथ में न ले कानून। शिवसेना स्थापना दिवस पर आमने सामने एकनाथ और उद्धव। शिंदे बोले ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। उद्धव ठाकरे की भावुक अपील, कहा भरोसा नहीं तो इस्तीफे को तैयार। कल होने वाले नीट रीट टेस्ट से पहले आज देशभर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5,500 सेंटर पर सुरक्षा का जायजा। कई राज्यों में छात्रों को सेंटर तक फ्री में पहुंचाएगी सरकार। और वाराणसी के सीएनजी पंप में भीषण आग लगी। आसमान में 40 फीट तक आग की लपटें। गाड़ी में गैस भरवाते हुए हादसा। कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको। इसराइल और हिजबुल्ला से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर यह है कि अमेरिकी सूत्रों ने दावा कर दिया है कि इसराइल और हिजबुल्ला में संघर्ष विराम हो गया है। अब इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने ईरान डील के बाद साफ कर दिया था कि समझौता लागू होगा, लेकिन इसराइल नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से शुक्रवार की वार्ता टालनी पड़ गई थी। लेकिन अब ट्रंप के सलाहकार ने दावा यह किया है कि लेबनान में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच संघर्ष विराम हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु को लेकर स्विट्जरलैंड में वार्ता होनी है और बातचीत शुरू होने से पहले बड़ी और अहम खबर यह है कि लेबनान और इसराइल भी अब मान गए हैं। अमेरिका ने तलखी दिखाई थी इसराइल के ऊपर। उन्होंने कहा था कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल नहीं होता। जिस तरीके से लगातार इसराइल की तरफ से लेबनान पर, खासतौर से दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या ताजा जानकारी है, क्या कन्फर्म किया गया है अभी?
1: शशि, फिलहाल तो दोनों तरफ से ये कन्फर्म हुआ है। हिजबुल्ला ने भी माना है कि वो कल शाम को 4 बजे से इसराइल के किसी भी ठिकाने पर हमला नहीं करेंगे। और वैसा ही जो है इजरायली सेना के सूत्रों का भी कहना है कि वो कोई कार्रवाई हिजबुल्ला के खिलाफ यानी दक्षिणी लेबनान में नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस अंदाज से जब कल 4 बजे से पहले, कल शाम से पहले जो है लगातार एक के बाद एक जो है ड्रोन और एरियल स्ट्राइक्स इसराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में हुई, और हिजबुल्ला की तरफ से भी इस युद्ध में सबसे बड़ी जो कार्रवाई है, एम्बुश है, वो इसराइल के सैनिकों पर किया गया था, जिसमें 4 सैनिक एक बटालियन कमांडर के सहित मारे गए थे। तो उस भी जो है अब क्योंकि गुस्सा तो अभी भी इसराइल में है सैनिकों के खोने पर, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की तरफ से लगातार जो है दबाव बना हुआ है इसराइल पर कि वो इस एमओयू जो हुआ है साइन अमेरिका और ईरान के बीच, उसमें रखना न डाले। तो जाहिर है कि अब सूत्रों का ये भी कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की नसीहत पर आए हैं और उन्होंने भी इस सीज फायर को माना है। लेकिन काफी संवेदनशील इलाका भी है क्योंकि अभी भी उपस्थिति है इजरायली सेना की दक्षिणी लेबनान में। कई सारे इलाके उनके कब्जे में हैं। क्या वो वहां से निकलेंगे या फिर वहीं पर रहेंगे? अगर वहां पर रहेंगे तो जाहिर है कि आमना सामना किसी भी समय हो सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना वापस निकलती है या फिर वहीं रहती है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अशरफ। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका शांति समझौते को लेकर बड़ी और अहम खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। संभावित परमाणु समझौते पर ईरान से पहले दौरे की बातचीत के लिए स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। हालांकि बातचीत कब शुरू होगी ये साफ अभी भी नहीं हो पाया। वार्ता का जो अगला दौर है वो है शुक्रवार से शुरू होना। लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बड़ी हिंसा के कारण से टालना पड़ गया था अचानक से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है वार्ता, और कहा जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द स्विट्जरलैंड में मुलाकात होने जा रही है। समय अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इतना साफ जरूर किया गया है कि विटकॉफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। तो वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं स्टीव विटकॉफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि जिस तरीके से इसराइल की तरफ से लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी थे, इस वजह से इस वार्ता को अचानक से टाल दिया गया था, जिसके बाद ढेर सारे संशय फिर से होने लगे थे। तो युद्ध रोकने के लिए समझौते हो रहे हैं। इधर ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच में निजी युद्ध छिड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। ट्रंप का यह बयान जब मेलोनी ने सुना तो वो भड़क उठी। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और ट्रंप पर झूठी कहानी गढ़ने के आरोप लगाए। साथ ही साथ ट्रंप की टिप्पणियों को हैरान कर देने वाला भी बताया। मेलोनी ने यह भी कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से तमाम बातें कही गई थी मेलोनी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से मेलोनी फोटो खिंचवाने को लेकर वो गिड़गिड़ा रही थी, उसी को लेकर एक वीडियो मैसेज मेलोनी की तरफ से जारी किया गया। क्या उनकी तरफ से कहा गया सुनिए।
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so.

0: पे, और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं, जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है, और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, घड़ियां हैं, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है, क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं, दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
1: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी, और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा, और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
1: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहें, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशांत जुड़ गए। सुशांत, किस तरह की तैयारियां, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है कि मॉक ड्रिल बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की?
4: निश्चित तौर पर शशि, जिस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर के पूरे देश भर के अंदर तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से ही सरकार काफी संजीदा है, क्योंकि कल ये पूरा एग्जाम होना है और एग्जाम को लेकर के सरकार की तैयारियां भी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि आज देश भर के तमाम हिस्सों में, क्योंकि कल नीट की परीक्षा, उसको लेकर के मॉक ड्रिल की जाएगी, और मॉक ड्रिल के अंदर ये देखा जाएगा कि कहीं किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए और कोई इसका फायदा जो है वो उठाए, उसको लेकर के पूरी तैयारी जो है वो आज जो है वो की जाएगी, उसका ड्रिल जो है वो किया जाएगा। और आज ये जो ड्रिल है तकरीबन 9:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगी और देर शाम तक चलेगी, क्योंकि जो एग्जाम का टाइमिंग है वो भी लगभग शाम को 5:30 बजे तक समाप्त होगा। तो देर शाम तक ये पूरी मॉक ड्रिल जो है वो आज चलाई जाएगी अलग अलग हिस्सों में। एनटीए की तरफ से ये पूरी ड्रिल जो है वो चलाई जाएगी, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के तमाम डीएम जो है वो भी मौजूद रहेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरीके से परीक्षा जो है वो की जा रही है, उनके लिए व्यवस्था क्या है, किस तरीके से उनकी तैयारियां जो है वो की गई है। इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं देश भर में, जहां पर भी ये सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा एग्जाम ऑब्जर्वर्स जो है वो बनाए गए हैं लगभग 6,500, 1.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी जो है वो रखी जाएगी। पूरी तरीके से अगर कहा जाए इस बार ये पूरा जो एग्जाम होना है उसको लेकर के काफी ज्यादा संजीदा सरकार,
3: सुशांत, किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसीलिए आज मॉक ड्रिल की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, क्योंकि देर रात कोलकाता में सियासी हंगामा हुआ है, जबरदस्त ड्रामे की तस्वीरें सामने आई है। कोलकाता एयरपोर्ट पर रात को बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ थे, नारेबाजी हुई, झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक तरफ टीएमसी का आरोप यह है कि अभिषेक बनर्जी के कोलकाता पहुंचने से पहले, क्योंकि दिल्ली से कोलकाता वो पहुंचने वाले थे, वहां बीजेपी के तमाम समर्थक इकट्ठा हो गए थे और अंडा फेंकने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता सामने आ गए। झड़प को लेकर मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि हाथ में कोई भी कानून न ले।
1: कोलकाता एयरपोर्ट शुक्रवार रात उस समय राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो गया जब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। टीएमसी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के कोलकाता पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट के बाहर दोनों दलों के समर्थकों के बीच तनाव बढ़ने लगा। जानकारी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कोलकाता लौट रहे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी समर्थक भी वहां जुट गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद ने हाथापाई का रूप ले लिया। एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई और यात्री भी घबरा गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और दोनों गुटों को अलग किया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता हथियार लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। घटना के बाद कुछ समय तक एयरपोर्ट इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा

0: वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की।
1: देखिए, ये तो हर जगह में देखने को मिल रहा है। मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कानून जो दोषी है उनको सजा देगी।
0: फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। वहीं टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक संघर्ष अब सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: और अब बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, क्योंकि एक बार फिर से यहां यादव परिवार सुर्खियों में आ चुका है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का से जुड़े विवाद और दर्ज एफआईआर पर पहली बार खुलकर जवाब दिया है। साथ ही साथ पलटवार करते हुए आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप यादव ने न सिर्फ आरोपों को सिरे से खारिज किया बल्कि अनुष्का के भाई आकाश यादव पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। तेज प्रताप ने अपनी जान को खतरा बताया और पूरे मामले को राजनीति साजिश बताया है।
3: अनुष्का से जुड़े विवाद में घिरे तेज प्रताप यादव के खिलाफ हाल ही में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता आकाश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेज प्रताप उनकी बहन और बेटी से मिलने के लिए जबरन घर में घुसे और विरोध करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इन आरोपों के बाद बिहार की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। इन आरोपों पर जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आकाश यादव और उसका परिवार लंबे समय से उनसे पैसों की मांग करता रहा है। तेज प्रताप का दावा है कि उन्होंने कई बार लाखों रुपए दिए हैं, लेकिन अब उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि आकाश यादव उनकी हत्या करवाना चाहता है और विपक्षी लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने यह भी आरोप लगाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोग उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तेज प्रताप ने अपने पारिवारिक विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोगों की वजह से उनका परिवार टूट गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुष्का का परिवार लगातार पैसे मांगता रहा है और उन्हें अपने माता पिता और भाई से दूर करने की कोशिश की गई। इस दौरान उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से साथ आने और मदद करने की अपील भी की।
4: जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हम जाते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे, और लोग चला रहे तरह तरह का बात कि हम बाथरूम के बहाने चले गए थे, ये सब मनगढ़ंत बात है। केवल और केवल मेरी छवि को शुरू से इन लोगों ने खराब करने का काम किया है। और मैं पूरे तरीके से, हमारे पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार चल रहे हैं और ये जानबूझ के मेरे पिता को मारने की साजिश है और हमें मारने का साजिश। अभी मैंने पीसी किया था और पीसी करने के बाद मैं निकला तो चार लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुसने का कोशिश किए। जब हम लोगों ने पकड़वाने का काम किया तो भाग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। तो ये हमारी हत्या कराना चाहता है आकाश यादव।
3: तेज प्रताप यादव ने पुलिस में शिकायत देकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है और जल्द ही बिहार सरकार के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने की बात भी कही है। फिलहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को शिकायतें मिल चुकी हैं और जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर और भी गर्मा सकता है। आज तक ब्यूरो।
2: अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब सिर्फ दान पेटियों और नकदी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि एसआईटी ने गुरुवार को मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, साथ ही तकनीकी स्टाफ से भी पूछताछ की है।

0: राम मंदिर में चल रही जांच का फोकस अब सिर्फ रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव पर नहीं है। एसआईटी ने उस रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर की भूमिका पर भी गंभीरता से सवाल खड़े किए हैं, जिसके जिम्मे मंदिर परिसर की पूरी सीसीटीवी की निगरानी व्यवस्था है। इस बीच आज तक के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि राम मंदिर की दान राशि गिनी जा रही है। साफ दिख रहा है कि श्रद्धालुओं के दान को टेबल के ऊपर रख कर गिना जा रहा है। इसमें कुछ कर्मचारी दो टेबलों पर दान राशि को गिनते दिख रहे हैं और कुछ कर्मचारी खड़े दिखाई दे रहे हैं। एसआईटी मंदिर परिसर की निगरानी और चेकिंग व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। लापरवाही और मिलीभगत का एंगल भी खंगाला जा रहा है। पास जारी करने वाले मुख्य कर्मचारी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। दान की गिनती प्रक्रिया में बैंक कर्मियों के साथ ट्रस्ट के रुपए गिनने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने को भी संदेहास्पद माना जा रहा है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है। अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर विरासत वाली सियासत देखने को मिली है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने गोरेगांव में आयोजित समारोह में ऑपरेशन टाइगर की सफलता पर हुंकार भरते हुए कहा कि ऑपरेशन करने के लिए टाइगर का दिल चाहिए, क्योंकि भेड़िया ऑपरेशन नहीं कर सकता।
2: पेशे से कार्टूनिस्ट रहे पाल ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की थी, जिसका शुरुआती मकसद मराठी लोगों के हितों की रक्षा करना था। लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी और उसके दो टुकड़े हो गए। शिंदे कैंप ने गोरेगांव के नेस्को में जश्न मनाया तो उद्धव गुट ने सायन में स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया। शिंदे कैंप तो 4 साल से शिवसेना का स्थापना दिवस अलग से मना रहा है, लेकिन इस बार ऑपरेशन टाइगर की सफलता की वजह से पूरी शिवसेना में अलग ही जश्न का माहौल दिखा। अपने संबोधन में शिंदे ने हुंकार भरी, ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
3: बाळा साहेबांचे विचार, धर्मवीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
2: शिंदे ने कहा कि हमें कुछ दिन पहले एनडीए मीटिंग में पीएम मोदी को 12 साल पूरे होने और सबसे लंबे वक्त तक पीएम रहने के लिए बधाई देने का मौका मिला था, इसीलिए उन्होंने सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं से खड़े होकर पीएम मोदी को बधाई देने की अपील की। शिंदे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आपकी मेहनत ने शिवसेना को हर घर, गाँव और पूरे राज्य में पहुँचाया है। हम अब हाल ही में हुए सभी राज्यों में चुनाव में दूसरे नंबर पर हैं। शिंदे ने कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पर साझा प्रहार करते हुए कहा कि जिन्होंने बाला साहब की बुराई की, उद्धव उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। शिंदे बोले, एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना को तोड़ा और अब उद्धव उनकी गोद में ही बैठे हैं। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ लोग मेरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मतभेद साबित करने में जुटे हैं, लेकिन हम मजबूती से एक साथ जुड़े हुए हैं। शिंदे ने कहा, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, बस बाला साहब नाम की एक ताकत मेरे पीछे थी और इसी ताकत ने उन्हें शाखा प्रमुख के पद से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया।
3: बाला साहब ने देखील माझ्यावर प्रेम केलं, तेही सोडून गेले।
2: एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना बाला साहब ठाकरे का सपना था, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया। ऋतु भालेकर, मुंबई आज तक।
1: और एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, लंदन के उत्तर में 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई है और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। टक्कर वाली जगह पर इमरजेंसी सर्विस की टीमें तुरंत ही पहुंच गई थी और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है वेबसाइट्स के द्वारा वो ये कि दोनों ही ट्रेनें लंदन के सेंट पैनक्रॉस स्टेशन की ओर दक्षिण दिशा में जा रही थी और तभी बेडफोर्ड शहर के बाहर उनकी टक्कर हुई है। आपातकालीन सेवाओं ने घटनास्थल पर कई तरह के संसाधनों को तैनात कर दिया है, जिनमें ईस्ट ऑफ इंग्लैंड एम्बुलेंस सर्विस है, एयर एम्बुलेंस है और खतरनाक घटनाओं से निपटने वाली टीम भी शामिल है। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
10: हाँ सर, बहुत खुश हैं सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स, हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
2: प्लीज बज्जीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
3: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
2: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी भाई के साथ? आई चैलेंज यू बज्जीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आई वांट अ रिंग। वेट, कम
4: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
5: भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा, सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
3: अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते, अमेरिकी सूत्रों का दावा, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी तनाव को खत्म करने के संकेत। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष विराम का दावा करते हुए अमेरिकी सूत्रों ने कहा दोनों ही पक्ष अब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में रखा गया शांति वार्ता की बैठक, लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीज फायर। परमाणु मुद्दे पर वार्ता से पहले ईरान और अमेरिका के बीच समझौते का पहला बड़ा दावा, लेबनान और इसराइल समझौते पर राजी हुए। ईरान और अमेरिका में शांति समझौते के बाद पूरी तरह से खुला हॉर्मोज, अमेरिकी ईरान समझौते पर आगे 60 दिनों में बातचीत होगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में मारपीट और झड़प हुई, दिल्ली से अभिषेक बनर्जी के आने से पहले जबरदस्त नारेबाजी। मंत्री सुकंदा मजूमदार का नसीहत, हाथ में कोई भी कानून को न ले, टीएमसी समर्थकों का आरोप, अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा मानसून सत्र से पहले फैसला सुनाएंगे स्पीकर ओम बिरला। दिल्ली में स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, टीएमसी बागियों के खिलाफ अयोग्यता की सौंपी गई है 20 याचिकाएं। लोकसभा स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी, टीएमसी बागियों के खिलाफ अयोग्यता की सौंपी गई 20 याचिका, मानसून सत्र से पहले सुनाएंगे फैसला। टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का रुख किया, विधानसभा स्पीकर के तौर पर ऋतव्रता बनर्जी की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। नीट रीटेस्ट से आप पहले, आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों को मुफ्त यात्रा की छूट। रामनगरी अयोध्या में विकास की सौगात, सीएम योगी ने 126 विकास परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया। अयोध्या में भव्य दिव्य रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण, 8,000 वर्ग फीट में फैले हुए म्यूजियम में श्री राम सीता हनुमान के दिव्य रूपों की मिलेगी झलक। संबोधन के दौरान अयोध्या को बदनाम करने वालों पर बरसे सीएम योगी, कहा राम जन्मभूमि पर बिना प्रमाण आरोप लगाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भारत के जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने की खास पहल, प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स को विशेष उपहार दिए, नागौरी अश्वगंधा मेघालय की हल्दी, राममन का शहद और बनारसी सिल्क स्टोन्स भी शामिल। युवा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं को मंत्र, कहा रोजगार निर्माण बने राष्ट्रीय अभियान, केंद्र की योजना के तहत लाखों युवाओं के खाते में भेजे गए 2400 करोड़ रुपए। आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे, हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 दिवसीय पंजाब के दौरे पर रहेंगे, चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने का, कानून व्यवस्था सुधरने का दावा किया, बोली पश्चिम बंगाल में विजय भारी है पंजाब की बारी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने पर सीएम योगी बोले 500 साल इंतजार किया तो 15 दिन और कर लीजिए, एसआईटी जांच में सब साफ हो जाएगा। आज तक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया में कोताही हुई है, पूरे मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत। सीएम योगी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हाजिरी लगाई, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। अयोध्या के मां कामाख्या मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम के अयोध्या दौरे पर अखिलेश का तंज, का किसी रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की भी एसआईटी की जांच जरूरी है। यूपी के मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, दोनों ही दलों के बीच धक्का मुक्की और नारेबाजी। मऊ कार्यक्रम के दौरान शक्ति प्रदर्शन नारेबाजी से बढ़ गया था विवाद, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। मऊ में ट्रेन उद्घाटन समारोह में हुए हंगामे पर अखिलेश ने बीजेपी पर बाहरी अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। पटना शहर से बाहर सभी कोचिंग संस्थान किए जाएंगे, सीएम सम्राट चौधरी का सैटेलाइट टाउनशिप और एजुकेशनल हब बनाने का बड़ा दावा। बिहार में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम सम्राट ने छपरा आनंद विहार एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, रेल मंत्री ने कहा आने वाले 7-8 सालों में बिहार को मिलेंगी 200 अधिक नई ट्रेनें। पटना को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बड़ी सौगात, होर्डिंग रोड्स पर बने 5 नए प्लेटफॉर्म। डीआर टेंडर घोटाला जांच में बड़ी कार्रवाई, आईएएस अधिकारी उन्होंने योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के बेगूसराय में महिला से गैंगरेप के मामले में डीआईजी का बड़ा एक्शन, थाना प्रभारी सस्पेंड, जांच के लिए एसआईटी गठित, दोबारा मेडिकल जांच होगी। बेगूसराय गैंगरेप मामले में पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की बात कही है। पुलिस की लापरवाही पर और कार्रवाई पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग। बिहार के आरएन एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन, एसएचओ समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित हुए, पुलिस कार्रवाई पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए। शिवसेना ने मनाया अपना 60वां स्थापना दिवस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों ने की अलग अलग रैलियां। एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट पर साधा निशाना, बोले हमने बाला साहेब के सपनों को पूरा किया, महायुति मजबूत, हमें और देवेंद्र फडणवीस को अलग करने की कोशिशें नाकाम होंगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे का पलटवार, कहा राज्य में शिंदे सेना से परेशान बीजेपी, अराजकता क्यों जा रहा है देश। शिवसेना यूबीटी उद्धव गुट ने विरोधियों को दिया है संदेश, कहा शिवसेना कोई व्यापार नहीं बल्कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की विचारधारा है, बाला साहेब ठाकरे की नींव रखी आज भी अड़े। हरिद्वार नगर निगम ने 54 करोड़ को जमीन खरीद घोटाले में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, विजिलेंस जांच में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप साबित हुए। सीएम धामी ने तत्कालीन नगर आयुक्त को बर्खास्त किया, डीएम के मेजर पनिशमेंट की सिफारिश की गई, बोले किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में सीएम धामी ने विश्व हिंदू परिषद की बैठक में संतों का आशीर्वाद लिया, कुंभ को दिव्य भव्य बनाने और योग दिवस को भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया। झारखंड के रांची में भारतीय सेना ने ऑपरेशन दृष्टि के तहत बड़े आई सर्जिकल कैंप का आयोजन किया, 320 से ज्यादा लोगों की मुफ्त सफल नेत्र सर्जरी। भरतपुर के अस्पताल में चाइनीज सोनोग्राफी मरीजों को लेकर मशीनों को लेकर डॉक्टर्स का धरना, बोले चाइनीज मशीनों से मरीजों की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती। महाराष्ट्र कांग्रेस ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट को संवैधानिक वैधता को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए। नागपुर में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा कदम, 10,000 टन एल्यूमिनियम प्रेस मशीन का भूमि पूजन हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजना की आधारशिला रखी। रिलायंस कंपनी की 49वीं एजीएम में बड़ा ऐलान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जियो आईपीओ को दिया मंजूरी, चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स को वेलकम किया। जाला में किसानों का अनोखा आंदोलन, कुएं में चारपाई डालकर बैठे किसान, संपूर्ण किसान कर्ज माफी की मांग। पुणे में पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई की, 42 लाख रुपए का करीब 84 किलो गांजा जब्त किया गया। मनोज जरांगे पार्टी कल सरकार को अल्टीमेटम, 29 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आमरण अनशन करूंगा। 58 लाख कुर्बी प्रमाण पत्र और वैलिडिटी की मांग, मनोज जरांगे ने सरकार को दी 29 अगस्त तक की डेडलाइन। जाला में पानी की कमी से किसानों ने 1.5 एकड़ मिर्ची की फसल को उखाड़ कर फेंक दिया, कटाई से ठीक पहले जल स्रोत सूख जाने की वजह से सूख गई थी मिर्ची की फसल। पटना के सचिवालय थाना पहुंचे तेज प्रताप यादव, अपने वकील के साथ आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरजेडी के पूर्व विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को मिली धमकी, धमकी देने वाला शख्स खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा था, रोशन आनंद ने लिखित में शिकायत दी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया है, तीस्ता उफान पर है, बांग्लादेशी सीमा तक येलो अलर्ट जारी। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूचबिहार और उत्तर बंगाल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। कोलकाता में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव, एयरपोर्ट जाने वाली मुख्य सड़क पर जलभराव, ट्रैफिक जाम से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तर 24 परगना में भारी बारिश के बाद धौला थाना जलमग्न हुआ, लॉकअप से लेकर आईसी रूम तक भर गया पानी, पुलिसकर्मियों के हालात ज्यादा खराब। पश्चिम बंगाल में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में भरा है पानी, यातायात प्रभावित हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए जारी कर दिया ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश हुई है, बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में बारिश के बीच दिल्ली में 39 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया तापमान, वीकेंड पर आंधी और बारिश का अनुमान, येलो अलर्ट जारी। पिछले कुछ समय से दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया यूपी का बांदा, बांदा में तापमान बढ़ने की वजहों की जांच के लिए जमीन पर उतरी है विशेषज्ञों की टीम। और असम और अरुणाचल में भारी बारिश के बाद बढ़ गया ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, जल स्तर बढ़ने से नदी के किनारों तक पहुंच गया पानी, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। वाराणसी के सीएनजी गैस स्टेशन के पीछे मौजूदा पाइप स्टोरेज यार्ड में लगी थी आग, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने काबू पाया। वाशी में सिलेंडर विस्फोट से तीन घर जल गए हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। राजगढ़ में 15 मिनट की बारिश बन गई थी काल। खेत में प्याज भर रहे चाचा भतीजे पर गिरी थी बिजली, दोनों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाजार में आग लगने से दो दुकानें जलकर खाक हुई, संपत्ति को भारी नुकसान। बिजनौर टोल प्लाजा पर बैरियर खुलने में देरी से भड़के थे कार सवार, महिला कर्मचारी से गाली गलौज की गई, विरोध करने पर गार्ड को कार से कुचल डाला। उड़ीसा के रायगढ़ में बच्चा चोर होने के शक में एनजीओ कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला बोला, युवती के कपड़े फाड़े, अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में खाकी की दबंगई, घंटाघर पर शख्स को लातों से पीटता दिखाई दिया ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा, नोएडा में डेयरी और थोक विक्रेताओं पर खाद्य विभाग ने दबिश दी, करीब 300 किलो खराब पनी नष्ट किया गया। सहारनपुर में नवजात की मौत हुई, बड़ा एक्शन, हेल्थ केयर सील किया गया, संचालक फरार, बिना लाइसेंस चल रहा था अस्पताल। बलौदा बाजार में सब्जी खरीदने आई महिला पर टूटा खंभा, बिजली के खंभा गिरने से महिला समेत एक और शख्स की मौत। गोंडा में पूजा पाठ तंत्र मंत्र के आड़ में ठगी करने वाला मेरठ निवासी शफीक अली पुजारी गिरफ्तार, 26 लाख रुपए बरामद। बिजनौर में युवती की संदिग्ध मौत समझ गया बवाल, परिजनों का आरोप है कि कर्ज की वसूली के लिए युवक को बंदी बनाकर बुरी तरह से पीटा गया। सुकमा में मां के खाना न देने पर बेटे ने मां की हत्या कर डाली, डंडे से पीटकर मौत के घाट उतारा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 2 साल का बच्चा लापता है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार चला रही है सर्च ऑपरेशन। अलवर के सरिस्का, रणथंभौर सहित प्रदेश के जंगल में बाघ, पेंथर, आ भालू की सुरक्षा पर बड़ा खतरा, लाखों के लगाए गए थे हाईटेक कैमरे, खराब होने की खबर है। हावड़ा में पेयजल कनेक्शन को लेकर भारी बवाल, ग्रामीणों ने पंचायत पर जल कनेक्शन के नाम पर वसूले गए पैसे के गबन के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। गुजरात के अहमदाबाद में गैस एजेंसी में सिलेंडर लीकेज से ब्लास्ट हुआ, 2 घायल हुए, फायर ब्रिगेड ने 30 सिलेंडर्स को बाहर निकाला। गुजरात के वलसाड में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी, दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, कोई जनहानि नहीं। गुजरात के मोरबी में पेपर मिल में भीषण आग लगी, कागज के ढेर में लगी आग ने लिया था विकराल रूप। आगरा में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, काले धुएं का गुबार ताजमहल तक नजर आया, पर्यटकों को सांस लेने में परेशानी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 88वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे शिरडी में साईं बाबा के दरबार, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साईं बाबा के दर्शन, खुशहाली की मांग। साईं बाबा मंदिर प्रशासन की ओर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का किया गया सम्मान, शॉल उड़ाकर साईं बाबा की मूर्ति देकर सम्मानित हुए। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई, रामबन के डिविजनल कमिश्नर ने बनिहाल में यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बढ़ाई थी सुरक्षा, चप्पे चप्पे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे जवान। सलमान खान की फिल्म काला हिरण पर रोक की याचिका पर 1 जुलाई तक सुनवाई टली, फिल्म मेकर्स अमित जानी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। सिनेमाघरों में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2, फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन लीड रोल में। इमोशनल ड्रामा फिल्म समर्पित ने भी बड़े पर्दे पर दस्तक दी, इस फिल्म में अंकित यादव और जया भट्टाचार्य हैं लीड रोल में। खासतौर से बच्चों के लिए टॉय स्टोरी 5 भी रिलीज की गई, ये डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट है। क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के जिलर हैं भी हुई रिलीज, वेटरन एक्टर असरानी, जरीना बहाव भी नजर आए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे ग्रहों के अस्त होने की। ग्रहों का अस्त होना क्या होता है, कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, और ग्रहों के अस्त होने के लिए क्या करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंच।

2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 3:46 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 9:25 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज ग्रहों के अस्त होने की बात कर रहे हैं। ग्रहों का अस्त होना क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है? देखिए, हर ग्रह की एक विशेष गति होती है जिसमें ग्रह तमाम ग्रहों से मिलते रहते हैं, और जब अलग अलग ग्रहों से मिलते हैं तो इस प्रकार योगों का निर्माण होता है। इसमें अलग अलग ग्रहों का संयोग सूर्य से भी होता है, सूर्य से भी मिलते हैं, जिसमें सूर्य के प्रभाव से ग्रह कभी कभी अस्त हो जाते हैं। अस्त का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे सूर्य की रोशनी में आप मोमबत्ती रखें जला करके, तो मोमबत्ती जलेगी जरूर, लेकिन उसके प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती। अगर ग्रह नुकसानदायक है तो अस्त होने पे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर ग्रह लाभदायक है तो अस्त होने पर लाभ नहीं दे सकता। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, और सूर्य के सबसे निकट होता है बुध, इसलिए बुध सबसे ज्यादा अस्त होता है। अब जानते हैं अलग अलग ग्रहों के अस्त होने के बारे में। जब चंद्रमा अस्त होता है तब क्या होता है? चंद्रमा अस्त होते हैं अमावस्या के आसपास। चंद्रमा के अस्त होने पर तमाम तरह की मानसिक समस्याएं व्यक्ति को होने लगती हैं। कभी कभी मिर्गी की बीमारी या मानसिक दौरे की बीमारी हो जाती है। चंद्रमा के अस्त होने पर व्यक्ति को स्त्री का और माता का सुख नहीं मिल पाता। महिलाएं अगर हैं और चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं में विशेष तरह के रोग हो जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं का विशेष सम्मान करिएगा, और चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिए, और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिए तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। बाकी ग्रहों के अस्त होने पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जीवन में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब जानते हैं कि अगर मंगल अस्त हो तो इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, मंगल अगर कुंडली में अस्त होगा तो आपके आत्मविश्वास में और आपके साहस में कमी आ सकती है। व्यक्ति के संबंध अपने परिवार वालों के साथ, भाई बहन के साथ अच्छे नहीं रहेंगे और व्यक्ति के अंदर कभी कभी अपराध करने की, क्राइम करने की वृत्ति आ जाती है। अगर कुंडली में मंगल दोष है और मंगल अस्त हो गया है तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। अगर आपका मंगल अस्त है तो क्या करेंगे, या तो जमीन पर सोइए या लो फ्लोर के पलंग पर सोइएगा और तांबा किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। जितना संभव हो हनुमान जी की उपासना करें, मंगल के अस्त होने का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त हो गया हो तो इसके प्रभाव क्या होंगे। अगर बुध अस्त है तो व्यक्ति की बुद्धि तेज नहीं होती और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। जिनका बुध अस्त होता है ऐसे लोग हमेशा वहम और दुविधा से घिरे रहते हैं। बुध अस्त होने पर व्यक्ति नकारात्मक विचार रखने लगता है। अगर बुध अस्त होगा तो एक लाइन में समझिए कि सही समय पर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिएगा और बिना तेल मसाले के हरी सब्जियों का प्रयोग करिएगा तो आपको लाभ होगा। बाकी ग्रहों पर भी चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करेंगे। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी,
स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के मामलों में सावधानी रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मनीषा वर्मा ने हमें लिखा है, आगरा से लिखती हैं। मनीषा की जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1990, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है आगरा। मनीषा कह रही हैं कि मेरा पारिवारिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है और परिवार वालों से दिक्कतें बहुत होती हैं, ससुराल वालों से, तो क्या ये विवाह चल सकेगा, क्या उपाय करना चाहिए? मनीषा, सबसे पहले बता दें कि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं है, पति के साथ आपका तालमेल मुझे कुल मिला जुला के ठीक दिखाई दे रहा है। इन लॉस के साथ थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अक्टूबर 2026 के बाद से आपका स्थान परिवर्तन होगा और स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, चीजें काफी रास्ते पे आ जाएंगी। सेपरेशन के बारे में विचार ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। जितना ज्यादा से ज्यादा शिव जी की पूजा करेंगी उतना आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपका बृहस्पति अस्त हो तो क्या प्रभाव होते हैं। बृहस्पति अगर अस्त होगा तो व्यक्ति तामसिक वृत्तियों का, खराब आदतों का शिकार होगा। व्यक्ति को पेट की गंभीर समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और अगर आप महिला हैं और आपका बृहस्पति अस्त है तो विवाह होने में और चलने में बड़ी मुश्किल आएगी। अगर आपका बृहस्पति अस्त है तो सूर्य भगवान को नियमित रूप से हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं। किसी न किसी रूप में थोड़ा सा ही सही सोना जरूर धारण करें और अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा और सहायता करिएगा। बृहस्पति के अस्त होने से आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आपका शुक्र अस्त है तो क्या प्रभाव पड़ेगा।

मिलेगा, खास तौर से दाम्पत्य सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल प्रभावशाली नहीं होगा, लोग व्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे, व्यक्ति को आंखों की और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या हो सकती है, ये संभावना बनेगी। अगर आपका शुक्र अस्त है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से दही का सेवन जरूर करिए। सुबह स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध लगाइए और अगर शुक्र अस्त है तो माता लक्ष्मी की अधिक से अधिक उपासना करिए, आपको लाभ होगा। शनि के अस्त होने पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आर्थिक रूप से लाभ होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम पूरा होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

अपराधों से बचाव करें, फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर शनि अस्त हो गया कुंडली में तो इसके परिणाम क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं? अगर कुंडली में शनि अस्त है तो व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष होता है, कदम कदम पर संघर्ष रहता है। व्यक्ति को अपने रोजगार के लिए, अपने करियर के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और शनि अगर अस्त हो गया तो व्यक्ति को कभी कभी घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अस्त है तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, एक लोहे का छल्ला दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करिए और जो लोग वृद्ध हैं या आपसे नीचे के स्तर के लोग हैं उनकी सहायता जरूर करिएगा। देखिए, कोई ग्रह जब अस्त होता है तो उसके फलों में कमी आ जाती है या वो फल नहीं दे पाता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि कोई ग्रह अस्त होता है सूर्य की वजह से, तो अगर कोई ग्रह अस्त है तो उस ग्रह का फल सूर्य देने लगते हैं। सूर्य के

रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

योग हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि उम्र के 28 वर्ष बीत जाने के बाद कुंडली का मंगल दोष समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा है? देखिए, कुंडली में जो आपके जन्म के समय योग बन जाते हैं या जो कॉम्बिनेशन जो ग्रहों की स्थिति होती है वो जीवन में कभी नहीं बदलती। उसके प्रभाव कम या ज्यादा हो सकते हैं दशाओं के हिसाब से। इसलिए मंगल दोष अगर कुंडली में है तो वो 28 साल के बाद समाप्त नहीं होता है, वो पूरे जीवन भर बना रहता है। और उसको समझ करके, उसका प्रभाव देख करके तब निर्णय लेना चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं।

योग बन रहे हैं। नंबर दो, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर तीन, काम की अधिकता रहेगी। नंबर चार, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर पांच, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर छह, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर सात, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर आठ, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर नौ, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा।

की बाधाएं दूर होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, लाभ होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

का सिंह राशि के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि के लिए, चिंताएं समाप्त होंगी, परिवार में खुशहाली आएगी। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को, चिंताएं बढ़ सकती हैं, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। आज षष्ठी तिथि है, आज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए और आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और फल का दान करना उत्तम होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: In association with
8: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
9: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
7: Hint, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
10: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
12: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
13: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
12: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
13: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
14: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
15: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है।
14: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
16: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
14: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
17: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
14: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
18: पैसा, रुतबा और आलीशान जिंदगी, दुनिया के रईसों के पास वो सब कुछ है जिसकी एक आम इंसान केवल कल्पना कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये दौलतमंद लोग अपना घर बार और देश छोड़कर भाग रहे हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक इस साल अमीरों के पलायन ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस साल रिकॉर्ड 1,65,000 करोड़पति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट होने वाले हैं। पिछले साल 1,42,000 और साल 2024 में 1,34,000 अमीरों ने अपना देश छोड़ा था। साल 2013 के मुकाबले ये आंकड़ा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जब महज 51,000 अमीर माइग्रेट हुए थे। करोड़पतियों के इस बड़े पलायन की वजह भी काफी बदल चुकी है। अमीर परिवार टैक्स छूट के अलावा स्थिरता, सुरक्षा और बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। इस लिस्ट में कुछ देश वेल्थ हब बनकर उभरे हैं, जिनमें शामिल हैं यूएई, जो कि 85.3 के सबसे ऊंचे स्कोर के साथ दुनिया भर के अमीरों की पहली पसंद बना हुआ है। वहीं इस लिस्ट में अमेरिका का वेल्थ मोबिलिटी स्कोर 62.3 है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग दूसरी नागरिकता मांग रहे हैं। अमेरिका से होने वाले आवेदनों में आधे यूरोप के लिए और 1/4 लैटिन अमेरिका कैरेबियन देशों के लिए हैं। रईसों के देश छोड़ने के इस ट्रेंड में महाशक्तियां कहे जाने वाले देशों को बड़ा झटका लगा है। खासकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ब्रिटेन इस वक्त अमीरों के पलायन के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोर्स मार्केट बन गया है और ब्रिटेन से बाहर जाने के लिए होने वाले आवेदनों में करीब आधी हिस्सेदारी खुद ब्रिटिश नागरिकों की है। वहीं भारत का वेल्थ मोबिलिटी स्कोर 56.5 है, जो इसे ढांचागत चुनौतियों वाली कैटेगरी में खड़ा करता है। पूंजी पर चुनिंदा लोगों का कंट्रोल और टैक्स के पेचीदा नियम भारतीय अमीरों के पलायन की मुख्य वजह है। भारतीय अमीर परिवारों के लिए दूसरा घर या नागरिकता लेना एस्टेट प्लानिंग और टैक्स स्ट्रक्चरिंग का हिस्सा बन चुका है। इसके जरिए वो बच्चों की शिक्षा, बिजनेस का विस्तार और सक्सेशन प्लानिंग को आसान बना रहा है। दूसरी तरफ कुछ देश इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। प्रवासी कारोबारी यूएई को एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करके दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। वहीं अमीरों के निवेश और नागरिकता के करीब आधे आवेदन पुर्तगाल, इटली और नीदरलैंड्स जैसे यूरोपीय देशों के लिए है और स्पेन का गोल्डन वीजा बंद होने और पुर्तगाल में सख्ती के चलते ग्रीस को सीधा फायदा मिल रहा है। दुनिया भर के वेल्थ मार्केट में मची इस हलचल से साफ है कि अमीर वहीं रुकना चाहता है जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे और उन्हें बेहतर लाइफस्टाइल मिले। ग्लोबल लेवल पर वेल्थ मोबिलिटी के बदलते समीकरणों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में दुनिया का नक्शा और इकोनॉमी दोनों बदलने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
21: और अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की एक बार फिर से जमकर तारीफ की। उन्होंने मोदी को एक महान नेता और मजबूत इंसान बताया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि मोदी बहुत ही अच्छे हैं, वो युद्ध से दूर रहते हैं। जो समझदारी भरी बात है, वो 1.5 अरब लोगों का नेतृत्व करते हैं। असल में वो सबसे बड़े हैं, भारत असल में सबसे बड़ा है और मोदी एक महान नेता हैं। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि मोदी का अंदाज बिल्कुल अलग है, उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। मैं जानता हूं कि असली मोदी बहुत सख्त मिजाज के इंसान हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ ऐसी बातें जान पाया जो मुझे पहले नहीं पता थी। आपको बता दें कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस में G7 समिट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात का मकसद दोनों ही देशों के बीच रिश्तों में सुधार लाना था, जिसमें पिछले कुछ समय से लगातार टैरिफ के बाद तनाव बना हुआ था।
22: All my life I've watched India. They just kept changing. Somebody would be there for 6 months and then a year. And then all of a sudden, Prime Minister Modi ends up there. He's been there for more than 12 years, very solid. And he does it through like this, a great calmness. And yet he's not a calm person. He's a very tough guy. I know him very well.
21: तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कामकाज की भी जमकर तारीफें की हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कई वर्षों से भारत को देखा है और वहां अक्सर नेताओं के बदलते हुए उन्होंने देखा है नेताओं को। ट्रंप ने कहा कि कोई 6 महीने के लिए आता था तो कोई 1 साल के लिए आता था, और फिर अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और 12 साल से ज्यादा समय से मजबूती से वो बने हुए हैं। वो ये सब बहुत शांति के साथ करते हैं, लेकिन असल में वो शांत स्वभाव के व्यक्ति नहीं है, बहुत ही सख्त मिजाज वाले व्यक्ति हैं वो। तो नरेंद्र मोदी बहुत शांति के साथ काम जरूर करते हैं, लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति नहीं है, ये भी ट्रंप ने मेंशन किया। उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत ही सख्त मिजाज के व्यक्ति हैं, भारत को बहुत लंबे समय से उन्होंने देखा है, जहां जहां कुछ समय के लिए लीडर्स आया करते थे, लेकिन पिछले 12 सालों से लगातार 1.5 अरब जनता का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे नॉनस्टॉप खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालिए हेडलाइंस पर।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

सीज फायर ईरान के साथ हुई डील को आगे बढ़ाने के लिए जिनेवा में होगी बातचीत। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हो रहे हैं रवाना। अगले हफ्ते रूबियो का मध्य पूर्व दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा 12 साल से ज्यादा समय से बहुत मजबूती से डटे हैं, शांति से काम करते हैं लेकिन मिजाज सख्त है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोप की जांच तेजी से आगे बढ़ी। छठे दिन एसआईटी के पूछताछ। योगी बोले दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज तक प्रधान की लूट पर स्पेशल कवरेज आज दिन भर लगातार। कोलकाता एयरपोर्ट पर देर रात सियासी ड्रामा। बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में झड़प। टीएमसी का आरोप अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने के लिए आए थे बीजेपी के कार्यकर्ता। सुकांता की नसीहत, हाथ में न लें कानून। और कल होने वाले नीट रीटेस्ट से पहले आज देश भर में मॉकड्रिल करेगी एनटीए। 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का जायजा। कई राज्यों में छात्रों को सेंटर तक फ्री में पहुंचाएगी सरकार।

हावड़ा में पेयजल कनेक्शन शुल्क वसूली विवाद में पंचायत कार्यालय के बाहर हंगामा, उप प्रधान से हुई मारपीट। आगरा में टेक्सटाइल गोदाम में लगी थी भीषण आग, थर्माकोल और कार्टन सामग्री से फैली थी लपटें। अहमदाबाद में गैस एजेंसी में सिलेंडर लीकेज से ब्लास्ट हुआ, आग में दो लोग घायल हुए, फायर ब्रिगेड ने 30 सिलेंडर्स निकाले। वलसाड में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। सहारनपुर में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के बीच सड़क पर दिखाई दी दबंगई, शख्स के साथ जमकर मारपीट की गई, वीडियो वायरल। उड़ीसा के रायगढ़ा में एनजीओ कर्मियों का बच्चा चोर समझकर पीटा गया, 16 लोगों की गिरफ्तारी। बिजनौर में टोल खोलने पर मामूली सी देरी के चलते भड़क गए थे कार सवार, टोल पर महिला कर्मचारी से गाली गलौज की गई, बाद में 65 वर्षीय गार्ड को कुचला। हरिद्वार में युवकों को चलती कार से स्टंट करना और हुड़दंगबाजी करना भारी पड़ गया, पुलिस ने 5 गाड़ियों को सीज किया है। गुजरात के जामनगर में बेजुबान कुत्ते पर हॉकी स्टिक से हमला, पशु प्रेमियों ने इसका विरोध करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली के शाहदरा स्थित एक आवासीय मकान में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर जांच जल्द, अमेरिकी दूत के परमाणु को लेकर पहले दौरे की बातचीत की बात कही गई। फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन में दो राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक दावा बना विवाद की जड़। ट्रंप ने दावा किया कि सम्मेलन के दौरान इटली के प्रधानमंत्री मेरे साथ तस्वीरें लेने के लिए बेताब थी। मेलोनी ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा, न मैं और न ही इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं। सोशल मीडिया पर भारत के अमेरिकी दूत सर्जियो गौर का पोस्ट बन गया चर्चाओं का विषय। पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया, कौन बड़ा नेता है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जवाब को अमेरिका के राजदूत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। ट्रंप के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया बेहतरीन नेता। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते, अमेरिकी सूत्रों का दावा, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी तनाव को खत्म करने के संकेत मिले हैं। इसराइल हिजबुल्ला के बीच संघर्ष विराम का दावा करते हुए अमेरिकी सूत्रों ने कहा है कि दोनों ही पक्ष अब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में रखा गया शांति वार्ता की बैठक का प्लान, लेबनन में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीज फायर। परमाणु मुद्दे पर वार्ता से पहले ईरान और अमेरिका के बीच समझौते का पहला बड़ा दावा, लेबनन और इसराइल समझौते पर राजी हो गए। ईरान और अमेरिका की शांति समझौते के बाद पूरी तरह से खुल गया हॉर्मुज, अमेरिका ईरान समझौते पर आगे 60 दिनों में बातचीत होगी। अमेरिका कोलकाता एयरपोर्ट पर बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच मारपीट हुई और झड़प भी, दिल्ली से अभिषेक बनर्जी के आने से पहले जबरदस्त हंगामा। मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि हाथ में कोई भी कानून को न ले, टीएमसी समर्थकों का आरोप अभिषेक बनर्जी पर, अंडा फेंकने के लिए पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मानसून सत्र से पहले फैसला सुनाएंगे स्पीकर ओम बिरला। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी, टीएमसी बागियों के खिलाफ अयोग्यता की सौंपी गई है सूची। लोकसभा स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी, टीएमसी बागियों के खिलाफ अयोग्यता की सौंपी गई 20 याचिकाएं, मानसून सत्र से पहले फैसला सुनाएंगे ओम बिरला। टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का रुख किया है। विधानसभा स्पीकर के तौर पर रिताभ्रता बनर्जी की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार। नीट रीटेस्ट से पहले आज देशभर में मॉकड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों को मुफ्त यात्रा की छूट। रामनगरी अयोध्या में विकास की सौगात, सीएम योगी ने 126 विकास परियोजनाओं पर किया लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या में भव्य दिव्य वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण, 8,000 वर्ग फीट में फैले म्यूजियम में श्रीराम सीता हनुमान के दिव्य रूपों को मिलेगी झलक। संबोधन के दौरान अयोध्या को बदनाम करने वालों पर बरसे सीएम योगी, राम जन्मभूमि पर बिना प्रमाण आरोप लगाए गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भारत के जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने की खास पहल, प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स को दिए हैं विशेष उपहार, नागौरी अश्वगंधा, मेघालय की हल्दी, रामबन का शहद और बनारसी सिल्क स्टोल भी शामिल। युवा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं को मंत्र का, रोजगार निर्माण बने राष्ट्रीय अभियान, केंद्र की योजना से लाखों युवाओं के खाते में भेजे गए 2400 करोड़ रुपए। आज और कल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे, हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 दिवसीय पंजाब के दौरे पर रहेंगे, चुनावी तैयारियों को लेकर करेंगे मंथन।
बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने पर कानून व्यवस्था सुधारने का दावा किया है। बोली पश्चिम बंगाल में भारी विजय, अब पंजाब की बारी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में सीएम योगी बोले 500 साल इंतजार किया तो 15 दिन और इंतजार कर लीजिए, एसआईटी की जांच में सब साफ हो जाएगा। आज तक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया की में कोताही हुई है, पूरा मैनेजमेंट बदलने की जरूरत। सीएम योगी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाई हाजिरी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके लिया बजरंग बली का आशीर्वाद। अयोध्या के मां कामाख्या मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर अखिलेश का तंज का, किसी भी रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की भीड़, एसआईटी की जांच होनी चाहिए। यूपी के मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दोनों ही दलों के बीच धक्का मुक्की और नारेबाजी हुई। मऊ कार्यक्रम के दौरान शक्ति प्रदर्शन और नारेबाजी से बढ़ गया विवाद, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। मऊ में ट्रेन उद्घाटन समारोह में हुए हंगामे पर अखिलेश ने बीजेपी पर बाहरी अपराधियों को संरक्षण देने के भी आरोप लगाए। पटना शहर से बाहर होंगे सभी कोचिंग संस्थान, सीएम सम्राट चौधरी का सैटेलाइट टाउनशिप और एजुकेशनल हब बनाने का बड़ा ऐलान। बिहार में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम सम्राट ने छपरा आनंद विहार एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, रेल मंत्री ने कहा आने वाले 7-8 सालों में बिहार को मिलेंगे 200 से ज्यादा नई ट्रेनें। पटना को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बड़ी सौगात, होर्डिंग रोड पर बनेंगे 5 नए प्लेटफॉर्म। बिहार टेंडर घोटाला मामले में जांच की बड़ी कार्रवाई, आईएएस अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के बेगूसराय में महिला से गैंगरेप के मामले में डीआईजी का बड़ा एक्शन, थाना प्रभारी सस्पेंड, जांच के लिए एसआईटी का गठन, दोबारा मेडिकल जांच। बेगूसराय गैंगरेप मामले में पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की बात कही है, पुलिस पर लापरवाही और कार्रवाई के आरोप भी लगाया। बिहार के आरा एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन, एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित, पुलिस कार्रवाई पर बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाए। शिवसेना ने मनाया अपना 60वां स्थापना दिवस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों ने अलग अलग रैलियां की। एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट पर सादा निशाना, बोले हमने बाला साहेब के सपनों को पूरा किया, महायुति मजबूत हमें और देवेंद्र फडणवीस को अलग करने की कोशिशें नाकाम हुई हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इससे ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे का पलटवार, कहा राज्य में शिंदे सेना से परेशान है बीजेपी, अराजकता से देश परेशान। शिवसेना यूबीटी उद्धव गुट ने विरोधियों को दिया है संदेश का, शिवसेना कोई व्यापार नहीं बल्कि मराठी अस्मिता हिंदुत्व की विचारधारा, बाला साहेब ठाकरे की रखी हुई नींव आज भी अडिग। हरिद्वार नगर निगम में 54 करोड़ की जमीन घोटाले में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, विजिलेंस जांच में आपराधिक साजिश की और धोखाधड़ी के आरोप साबित। सीएम धामी ने तत्कालीन नगर आयुक्त को बर्खास्त करके डीएम के लिए मेजर पनिशमेंट की सिफारिश की है, बोले किसी भी तरह पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरिद्वार में सीएम धामी ने विश्व हिंदू परिषद की बैठक में संतों का आशीर्वाद लिया, कुंभ को दिव्य भव्य बनाने और योग दिवस को भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया गया। झारखंड के रांची में भारतीय सेना ने ऑपरेशन दृष्टि के तहत सबसे बड़े आई सर्जिकल कैंप का आयोजन किया, 320 से ज्यादा लोगों ने मुफ्त सफल नेत्र सर्जरी करवाई। भरतपुर के अस्पताल में चाइनीज सोनोग्राफी मशीनों को लेकर डॉक्टर्स का धरना, बोले चाइनीज मशीनों से मरीजों की रिपोर्ट सही नहीं आ रही। महाराष्ट्र कांग्रेस ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट की संवैधानिक वैधता को बॉम्बे हाईकोर्ट में दिए चुनौती, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए। नागपुर में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा कदम, 10,000 टन एल्युमिनियम प्रेस मशीन का भूमि पूजन किया गया, राजनाथ सिंह ने परियोजना की आधारशिला रखी। रिलायंस कंपनी के 49वीं एजीएम में बड़ा ऐलान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जियो आईपीओ को दिया मंजूरी, चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स का स्वागत किया। झाला में किसानों का अनोखा आंदोलन, कुएं में चारपाई बिछाकर बैठे, संपूर्ण किसान कर्ज माफी की मांग की गई। पुणे में पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई की, 42 लाख का 84 किलो गांजा बरामद। मनोज जरांगे पाटिल का सरकार को अल्टीमेटम, 29 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन फिर से शुरू करूंगा। 58 लाख पूर्वी प्रमाण पत्र और वैलिडिटी की मांग की गई, मनोज जरांगे ने कहा सरकार को 29 अगस्त तक डेडलाइन दे रहे। जालना में पानी की कमी से किसानों का 1.5 एकड़ मिर्च फसल पूरी तरह से बर्बाद हुआ, कटाई से ठीक पहले जल स्रोत सूख जाने की वजह से सूख गई थी ये मिर्च। पटना के सचिवालय थाने पहुंचे तेज प्रताप यादव, अपने वकील के साथ आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरजेडी के पूर्व विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को मिली है धमकी, धमकी देने वाला शख्स खुद को बता रहा था लॉरेंस गैंग का सदस्य।
पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद बढ़िया जलस्तर, तीस्ता नदी उफान पर है, बांग्लादेशी सीमा तक येलो अलर्ट जारी। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूचबिहार और उत्तर बंगाल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से जलभराव है, एयरपोर्ट जाने वाली मुख्य सड़क पर जलभराव, ट्रैफिक जाम से यात्रियों की बढ़ गई है परेशानी। उत्तर 24 परगना में भारी बारिश के बाद घोला थाना जलमग्न लॉकअप से लेकर आईसी रूम तक भरा है पानी, पुलिसकर्मी कठिन हालात में काम करने के लिए मजबूर। पश्चिम बंगाल में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में पानी भरा, यातायात प्रभावित हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में मदुरई में भारी बारिश हुई है, बारिश ने लोगों के लिए गर्मी से राहत दिलाने की बात कही। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के बीच बारिश के बीच दिल्ली में 39 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया तापमान, वीकेंड पर आंधी और बारिश का अनुमान है, येलो अलर्ट जारी। पिछले कुछ समय से दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया यूपी का बांदा, बांदा में तापमान बढ़ने से जांच के लिए जमीन पर उतरी है विशेषज्ञों की टीम। असम और अरुणाचल में भारी बारिश से बढ़ गया ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारों तक पहुंच गया पानी, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 88वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे शिरडी में साईं बाबा के दरबार, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। साईं बाबा मंदिर प्रशासन की ओर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का स्वागत किया गया, शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा ली गई, रामबन के डिवीजनल कमिश्नर ने बनिहाल में यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बढ़ा दी सुरक्षा, चप्पे चप्पे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हैं जवान।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।

109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग सब कुछ खत्म कर देगी। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के साथ शुरू हुई जंग 109 दिन के बाद 17 जून को बातचीत की मेज पर खत्म हुई। 14 पॉइंट्स वाले समझौते पर साइन हुए। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील पर हस्ताक्षर किए तो ईरानी राष्ट्रपति पजिश्किन ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डील में जीत किसकी है, आखिर समझौता किसके पक्ष में रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप कार्ड फेल रहा, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। तोलमोल में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, वो सारी बातें मनवाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। ट्रंप डींग हाँकते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। डील में ईरान की शर्तें नहीं चलेगी, ईरान को सरेंडर करना होगा, हॉर्मुज सब के लिए खुलेगा, ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन डील में वो सब है जो ईरान चाहता था। मसलन हॉर्मुज 60 दिन टोल फ्री रहेगा और फिर ईरान जॉर्डन मिलकर बनाएगा मैकेनिज्म। यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ईरान में ही डाउनग्रेड होगा। मिसाइल को लेकर ट्रंप ने रुख बदला, अब वो बोल रहे हैं कि जब पड़ोसी देशों के पास मिसाइल है तो ईरान को कैसे रोक सकते हैं। कहां तो फूटी कौड़ी ना देने की अकड़ थी, अब 300 अरब डॉलर ईरान को मित्र देश पुनर्निर्माण के लिए देगा। 14 पॉइंट वाले समझौते की तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत की मेज पर ईरान अपनी कई शर्तें बचाने में कामयाब रहा। सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट, वही रास्ता जिसे लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। ट्रंप कहते थे हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगा, किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा और उसके बाद एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात है जिसमें ईरान और जॉर्डन की भूमिका बताई जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान का यूरेनियम। ट्रंप की मांग थी कि ईरान यूरेनियम बाहर सौंपे, लेकिन डील की शर्तों के मुताबिक यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने के बजाय उसी जगह डिग्रेड करने का रास्ता सामने आया, यानी ईरान की जमीन पर ही प्रक्रिया। तो क्या ये ट्रंप की जीत है या फिर क्या ईरान बिना पूरी तरह झुके अपनी अहम शर्तें बचाने में कामयाब रहा। 109 दिन की जंग के बाद बंदूकें खामोश हैं, लेकिन असली मुकाबला अब नैरेटिव का है। अमेरिका कहेगा हमने ईरान को बातचीत पर मजबूर किया, ईरान कहेगा हमने दबाव के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी। यानी डील हो गई, लेकिन जीत की कहानी दोनों देश अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं।

0: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की एसआईटी जांच पिछले 5 दिनों से चल रही है और ऐसे मौके पर यूपी के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बहराइच की दरगाह में बरसों से चल रहे चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच की मांग शुरू कर दी है। बहराइच का वक्फ नंबर 19 यानी सैयद सलार मसूद गाजी की वो दरगाह जो यूपी की सबसे बड़ी दरगाहों में एक है। 50-60 बीघे में फैली इस दरगाह की मिल्कियत में जमीन, दुकानें, मकान, मदरसे तमाम चीजें हैं। पिछले बरस तक इस दरगाह पर यूपी के प्रसिद्ध उर्स और मेले लगा करते थे। अब बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि इस दरगाह में 20 वर्षों से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला चलता आ रहा है।
1: लगभग 20 साल से वहां बड़ी तादाद में करप्शन है। लगभग 14 करोड़ इनकम एक साल में उन्होंने दिखाई है, लेकिन जो लोगों से मालूम हुआ, लगातार उसकी जानकारी हुई, तथ्य निकल करके आए और लगातार शिकायतें हुई, तो उसमें 20 साल के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कमेटी के लोग शामिल हैं।
0: बासित अली ने सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि इस दरगाह कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शमशाद अहमद, मौजूदा अध्यक्ष बकाउल्लाह, खादिम अजमतुल्लाह, दरगाह कमेटी मेंबर यासिर शाह, उनके परिवार के वकार शाह, मारिया शाह और रिश्तेदारों की संपत्तियों की भी जांच की जाए। इसके अलावा पिछले 20 साल में हुई आय, संपत्तियों, चढ़ावे, वित्तीय लेनदेन और प्रशासनिक फैसलों की भी जांच कराई जाए।
1: मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी एसआईटी की जांच करके और जो वक्फ नंबर 19 दरगाह है बहराइच की, उसकी भी जांच हो, उस पर एसआईटी जांच दे, तो समाजवादी पार्टी का पर्दाफाश हो, क्योंकि लोग चंदा चोर हैं। ये जो चंदा है, इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसकी कमेटी के लोगों ने, उसके पदाधिकारियों ने चुराया है और मुसलमानों का माल खाया है, इसकी जांच जरूरी है।
0: बीजेपी सियासी सवाल उठाती है कि इस दरगाह से जुड़े लोग समाजवादी पार्टी की सियासत करते हैं, इसलिए राजनीतिक साठगांठ के तहत दरगाह में चल रही अनियमितता की आवाज नहीं उठाई जा रही है। उधर दरगाह कमेटी के लोग इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं और इसे खालिस सियासी तोहमत बता रहे हैं। दरगाह कमेटी भले सैयद सलार गाजी की दरगाह और वक्फ नंबर 19 के मामले में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रहे हों, लेकिन जिस तरह संभल से बहराइच और बहराइच से लखनऊ के मलियाबाद राजा कंसा पासी किले की सियासत में सैयद सलार मसूद के नाम की सियासत शुरू हुई है, उसमें बड़ी संभावना है कि दरगाह में कथित घोटाले की जांच शुरू न हो जाए। वैसे भी इन दिनों कई कार्यक्रमों के मंचों से सीएम योगी राजा सुहेल देव से लेकर सालार गाजी का जिक्र करते नजर आते हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
7: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: यूपी में भी क्या शुरू हो गया है ऑपरेशन लोटस? क्या समाजवादी पार्टी में भी महाराष्ट्र जैसी कहानी दोहराने की तैयारी है? बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के कई सांसद बगावत के मूड में हैं और 2027 के चुनाव से पहले सपा में बड़ी टूट हो सकती है, लेकिन सवाल यह है क्या ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है या वाकई समाजवादी कुनबे में एक और दरार पड़ने वाली है? समाजवादी पार्टी में जल्द बगावत का दावा नंबर एक, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार।
1: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।
0: दावा सिर्फ डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं है, यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा में भगदड़ की भविष्यवाणी कर दी। दावा नंबर दो, चुनाव में हार के डर से बीजेपी में आएंगे समाजवादी पार्टी नेता।
2: देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर।
0: राजभर ने अब नया हमला बोलते हुए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा को लेकर भी सवाल खड़े किए। पीडीए कार्यक्रम में उनके नहीं पहुंचने पर राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर असंतोष है और इसी बहाने उन्होंने अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव पर भी निशाना साधा। राजभर का आरोप पार्टी टूटेगी और उन्होंने इशारा किया कि शिवपाल यादव ही समाजवादी पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के टूटने की भविष्यवाणी हुई है, क्योंकि समाजवादी परिवार की सियासत में दरार और फिर जुड़ने की कहानी पुरानी है। साल 2012, पार्टी एक परिवार एक, समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती और अखिलेश यादव यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदल गई। 2017 में परिवार की कलह खुलकर सामने आई, चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरी बढ़ी, नतीजा सपा 47 सीटों पर सिमट गई। 2018 में परिवार की लड़ाई ने नया मोड़ लिया, शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद अखिलेश की पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत सकी और फिरोजाबाद जैसी पारिवारिक सीट भी शिवपाल के अलग लड़ने से हाथ से निकल गई। 4 साल बाद कहानी फिर बदली, अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर आए, परिवार फिर साथ दिखा और 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया। अब 2027 से पहले फिर वही सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार अखिलेश यादव अपने कुनबे और सांसदों को संभाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी खेमे की तरफ से एक के बाद एक दावे आ रहे हैं। केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दिनेश शर्मा, सबका दावा अलग अलग लेकिन निशाना एक, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं जो डर जाएगा वही दल छोड़ेगा, बीजेपी के मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। तो यूपी की सियासत में सवाल यही है, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा खेल होगा या फिर ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस का सियासी शोर है? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दशकों की दुश्मनी, मिसाइलों की गूंज और जंग के मैदान में आमने सामने खड़े दो देश जब अचानक हाथ मिला लें तो दुनिया हैरान रह जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता कुछ ऐसा ही है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया है। दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए हैं जिसने सीमा पर चल रही जंग पर तुरंत विराम लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शांति समझौते के बड़े मायने हैं। समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देश बातचीत के जरिए फाइनल डील तैयार करेंगे। इस करार को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देश इसे अपनी अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के लिए इस डील के मायने अलग हो सकते हैं। समझौते के तहत कुछ बेहद ही अहम शर्तें रखी गई हैं, जिनमें शामिल हैं अमेरिका की तरफ से 30 दिनों में ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह खत्म करना, ईरान की तरफ से फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित और फ्री रास्ता देना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी रखना और वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इस बीच समझौते के आर्थिक पहलुओं को लेकर भी बड़ी बातें सामने आई हैं। प्रतिबंधों के हटने से ईरान की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन मिल सकता है। डील के मुताबिक अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, साथ ही प्रतिबंधों को हटाने को लेकर भी सहमति बनी है। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का एक बड़ा प्लान तैयार किया जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए वेवर जारी करेगा। ईरान के फ्रीज किए गए पैसों और संपत्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए जारी किया जाएगा। इस भारी भरकम राहत के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को एक नई चिंता भी सताने लगी है। उनका मानना है कि इस फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में भी हो सकता है। वहीं ईरान इस समझौते को अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस डील से हिजबुल्ला और हुरमुज जलडमरू मध्य पर उसका दबदबा बना रहेगा। वहीं आशंका ये भी है कि प्रतिबंधों में ढील मिलने से ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत कर सकता है। ईरान ने हिजबुल्ला को भरोसा दिया है कि फंड रिलीज होने के बाद उसकी फंडिंग बढ़ा दी जाएगी। यानी एक तरफ जहां शांति की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बने हुए हैं। उधर अमेरिका इराक सरकार पर भी दबाव बना रहा है कि वो ईरान समर्थित मिलिशिया पर लगाम लगाए। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है, ये तो आने वाले 60 दिनों की बातचीत तय करेगी। लेकिन इस समझौते ने फिलहाल दुनिया को बड़ी राहत जरूर दी है। आज तक ब्यूरो।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
6: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

ट्रंप की धमकी के बाद झुका इसराइल हिजबुल्लाह से, सीज फायर ईरान से डील को मिलेगी रफ्तार। जिनेवा में बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हो रहे हैं रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी से की तारीफ, कहा 12 साल से ज्यादा समय से बहुत मजबूती से डटे हैं, शांति से काम करते हैं लेकिन मिजाज सख्त है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जांच में तेजी, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के मिले सबूत, छठे दिन भी एसआईटी की पूछताछ, आज तक प्रधान की लूट पर स्पेशल कवरेज आज दिन भर लगातार। कोलकाता एयरपोर्ट पर देर रात सियासी ड्रामा, बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में झड़प, टीएमसी का आरोप अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने के लिए आए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, सुकांता की नसीहत, हाथ में न लें कानून। और कल होने वाले नीट रीट टेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का जायजा, कई राज्यों में छात्रों को सेंटर तक फ्री में पहुंचाएगी सरकार।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच के बीच बड़ी खबर यह है कि SIT सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच करा सकती है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा फुटेज रिकवर हो पाए और जांच बढ़ पाए आगे। आपको बता दें कि जांच के दौरान SIT को कुछ सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत मिल गए हैं। हालांकि समस्या यह है कि मंदिर परिसर के सीसीटीवी कैमरों का बैकअप सिर्फ 45 दिनों तक ही उपलब्ध रहता है। ऐसे में पुराने फुटेज को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक जांच की तैयारी की जा रही है। तो इस पूरे मामले में लगातार SIT जांच कर रही है। 15 दिन का समय मांगा गया है सीएम योगी की तरफ से। और आपको बता दें कि अब कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए फॉरेंसिक हेल्प ली जा सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ गए। आशीष, और क्या जानकारी मिल पा रही है?
1: देखिए, जिस तरीके से SIT की टीम जांच कर रही है उसे एक एक सबूत को इकट्ठा कर रही है, लेकिन SIT की टीम के सामने छठे दिन भी ये एक चैलेंज सामने आया है कि जो सीसीटीवी फुटेज की कैपेसिटी है वो तकरीबन 45 दिनों की है। अब ऐसे में अगर ये जो दावा किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा भी और भी द्वारा कि पहले कई वर्षों से ये हो रहा है, तो उसकी जांच के लिए अब सीसीटीवी को फॉरेंसिक के पास भी भेजा जा सकता है कि वहां से उसकी और भी जांच आगे बढ़ाई जा सके। क्योंकि अगर जो की चढ़ावा चोरी की बात की जा रही है तो कितने लंबे समय से चल रही है, इसको भी SIT दर्ज कर रही है। और इसी वजह से SIT अब जो सीसीटीवी की फुटेज है उस पर पूरी तरीके से अस्वस्थ है कि वह इनको जांच करके अब फॉरेंसिक को भेजकर भी इनकी जांच और सबूत को इकट्ठा करेगी, जिससे कि मदद मिल पाए कि आखिर पहले भी यानी कि 50 दिनों से पहले भी क्या हुआ है, उन सब की जानकारी SIT इकट्ठी कर पाए। तो इस वजह से भी SIT की जांच अब आगे बढ़ रही है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ जो सीसीटीवी में उनको छेड़छाड़ जिस तरीके से मिले हैं उसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही थी जिसको जांच करने के लिए भी सीसीटीवी की फुटेज का बैकअप लेना।
0: बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो संकेत ये मिले हैं SIT को कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है और अब उसी पर लगातार काम जारी है, क्योंकि बैकअप सिर्फ 45 दिनों का मंदिर के तमाम सीसीटीवी कैमरों का है। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी की SIT जांच लगातार जारी है। SIT ट्रस्ट के सदस्यों और साथी कर्मचारियों से पूछताछ जारी है, दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। उधर आपको यह भी बता दें कि इस मुद्दे पर यूपी में राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियां लगातार राम भक्तों की आस्था पर सवाल उठा रही है, मुद्दा सरकार पर हमलावर है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जांच पूरी होते ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं।
2: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
3: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
4: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
5: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
6: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ

0: संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
1: और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज तक पर आज दिन भर देखिए चढ़ावा चोरी विवाद पर स्पेशल कवरेज। अब बात हम दो बड़ी अहम खबरों की करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। टीएमसी में बगावत का असर अब सड़कों पर भी नजर आने लगा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर अभिषेक बनर्जी के आने से पहले बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए थे। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो शिवसेना यूबीटी में टूट की संभावनाओं के बीच सियासी ताप बढ़ा हुआ है। कल शिवसेना के स्थापना दिवस से मौके पर एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग चरम पर देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलकाता एयरपोर्ट पर हुए जबरदस्त हंगामे के बारे में। जबरदस्त तनातनी और बवाल देखा गया क्योंकि अभिषेक बनर्जी के दिल्ली से लौटने से पहले टीएमसी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए। तो इसी बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए तो दोनों ही कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, टीएमसी और बीजेपी। और आपको बता दें धक्का मुक्की, नारेबाजी, एक दूसरे के साथ खींचतान, मारपीट पर आ गई तमाम बातें। हंगामा जबरदस्त हुआ है काफी देर तक एयरपोर्ट के भीतर और काफी ज्यादा तनाव यहां बना हुआ था। किसी तरह से पूरे मामले को शांत कराया जा सका।
2: वहीं से आर्म्स दिखाया, थप्पड़ मारा।
3: बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों ओर से लात घूंसे चल रही है। एयरपोर्ट अखाड़ा बना हुआ है, भारी हंगामा हो रहा है। एयरपोर्ट परिसर में बवाल है तो बाहर और भी बुरा हाल है। एक गाड़ी को कुछ कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है और उस पर हमला हो रहा है। कुछ ही देर बाद पीला कुर्ता पहने शख्स की भीड़ पिटाई शुरू कर देती है। कोलकाता एयरपोर्ट पर पूरा बवाल मचा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के दिल्ली से वापस आने से ठीक पहले टीएमसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके आने से पहले ही एयरपोर्ट के अराइवल गेट के पास टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झगड़ा शुरू हो गया। टीएमसी समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने और उन पर हमला करने के लिए एयरपोर्ट पर जुटे हैं।
4: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था आर्म्स देकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए। बीजेपी हैज अनलिस्टेड गुंड्स टू किल अभिषेक बनर्जी।
3: एयरपोर्ट पर अचानक बड़ी अफरा तफरी को देखकर पुलिस फौरन हरकत में आई। कार्यकर्ताओं को शांत करने का प्रयास किया लेकिन काफी देर वहां तनाव बना रहा।
5: कुछ लड़कियां आए और उनके साथ एक आदमी आया था जो पीला कलर का कुर्ता पहन के, फिर उन लोगों के हाथ में अंडा था। आप लोग ने वहां पे जब लाइव किए थे आप लोगों को भी दिख गया होगा शायद, और वहां पे उन लोगों का झंडा भी लगा हुआ था। थोड़ी देर में जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया ये कल्चर प्लीज मत रखिए। उन्होंने बोला ये हम आप लोगों ने सिखाया, हमने बोला ये करना सही नहीं होगा, आप प्लीज इसको खत्म कर दीजिए। ये सब झमेला हो रहा है इनको आप यहीं पे रहने दीजिए, अंडा वंडा मत छोड़िए, कोई प्रॉब्लम होगा दिक्कत होगा तो आप बोल दीजिएगा तो यहाँ पे खत्म कर देते। फिर उन्होंने एक लड़की और जो हमारे साथ थी ये थी, इनको आम वहीं से आम दिखाया, थप्पड़ मारा, हाथ दिया। आपको समझ में आ रहा है कि कैसा कैसा मिसबिहेव किया जा सकता है। सिलतानी किया उन लोग सब कुछ करके वहां से धक्का धक्की करके अंडा फेंकना चालू कर दिया।
3: दरअसल कुछ समय पहले सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए थे जिसे लेकर भी टीएमसी ने आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही लगाया था। और अब एयरपोर्ट पर अभिषेक बनर्जी के आने से पहले भारी बवाल हुआ। हालांकि बीजेपी लगातार टीएमसी नेताओं पर हमले की साजिश के आरोपों से इनकार करती रही है। कोलकाता में हुई घटना के बाद सुकांत मजूमदार ने कहा कि कोई कानून हाथ में न ले।
6: हर जगह में देखने को मिल रहा है, मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून

0: को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कानून जो दोषी है उनको सजा देगा।
1: उधर कार्यकर्ताओं की झड़प के बाद एक बार फिर बीजेपी टीएमसी आमने सामने है। इस घटना को लेकर सियासी तनाव बढ़ा हुआ है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: दरअसल अभिषेक बनर्जी कल लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के लिए दिल्ली आए हुए थे और स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के बागी सांसदों को अयोग्य करार देने की मांग की है। अभिषेक बनर्जी ने संविधान में 10वीं अनुसूची का हवाला दिया और कहा कि 10वीं अनुसूची के नियम 2A के तहत अगर कोई अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
3: हमने अपना केस स्पीकर साहब के सामने रखा है और अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने, क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाते हैं। क्योंकि आइदर आप कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 बन के रहूंगा, मैं दूसरा पार्टी का मेंबरशिप बन के उस पार्टी में रहूंगा तभी आपका मेंबरशिप चला जाएगा। ये साफ मेंशन किया है संविधान में। आपको तृणमूल से दिक्कत है, हो ही सकता है, लगता है कि भाई बीजेपी आपका भी बहुत खास है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो तृणमूल का पद, आप एमपीशिप से रिजाइन दे दो, कोई मना नहीं कर रहे, चुनाव हो फिर आप जरूरत पड़े तो बीजेपी का टिकट में जीत के आइए, फिर आप बैठिए यहां पे।
2: और आपको बता दें कि टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहांगीर की गिरफ्तारी के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शन में उनकी पत्नी भी शामिल हुई थी, जिसे लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया। आज जहांगीर की पत्नी को दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार किया गया है। जबरदस्त हंगामे के बीच जानकारी मिल रही है कि जहांगीर की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन हुआ था गिरफ्तारी के विरोध में, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, उस विरोध प्रदर्शन में जहांगीर की पत्नी भी शामिल हुई थी और अब पुलिस की तरफ से जहांगीर की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है दक्षिण 24 परगना से। बंगाल के बाद अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में और वहां की सियासत के बारे में, जहां ऑपरेशन टाइगर की संभावनाओं के बीच कल शिवसेना ने 60वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत का जिक्र करते हुए अगले कदम की तरफ इशारा किया। तो वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रैली में अध्यक्ष पद से इस्तीफे वाला दांव चल दिया।
4: ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर,
5: इसको जाना है वो इस्तीफा दे।
1: 60 साल पहले बनी शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। अब नई बगावत से फिर एक और टूट की पटकथा लिखी जा रही है। दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
6: अरे आवाज कुणाचा, उद्धव साहेब आगे बढ़ो।
1: उद्धव की पार्टी में एक और टूट की संभावनाओं के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उत्साह में है। दावा है कि अभी सियासी पिक्चर बहुत बाकी है।
7: बाळा साहेबांचे विचार, धर्मवीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
1: बाकी है
7: बाळा साहेबांचे विचार, धर्मवीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
1: तो क्या यूबीटी के जिन सांसदों के बगावत की आशंका है वो नंबर और बढ़ सकता है, या फिर किसी और सियासी मोर्चे पर भी उद्धव ठाकरे को झटका लग सकता है?
8: अब ऑपरेशन टाइगर तो हो गया है और कहा जा रहा है कि 20 से 21 तारीख को ये सारे सांसद जो है ये विलीन होकर आपकी पार्टी में दिखाई देंगे, लेकिन आज वो मुहूर्त क्यों नहीं है?
9: ये सब निर्णय हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ले रहे हैं। ऑपरेशन 2 ये आप सबके सामने आया है। कुछ ही दिनों के बाद ऑपरेशन 3 और 4 की भी शुरुआत आपके सामने दिखेगी तो महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे साहब को विश्वास और उनके ऊपर भरोसा जताती है। इसके लिए वहां से खासदार हो, आमदार हो, कॉर्पोरेटर हो, सभी हमारे संपर्क में और सभी जल्द से जल्द यहां पे ज्वाइंट होना चाहते हैं।
8: आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, ऑपरेशन टाइगर 2.0 के बाद अब 3.0, 4.0 हो भी होगा, मतलब कब तक जारी रहेगा और इस ऑपरेशन में कौन कौन लोग आपके साथ शामिल होने वाले हैं?
9: उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन 3 और 4 की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है।
10: उधर पार्टी में एक और बगावत के बीच उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं, जो जाना चाहें उन्हें खुशी खुशी जाने दें, लेकिन भावनाओं से ज्यादा मसला महाराष्ट्र की सियासत का है, जो उद्धव और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के स्थापना दिवस पर उद्धव ने शिंदे गुट के सारे आरोपों, सारे दावों को खारिज किया और तो और अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर डाली।
7: आज मैं 2.5 वर्ष काम किया, महाराष्ट्र पुढे नेला, देवेंद्र जी आता काम करता है, आम्ही टीम म्हणून काम करतोय, आमचा अजेंडा एकच, महाराष्ट्राची प्रगती।
10: उधर शिवसेना नेताओं के तेवर आक्रमक है, सांसदों की बगावत के खबरों के बीच उद्धव निशाने पर है, सवाल उनके नेतृत्व पर है।
11: तो इच्छा है कि जो खासदार उद्धव जी के साथ में थे, आज वो हमारे साथ में आने का निर्णय लेने वाले हैं या शायद ले चुके हैं, तो आज ही हमारे इस माध्यम से, आज हमारा 60th वृद्धापन दिन है, इस दिन के माध्यम से आज वो हमारे पक्ष में शामिल हुए।
10: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है, ये न सिर्फ उद्धव को चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ओनली 30 कैलोरीज, जस्ट 5 grams ऑफ शुगर एंड 3 grams ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर। That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
15: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
16: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
18: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
5: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिंझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTA को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
12: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
13: प्लीज बजी पर, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
14: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
13: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजी पर, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है, 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है, 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
1: भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा, सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

ट्रंप की धमकी के बाद झुका इसराइल हिजबुल्ला से सीज फायर। ईरान से डील को मिलेगी रफ्तार। जिनेवा में बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हो रहे हैं रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा 12 साल से ज्यादा समय से बहुत मजबूती से डटे हैं, शांति से काम करते हैं, लेकिन मिजाज सख्त है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जांच में तेजी। सीसीटीवी से छेड़छाड़ के मिले सबूत। छठे दिन भी एसआईटी की पूछताछ। आज तक प्रधान की लूट पर स्पेशल कवरेज आज दिन भर लगातार। कोलकाता एयरपोर्ट पर देर रात सियासी ड्रामा। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में झड़प हुई। टीएमसी का आरोप अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने आए थे बीजेपी के कार्यकर्ता। सुकंता की नसीहत, हाथ में न ले कानून। और कल होने वाले नीट रीटेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का जायजा। कई राज्यों में छात्रों को सेंटर तक फ्री में पहुंचाएगी सरकार।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ, नीट यूजी के री एग्जाम की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल नीट यूजी की पुनर्परीक्षा है और उससे ठीक पहले यानी कि आज एनटीए की ओर से मॉक ड्रिल होनी है। और कल नीट की परीक्षा और उससे ठीक पहले मॉक ड्रिल की तैयारियां जबरदस्त की जा रही है। इसमें परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की परीक्षा होनी है। कब पेपर खुलेगा, कैसे बटेगा, ओएमआर कैसे खुलेगा, सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी, सेंट्रल कंट्रोल रूम, इमरजेंसी सेवाएं, बिजली बैकअप, सब कुछ आज ही मॉक ड्रिल में देख लिया जाएगा ताकि जब कल परीक्षा शुरू हो तो किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई भी गलती ना हो। पहले इस एग्जाम को लेकर जबरदस्त तरीके की किरकिरी हो चुकी है सरकार की और एनटीए की, और इसीलिए आज खास तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी मॉक ड्रिल के जरिए कि किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए कल एग्जाम से पहले।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की ये तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर, जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे, और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं, जिस पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और इस पे साफ तौर पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है, क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं, दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहें, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: तो आज मॉक ड्रिल हो रही है, विशेष तैयारियां की जा रही हैं, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। और हम आपको दिखा रहे हैं कि मॉक ड्रिल में क्या क्या है। परीक्षा केंद्र की तैयारी, एंट्री एग्जिट की व्यवस्था भी देखी जाएगी, पेपर खोलने की प्रक्रिया क्या रहेगी, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग होने वाली है, ओएमआर जमा करने की प्रक्रिया, आपातकालीन व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, मतलब तमाम चीजों को चेक कर लिया जाएगा कि कल किसी भी तरह की कैसे भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि बिजली बैकअप होना चाहिए, आपातकालीन व्यवस्थाएं क्या हैं, इन तमाम चीजों पर आज ही मॉक ड्रिल के जरिए सब कुछ सुनिश्चित कर लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशांत जुड़ गए। सुशांत, कब ये मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन कुल मिलाकर देखा जाए कल के एग्जाम से पहले?
4: देखिए शशि, आज तकरीबन 1 बजे के आसपास ये मॉक ड्रिल जो है वो शुरू होगी, लेकिन जो इंस्पेक्शन है एनटीए की तरफ से वो अलग अलग स्कूलों के अंदर जो है, जो एग्जामिनेशन सेंटर से वहां पर शुरू हो गई है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये अशोक विहार का स्कूल है और अब से थोड़ी देर पहले एनटीए की टीम जो है वो यहां पहुंची थी और एग्जामिनेशन सेंटर के जहां पर एग्जाम होना है वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर के, बच्चों के एग्जामिनेशन को लेकर के सीसीटीवी कैमरे, उसके लिए बकायदा कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे किस तरीके से काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जैमर जो लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, उन सब का इंस्पेक्शन जो है वो एनटीए की टीम की तरफ से किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एग्जामिनेशन सेंटर पूरी तरीके से फिट है, यानी एग्जाम यहां पर कंडक्ट कराया जा सकता है। उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल जो है वो दिया गया और बताया गया कि यहां पर जो इंतजाम किए गए हैं वो पूरी तरीके से पुख्ता है और ऐसे तमाम स्कूलों का इंस्पेक्शन जो है वो आज एनटीए की टीम जो है वो लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो कर रही है, सीसीटीवी से लेकर के कंट्रोल रूम और उसके अलावा दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सब तैनात की जाएंगी ताकि एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की कोई चूक ना रहे। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग स्कूलों और जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं वहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से कूलिंग जोन की व्यवस्था जो है वो की जा रही है ताकि अभिभावक भी जो वहां पर पहुंचे तो उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शशि,
3: बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें नागपुर से, जहां एक छात्र की परीक्षा केंद्र यूएई के अबुधाबी में उसे दिया गया है, जिसके बाद एनटीए पर छात्र के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और अब उस छात्र का सेंटर अबुधाबी से बदलकर कर दिया गया है नागपुर। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, एनटीए ने तुरंत ही एक्शन लिया है और इस छात्र का परीक्षा केंद्र बदल दिया है। 6 एनटीए ने अबुधाबी परीक्षा केंद्र अलॉट कर दिया था, वैसे ही इतने सारे विवादों में है एनटीए। और आपको बता दें कि इसके बाद जबरदस्त तरीके से जब पेरेंट्स की तरफ से छात्र की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई, तो अब इसे बदलकर एनटीए ने तुरंत ही नागपुर कर दिया है। प्रेफरेंसेस से अलग केंद्र मिलने से छात्र काफी ज्यादा परेशान हो गया था, और छात्री नहीं जो उसके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो भी बहुत परेशान हो गए थे। संज्ञान में मामला आते ही तुरंत ही एनटीए ने एक्शन लिया और अब इस केंद्र को बदलकर नागपुर कर दिया गया है। तो मॉक ड्रिल तो चली रही है, इसी बीच आज तक ने नीट के छात्रों से बातचीत भी की है। सुनिए रीनीट को लेकर उनका क्या कहना है।

0: राजस्थान का कोटा देश का कोचिंग कैपिटल है। पिछले चार दशकों में 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने यहाँ के कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई की है। हर साल 1 लाख से ज्यादा छात्र यहाँ पे भर्ती लेते हैं और इम्तिहानों की तैयारी करते हैं। आशाएं, उम्मीदें, नाउम्मीदी और टूटे सपनों को एक साथ समाये हुआ है उच्च शिक्षा का ये नर्व सेंटर। लेकिन नीट की दोबारा परीक्षा से पहले यहाँ के छात्रों में क्या मूड, क्या माहौल है, ये जानने के लिए देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोटा में लाखों स्टूडेंट्स हर साल पढ़ते हैं और हमारे साथ सुबह सुबह अगर आप निकलें तो यहाँ पे सड़कों पे आपको छात्रों का पूरा एक हुजूम दिख जाएगा जो अपने क्लासेस के लिए जाते हैं और इन बच्चों को भी जाना है क्लासेस के लिए। तो सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार आजकल युवाओं की बात हो रही है, पेपर लीक हो रहा है और जो नाराजगी है, आपको लगता है कि वाकई में भरोसा सिस्टम में है आपको, नहीं है, क्या उम्मीद?
1: सिस्टम पे था भरोसा बहुत, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो भरोसा बहुत था। लेकिन धीरे धीरे जिस हिसाब से 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, फिर अभी इस साल भी नीट का पेपर लीक हुआ और अब टेलीग्राम बैन हुआ है कि मतलब डिपेंडेंसी उनकी खुद पे नहीं है कि वो भरोसा कर रहे हैं, वो उनके खुद उनको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है। वो एक ऐप बैन करने से उनका ये मानना है कि पेपर लीक रुक सकता है, तो ये सरासर गलत है, कमी उनके सिस्टम में है।
2: जी मैम, हम लोगों का तो यही विश रहेगा कि हर बार पेपर जो लीक होता है उससे हमारी गवर्नमेंट को भी डिफेम किया जाता है हर तरह से, फिर सोसाइटी में भी इसका बुरा असर पड़ता है कि आगे के बच्चे सोचते हैं कि फिर अगर मैंने भी नीट चूज किया अपना स्ट्रीम, अगर 2 साल बाद मेरी पेपर हुई और अगर कहीं वो लीक हो गया तो फिर तो मेरी सारी 2 साल की मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा है कि पेपर लीक रुकना चाहिए। अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है 2-3 साल से तो हर बार, तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए, कि हमें भी तो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है, दो बार पढ़ना पड़ रहा है।
3: उन्हें लग रहा है कि एक टेलीग्राम से पेपर लीक रोका जा सकता है, तो क्या होता है कि टेलीग्राम में कोई भी वीपीएन लगा के कहीं से भी कोई भी सर्वर एक्सेस कर सकता है। अभी फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। इसमें बच्चों का फिर अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा, फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा।
0: सुबह के वक्त छात्र कोचिंग जा रहे होते हैं, अगर टाइम होता है तो अपना नाश्ता कुछ इस तरीके से, कोटा में आप देखेंगे ठेलों में पोहा मिल जाता है तो पोहा वोहा खा के उसके बाद लंबा टाइम होता है, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाई करनी होती है तो थोड़ी एनर्जी चाहिए। और यहीं पे हमें मिल गए 2 स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं नीट की तैयारी और नीट की परीक्षा सर पर है, तो पूछ ही लेते हैं आपसे कि कितना टेंशन है, तनाव है?
4: तनाव तो मैम कुछ नहीं है, 21 तारीख को एग्जाम है, मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर है और अच्छे से एग्जाम देना है।
5: कहाँ से आए हैं?
4: मैं MPCOpur से आया हूँ, दो साल से ही कोटा में हम, यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छे एग्जाम गया था वैसे, लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा, 21 तारीख को पेपर देंगे वापस।
0: पिछला दिया था आपने?
4: मतलब 3 को दिया था ना, 3 मई को दिया था पेपर।
0: 3 मई के बाद कितना मुश्किल हुआ दोबारा समझाना खुद को कि पढ़ना है फिर से?
4: दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना, मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा, तो भूल जाते हैं ना, रिदम टूट गया था, मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम। हाँ, तो उस टाइम मतलब घर पे पढ़ा वड़ा नहीं, फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा 2-4 दिन लगे रिदम बनाने में इसे।
0: चलिए, मेंटली टफ होना तो बहुत जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं?
6: मैं 12 से हूँ, राजस्थान, यहाँ पास में ही पड़ता है मेरे तो।
0: और खा लीजिए, खाते रहिए।
6: खाते खाते
0: आपका ब्रेकफास्ट डिस्टर्ब कर दिया मैंने।
5: बताइए तो फिर
0: आप ही घर चले गए थे?
6: मेरा तो पेपर हो गया था 3 मई को, मैं घूमने आया था पूरा महीना मई का, बट क्या हुआ फिर बाहर था कि न्यूज आई कि पेपर कैंसिल हो गया है, तो फिर ना एंजॉय कर पाए वाला, तो वैसे सबका ना।
0: अच्छा अच्छा,
6: तो वही था बस कि कैंसिल वगैरह हो गया था, वरना मैं तो फन करने वगैरह थोड़ा घूमने वगैरह आया था।
0: फिर मूड सेट करना पड़ा कि पढ़ना है।
6: नहीं मूड सेक तो क्या, पढ़ाई तो कभी भी कर लो, ऐसा है नहीं ना कि डिप्रेस वगैरह ऐसा कुछ होते नहीं है, मेंटालिटी डिफरेंट रखनी चाहिए।
7: आप बड़ा मजबूत मैसेज बाकी अपने फेलो स्टूडेंट्स को देते हैं उससे। हम दुआ करेंगे, प्रे करेंगे भगवान से कि इस बार आपका पिछली बार से भी अच्छा हो, ठीक है? तो चलिए, पोहा खाने के बाद आप भी निकलिए आगे और हम लोग भी आगे का माहौल जानते हैं।

0: कोटा में एक पूरी छात्रों की दुनिया है और उस दुनिया में एक छोटी सी दुनिया इन म्यूजिशियंस की है, इन संगीतकारों की है, जो कि अपना रॉक बैंड लॉस्ट कॉड्स, द लॉस्ट कॉड्स, इन्होंने अपना रॉक बैंड बनाया है. और एक तरफ जहां इतनी एग्जाम की टेंशन होती है, आई एम श्योर दिस इज अ बिग स्ट्रेस बस्टर फॉर ऑल ऑफ यू. कैसे आप लोग एक साथ आए और पढ़ाई और म्यूजिक को कैसे बैलेंस कर?
1: बेसिकली हम सब लाइक अलग अलग स्कूल से है. बेसिकली मैं बंसल पब्लिक स्कूल से हूँ, ही इज फ्रॉम सिंघानिया, ही इज फ्रॉम ऑल्सो बंसल एंड ही इज फ्रॉम सिंघानिया. बट हमारा लाइक एक स्टूडेंट लाइक एरिया है जो हम सबको बेसिकली कनेक्ट करता है, विच इज थ्रू म्यूजिक. तो हम बेसिकली धीरे धीरे सब एक साथ जुटे. लाइक बेसिकली पहले हम तीनों का एक बैंड ग्रुप था, इसका एक बैंड ग्रुप था. तो हमने वी हैव बेसिकली मर्ज्ड आवर बैंड्स.
0: मर्जर हो गया है यहाँ पे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा. जब आप अपने, और कहते हैं ना रॉक स्टार्स सबसे ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं, जो रॉक बैंड होता है वो पॉपुलर होता है. यूजुअल क्या आप लोग की कंसर्न्स होते हैं स्टूडेंट्स?
2: कंसर्न्स लाइक ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है अभी इसको. पेपर लीक के कंसर्न को काफी बात नहीं हो रही है इस पे ज्यादा.
0: सिस्टम से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं?
3: अगर कोई मतलब दो तीन चार साल ऐसे पढ़ रहा है और फिर उसको एकदम से पता चले किसी को पेपर ही मिल चुका है पहले, तो क्या एजुकेशन सिस्टम को सुधार करना चाहिए, जो कि अभी दिख तो नहीं रहा है, पर होपफुली होपिंग फॉर द बेस्ट.
0: आई एम श्योर आप लोग क्वालिफाई भी करेंगे, पास भी करेंगे विद फ्लाइंग कलर्स, और आपका रॉक बैंड भी बहुत हिट होगा. एक और सुना दीजिए. हाँ जालिमा, समाज जालिम है तो गाते हो जी जालिमा हो गए. सबका नंबर आ गया ना. चलिए सुना दीजिए.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ऑफिस में कंप्यूटर आने से लेकर इंटरनेट के दौर तक हर बड़ी तकनीक इंसानी नौकरियों के लिए खतरा बनकर आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर भी दुनिया भर में ऐसा ही खौफ पैदा किया गया। पहले तो लगा था कि मशीनें इंसान की जगह लेंगी, लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड से आई एक रिपोर्ट ने इस थ्योरी को पलट कर रख दिया। रिसर्च फर्म गार्टनर की भविष्यवाणी के मुताबिक मशीनों के चक्कर में जिन कंपनियों ने कर्मचारियों को निकाला था उन्हें बड़ा झटका लगा है। AI की वजह से छटनी करने वाली आधी कंपनियां साल 2027 तक उन पदों पर दोबारा इंसानों को भर्ती करेंगी। एक दूसरी रिसर्च फर्म फॉरेस्टर के मुताबिक AI के चक्कर में बदलाव करने वाले 55% बॉस अपने फैसले पर पछता रहे हैं। कंपनियों को इस बात का एहसास हो चुका है कि डेटा एक्सेस करने और सच में काम करने में जमीन आसमान का अंतर है। मैनेजमेंट ने कमर्शियल फायदे के चक्कर में उन लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया जिनके पास अनुभव था। इस गलती का खामियाजा भुगतने का एक बड़ा उदाहरण ग्लोबल मार्केट में देखा जा चुका है। स्वीडन की मशहूर फिनटेक कंपनी क्लारना ने साल 2023 में 700 कस्टमर एजेंट्स की जगह AI चैट बॉक्स लगा दिए थे। मई 2025 में कंपनी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और उन्होंने माना कि क्वालिटी से समझौता करना भारी पड़ा। AI चैट बॉक्स ने काम का लोड तो संभाल लिया, लेकिन फ्रॉड के मामले सुलझाने और नाराज ग्राहकों को संभालने में फेल रहा। नाराज ग्राहक का भरोसा जीतना या पेचीदा मामलों में सही फैसला लेना मशीनों के बस की बात नहीं है। ऐसे में डिजिटल दौर में टिके रहने के लिए एक्सपर्ट्स ने 3 बड़े उपाय सुझाए हैं, जिनमें सबसे पहला है कंपनियां सबसे पहले ये चेक करें कि किस काम में केवल डेटा चाहिए और कहां इंसानी अनुभव की जरूरत है। वहीं अनुभवी कर्मचारियों के पास मौजूद संस्थागत यादों और ग्राहकों के भरोसों को कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाए और कंपनियां ऐसा सिस्टम तैयार करें जहां रूटीन काम AI संभाले और मुश्किल फैसले इंसानों की टीम करे। फ्यूचर के बिजनेस मॉडल की तस्वीर साफ है कि कंप्यूटर ने सब कुछ पढ़ा जरूर है, लेकिन उसने असल जिंदगी को जिया नहीं है। किसी बड़े संकट के समय सही फैसला लेने की क्षमता केवल बरसों के तजुर्बे से ही आती है। कंपनियों का सामूहिक अनुभव ही अकेली ऐसी ताकत है जिसे कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकता। इस पूरे घटनाक्रम से वर्कप्लेस कल्चर पर भी गहरा असर पड़ा है। बार बार पॉलिसी बदलने से दफ्तरों में काम करने वाले बाकी कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। वर्क मैनेजमेंट के जानकारों का मानना है कि टेक्नोलॉजी को केवल एक जरिया बनाना चाहिए, उसे इंसानों का विकल्प समझना सबसे बड़ी भूल है। ग्लोबल मार्केट के इस उथल पुथल ने साबित कर दिया है कि भविष्य केवल मशीनों का नहीं बल्कि इंसानी सूझबूझ और AI के तालमेल का होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health.
1: ट्रंप की धमकी के बाद झुका इसराइल, हिजबुल्ला से सीज फायर, ईरान से डील को मिलेगी रफ्तार। जिनेवा में बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हो रहे हैं रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा 12 साल से ज्यादा समय से बहुत मजबूती से डटे हैं, शांति से काम करते हैं लेकिन मिजाज सख्त है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जांच में तेजी, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के मिले हैं सबूत। छठे दिन भी एसआईटी की पूछताछ, आज तक पर दान की लूट पर स्पेशल कवरेज आज दिन भर लगातार। कोलकाता एयरपोर्ट पर देर रात सियासी ड्रामा, बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में झड़प हुई। टीएमसी का आरोप अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने आए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, सुकांता की नसीहत हाथ में न लें कानून। और कल होने वाले नीट रीटेस्ट से पहले देश भर में तैयारियों की मॉक ड्रिल, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का जायजा, कई राज्यों में छात्रों को सेंटर तक फ्री में पहुंचाएगी सरकार।

नीट री एग्जाम से पहले सरकार ने कसी कमर, परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के साथ चप्पे चप्पे पर नजर। कल आयोजित होने वाले नीट री टेस्ट को लेकर देश भर में मॉक ड्रिल, देश भर में 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था किया जायजा। छात्रों की सुविधाओं का रखा गया है पूरा ख्याल, कई राज्यों में छात्रों को परीक्षा केंद्र तक मुफ्त पहुंचाने की भी सुविधाएं। दिल्ली, राजस्थान और बिहार समेत देश भर में नीट परीक्षा से पहले मॉक ड्रिल, पटना में परीक्षा केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। राजकोट में रीनीट परीक्षा केंद्रों की तैयारियां पूरी हुई, व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा, प्रशासन और केंद्र संचालकों ने तैयारियों की समीक्षा की। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता, अमेरिका के सूत्रों का दावा, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी तनाव को खत्म होने के संकेत मिले। इसराइल हिजबुल्ला के बीच संघर्ष विराम का दावा करते हुए अमेरिकी सूत्रों ने कहा दोनों ही पक्ष अब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में रखा गया शांति वार्ता की बैठक को, लेबनन में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीज फायर। परमाणु मुद्दे पर वार्ता से पहले ईरान और अमेरिका के बीच समझौते का पहला बड़ा दावा, लेबनन और इसराइल समझौते पर राजी हुए। ईरान और अमेरिका के शांति समझौते के बाद पूरी तरह से खोला गया हॉर्मोज, अमेरिका ईरान समझौते पर आगे 60 दिनों में बातचीत होगी। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर चर्चाएं जल्द हुई, अमेरिकी दूत ने परमाणु को लेकर पहले दौर पर बातचीत की बात कही। फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन में दो राष्ट्र अध्यक्ष आमने सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक दावा बन गया है विवाद की जड़। ट्रंप ने दावा किया कि सम्मेलन के दौरान इटली के पीएम मेरे साथ तस्वीर लेने को बेताब नजर आई थी। मेलोनी ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा न मैं और न ही इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं। सोशल मीडिया पर भारत के अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का पोस्ट बन गया है चर्चाओं का विषय। पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कौन बड़ा नेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जवाब को अमेरिकी राजदूत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। ट्रंप के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया बेहतरीन नेता। कोलकाता एयरपोर्ट पर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में मारपीट की झड़प की तस्वीरें सामने, दिल्ली से अभिषेक बनर्जी के आने से पहले जबरदस्त हंगामा। मंत्री सुकांदा मजूमदार की नसीहत, हाथ में कोई भी कानून न ले, टीएमसी समर्थकों का आरोप, अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा मानसून सत्र से पहले फैसला सुनाएंगे स्पीकर ओम बिरला। दिल्ली में स्पीकर से मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा टीएमसी बागियों के खिलाफ अयोग्यता की 20 याचिकाएं सौंपी गई हैं। लोकसभा स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी, टीएमसी बागियों के खिलाफ अयोग्यता की सौंपी गई है 20 याचिका, मानसून सत्र से पहले फैसला सुनाएंगे ओम बिरला। टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का रुख किया है। विधानसभा स्पीकर के तौर पर रिताब्रता बनर्जी की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार। नीट री टेस्ट से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए, 5,500 सेंटर्स पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों को मुफ्त यात्रा की छूट। रामनगरी अयोध्या में विकास की सौगात, सीएम योगी ने 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया गया। अयोध्या में भव्य दिव्य रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण, 8,000 वर्ग फीट में फैले म्यूजियम में श्रीराम सीता हनुमान के दिव्य रूपों को मिलेगी झलक। संबोधन के दौरान अयोध्या को बदनाम करने वालों पर बरसे सीएम योगी का, राम जन्मभूमि पर बिना प्रमाण आरोप लगाए गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भारत के जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने की खास पहल, प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स को दिए विशेष उपहार, नागौरी अश्वगंधा, मेघालय की हल्दी, रामबन का शहद और बनारसी सिल्क स्टोल भी शामिल। यूथ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं को मंत्र का, रोजगार निर्माण बने राष्ट्रीय अभियान, केंद्र की योजना के तहत लाखों युवाओं के खाते में भेजे गए 2400 करोड़ रुपए। आज और कल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे, हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 3 दिवसीय पंजाब के दौरे पर रहेंगे, चुनावी तैयारियों को लेकर करेंगे मंथन। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने पर कानून व्यवस्था सुधारने का दावा किया, बोली पश्चिम बंगाल में विजय भारी या पंजाब की बारी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में सीएम योगी बोले 500 साल इंतजार किया तो 15 दिन और कर लो, एसआईटी जांच में सब साफ हो जाएगा। आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया में कोताही हुई है, पूरे मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत। सीएम योगी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाई हाजिरी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया।
अयोध्या के मां कामाख्या मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण भी किया। सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर अखिलेश का तंज, कहा किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्रा।

सदाटन एल्युमिनियम प्रेस मशीन का भूमि पूजन, राजनाथ सिंह ने परियोजना की रखी आधारशिला। रिलायंस कंपनी की 49वीं एजीएम में बड़ा ऐलान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जियो आईपीओ को दी है मंजूरी, चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स का किया स्वागत। जालना में किसानों का अनोखा आंदोलन, कुएं में चारपाई डालकर बैठे किसान, संपूर्ण किसान कर्ज माफी की मांग। पुणे में पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम में बड़ी कार्रवाई की, 42 लाख के करीब 84 किलो गांजे को जब्त किया गया। मनोज जरांगे पाटिल का सरकार को अल्टीमेटम, 29 अगस्त तक मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर से आमरण अनशन करूंगा। 58 लाख पूर्वी प्रमाण पत्र और वैलिडिटी की मांग की गई, मनोज जरांगे ने सरकार को दी 29 अगस्त तक की डेडलाइन। जालना में पानी की कमी से किसानों ने एक एकड़ मिर्च की फसल को उखाड़ कर फेंक दिया, कटाई से ठीक पहले जल स्त्रोत सूखने की वजह से सूखी मिर्ची की फसल। पटना के सचिवालय थाना पहुंचे तेज प्रताप यादव अपने वकील के साथ आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरजेडी के पूर्व विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को मिली धमकी, धमकी देने वाला शख्स खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बता रहा था, लिखित में शिकायत की गई। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद बढ़ गया जलस्तर, तीसा नदी उफान पर है, बांग्लादेश सीमा तक येलो अलर्ट जारी। दार्जिलिंग, कालीपयोंग, कूच बिहार और उत्तर बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से जलभराव, एयरपोर्ट जाने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव, ट्रैफिक जाम से यात्रियों की बढ़ गई है परेशानी। उत्तर 24 परगना में भारी बारिश से घोला थाना जलमग्न हुआ, लॉकअप से लेकर आईसी रूम तक भर गया है पानी, पुलिसकर्मियों की बुरे हालात में काम करने के लिए मजबूर। पश्चिम बंगाल में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, कई इलाकों में पानी भरा, यातायात प्रभावित हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश, बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में बारिश के बीच दिल्ली में 39 डिग्री के ऊपर चला गया तापमान, वीकेंड पर आंधी और बारिश का अनुमान, येलो अलर्ट जारी। पिछले कुछ समय से दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना यूपी का बांदा, बांदा में तापमान बढ़ने की वजहों को जांच के लिए जमीन पर उतर आई है विशेषज्ञों की टीमें। असम और अरुणाचल में भारी बारिश से बढ़ गया ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारों तक पानी पहुंचा, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। हावड़ा में पेयजल कनेक्शन शुल्क वसूली विवाद में पंचायत कार्यालय के बाहर हंगामा, उप प्रधान से हुई मारपीट। आगरा में टेक्सटाइल गोदाम में लगी थी भीषण आग, थर्मोकोल और कार्टन सामग्री से फैली लपटें। अहमदाबाद में गैस एजेंसी में सिलेंडर लीकेज से ब्लास्ट हुआ, आग में 2 लोग घायल हुए, फायर ब्रिगेड ने 30 सिलेंडर्स को बाहर निकाला। वलसाड में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। सहारनपुर में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की भी सड़क पर दिखाई दी दबंगई, शख्स को बुरी तरह से पीटा। ओडिशा के रायगढ़ में एनजीओ कर्मियों को बच्चा चोर समझकर पीटा गया, 16 लोगों की गिरफ्तारी। बिजनौर में टोल खोलने पर मामूली सी देरी के चलते भड़ गए थे कार सवार, महिला कर्मचारी से गाली गलौज के बाद 65 वर्षीय गार्ड को भी कुचला गया। हरिद्वार में युवकों को चलती कार से स्टंट और हुड़दंगबाजी करना भारी पड़ गया, पुलिस ने 5 गाड़ियों को सीज किया। गुजरात के जामनगर में बेजुबान कुत्ते पर हॉकी स्टिक से हमला किया गया, पशु प्रेमियों ने इसका विरोध करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। लेकिन शादा स्थित एक आवासीय मकान में लगी थी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 88वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे शिरडी में साईं बाबा के दरबार, हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बाबा के दर्शन किए। साईं बाबा मंदिर प्रशासन की ओर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का किया गया सम्मान, शॉल उड़ाकर साईं बाबा की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। 3 जुलाई से शुरू होने जारी पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा, रामबन के डिविजनल कमिश्नर ने बनिहाल की यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बढ़ा दिए सुरक्षा चप्पे, चप्पे पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हुए जवान। सलमान खान की फिल्म काला हिरण पर रोक की याचिका, 11 जुलाई तक सुनवाई टल गई है, फिल्म मेकर अमित जानी ने लिखित जवाब देने के लिए मांगा है समय। सिनेमाघरों में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2, फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन मुख्य रोल में। इमोशनल ड्रामा फिल्म समर्पित ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी, इस फिल्म में अंकित यादव और जया भट्टाचार्य लीड रोल में। खासतौर से बच्चों के लिए टॉय स्टोरी 5 भी रिलीज की गई है, डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट है। क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के जिलन है भी रिलीज हुई है।

भारतीय नौसेना को कल बड़ी ताकत मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में निर्मित 3 स्वदेशी प्लेटफॉर्म दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। युद्धपोत समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बी रोधी अभियान और समुद्री सर्वेक्षण क्षमताओं को मजबूती प्रदान करेंगे। इन तीनों ही जहाजों को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है, जबकि निर्माण का जिम्मा कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने संभाला था। यह उपलब्धि भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षेत्र की बढ़ती हुई क्षमता और आत्मनिर्भर भारत अभियान की विजय को दर्शाते हैं। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म की एक और खास बात यह है कि इसमें 75% से ज्यादा स्वदेशी मटेरियल है, तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। इनके निर्माण में देश भर के 200 से ज्यादा MSMEs ने अहम जिम्मेदारी निभाई है, जिससे रक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ मेरे सहयोगी मंजीत नेगी जुड़ गए। मंजीत, एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर, और खास तौर से जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि किस तरह से मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल किया गया है, एमएसएमईज की बहुत बड़ी मदद रही है इन तीनों के निर्माण में।
1: और निश्चित तौर पर, और क्योंकि कल योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों जो युद्धपोत हैं उन्हें भारतीय नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल करेंगे, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं भारतीय नौसेना के लिए, देश के लिए है। जब देश के अंदर बने हुए तीन जो युद्धपोत हैं, अलग अलग श्रेणी के युद्धपोत हैं, अगर हम दूनागिरी की बात करें तो एक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है, उसके अलावा तनसोधक है, अग्रय है, ये तीन युद्धपोत हैं जो एक साथ जो गार्डन रीड शिपयार्ड है कोलकाता में वहां पर तैयार हुए और रिकॉर्ड समय में तैयार हुए हैं। एक तरह से अगर आप पिछले दो तीन सालों में देखें तो अब भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत पहले रूस और दूसरे देशों से आते थे, अब पूरी तरह से भारत में तैयार हो रहे हैं। तो एक बड़ी सफलता स्वदेशी को लेकर है, आत्मनिर्भरता को लेकर है, क्योंकि 75% पूरी तरह से जो युद्धपोत है वो भारत में बने हुए हैं। भारत के अलग अलग जो एमएसएमई है, बड़ी जो देश की कंपनियां हैं, उन्होंने इसमें योगदान दिया है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह योग दिवस के मौके पर इन तीनों युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी
4: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffeehouse, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: Savari, Sokudo.
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: पत्रकारिता के गुर यहां नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
6: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
7: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
8: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
7: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
2: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
3: कभी भी किसी बच्चे को नहीं मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है।
2: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
4: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
2: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
5: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
2: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: ट्रंप की धमकी के बाद झुका इसराइल, हिजबुल्ला से सीज फायर, ईरान से डील को मिलेगी रफ्तार। जिनेवा में बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हो रहे हैं रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की फिर तारीफ, कहा 12 साल से ज्यादा समय से बहुत मजबूती से डटे हैं, शांति से काम करते हैं लेकिन मिजाज सख्त है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बीच जांच में तेजी, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के मिले हैं सबूत, छठे दिन भी एसआईटी की पूछताछ जारी। आज तक प्रधान की लूट पर स्पेशल कवरेज आज दिन भर लगातार। कोलकाता एयरपोर्ट पर देर रात सियासी ड्रामा, बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में झड़प हुई। टीएमसी का आरोप अभिषेक बनर्जी पर, अंडा फेंकने के लिए आए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, सुकांता की नसीहत, हाथ में न ले कानून। और कल होने वाले नीट री टेस्ट से पहले देश भर में तैयारियों का मॉक ड्रिल, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का जायजा, कई राज्यों में छात्रों को सेंटर तक फ्री में पहुंचाएगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में यह सामने आया है कि चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया में शामिल कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। खबर ये भी आ रही है कि अब चिन्नू यादव समेत नकदी गिनने, रकम के प्रबंधन और हेरफेर से जुड़े कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारियां हैं। इसी बीच कुछ बैंक के कर्मियों की भी भूमिका जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि अब तय ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह कार्रवाई एसआईटी जांच के दौरान होनी है या जांच पूरी हो जाने के बाद। जांच टीम ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में हुई नियुक्तियों, प्रशासनिक फैसलों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को शुरू कर दिया है। राम मंदिर में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए लगभग 800 कर्मी तैनात हैं, जिनमें करीब 200 कर्मचारी हैं ट्रस्ट की ओर से नियुक्त किए गए। एसआईटी ने राम मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सूची भी मांगी है। बताया जा रहा है कि गड़बड़ी में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मियों के नाम भी सामने आए हैं जो कई साल से परिसर से जुड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर पूरी मिलीभगत सांठगांठ सामने आ रही है, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों या फिर खुद मंदिर के कर्मचारी। तमाम चीजों की जांच लगातार जारी है और अब ये जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए। आशीष, और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि यहां तो ये बहुत बड़ी मिलीभगत की बात सामने आ रही है, यानी सब कुछ बैंक कर्मचारियों से लेकर मंदिर प्रबंधन के कर्मचारियों तक, नोटों की गिनती तक, पूरा का पूरा नेक्सस समझ आता है।
1: बिल्कुल, देखिए जो एसआईटी की जांच है वो इस दिशा में बढ़ रही है कि चाहे वो नोटों की हेरफेर हो या नकदी को इधर से उधर ले जाना हो, इसके साथ जो आभूषणों की जो रखरखाव हो उसको लेकर भी हेरफेर हुई, क्योंकि एसआईटी उस बारे में भी जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये हुआ कैसे। उस दौरान उनको जानने पर ये पता चला, क्योंकि टिन्नू यादव से लगातार पूछताछ हो रही थी और टिन्नू यादव से दोबारा जब पूछताछ हुई तो कई ऐसे जो सवाल थे जिनका जवाब नहीं दे पाया, और इसकी वजह से माना जा रहा है कि जो रखरखाव था वो किस तरीके से हैम्पर हुआ, यानी कि प्रभावित हुआ है, ये भी जांच में निकलकर सामने आया है। तो एसआईटी की जांच काफी कुछ ये कह रही है कि जिस तरीके से जो चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए थी वो व्यवस्थित नहीं हुई हैं, यानी कि अगर जो चढ़ावा आया, चढ़ावों को एक प्रॉपर तरीके से आगे रखने के बाद उसको एक जमा करना था, लेकिन वो जमा नहीं हुआ अपनी जगह पर, वो कहीं चला गया है जिसकी जानकारी तक नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में जो चढ़ावा था, जो दान था, उसको व्यवस्थित क्यों नहीं किया गया, और व्यवस्थित नहीं था तो उसको व्यवस्था में लगे हुए जो कर्मचारी हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए उसके लोग हैं, उन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी तय होती है, और इसी जिम्मेदारी तय होने के नाते ही एसआईटी अब उनसे अलग अलग पूछताछ कर रही है कि ना कि सिर्फ दोषी बल्कि क्यों जिम्मेदारी से ये काम नहीं किए गए, उस दिशा में भी अब एसआईटी बढ़ रही है। और ये माना जा रहा है कि इसकी जद में कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि लापरवाही सामने आ रही है, जिन्होंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि कितना दान आ रहा है, कितना जा रहा है और कितना चढ़ावा रखा जाएगा, कितना आगे बढ़ाया जाएगा। इन सब मामलों पे बड़ी लापरवाही भी निकल कर आ रही है। तो जो SIT कर रही है जांच, उसमें अब इस दिशा में भी जांच शुरू हो गई है कि लापरवाह कौन कौन इसमें रहा है। क्योंकि जांच में ये तो चलो साबित हो रहा है कि लापरवाही हुई, अब लापरवाही में कौन कौन शामिल है।
0: बिल्कुल आशीष, हम समझ सकते हैं कि किस तरह से घालमेल की गई है, कौन इसमें शामिल है, लापरवाही कहां बढ़ती गई है, इन तमाम एंगल्स पर SIT की जांच जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की SIT जांच लगातार जारी, और SIT ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ लगातार की जा रही है। वे दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है ताकि राम मंदिर में चढ़ावे की गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। और इसी बीच खबर यह है कि गड़बड़ी की जांच में जुटी SIT CCTV की फॉरेंसिक जांच करा सकती है ताकि और ज्यादा फुटेज को रिकवर कराया जा सके। उधर इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियां लगातार राम भक्तों की आस्था का मुद्दा उठाकर सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच पूरी होते ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
2: CCTV फुटेज नदारद है, क्योंकि CCTV से CC का राज खुल जाएगा। CC का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
3: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है BJP RSS।
4: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
5: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
6: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
5: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच BJP के राज में पूरा होता है। लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी BJP को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर BJP घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो BJP राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में BJP पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की BJP को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े BJP के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया। इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
7: 15 दिन और देख ले, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है। और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
0: और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में, क्योंकि पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना UBT ने एक बार फिर से उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूदगी रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी भी दी गई है। लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब भी मांग लिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जो गैर मौजूद थे तमाम सांसद, उन सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी भी दे दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजा है और 24 घंटे के भीतर इस पूरे मामले में जवाब तलब किया गया है। तो बगावत की खबरें लगातार जारी हैं और इसीलिए शिवसेना UBT ने एक बार फिर से उद्धव के घर पे जो बैठक हुई थी और उसमें जो सांसदों की गैर मौजूदगी थी, जिसे लेकर सबने सवाल उठाए थे, और लगातार कहा जा रहा था कि ये तमाम वो सांसद हैं जो शिवसेना UBT से अलग होने जा रहे हैं, उनको जवाब तलब किया गया है, उनको चेतावनी भी दी गई है और 24 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख जुड़ गए। मुस्तफा, और क्या जानकारी है?
8: शोकॉज नोटिस इशू किया गया है अनिल देसाई की तरफ से शिक्षा यूपीटी के एमपी को। 18 तारीख का ये नोटिस है जिसमें 24 घंटे की मोहलत दी गई थी, वो मोहलत खत्म हो चुकी है। अभी तक किसी तरह का संदेश जो है इन 6 एमपी की तरफ से नहीं आया है। तो आगे आप कह सकते हैं कि जो भी 10th शेड्यूल की कार्रवाई है वो शिक्षा यूपीटी इन 6 के 6 एमपी पर करते हुए दिखे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जो गैर मौजूदगी रही है सांसदों की, उन्हें नोटिस जारी करके 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। हालांकि उस वक्त भी कुछ अलग अलग जवाब दिए गए थे, कई लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और एक सांसद की तरफ से कहा गया था कि उनकी बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वो इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाए थे और अब 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। ऑपरेशन टाइगर की संभावनाओं के बीच कल शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया था और इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत का जिक्र करते हुए अगले कदम की तरफ भी इशारा कर दिया। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रैली में अध्यक्ष पद से इस्तीफे वाला दांव चला।

0: ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर।
1: तो जाना है इस्तीफा दे।
2: 60 साल पहले बनी शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। अब नई बगावत से फिर एक और टूट की पटकथा लिखी जा रही है। दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
3: अरे आवाज कुणाचा, उद्धव साहेब आगे बढ़ो।
2: उद्धव की पार्टी में एक और टूट की संभावनाओं के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उत्साह में है। दावा है कि अभी सियासी पिक्चर बहुत बाकी है।
4: बाळा साहेबांचे विचार, धर्मवीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
2: तो क्या यूबीटी के जिन सांसदों के बगावत की आशंका है वो नंबर और बढ़ सकता है, या फिर किसी और सियासी मोर्चे पर भी उद्धव ठाकरे को झटका लग सकता है?
5: अब ऑपरेशन टाइगर तो हो गया है और कहा जा रहा है कि 20 से 21 तारीख को ये सारे सांसद जो है ये विलीन होकर आपकी पार्टी में दिखाई देंगे, लेकिन आज वो मुहूर्त क्यों नहीं है?
6: ये सब निर्णय हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ले रहे हैं। ऑपरेशन 2 ये आप सबके सामने आया है। कुछ ही दिनों के बाद ऑपरेशन 3 और 4 की भी शुरुआत आपके सामने दिखेगी। तो महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे साहब को विश्वास और उनके ऊपर भरोसा जताती है। इसके लिए वहां से खासदार हो, आमदार हो, कॉर्पोरेटर हो, सभी हमारे संपर्क में और सभी जल्द से जल्द यहां पे ज्वाइंट होना चाहते हैं।
5: आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। ऑपरेशन टाइगर 2.0 के बाद अब 3.0, 4.0 भी होगा, मतलब कब तक जारी रहेगा और इस ऑपरेशन में कौन कौन लोग आपके साथ शामिल होने वाले हैं?
6: उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन 3 और 4 की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है।
2: उधर पार्टी में एक और बगावत के बीच उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं जो जाना चाहें उन्हें खुशी खुशी जाने दें, लेकिन भावनाओं से ज्यादा मसला महाराष्ट्र की सियासत का है जो उद्धव और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के स्थापना दिवस पर उद्धव ने शिंदे गुट के सारे आरोपों, सारे दावों को खारिज किया और तो और अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर डाली।
4: आज मैं 2.5 वर्ष काम केला, महाराष्ट्र पुढे नेला, देवेंद्रजी आता काम करता है, आम्ही टीम म्हणून काम करतोय, आमचा अजेंडा एकच, महाराष्ट्राची प्रगती।
2: उधर शिवसेना नेताओं के तेवर आक्रमक है। सांसदों की बगावत के खबरों के बीच उद्धव निशाने पर है, सवाल उनके नेतृत्व पर है।
7: तो इच्छा है कि जो खासदार उद्धव जी के साथ में थे आज वो हमारे साथ में आने का निर्णय लेने वाले हैं या शायद ले चुके हैं, आज ही हमारे इस माध्यम से, आज हमारा 60th वृद्धापन दिन है, इस दिन के माध्यम से आज वो हमारे पक्ष में शामिल हुए।
2: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है। ये न सिर्फ उद्धव को चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
8: और महाराष्ट्र के बाद बात रांची की करेंगे, जहां आरएसएस दफ्तर पर हमले का मामला सामने आया। पाकिस्तान आईएसआई के दोनों ही स्लीपर सेल की 2 और एक्सक्लूसिव फुटेज भी सामने आ गई हैं। पहली फुटेज में आरएसएस दफ्तर पर हमले के ठीक पहले अमन अंसारी और सैफ किराए की टैक्सी से दफ्तर के ठीक नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद दोनों ही बाकायदा टैक्सी से बाहर निकलते हैं, जिसमें सैफ के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब दिखाई दे रहा है और उस वक्त टैक्सी के अंदर तीसरा आरोपी भी बैठा हुआ देखा जा सकता है और टैक्सी ड्राइवर भी है। वहीं दूसरी तरफ जो सीसीटीवी फुटेज है झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन का है ये, जहां आरएसएस दफ्तर पर हमले के ठीक पहले दोनों आरोपी अमन अंसारी और सैफ साफ साफ देखे जा सकते हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो सब कुछ बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से टैक्सी में बैठकर आकर पेट्रोल बम हाथ में लेते हुए ये ऑफिस के ठीक बाहर देखे गए। टैक्सी ड्राइवर उस वक्त टैक्सी में बैठा हुआ था और एक और तीसरा शख्स है जो टैक्सी में बैठा हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों के अलावा हाथ में पेट्रोल बम है, जिसमें कहा जा रहा है कि सैफ है और साथ ही साथ बाकायदा टैक्सी से बाहर निकलते हुए दोनों ही आरोपी इस सैफ और अमन अंसारी हमला करते हैं और उसके बाद यहां से गायब हो जाते हैं। तो हमले से ठीक पहले का हम ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं। इन तमाम फुटेज के आधार पर ही जांच जारी है। आरएसएस दफ्तर के बाहर जो हमला किया गया था, पेट्रोल बॉम्ब जो फेंका गया था, उससे ठीक पहले की तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अमन अंसारी और सैफ किराए की टैक्सी से पहुंचते हैं दफ्तर के बाहर और एक और शख्स वहां टैक्सी में बैठा हुआ नजर आता है ड्राइवर के अलावा। पूछताछ लगातार जारी है। पेट्रोल बम से हमला किया गया था और टैक्सी के भीतर तीसरा शख्स भी बैठा हुआ नजर आ रहा था टैक्सी ड्राइवर के अलावा। दूसरा जो फुटेज हम आपको दिखा रहे थे वो झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन का है, जहां आरएसएस दफ्तर पर हमले से ठीक पहले दोनों ही आरोपी अमन अंसारी और सैफ नजर आ रहे थे।
9: आगे ले जाइए।
8: तो आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला बोला गया था और आपको बता दें कि दोनों ही आरोपी गिरफ्त में हैं और पूछताछ लगातार जारी है कि आखिर इसमें और कौन कौन शामिल था, मंशाएं क्या थी। और आपको ये भी बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें भी रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हों या फिर आरएसएस दफ्तर के बाहर टैक्सी वाली तस्वीरें हों, ये दोनों ही आरोपी साथ साथ नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद, और क्या जानकारी मिल पाई है, जो तीसरे शख्स के बारे में जानकारी मिल रही है जो टैक्सी में बैठा हुआ साफ नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में, क्या उसके बारे में भी जानकारी मिल पाई है?
10: जी, देखिए शशि, ये जो तीसरा है इसको भी पकड़ा जा चुका है, इसका नाम सयम जान है, लेकिन ये आज तक के पास पूरा ट्रेल आ गया है और खुलासा ये भी हुआ है कि हमले के बाद जो आरएसएस अटैक, आरएसएस दफ्तर में जो अटैक हुआ था उसके बाद इनको ये निर्देश मिला था कि इन्हें लखनऊ भी जाना है और जब लखनऊ जाने के लिए ट्रेन में बैठे थे उसी दौरान एक रेलवे स्टेशन पर, कोडरमा रेलवे स्टेशन पर इनको पकड़ा गया, जबकि सैफ अंसारी को इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक जगह ये टैक्सी से उतरते हैं और एक आरोपी के हाथ में जो पेट्रोल बॉम्ब है, जो बॉटल है कांच की, वो भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर तीन आरोपी इसमें गिरफ्तार हैं, जिसमें सैफ अंसारी है, अमन अंसारी है और सयम सुजान है। और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इसके पीछे जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और जो पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी है उसकी भूमिका है और अटैक पर के लिए इनको 1.5 लाख रुपए भी मिलने वाले थे, जिसमें कुछ पैसे इनको क्यूआर कोड के जरिए हासिल भी हो गए थे। तो फिलहाल अब लखनऊ में इनको किनसे मिलने जाना था उसका पता लगाया जा रहा, उसको लेकर रेड जारी है।
8: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आई है, दोनों ही रेलवे स्टेशन के बाहर नजर आ रहे हैं आरोपी और यही दो आरोपी फिर नजर आते हैं आरएसएस दफ्तर के बाहर हाथ में पेट्रोल बॉम्ब लिए हुए। रांची रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं हम आपको आरएसएस दफ्तर के बाहर का, जहां पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया गया था। और जैसा कि हमारे संवाददाता में बता रहे थे कि किस तरीके से पूरा का पूरा ट्रेल सामने आया है, कैसे पाकिस्तानी कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आया और तीन की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: वांट टू वर्क इन AI सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स डिजाइन? WGU's computer science degree teaches the fundamentals behind it all, plus the real-world skills to build what's next. Get started at wgu.edu.
14: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears, or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
15: Sokudo,

0: यूपी में भी क्या शुरू हो गया है ऑपरेशन लोटस? क्या समाजवादी पार्टी में भी महाराष्ट्र जैसी कहानी दोहराने की तैयारी है? बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के कई सांसद बगावत के मूड में हैं और 2027 के चुनाव से पहले सपा में बड़ी टूट हो सकती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है या वाकई समाजवादी कुनबे में एक और दरार पड़ने वाली है? समाजवादी पार्टी में जल्द बगावत का दावा नंबर एक, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार।
1: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।
0: दावा सिर्फ डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं है, यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा में भगदड़ की भविष्यवाणी कर दी। दावा नंबर दो, चुनाव में हार के डर से बीजेपी में आएंगे समाजवादी पार्टी नेता।
2: देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर।
0: राजभर ने अब नया हमला बोलते हुए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा को लेकर भी सवाल खड़े किए। पीडीए कार्यक्रम में उनके नहीं पहुंचने पर राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर असंतोष है और इसी बहाने उन्होंने अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव पर भी निशाना साधा। राजभर का आरोप, पार्टी टूटेगी, और उन्होंने इशारा किया कि शिवपाल यादव ही समाजवादी पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के टूटने की भविष्यवाणी हुई है, क्योंकि समाजवादी परिवार की सियासत में दरार और फिर जुड़ने की कहानी पुरानी है। साल 2012, पार्टी एक, परिवार एक, समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती और अखिलेश यादव यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदल गई। 2017 में परिवार की कलह खुलकर सामने आई, चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरी बढ़ी, नतीजा सपा 47 सीटों पर सिमट गई। 2018 में परिवार की लड़ाई ने नया मोड़ लिया, शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद अखिलेश की पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत सकी और फिरोजाबाद जैसी पारिवारिक सीट भी शिवपाल के अलग लड़ने से हाथ से निकल गई। 4 साल बाद कहानी फिर बदली, अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर आए, परिवार फिर साथ दिखा और 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया। अब 2027 से पहले फिर वही सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार अखिलेश यादव अपने कुनबे और सांसदों को संभाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी खेमे की तरफ से एक के बाद एक दावे आ रहे हैं। केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दिनेश शर्मा, सबका दावा अलग अलग लेकिन निशाना एक, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं जो डर जाएगा वही दल छोड़ेगा, बीजेपी के मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। तो यूपी की सियासत में सवाल यही है, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा खेल होगा या फिर ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस का सियासी शोर है? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
3: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
4: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
3: More top sports.
5: And he's gonna go! There's the tying goal!
3: And everything in between.
6: This game is over!
3: Upgrade now for the premium listening experience.
7: दशकों की दुश्मनी, मिसाइलों की गूंज और जंग के मैदान में आमने सामने खड़े दो देश जब अचानक हाथ मिला लें तो दुनिया हैरान रह जाती है. अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता कुछ ऐसा ही है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया है. दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए हैं जिसने सीमा पर चल रही जंग पर तुरंत विराम लगा दिया है. अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शांति समझौते के बड़े मायने हैं. समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे. अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देश बातचीत के जरिए फाइनल डील तैयार करेंगे. इस करार को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देश इसे अपनी अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं. वॉशिंगटन और तेहरान के लिए इस डील के मायने अलग हो सकते हैं. समझौते के तहत कुछ बेहद ही अहम शर्तें रखी गई हैं, जिनमें शामिल है अमेरिका की तरफ से 30 दिनों में ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह खत्म करना, ईरान की तरफ से फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित और फ्री रास्ता देना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी रखना और वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा. इस बीच समझौते के आर्थिक पहलुओं को लेकर भी बड़ी बातें सामने आई हैं. प्रतिबंधों के हटने से ईरान की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन मिल सकता है. डील के मुताबिक अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है. साथ ही प्रतिबंधों को हटाने को लेकर भी सहमति बनी है. ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का एक बड़ा प्लान तैयार किया जाएगा. अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए वेवर जारी करेगा. ईरान के फ्रीज किए गए पैसों और संपत्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए जारी किया जाएगा. इस भारी भरकम राहत के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को एक नई चिंता भी सताने लगी है. उनका मानना है कि इस फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में भी हो सकता है. वहीं ईरान इस समझौते को अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है. ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस डील से हिजबुल्ला और हुरमुज जलडमरू मध्य पर उसका दबदबा बना रहेगा. वहीं आशंका ये भी है कि प्रतिबंधों में ढील मिलने से ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत कर सकता है. ईरान ने हिजबुल्ला को भरोसा दिया है कि फंड रिलीज होने के बाद उसकी फंडिंग बढ़ा दी जाएगी. यानी एक तरफ जहां शांति की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बने हुए हैं. उधर अमेरिका इराक सरकार पर भी दबाव बना रहा है कि वो ईरान समर्थित मिलिशिया पर लगाम लगाए. मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है, ये तो आने वाले 60 दिनों की बातचीत तय करेगी. लेकिन इस समझौते ने फिलहाल दुनिया को बड़ी राहत जरूर दी है. आज तक ब्यूरो.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जांच में तेजी, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के मिले सबूत, छठे दिन भी एसआईटी की पूछताछ, आज तक पर दान की लूट पर स्पेशल कवरेज आज दिन भर लगातार। कल होने वाले नीट रीटेस्ट से पहले देश भर में तैयारियों का मॉक ड्रिल, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का जायजा, कई राज्यों में छात्रों को सेंटर तक फ्री में पहुंचाएगी सरकार। रांची में आरएसएस दफ्तर पर अटैक, मामले में आरोपी अमन अंसारी और सैफ का रेलवे स्टेशन से आया नया वीडियो, पाकिस्तानी जिनसे मिलने जा रहे थे लखनऊ लेकिन ट्रेन में ही पुलिस ने पकड़ लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की फिर से तारीफ, का 12 साल से ज्यादा समय से बहुत मजबूती से डटे हैं, शांति से काम करते हैं लेकिन मिजाज सख्त है। और ट्रंप की धमकी के बाद झुका इसराइल, हिजबुल्ला से सीज फायर, ईरान से डील को मिलेगी रफ्तार, जिनेवा में बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हो रहे हैं रवाना।

0: एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी।
1: भाजपा का धर्म का मतलब धन है।
2: जो लोग नहीं चोरी कर रहे थे वो क्यों नहीं जानकारी दे रहे थे? ये जो सारी व्यवस्था विश्वास पर चल रही थी उसमें एक तरीके से बैक स्टैबिंग हुई है। एसबीआई ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया।
3: उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास है, तो उसके द्वारा जब जांच टीम गठित होगी निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की पूरी पूरी सफल संभावना रहती है।
4: हमारे जो प्रमुख लोग हैं उसमें एक दो, उनको इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था। ऐसी अगर चोरी हो जाएगी और सीना चोरी भी हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा?

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा हो रही है प्रभु श्री राम के मंदिर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर अयोध्या पहुंचे। अब की बार योगी का अयोध्या आना ऐसे समय में हुआ है जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोप बहुत तूफान खड़ा कर चुका है देश में। SIT की जांच का आज पांचवा दिन है, लेकिन जब मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े लोग ही संदेह के घेरे में, तब विपक्ष भी इस मुद्दे को बड़ा बना रहा है और बीजेपी को इस मौके पर घेरा है। हालांकि आज योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले हमको ज्यादा ज्ञान न दे, उपदेश न दे। SIT हमने गठित कर दी है, 15 दिनों में उसकी रिपोर्ट आने वाली है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ये भरोसा राम भक्तों को लौटा पाएंगे? क्योंकि आज गंभीर आरोप लग रहे हैं कि भगवान राम के चढ़ावे में जो पैसा दिया गया उसको गिनने वाले लोग, प्रबंधन से जुड़े हुए लोग ने ही वहां चोरी कर ली है। अभी तो SIT की पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। और खुद जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में माना है कि चढ़ावा निगरानी की व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं है। उधर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद मौजूदा SIT से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। 500 सालों के संघर्ष के बाद ये मंदिर बना और मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो, इसको कौन देश में स्वीकार कर सकता है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हमारे साथ, प्रवक्ता BHP के जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। सूर्या मैथिल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में फिर से उबाल है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष से बने रामलला के मंदिर पर भ्रष्टाचारियों ने धावा बोला है। चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोप सामने आने के बाद पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के नगर पहुंचे। करोड़ों अरबों भक्तों की आस्था से छल के इस बेहद संवेदनशील मामले पर हो रही SIT जांच पर योगी ने भरोसा रखने को कहा, लेकिन इस चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष के हंगामे के जवाब में उन्होंने राम मंदिर संघर्ष के इतिहास का अध्याय खोल दिया।
1: राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
2: सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनलगढ़

0: तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, छोटा छोटा कमेंट कीजिएगा, छह लोग हैं, सबका पक्ष है और ज्यादा से ज्यादा मैं बच्चों के भी सवाल ले पाऊं। प्रोफेसर संगीत रागी, आज आरोप गंभीर लग रहा है, खुद नृपेंद्र मिश्र जी जो कि इस पूरे निर्माण से जुड़े हुए थे वहां से लेकर आज तमाम लोग ये बता रहे हैं कि फुल प्रूफ सिस्टम ही नहीं बनाया और इस वजह से चढ़ावा चोरी हुआ। अब यह आरोप तो बड़ा गंभीर है, क्या इससे पूरी जो व्यवस्था है राम मंदिर की वो उस पर सवाल नहीं खड़े हो जाते हैं कि किया क्या आपने?
1: देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम भक्तों की और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बहुत गहरा आघात लगा है यह जान करके कि वहाँ पर चोरी हुई है और जो चढ़ावा था उसमें गड़बड़ झाला हुआ है। लेकिन हम दोनों दो चीज़ों के बीच में हमको अंतर करना चाहिए। अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, तो शुरू में आपकी टिप्पणी थी, प्रबंध समिति और प्रबंधन में जुड़े हुए लोग, दोनों के बीच में हमको अंतर करना चाहिए। प्रबंध समिति में वे लोग हैं जो वरिष्ठ लोग हैं, शामिल है, जैसे नृपेंद्र मिश्र जी हैं, चंपत राय जी हैं, बाकी सारे लोग हैं। गड़बड़ी कहाँ हुई है? गड़बड़ी हुई है जो पैसे की गिनती में शामिल लोग थे उन्होंने गड़बड़ी की है। यदि आज तक के में काम करने वाला व्यक्ति तमाम ये के व्यवस्थाओं के बावजूद भी कोई कर्मचारी यदि चोरी कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज तक का प्रबंधन उसके लिए जिम्मेदार है। तो इन दोनों के बीच में ये अंतर करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं जिक्र करना चाहूँ जिसका जिक्र नहीं हुआ है, ये पूरा जो ये करना था, गिनती करना था, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। स्टेट बैंक इंडिया की निगरानी में होना चाहिए था, जिसके बारे में अभी तक कोई जिक्र कोई आदमी भी
0: नहीं, नहीं मैंने प्रश्न पूछा है नृपेंद्र मिश्र से। अच्छा, लेकिन दो सवाल के दो बात का आपका करेक्शन कर दूं। एक तो किसी भी प्रबंधन समिति में नृपेंद्र मिश्र है ही नहीं, वो एक सेकेंड, श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, निर्माण का काम पूरा हो चुका है, एक एक जगह की फाइल चाबी सब कुछ उन्होंने ट्रस्ट को दिया है, प्रबंधन समिति नहीं ट्रस्ट होता है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, जिसके चाहे वो आप चंपत राय जी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, प्रबंधन की जिम्मेदारी उन लोगों की होती है। निर्माण अलग है, प्रबंधन अलग है।
1: मैं बिल्कुल इस पर भी आना चाहता था, मैं इसका जिक्र करना चाहता, अच्छा हुआ कि आपने जिक्र कर दिया कि नृपेंद्र मिश्र की भूमिका मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई थी, बाकी जो ये सारी चीजें का प्रबंधन एक अलग विषय था।
0: कौन जिम्मेदार कौन था फिर?
1: देखिए,
0: उसमें जिम्मेदार था,
1: जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इसको देख रहे थे।
0: कौन देख रहा?
1: लेकिन देखिए, दो हिस्से हैं, एक तो नियत पर सवाल उठाना और दूसरा जो है वो व्यवस्था में कमी हो गई इस पर सवाल उठाना। तो मुझे लगता है कि जो प्रबंधन से संबंधित जो लोग थे उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
0: क्यों?
1: है इसलिए नहीं उठाया जा रहा कि उनको कोई अपनी मूल रूप से किस पर आ रहा है।
0: आप क्यों सर, आप क्यों एसआईटी से बड़े आप हो गए?
1: नहीं नहीं, मैं एसआईटी से बड़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना तो मैं तो कह रहा हूँ, तो फिर डिस्कशन ही वेट कर लेता।
0: हाँ।
1: थोड़ा सा 10 दिन बाद ही हम लोग बात करते इस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एसआईटी उसमें देख रही है, उसको एग्जामिन कर रही है, लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग जिन्होंने पूरा अपना जीवन खपा दिया राम मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर, दो धोती और दो कुर्ते पर बैठने वाला आदमी जो पूरा अपना जीवन लगा दिया हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक है, उसकी निष्ठा पर सवाल उठाना कि वो पैसे की चोरी में, जिसका आगे नाथ न कहा जाता है, हमारे गांव में कहा जाता है आगे नाथ न पीछे पगा, उनके पीछे कोई है नहीं, आगे कोई है नहीं, उस पर सवाल उठाना, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना, यहां मेरा सवाल है। बाकी मैं इससे कतई इतराज नहीं करता कि जो गिनने में लोग शामिल थे उनका हो सकता है ड्राइवर शामिल हो, बहुत सारे उसमें जो कर्मचारी हैं 40 के आसपास कर्मचारी थे, उन लोगों ने गलती की है, उन लोगों ने बदमाशियां की है, उन पर सवाल जरूर उठाना चाहिए, उनको
0: अनुराग जी,
2: सवाल तो सबसे पहले ये उठता है कि प्रभु के मंदिर में चढ़ावे में चोरी की घटना हुई है, इस पे भारतीय जनता पार्टी देखिए आपके सामने नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है बताइए? वैसे तो बहुत बातें करते हैं प्रभु राम की, जब प्रभु राम के घर में चंदे में गड़बड़ी पाई जा रही तो देखिए कहीं है, देख लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता कहीं आए, समाजवादी खड़ी है। क्यों पता है?
1: क्या समाजवादी पार्टी ने इसके बारे में जिक्र
2: नहीं
1: किया था?
2: मैं आपके बीच में नहीं बोला,
1: समाजवादी पार्टी ने यह बताया था क्या कि चंदे में चोरी हो रही है?
2: मैं बीच में, मैं आपको सुना भाई, ध्यान से सुना, मैंने आपको सुना भाई
1: लोगों ने इसके बारे में
2: फर्जी प्रोफेसर बोलता हूँ भाई, किसी के बीच में बोल रहा

0: आपने सुना, मैंने मैंने आपसे बोला कि देखिए प्रभु के घर में जब चोरी हुई जिस तरह की बात आई तो किसने किसने आवाज उठाई, किसने आवाज उठाई? अरे फिर आप टोक पड़े। अरे ठीक है, अगर वो गलत है तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर है, बोलूंगा मैं 20 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, बीच में टोकेंगे तो बोलूंगा मैं 1,00,000 बार बोलूंगा। मैंने घर से उनको सुना, मेरे बीच में बोलेंगे तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर, और बताइए 1,00,000 बार बोलूंगा, कहूंगा
1: फर्जी प्रोफेसर। कैसे कह रहे हैं आप,
0: क्यों क्यों मेरे बीच में क्यों टोकेंगे, मेरे बीच में क्यों टोकेंगे, मेरे बीच में क्यों टोकेंगे? मैंने उनको से सुना है, बात कर रहे हैं प्रवेश, प्रभु के नाम की चर्चा करने आए, झगड़ा करने नहीं आए। ठंडी सांस लीजिए, जोर से बोलिए जय श्री राम। ठंडी सांस लीजिए, जो प्रभु का नाम लीजिए।
2: जब वही भगवान राम कहते हैं आप शब्द से बचिए तो आप भी बचिए, क्योंकि फिर वो भी आपके लिए बोलेंगे। फिर मैं यही
0: सवाल
2: उठता
0: है, हमने बोला प्रभु के घर में चंदा में जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी ने, समाजवादी ने कहा कि प्रभु के चंदे में गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। चूंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को चलने वाले लोग हैं, उनको अपनाने वाले लोग हैं। अगर वहां पे आपने देखा जमीन में गड़बड़ी हुई अयोध्या में तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने आवाज उठाई। चंदा में गड़बड़ी हुई तो समाजवादियों ने आवाज उठाई। मानी शंकराचार्य जी के ऊपर में अपमान हुआ उनका तो किसने आवाज उठाई? बटकों की चोटी पकड़ के सिखा का अपमान हुआ तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी हर वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी प्रभु के आदर्श आचरण पे चल के 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में रामराज होगा, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा, किसी छात्र को आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी डॉक्टर किसी प्रकार की तकलीफ में नहीं रहेगा, किसी भी किसान पे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर में हक उसका जो हक होगा उसको मिलेगा। हम न्याय की बात करने वाले लोग हैं, पीड़ित जो होगा उसको न्याय दिलाएंगे, पत्रकारों का भी सम्मान होगा।
3: समाजवाद की परिभाषा क्या है?
0: अभी सुन लो, आपके बीच फिर आप बीच में टोक पड़े।
2: सुनिए ना, राम मंदिर का इतना मुद्दा उठा रहे हैं, राम मंदिर वाली जगह फैजाबाद से तो आपके सांसद चुने भी गए।
0: एक
2: सेकंड, प्रभु राम के
0: आशीर्वाद।
2: सवाल नहीं सुनिए,
0: सुन रहा हूँ।
2: पर ऐसा क्या है कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं जाते?
0: अब यही तो समझ का फेर है इनका। आप बताइए, प्रभु के आदर्श शासन पर चलते हैं ना,
3: कैसे
0: प्रभु कण-कण में है कि नहीं? आप बताइए प्रभु कण-कण में है कि नहीं?
3: गोली चलवाने वाले
0: मंदिर में बैठते हैं, प्रभु को याद करते हैं और प्रभु तक पहुंचते हैं, ये हमारी आस्था है। और प्रभु के घर में अगर कोई चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? क्योंकि मेरे कानों में समाजवादियों को इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं चोरी हुई है, तब उन्होंने आवाज उठाई ना।
2: अरे पूजा करिए ना, थोड़ा बीजेपी का मंदिर थोड़ी है। सुनिए ना, जाने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, नृपेंद्र मिश्र खुद कह रहे हैं उन्होंने निर्माण का पूरा काम किया, हम लोगों ने जब से वो जमीन थी वहां से मंदिर का उनको पूरा निर्माण कराते, वो कह रहे हैं कि कोई ढंग से वहां पर सिस्टम ही नहीं बनाया गया, प्रबंधन नहीं बनाया गया। ऐसे 3-4 लोग थे उसी ट्रस्ट के जो ऐसे घुसते थे वहां पर मंदिर में, पुलिस वालों से ऊपर अपने आप को समझते थे, फ्रिस्किंग नहीं होती थी उनकी, कौन कितना चंदा इकट्ठा अंदर से ला रहा है, चढ़ावा का पैसा ले जा रहा है, चढ़ावे का क्या कर रहा है, कुछ नहीं था। कोई भगवान से ऊपर कैसे हो गया, प्रबंधन से ऊपर कैसे?
1: भगवान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और भगवान को हम चंदा भी नहीं दे सकते। समर्पण है, लोगों ने समर्पण किया है, एक चीज। दूसरी चीज, नृपेंद्र जी ने जो प्रश्न खड़े करे हैं, समाज के कुछ और लोगों ने भी खड़े करे हैं, हमारे मन में भी दर्द है अंजना जी, ऐसे विषय निकल कर आए हैं। लेकिन आप देखिए, न्यास ने जैसे ही उसके मन में संज्ञान में आया उसके विषय, अखिलेश जी ने तो उसको पॉलिटिकल देने के लिए वो सारा विषय किया, लेकिन न्यास के जैसे ही संज्ञान में विषय आया, न्यास ने दुरुस्त तरीके से जांच हो, एक एक व्यक्ति उसमें पकड़ा जाए, इसके लिए सीधा सरकार को SIT के लिए कह दिया। ये कम काम किया क्या? आप ये देखिए अंजना जी, इस हिंदू समाज ने 500 वर्ष इंतजार किया है, क्या हम 15 दिन और इंतजार नहीं कर सकते क्या? 15 दिन इंतजार करिए। और दूसरी चीज, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि किसी के यहां से 12,00,000 मिले, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है किसी के यहां से जेवर मिले, तो ये सूत्रों पर विश्वास मत करिए। SIT क्या कह रही है, 2 दिन बाद आ रही है ना उसकी रिपोर्ट, थोड़ी सी रिपोर्ट जो है, सरसरी रिपोर्ट 2 दिन बाद आ जाएगी, उस पर आप देखिए। उसके बाद फिर 7 दिन और लगेंगे, यानी 15 दिन टोटल। 500 वर्षों का हिंदू समाज ने इंतजार किया, 1,00,000 से ज्यादा बलिदान हुए, 15 दिन का इंतजार हिंदू समाज कर सकता है? लेकिन सुनिए सुनिए अंजना जी, ये वो लोग हैं जो प्रश्न खड़ा करते हैं जिनको राम से कुछ लेना देना नहीं है।
0: राम द्रोही है, बताओ खुद राम द्रोही है, दूसरों को द्रोही बताएंगे,
1: ये राम द्रोही बोलने वाले खुद राम द्रोही है। इतने ही राम भक्तों को मार दिया। और लखनऊ की एक सभा में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुझे गौरव है कि मैंने मुसलमानों के अधिकारों के लिए राम भक्तों पर गोली चला दी। ये समाजवादी के पार्टी के लोग हैं, ये बात कर रहे हैं।
2: जवाब दीजिए,
1: इनके आपके लिए राम पॉलिटिकल है, हमारे लिए राम पॉलिटिकल नहीं है। आस्था का प्रश्न है, हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत अस्मिता का प्रतीक है।
2: ठीक है प्रोफेसर साहब, आप रुक जाइए।
0: ये राजनीति नहीं है, ये आस्था का विषय है। प्रभु के यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। बहुत बड़े भक्त बनते हैं, आवाज नहीं उठा पाए, बोल नहीं पाए कि वहाँ पे इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। आवाज हमने उठाई है और हमने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि प्रभु के भक्तों के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है।
2: आपको क्रेडिट चाहिए, मिलेगा, जनता देगी।
3: राम मंदिर का विरोध करते थे,
0: कभी नहीं करते, कभी नहीं राम मंदिर का विरोध किया, कभी नहीं किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कैसे राम मंदिर बन रहा है, हमेशा का प्रभु का राम मंदिर और पापी बनना चाहिए। हम लोग तो मंदिर बनाने वाले लोग हैं, हम तो इटावा में भव्य मंदिर बना रहे हैं, श्री यादव जी बना रहे हैं। यहाँ पर विरोध करने वाले लोग हैं, हम तो राम बनाने वाले लोग हैं। किसने बनाया? समाजवादी ने बनाया। केदारेश्वर तो वो बोलेंगे तो मैं बोलू नहीं,
2: वो अगले राम
1: कौन कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा।
0: तो फिर
1: आपके मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहा,
0: मंदिर तो आपका मंदिर आपका भी है प्रभु,
1: हमने
0: आपका भी मंदिर है, मंदिर सबका होता है, आपका भी तो नहीं है, सबका मंदिर है, आपका मेरा मंदिर बांटो मत। ये राजनीति, आपका मंदिर मेरा मंदिर, मेरा मंदिर तेरा मंदिर, मंदिर सबका है, मंदिर को मत बांटो।
1: हिंदू
0: वो भी मंदिर आपका है,
1: आपके और हमारे,
0: आप हमारे तुम्हारे की बात करें, सब मंदिर मंदिर में सभी का है और सभी आस्था का विषय है, सनातनियों का मंदिर होता है।
2: ठीक है, एक सेकेंड हो गया आप दोनों का, चलिए।
4: रामचंद्र कह गए सिया से, कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा अखिलेश यादव टोपी पहनकर और फर्जी हिंदू राम राम चिल्लाएगा। देखिए, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जिनके हाथ
0: नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है,
4: लगे हुए हैं राम भक्तों के,
0: नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है,
4: चिल्ला चिल्ला के राम भक्तों को अपमानित कर रहे हैं। मैं आपको, आप देखिए, जय सियाराम बोल रहे, मैंने कहा था ना कि कलयुग के अंदर रामद्रोही राम राम चिल्लाएंगे। देखिए यहाँ पर तीन चीजें हुई जो कि अखिलेश जी के जो प्रवक्ता बैठे हैं ना, उन्होंने फर्जी बातें फैलाई। पहली चीज, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था शुरुआत में कि चंदा चोरी हुआ या वहां पे चढ़ावा चोरी हुआ। सबसे पहले जो न्यास है वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसके उन्होंने ही सरकार को बोला था कि यहां पर कोई परेशानी है, और उसके बाद एफआईआर
0: क्यों नहीं कराई,
4: और ये उस जानकारी को लेकर
0: एफआईआर क्यों नहीं कराई, पूछे अंजना जी, पूछे एफआईआर क्यों नहीं कराई,
4: पूछना
0: अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, एफआईआर कराते ना,
4: अरे
0: एफआईआर कराते ना, एफआईआर कराते ना,
4: फर्जी
0: कर रहे हो, एफआईआर कराने पड़े, क्यों नहीं एफआईआर कराई आपने, क्यों नहीं आपने एफआईआर कराई जब आप कह रहे थे सरकार को बोला, उन्होंने जब सरकार को बोला तो एफआईआर होती ना, बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो यहाँ पे कि हमने सबसे पहले सरकार को बोला, हम लोगों ने मांग की सरकार से, तब सरकार ने एसआईटी बनाई है और एफआईआर करनी बात कर रहे हम कर रहे थे।
2: भदौरिया जी प्लीज, नहीं नहीं, आप अपना संभाल लीजिए बात जल्दी से।
4: एक होती है नियत और एक होती है बद इंतजामी। देखिए नियत साफ है क्योंकि सब में सबकी रामलला विराजमान में आस्था है। हमारे लिए राजनीति का प्रश्न नहीं है राम, हमारे लिए मरने और जीने का प्रश्न है राम, लेकिन इनके लिए राजनीति है। जब इनको सूट करता है तो ये ऐसे टोपी पहन के खड़े हो जाते हैं, और जब इनको सूट करता है कि अब बंगाल में जमीन हिल गई है, हिंदू खड़ा हो गया है, हिंदू
0: एकजुट हो गया
4: है, तो जय श्री राम का नाम लेके
2: सतीश जी, सतीश जी, सतीश जी जल्दी से मुझे फिर सवाल लेना है, उसके बाद सवाल
5: जी। देखिए, अगर कोई अपराध होता है तो सबसे पहले एफआईआर होती है। सरकार एफआईआर ना दर्ज करके इसकी जांच करा रही है, सरकार
4: अपराध हुआ
5: है
4: नहीं हुआ, अपराध नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है,
5: बात तो सुनिए,
4: अरे अपराध हुआ है नहीं हुआ, इसी की तो इन्वेस्टिगेशन
5: हो रही है,
4: कैसी बातें कर रहे हैं आप, बताइए अपराधी कौन
5: है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप चोर हैं,
4: आप बताइए
5: आपने चोरी की है भगवान राम के घर में जाकर के,
4: आप बताइए अपराधी कौन है,
5: सजा मिलेगी आपको,
4: आप नाम बताइए,
5: सजा मिलेगी,
4: सुनिए मेरी बात,
5: सुनिए जी, सुनिए, देखिए अंजना जी, अगर सरकार आपकी है आप क्या कर सकते हैं भगवान राम के लिए। श्राइन बोर्ड में बाकायदा वैष्णो देवी में ये घोटाला हुआ था, 1986 में जाकर के जम्मू कश्मीर सरकार ने शाइन बोर्ड बनाया और वो दुनिया का सबसे शानदार प्रबंधन है।
2: बाकायदा सीईओ है, ब्यूरोक्रेट, एक आईएएस वर्किंग ऑफिसर, वहां पर सीईओ भी होते हैं, सब प्रबंधन देखते हैं। 12 राज्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड है, सैलरी डिसाइडेड
5: कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। सुनिए, इनको चंदा इसलिए चोरी करना है, इन्होंने बहुत सारी सरकार गिरानी है, घूम फिर करके उस पॉलिटिकल यूज हो रहा है उस पैसे का। पकड़े जाओगे 100%, ये जनता तुमसे पूछेगी। भगवान राम के नाम पर आपने वोट लिया, भगवान राम के नाम पर जो चंदा लिया था उसका पॉलिटिकल उपयोग करना चाहते हो, सवाल पूछेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग 100%
3: सबसे बड़ी हास्यास्पद बात आज क्या है, सारे लोग यहाँ राम भक्त हैं, लोग सब अपने को राम भक्त कहते हैं, आरोप लगा है तो आप शांति से कहिए जांच हो रही है, इसमें आप लड़ क्यों रहे हैं? आप कुछ सवाल पूछने वाले को देशद्रोही और रामद्रोही क्यों बता रहे हैं? चंदा भी गायब, चढ़ावा भी गायब, जो जनता पूछे हिसाब तो जवाब भी गायब। आज बात यह है तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, तो राम जो है ना वो अमंगल के हरण करने वाले, तो राम ने ही ऐसा चक्र रचा कि इनके सारे कुचक्र सामने आ गए, इनके सारे कुचक्र जब सामने आ गए तो अभी कह रहे कि
4: राम को मानते हो,
3: देश में चंदा चोरी हो जाए, पेपर चोरी हो जाए,
4: राम पे विश्वास न करना चोरी हो जाए, जो राम को कोई जरूरत नहीं है, वो यहां पे बैठ के किसान आंदोलन पे जा रहे हैं,
3: सड़क पे रोड पर नहीं उठा पाए,
2: चिल्लाहट हो गया तो कुछ सवाल ले लेते हैं।
3: मैं तो पूरी बात ही नहीं कर पाया,
2: कर ही नहीं पा रहे, आप उधर उलझ रहे ना, मुझे देख के बोलिए।
3: किसान सड़क पे आ जाए तो कहेंगे खालिस्तानी, विद्यार्थी सड़क पे आ जाए तो कहेंगे जैन जी, अगर विपक्ष सड़क पे आ जाए तो उसको देशद्रोही कहते हैं, और चंदा चोरी के लिए एसबीआई ने अगर एसआईटी के लिए मांग किया तो कहते हैं वो तो एसआईटी
4: एसबीआई ने किया।
6: जैसा कि आपने कहा कि गलती सिर्फ कुछ लोगों की थी और कुछ लोगों की गलती के कारण सबको दोष नहीं ठहराया जाता था, लेकिन आप एज ए रूलिंग गवर्नमेंट आपको एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप उस पर ध्यान दें। राम मंदिर एक सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये और ओपोजिशन से मेरा सवाल है कि आपको नीट के पेपर लीक, सुसाइड हो रहे हैं और ये जितने भी अभी चीजें चल रही हैं, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये मामले को भटकाया जा रहा है?
3: बहुत बढ़िया
6: टॉपिक से,
2: बहुत बढ़िया। क्या आप ही लोग उठा रहे हैं? राहुल जी तो गए भी, इस पार्टी को तो एक ही काम है आजकल।
3: तो हमारे पास
7: सर मेरा सवाल आपसे
3: बात कर रहे हैं अंजना जी,
7: सर आपने बताया इनको कि ये फर्जी है, आपने इस पार्टी में ऐसा क्या घिनौना काम होते हुए देखा जो आपने इस पार्टी दल को फर्जी बताया?
3: सवाल
2: जिसका हो गया बैठ जाइए जल्दी,
3: टोपी लगा। नरेंद्र मोदी जी का वीडियो दिखाता हूँ बच्चों,
2: तो आखिरी के दो सवाल है, प्लीज
3: नरेंद्र मोदी जी का वीडियो दिखाता हूँ जो कहते हैं पत्थरों में भगवान नहीं है,
8: जैसे कि इंडिया में देखा जा रहा है सेंसिटिव टॉपिक है, बट इसपे जैसा कि अभी देखा जाता है कि यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई भटकाने का तरीका है के लोगों को?
9: और जैसा कि सर आपने कहा कि ये राम भक्त है और इनको पेशेंस रखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जांच हो रही है, तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं इधर से कि वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है? आप भी पेशेंस
3: तो
9: रखिए,
3: और
9: आप बीइंग ऑपोजिशन, आप बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपको बात करनी चाहिए, जिन पे आपको अपना अटेंशन देना चाहिए।
3: हम तो कह रहे हैं
9: कि ये कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी गलत है या कांग्रेस गलत है, उनको ये मतलब है कि सिस्टम में जो गलतियां हो रही है, जो इनकंसिस्टेंसी है, उनको किस तरीके से करा जा रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स है उनको किस तरीके से कौन सी पार्टी ठीक कर रही है, हमारे को कोई पता नहीं है कि बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, आरजेडी गलत है। आप लोग काम कीजिए ना, हम आपको
2: ठीक से कीजिए। हाँ जल्दी से आखिरी
9: सवाल, हमारी वोट चोरी की बातें आती है, पेपर चोरी हो रही है, चंदा चोरी हो रही है, तो हमारी सरकार इन सब चीजों पे काम कब करेगी? कितनी और चोरियों के बाद काम करना स्टार्ट करेगी?
2: आप लोग देंगे और इन सवालों का जवाब आप
3: देखिए। नरेंद्र मोदी
0: देखिए, सवाल ये है, सवाल ये, इन्होंने जो सवाल पूछा,
4: 6 दिसंबर को
0: इन्होंने बताया निर्माण समिति के अध्यक्ष है निपेंद्र मिश्रा जी,
4: 6 दिसंबर को काय गोली चलवाई, पहले इसका उत्तर दीजिए।
0: तो बोलता रहा हूँ फिर हल्ला मचाने लगे।
4: अरे वो
0: प्रभु की बात हो रही है, हल्ला मचाने की बात नहीं हो रही है, प्रभु के बात पे सुनो ध्यान से, प्रभु के आचरण को अपनाओ भाई। आप प्रभु के आचरण अपना रहे हो, किसी उसके अपना रहे हो? मैंने कहा निपेंद्र मिश्रा जी की बात,
3: समाजवादी पार्टी बोल रही है।
0: देखिए निर्माण समिति के अध्यक्ष है निपेंद्र मिश्रा जी, निपेंद्र मिश्रा जी ने खुद बोला उस तत्कालीन जब आदरणीय नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद कहा कि गोली वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने पे चलाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ फैलाते हैं और उनको अध्यक्ष बना रखा है, ये बीजेपी वाले हैं, सोचो ये ऐसा माहौल बनाते हैं समाज के अंदर।
4: इनके हमने घेरा है, इनके इनको पकड़ा है, इनको बुरी तरह से पकड़ा है कि प्रभु के यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चोरी कोई किसी पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनसे कह रहा हूँ गड़बड़ी हो रही है तो उसकी इंक्वायरी करवाइए। तो ये देखिए चिल्ला रहे हैं, तुम से चिल्ला रहे हैं, भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई साहब, अगर संतुलन खो गए, हमने एक सवाल किया पूछा प्रभु राम पे, संतुलन खो गए, ये फोटो लिए घूम रहे हैं, इनको इस हैसियत में लाके खड़ा कर दिया है या फोटो लाइक लेने लायक बच गए बस, और उससे ज्यादा इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक बार जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, किस लिए घट गई, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे सच सामने आना चाहिए। जो हम कह रहे हो आप भी कहो कि भाई इंक्वायरी हो, सच सामने आए, हमने तो यही कहा है ना कि भाई जो इंक्वायरी हो सच सामने आए, जनता क्या होना चाहती है। आप क्यों हल्ला बता रहे हो, आपके मन में चोर है क्या, आपके मन में चोर है क्या, ये चोर है, मन में चोर है, देखो कैसा चोर चिल्ला रहा है, देखो मन में चोर है तभी चिल्ला रहे हो ना। अरे हम तो चिल्ला नहीं रहे, हम तो इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, प्रभु की इंक्वायरी होनी चाहिए, कमाल है भाई। आप बोलना मैं बोलूंगा,
2: आप शुरू करो,
4: आप कैसे बोलोगे बताओ, अब मैं बोलूंगा तो गलत
2: आपका हो गया थोड़ा सा,
4: तो मेरे बीच बोल रहे तो मैं कैसे,
2: धन्यवाद धन्यवाद।
4: देखो ये
2: बोलिए जल्दी,
4: ये अचीव कर पाए पूरी जिंदगी भर, इनका अचीवमेंट देखिए फोटो, ये इनका अचीवमेंट
10: है,
4: बधाई बधाई बधाई, बहुत बड़ा अचीवमेंट लाए हो, क्या अचीवमेंट लाए, देखो ये नफर ये कैसे लगा के बता के घूम रहे हैं, देखो ये दिखाना चाहते हैं।
2: घंटा आप ही बोलेंगे क्या अनुराग जी, आज एक घंटा आप ही बोलेंगे?
4: अरे तो
2: नहीं, हम लोग चेहरा देखने आए हैं,
4: भाई वो बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं।
2: प्रोफेसर
1: प्रभु राम भारत की अस्मिता है और इस अस्मिता को प्राप्त करने के लिए 500 वर्षों का संघर्ष, 1,00,000 बलिदान
10: और उनके धर्म
1: ये हुए हैं, ये हुए हैं और इस हिंदू समाज ने किया है। और हम बार बार कहते हैं कि मंदिर जो है ये हिंदू समाज ने बनाया है, विश्व हिंदू परिषद कभी ये नहीं कहता कि हमने बनाया है, हमने नहीं बनाया, ये करोड़ों हिंदू समाज ने बनाया है। और हिंदू समाज के मन में एक प्रश्न आया,
2: एक सवाल मेरे मन में, आप सुनिए इधर सुनिए प्रोफेसर साहब,
1: बस
2: चढ़ावा चोरी
1: नहीं
2: जो नृपेंद्र मिश्रा जी को भी दिख रहा था, एक सेकंड आप सवाल नहीं सुनना चाह रहे हैं, ये गलत है, अकाउंटेबल सबको होना पड़ेगा,
1: बिल्कुल है।
2: और ये सवाल है कि वहां पर अगर चढ़ावा चोरी हो रहा था, किसी को दिख ही नहीं रहा था, वो लोग जो ठाट बाट से वहां घूमते हैं मंदिर में, क्योंकि सारे नियम तो श्रद्धालुओं के लिए हैं, यहां से जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है, जिनको एक्सेस था, 40 दान पेटियों का पैसा जा रहा था, कलेक्शन हो रहा था, फ्रिस्किंग हो रही है नहीं हो रही है, किसी को दिख ही नहीं रहा था।
1: अंजना जी ये हो रहा था, ये जानकारी में आया तभी ये डिबेट हो रही है ना,
3: बैंक का
1: तभी डिबेट हो रही है ना,
2: फिर किसे उठाए क्रेडिट लेना।
1: अंजना जी ऑडिट हो रहा था,
3: अंजना जी
1: ये ऑडिट हो रहा था,
2: कौन कर रहा
1: ऑडिट, नहीं ऑडिट के लिए अधिकारी लगे हुए,
3: एसबीआई कर रहा था,
1: ऑडिट सुनिए, उस ऑडिट के दौर में ये विषय निकल कर आया,
2: अंजना जी एसबीआई की तरफ से कोई सिस्टम नहीं था, ये तो नितिन मिश्र कह रहे हैं,
5: अंजना जी दूसरी चोरी ना होती,
1: आपका न्यास पर प्रश्न खड़ा करना ही इनवैलिड, इसलिए इनवैलिड है,
5: न्यास
1: स्वयं सारे काम कर रहा था,
2: जिम्मेदारी किसकी थी, ठीक है अगर ट्रस्ट की जिम्मेदारी नहीं थी तो किसकी जिम्मेदारी थी,
1: बिल्कुल ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी,
2: फिर
1: कुछ अव्यवस्था हुई है,
4: आपने माना आप सच्चे भक्त हैं प्रभु के, आप मान गए इसलिए प्रभु के भक्त हैं, हमारी तरह आप हैं।
1: अगर भदौरिया
2: जी
1: सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और अखिलेश यादव उस पर राजनीति करना चाह रहे हैं, तो हमको तो जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी जवाबदेही उन करोड़ों हिंदुओं के प्रति है,
4: मेरी जवाबदेही
1: है, इसलिए हम आपको जवाब दे रहे
2: हैं।
5: आपने गलती करी, अगर जब पहली बार चोरी हुई थी, जब जमीन घोटाला हुआ था, चंपत राय जी पर आरोप लगे थे ना,
1: क्या हुआ,
5: बीजेपी के मेयर ने बाकायदा 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीद करके 13 करोड़ में बेची थी ना, अगर आप तब जांच कर लेते तो आज घोटाला ना
2: होता।
1: झाजी सूत्रों के हवाले
5: कहीं ना कहीं गलती की,
1: आज भी आप सूत्रों के हवाले आरोप लगा रहे हैं,
5: सच्चाई
1: आज भी सूत्रों के हवाले
4: आरोप लगा रहे
1: हैं,
5: प्रोफेसर साहब
1: अगर गड़बड़ी हुई है, अगर गड़बड़ी हुई है
2: पीछे
5: पार्टी के पक्ष में होगी को नहीं पता, बीजेपी की सरकार को नहीं पता,
3: और जो उसको कुछ दिखाना चाहता
5: सोने की चोरी हुई,
2: झाजी
5: की चोरी हुई,
2: कुछ सवाल बच्चों के हैं जो आप लोग अटैक कर रहे
3: हैं, मैं जनता को कुछ दिखाना चाहता हूं,
2: स्टॉप दिस शाउटिंग मैच सर, इतना लड़ने का मन है तो चले जाइए चौराहे पे प्लीज, आप लोग मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, स्टॉप दिस प्लीज, जा जी, अंजना जी बच्चों का नहीं, सवाल सुनिए, खाली दिखाइए मत, पूछ रहे हैं कि मंदिर से काहे दूरी बना ली है।
11: देखिए मंदिर से किसी को दूरी नहीं है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा, आदि जो पुरुष है, आदि जो देवता है ना, राम से पहले भी सृष्टि थी, राम से पहले भी संसार था, राम के बाद भी हो, तो राम का जन्म हुआ, भगवान विष्णु का जन्म राम के रूप में हुआ, तो शिव और राम, शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर मोहि सपने नहीं भावा, तो राम से पहले भी ईश्वर थे, ईश्वर आवास मिदम सर्वयत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्त्या न भुंजिता, तो ईश्वर का आवास पूरा संपूर्ण जगत है, तो आपको मानना पड़ेगा राम से किसी की दूरी नहीं है, राम के अस्तित्व पे किसी को कोई सवाल नहीं है, तो आस्तिक हो या नास्तिक हो, इससे शास्त्र में कोई बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, पत्थरों में भगवान नहीं बचते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था पत्थरों में भगवान नहीं बचते, क्या है
4: राम को मानते ही नहीं आप, तो राम को
2: मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल क्या था झाजी, आप बोलने क्या लगे जवाब में,
11: मंदिर पे जा रहा हूँ
2: कब जाइएगा,
11: देखिए इस देश में
2: तो हम पूछ रहे हैं,
11: इस देश में कितने मंदिर हैं, इस देश में कितने मंदिर हैं, शिव का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, जहाँ जाइए मर्जी जाइए, जहाँ मर्जी जाइए, आप बताइए राष्ट्रपति महोदय को आपने क्यों नहीं बुलाया था, राष्ट्रपति महोदय को क्यों नहीं बुलाया था,
2: राष्ट्रपति
11: को क्यों नहीं बुलाया, अंजना जी महोदय को नहीं,
3: अंजना जी आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो और अर्जुन सिंह जो थे एचआरडी मंत्री थे, अयोध्या में एक उन्होंने एक प्रदर्शनी लगवाई, सहमत ने लगाया, राम और सीता को भाई बहन दर्शाने वाला कौन, कांग्रेस पार्टी, राम के अस्तित्व पर सवाल करने वाला कौन, कांग्रेस पार्टी, राम मंदिर नहीं बने इसके लिए कौन काम करने वाला, देखिए मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला कौन, मुलायम सिंह झूठ बोल रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि निगरानी में गलती नहीं है, सभी लोग कह रहे हैं कि निगरानी में गलती हुई है, उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद एसआईटी जांच निकल करके आएगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, एफआईआर कोई जरूरी नहीं करना था, एक सवाल
2: इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिंझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मैक्स टीएमटी बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
10: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
11: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
12: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
13: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
12: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: यूएस ईरान के बीच हुई पीस डील के बाद हॉर्मुज का नजारा काफी दिनों बाद बदला हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 3 महीने बाद जहाजों की आजाद आवाजाही ने शांति का एहसास कराया है। गुरुवार को सऊदी अरब के झंडे वाले 3 बड़े तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। इनमें करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल लदा था। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों की ये आवाजाही पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एमओयू पर दस्तखत के बाद हुई।
1: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. On the military side, the Iranians, for the second night in a row, did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So,
0: Iran aur America ke beech samjhote ke baad Hormuz jhaldamaru mein tel tankeron ki movement dekhi ja rahi hai. Lekin tel companies sangharsh ke dauran Iran ki or se bichhai gayi means ko lekar kafi satark hain. इसके अलावा प्रतिबंधों, आतंकवाद से जुड़े कानूनों और टोल पेमेंट को लेकर भी स्पष्टता की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
1: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
2: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
0: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
3: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
1: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
0: जहां खबर वहां खबरदार।
4: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह, राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है। साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए, दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया, मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
6: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र, आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है, और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन।
5: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा, शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 बार रद्द हुई, 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ, रिजल्ट दोबारा जारी हुआ, नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, एलडीसी भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। आरपीएससी की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
7: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाए?
5: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित है।
8: होना नहीं चाहिए, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है, और उस पर कंट्रोल उस सेटर का होता है, और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है, तो ये बात पीड़ादायक भी है। मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह मैं हल नहीं कर पाया।
5: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है, और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए

0: कोलकाता एयरपोर्ट शुक्रवार रात उस समय राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो गया जब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। टीएमसी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के कोलकाता पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट के बाहर दोनों दलों के समर्थकों के बीच तनाव बढ़ने लगा। जानकारी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कोलकाता लौट रहे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी समर्थक भी वहां जुट गए जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद ने हाथापाई का रूप ले लिया। एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई और यात्री भी घबरा गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और दोनों गुटों को अलग किया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता हथियार लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। घटना के बाद कुछ समय तक एयरपोर्ट इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की।
1: देखिए ये तो हर जगह में देखने को मिल रहा है। मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कानून जो दोषी है उनको सजा देगी।
0: फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। वहीं टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक संघर्ष अब सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर
5: फीलिंग अ बिट नॉस्टैल्जिक फॉर द 90s TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach Durable Pipes Fittings and Tanks A Complete Range of Sanitary Solutions

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
3: राहुल गांधी की राजनीतिक सांगठनिक चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, 1 सीट पर जेएमएम के बैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया। प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे। आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेवीएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
4: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
5: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग जो है, कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही सांठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
3: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है, कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर 2 महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती। यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया। झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी। महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था। पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है। केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
6: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी गठबंधन में। इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
3: और कांग्रेस कहती है कि इसी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत है, खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया। बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जांच तेज, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के मिले सबूत, छठे दिन भी एसआईटी की पूछताछ। आज तक पर रामलला को भेंट की गई चांदी की शिलाओं की तस्वीर, एसआईटी पता कर रही है स्थिति।

0: फ्री में पहुंचाएगी सरकार। रांची में आरएसएस दफ्तर पर अटैक मामले में आरोपी अमन अंसारी और सैफ का रेलवे स्टेशन से आया नया वीडियो। पाकिस्तानी एजेंट से मिलने जा रहे थे लखनऊ, लेकिन ट्रेन में ही पुलिस ने पकड़ लिया था। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान मारपीट में एक यात्री की गई जान। जनरल डिब्बे में घुसने के लिए हुआ था विवाद, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा पर उठे सवाल। और ट्रंप की धमकी के बाद झुका इसराइल हिजबुल्ला से सीज फायर। ईरान से डील को मिलेगी रफ्तार। जिनेवा में बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हो रहे हैं रवाना।
1: एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, कोई भी होगा बचेगा नहीं।
2: भाजपा का धर्म का मतलब धन है।
3: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। राम के नाम पर राजनीति कई दशकों से चल रही है। अब तक उस सियासत में बीजेपी विपक्ष पर भारी पड़ती रही। कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते विपक्ष के बयान याद दिलाकर, कभी राम भक्तों पर गोली चलवाने का दौर याद दिलाकर, लेकिन पहली बार है जब राम के नाम पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। विवाद राम मंदिर के चढ़ावे में गबन को लेकर है, और तब अयोध्या इस विवाद काल में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया है। डेडलाइन 29 जून की तय की है, कहते हैं अपराधी बचेंगे नहीं। सवाल है कि जांच का आदेश पहले से चल रहा था, फिर मुख्यमंत्री को क्यों मैदान में उतरना पड़ा, वो भी राम के नाम पर।
2: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
4: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के भी चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और आरएसएस।
5: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
6: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
7: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
6: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
8: आज हमारे राम आ गए हैं।
9: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
6: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे, आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
5: गहना, रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
10: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
11: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस वक्त के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
6: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
12: 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
6: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
1: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
6: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
2: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
1: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ है,

0: कनक सिमट जाती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 1991 में यानी रथ यात्रा और कार सेवा की शुरुआत के साथ 221 सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतती है जब राम लहर थी। इसके अगले साल 1992 में बाबरी के गिरने के साथ ही 93 में बीजेपी 177 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सरकार नहीं बना पाती। 1996 में 174 सीट बीजेपी यूपी में जीतती है। 2002 आने तक जातिगत समीकरण इतना बदल जाता है कि यूपी में बीजेपी 88 सीट पर आ जाती है। 2007 में 51 सीट, 2012 में 47 सीट तक घटकर बीजेपी पहुंच जाती है। लेकिन फिर 2017 से हिंदुत्व की नई बयार चलती है, 312 सीट बीजेपी जीतती है, प्रचंड जीत होती है। 2022 में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका था लेकिन बहुमत के बावजूद सीट बीजेपी की घटती है, 255 सीट पार्टी पाती है। अब 2027 में क्या राम मंदिर का चढ़ावा विवाद संकट न पैदा करे, इसीलिए मुख्यमंत्री जनता को भरोसा भी दे रहे हैं और विपक्ष को जवाब भी।
1: एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये भरोसा देते हैं कि 29 जून तक इंतजार कर लो, फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी करने वालों का हश्र देखना। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अयोध्या से खड़े होकर विपक्ष का इतिहास राम और राम मंदिर को लेकर याद कराते हैं।
2: राम विरोधी थे ये लोग, कैसे भगवान राम की पावन अयोध्या के इस भव्य स्वरूप को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, ये लोग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका, रायबरेली ऊंचा हार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया, अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं।
3: हमारा मंदिर बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो गया है, उसके बाद हम भी दर्शन करेंगे और जैसा प्रभु करेंगे, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या।
1: मुख्यमंत्री राम मंदिर पर होती राजनीति में शुक्रवार को करीब 10 मिनट बोलते हैं, इनमें से करीब 2 मिनट वो चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोलते हैं, बाकी 8 मिनट मुख्यमंत्री विपक्ष के आरोपों पर निशाना साधते रहे।
4: सबका संरक्षण है इस डकैती में, उनके संरक्षण में सारे काम हुए हैं, इसीलिए न वो FIR करा रहे हैं न कुछ मुंह से बोल रहे हैं। और एक बात मैं और बता दूं, जो SIT है कोई मतलब नहीं इसका, ये सरकार और ट्रस्ट की मिली मार है कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए SIT गठित। अरे भाई जब इतना सब रुपया बरामद हो रहा है, इतनी सारी चीजें मीडिया में दिखाई जा रही हैं, सारे चैनल दिखा रहे हैं, सारे अखबार दिखा रहे हैं कि इतने सौ करोड़ का घोटाला हो गया, इतना रुपया यहां मिला, आभूषण गायब हो गया, तो ट्रस्ट FIR क्यों नहीं कराता।
2: आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं, हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है, इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भासते थे।
5: भगवान राम के दरबार में ये काफी दिनों से RSS और BJP और VSP के लोग ये संगठित लूट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। वो अधिकारी जांच कर रहा है, जो खुद जांच की तलवार जिसके ऊपर लटकी हुई हो, ये पूरी तरीके से प्रभावित करने के लिए ये SIT को भंग करिए और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाईकोर्ट के जज से समयबद्ध जांच कराए।
2: जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है, बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया।
1: आपको इसीलिए आज ये रिपोर्ट देखकर अब समझना जरूरी है कि जब जांच चढ़ावा चोरी की हो रही है तो क्यों विपक्ष के बयानों पर आक्रामक होकर मुख्यमंत्री उतरते हैं। वजह 2024 का नतीजा है। अयोध्या विधानसभा और फैजाबाद लोकसभा सीट अवध क्षेत्र में आते हैं, वो अवध जहां कुल 23 लोकसभा सीट है, 2014 हो या 2019, 23 में से 20 लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में जनता ने राम के नाम पर डाल दी। यानी 86

0: फीसदी स्ट्राइक रेट अवध में बीजेपी का दो लोकसभा चुनावों में रहा है। 2014 में तो समाजवादी पार्टी एक सीट और कांग्रेस दो सीट जीत पाई। 2019 में समाजवादी पार्टी का अवध में खाता तक नहीं खुला। दो बीएसपी जीती, एक कांग्रेस। लेकिन 2024 में जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाता है, तब अवध में हालत ये हुई कि बीजेपी 10 सीट ही जीत पाई, यानी 50% सीटों का नुकसान हुआ। और राहुल अखिलेश जो मिलकर लड़े वो 13 सीट अवध में जीत गए। समाजवादी पार्टी 9 सीट इनमें से जीत जाती है। इसकी वजह ये मानी गई कि राम मंदिर तो बीजेपी ने बनवाया, लेकिन राम मंदिर निर्माण के दौरान जमीन अधिग्रहण से लेकर दूसरी चीजों के लिए आम लोगों के साथ न्याय न होने का दावा किया गया। यहाँ तक कि वीआईपी लोगों का ज्यादा ध्यान देने का आरोप लगता रहा।
1: विनय कटियार जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और इसका परिणाम भी भोगा है, इसका परिणाम भी पार्टी ने भोगा है। आप देखिए, अयोध्या हार गए, अम्बेडकर नगर हार गए, बस्ती हार गए, बाराबंकी हार गए, देवीपाटन में अब कैसे 3 सीटें मिली है आप जानते हैं, लेकिन 1 सीट हार गए। तो ये जो आम जन लोगों को अयोध्या से काट दिया गया, 200 रुपया दे दीजिए तो तुरंत बैरियर हट जाएगा, इसका खामियाजा पार्टी ने भोगा है।
0: ऐसे में क्या चढ़ावा विवाद वापस वो अविश्वास जनता के मन में घर कर सकता है, जिसकी वजह से नुकसान 8 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ जाए? क्योंकि बीजेपी की विधानसभा चुनाव में मजबूत पकड़ अवध में पहले रही है। अवध क्षेत्र में कुल 118 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 2017 में इनमें से 97 सीट जीतती है और 2022 में 84। समाजवादी पार्टी केवल 12 सीट 2017 में अवध में जीत पाई, लेकिन 2022 में वो 31 सीट तक पहुंची। कहीं 2024 जैसा खेल ना हो जाए क्या? इसीलिए मुख्यमंत्री आक्रामक होकर राम मंदिर चढ़ावा विवाद में जनता को धैर्य रखने के लिए कहते हैं और 15 दिन में इंसाफ दिलाने की बात कही जाती है।
2: यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करे, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
3: अखिलेश यादव अब पूछते हैं कि मुख्यमंत्री के भाषण में बयान कम धमकी अधिक क्यों थी। वहीं सवाल इस बात को समझने का है कि राम के नाम पर जो भरोसा जनता चाहती है, क्या वो मुख्यमंत्री के बयान से हासिल होगा?
4: योगी जी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी जिस प्रकार से आतंकी उत्तर प्रदेश से छोड़ के या तो बाहर चले गए या ऊपर चले गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, उसी प्रकार से एक भी दूसरी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए जिससे एजेंसी को जांच करने में समस्या हो। हम लोग संतुष्ट हैं योगी जी के निवेदन से, एयूबी जी के आदेश से और माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से। हम लोगों का उनके ऊपर विश्वास है। जिस प्रकार से भारत और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से इसकी निष्पक्ष जांच होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
5: विश्वास है हम लोगों को। एक चीज कहा कि दोहरा चरित्र। अभी अखिलेश जी ने पहले आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि चोरी हो गई, जब जांच हुई कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं तो कहा है वो अब अधिकारी इन पंडितों की जांच करेगा, महंतों की, संतों की जांच करेगी, इनकी जांच कौन करेगा? ये दोहरा चरित्र योगी जी ने कहा, इससे सावधान रहें। योगी जी के ऊपर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
6: अब अंदर से तो बुरा लग ही रहा है कि किसी के ऊपर लांछन लगा दिया जाएगा, सही हो या गलत हो, लेकिन बुरा लगता है, बेशक वो गलत ही क्यों ना हो। तो उसका जांच होना जरूरी है, लोगों को संतुष्ट करना जरूरी है, जहां से अफवाहें पैदा हुई हैं उनको भी ब्लॉक कर देना जरूरी है कि भविष्य में कभी भी ऐसी व्यवस्था ना बिगड़े।
7: पूरी उम्मीद है योगी जी पे और जो कहा है उन्होंने करके दिखाया है, इसलिए हम लोग बिल्कुल पूरा भरोसा रखते हैं उनके ऊपर।
3: राम के नाम पर चलती अयोध्या की इस नई लड़ाई में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कितने गुनहगार, कहां तक पहुंची जांच की आंच।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
10: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
5: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
6: जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
7: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
8: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
9: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
8: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? I challenge you, Bajipa. अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। Wait. Come.
10: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
11: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मार मार के यहाँ बिठाया हुआ।
10: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
12: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1 लाख रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1 लाख रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
10: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
13: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचमैन।
10: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: इन एसोसिएशन विद
4: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
5: कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
3: हिंट बड़े आराम से विमल बोलो जुबां केसरी।
6: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू।

0: शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस समारोह में उद्धव ठाकरे ने फिल्मी अंदाज में एंट्री मारी। जब सायन के षणमुखानंद हॉल में उद्धव जूनियर ठाकरे और अपनी पत्नी के साथ कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, तो उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का आभार जताया, तो जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने भी नारे लगाए, उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: उद्धव साहब आगे बढ़ो, अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
0: उद्धव और आदित्य ठाकरे ने स्थापना दिवस के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि पार्टी में टूट की खबरों से निराश ना हो, अपना टाइम आएगा। आदित्य ठाकरे ने भी बागियों पर तंज कसते हुए कहा कि असली शिव सैनिक अपने सियासी फायदे के लिए दूसरों की पीठ में छुरा नहीं मारते। अपने 6 सांसदों की बगावत के बावजूद उद्धव ठाकरे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखने की कोशिश करते रहे, जिससे कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई बना रहे। उद्धव के आने से पहले भी पार्टी के गीतों पर यूबीटी कार्यकर्ता झूमते नजर आए। इस बार शिवसेना यूबीटी का स्थापना दिवस ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी में टूट हो रही है। बाला साहब ठाकरे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बाद उनकी पार्टी में 4 साल के अंदर 2 बार बड़ी टूट होगी। पार्टी में बगावत पर शिवसेना यूबीटी विधायक भास्कर यादव ने आरोप लगाया कि सभी संवैधानिक संस्थाएं और एजेंसियां बीजेपी सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही हैं।
2: ऐसा है कि उद्धव जी ठाकरे की कार्य पद्धति पसंद है नहीं है, ये पार्टी छोड़ के जाने के बाद जानकारी होती है क्या?
0: वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, पार्टियों में टूट इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर डरी हुई है।
3: वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, हुकुमशाही, तानाशाही, इसलिए सब चल रहा है।
0: बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपे पत्र में दावा किया है कि संजय राउत जैसे नेता शिवसेना का कांग्रेस में विलय चाहते थे, इसीलिए उन्हें बगावत को मजबूर होना पड़ा। 18 जून को बागी सांसदों ने पार्टी की संसदीय दल की बैठक का बहिष्कार करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपकर अलग होने की वजह बताई थी। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

एफएम। भक्तों ने अपना अटूट विश्वास पैसे और कीमती जेवरों के तौर पर दान पेटियों में चढ़ाया, लेकिन आरोप है कि उसी विश्वास को झकझोरने वाला पाप चढ़ावा चोरों ने किया। इसीलिए एसआईटी बनी, 6 दिन जांच के हो चुके हैं। सवाल यही है कि राम के नाम पर क्या मर्यादा का हरण किया गया, और किया गया तो किसने किया।

0: राम मंदिर के दान को कितनों ने लूटा। राम भक्तों का दान किसने लूटने दिया। कितने किरदार और कितने राजदार। क्या गुनहगारों के चेहरे होंगे बेनकाब। हे राम, चोरी किसका काम। आरोप यही है कि आस्था के जिस मंदिर में राम भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया, उसी राम मंदिर में बीते 8 महीनों से दान पेटियों से चढ़ावे की रकम को चोर हजम कर रहे थे। चोर दान पेटियों को खाली करते रहे और जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे रहे। अब चढ़ावा चोरी के इन्हीं सनसनीखेज आरोपों की जांच एसआईटी कर रही है। शुरुआती जांच में एसआईटी को शक है कि सुनियोजित साजिश के तहत सिंडिकेट बनाकर राम मंदिर के चढ़ावे की राशि और जेवरात पर हाथ साफ किए गए। यही वजह है कि राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े जिम्मेदारों की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन राम मंदिर में पलीता कौन लगा रहा है। किसने राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया है। कौन है वो चढ़ावा चोर जिसने राम मंदिर की दान पेटियों को भी नहीं छोड़ा। ये तब है जब राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण ने भारतीय जनता पार्टी के चमत्कारी उत्थान की पटकथा लिखी। तो क्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी कांड ने विपक्ष को बैठे बिठाए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा थमा दिया।
1: भाजपा का धर्म का मतलब धन है।
2: आरएसएस और बीजेपी और बीएसपी के लोग संगठित लूट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं।
3: भाजपा जो है राम के नाम पर व्यापार कर।
4: बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
5: SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी।
0: आरोप प्रत्यारोप को सियासी चश्मे से देखा जा सकता है, लेकिन राम मंदिर के दान से हुए खिलवाड़ का मामला जितना संगीन है उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज है, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोपों की आंच राम मंदिर की देखरेख करने वाले जिम्मेदारों तक पहुंच रही है। सबसे पहले आरोपों के कटघरे में खड़े किरदारों के बारे में आपको बताते हैं। किरदार नंबर एक, नाम चंपत राय, आरोप चढ़ावे की चोरी में शामिल। किरदार नंबर दो, नाम टिन्नू यादव, आरोप चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड। किरदार नंबर तीन, नाम गोपाल राव, आरोप राम भक्तों के दान को लूटा। किरदार नंबर चार, नाम अनिल मिश्रा, आरोप चढ़ावा चोरी में कमीशन खाया। राम मंदिर की दान पेटियों से चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जांच कर रही SIT ने आज भी संदिग्धों से पूछताछ की। SIT चढ़ावा चोरी के पूरे खेल का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाने में जुटी है। इसी कड़ी में राम मंदिर के जिम्मेदारों से SIT टीम पूछताछ कर चुकी है। राम मंदिर की दौलत लूटने वाले गुनहगारों के चेहरों को बेनकाब करने के लिए SIT कई एंगल से जांच कर रही है। आज SIT ने राम मंदिर में राम भक्तों की तरफ से चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए जाने वाले जेवरात का पूरा सिस्टम समझा। मतलब दान में आने वाले जेवरों का हिसाब किताब कैसे किया जा रहा है और खुलासे से पहले जेवरों पर हाथ कैसे साफ किया गया। आरोपों की जांच करते हुए SIT ने राम मंदिर की दान पेटियों का साइज चेक किया ताकि पता चल सके कि दान पेटियों में कितना चढ़ावा आ सकता है। जांच टीम ने CCTV और दूसरे निगरानी इंतजामों की जांच भी की। बड़ी बात यह है कि SIT ने बीते कुछ सालों में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीनों की डिटेल को खंगाला, क्योंकि आरोप ये भी है कि कौड़ियों के भाव की जमीन मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदारों ने ऊंचे ऊंचे दामों पर खरीदी।
6: शुरुआती जांच में क्या खुलासे हुए हैं वो हम आपको बताते हैं। जांच के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार चढ़ावे के जेवरातों का हिसाब किताब देने में नाकाम है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। यही नहीं, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन को लेकर भी कई संगीन आरोप हैं। ऐसे में SIT 2021 से अब तक खरीदी गई जमीन के दस्तावेज खंगाल रही है, खरीद में शामिल जिम्मेदारों से पूछताछ कर रही है।

0: खुलासा नंबर एक, दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती का जिम्मा संभालने वाले दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी गिनती करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। खुलासा नंबर दो, राम मंदिर के आरएमओ यानी रेडियो मॉनिटर ऑफिसर की भूमिका कटघरे में है। आरएमओ के कंधों पर ही सीसीटीवी से निगरानी का काम था। आरोप है चोरी के वक्त सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता था। बड़ी बात यह है कि 17 सालों से आरएमओ सीसीटीवी निगरानी का काम देख रहे थे और सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करते थे। खुलासा नंबर तीन, गेट पास बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले सोमेश आनंद एसआईटी के रडार पर हैं, क्योंकि बिना गेट पास के चढ़ावे की रकम या फिर चढ़ावे के जेवरात राम मंदिर से बाहर नहीं जा सकते थे। आरोप यही है कि सोमेश आनंद ने बिना चेकिंग के चढ़ावे की गाड़ी को मंदिर परिसर से बाहर जाने दिया। सवाल यही है, ऐसा क्यों किया गया। खुलासा नंबर चार, राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी को चढ़ावे की चोरी के पूरे खेल के बारे में पता था, बावजूद इसके थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की जांच में थाना प्रभारी की भूमिका भी शक के घेरे में है। तफ्तीश के बाद ही चढ़ावा चोरी कांड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, लेकिन आरोपों में घिरे जिम्मेदार खुद को बेदाग बता रहे हैं।
1: जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सर। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान ही इनका निर्णय करेंगे सर।
0: राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कांड का खुलासा होने के बाद मंदिर में दान करने वाले राम भक्तों ने जिम्मेदारों पर सीधे सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा भी घट गया है। जांच के बीच अब मंदिर आने वाले राम भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आई है। पिछले कई महीनों से हर महीने औसतन 7 करोड़ रुपए के आसपास दान राशि मिल रही थी। पिछले एक पखवाड़े में ये आंकड़ा घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं कर्नाटक की एक श्रद्धालु का आरोप है कि राम मंदिर में कीमती हार दान किया था, लेकिन आज तक उसकी रसीद नहीं मिल पाई है। पता नहीं राम मंदिर में चढ़ाए हार का क्या हुआ। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार यही दावा कर रहा है कि दान में मिली राशि और उसकी गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के चलते राम भक्तों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उस चढ़ावे को लेकर जो वो राम मंदिर में आस्था के नाम पर दान करते थे। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में 5वें दिन एसआईटी ने अपनी जांच पूरी तरीके से जारी रखी। इस बार जो जांच है उसका दायरा बढ़ाया गया, जिसमें आभूषण जो राम मंदिर में आए उसके बारे में तफ्तीश की गई। एसआईटी ने पूरी उसकी जानकारी की। इसके अलावा जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे पूछताछ की गई, यहाँ तक टिन्नू यादव से दोबारा पूछताछ की गई। कई घंटों तक ये एसआईटी की जांच चलती रही, यानी कि अब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट में आभूषण जो हेर फेरी हुई उसको लेकर, इसके साथ साथ सीसीटीवी चेकिंग को लेकर भी एसआईटी ने अपने पास मामले को दर्ज कर लिया है। एविडेंस के तौर पर पेनड्राइव्स और सीसीटीवी की फुटेजेस के बारे में भी खंगाले गए हैं, यानी कि एसआईटी तेजी से अब आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं 5वें दिन भी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे, इस तरीके की जांच पूरी तरीके से जारी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
3: राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज तक से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले पर नृपेंद्र मिश्र ने जो कुछ आज तक को बताया वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राम के नाम पर जो काम कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपा गया उसे पूरा करने में घनघोर लापरवाही बरती गई।
4: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
5: जी,
4: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है, और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का एसबीआई से एग्रीमेंट है, एसबीआई ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु
5: जी,
4: अंगूठी
5: जी,
4: कड़ा
5: चेन,
4: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक, वो जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थी और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
3: मुख्यमंत्री भरोसा दे चुके हैं, 29 जून तक सबको संयम रखने को कहा है, इस दावे के साथ कि अपराधी बचने नहीं पाएंगे। एसआईटी की जांच पर सबकी नजर है ताकि सच पता चले कि आखिर किसने चढ़ावा अपनी जेब में रखा जो भक्तों ने दिया था राम के नाम पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
9: Beautiful. शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
10: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
5: जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: समाजवादी पार्टी में झूठ की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही हैं।
11: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं। उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
10: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं।
11: जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
10: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
11: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
10: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
12: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता।
13: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
10: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afrobeats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
3: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
4: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
4: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
6: दशकों की दुश्मनी मिसाइलों की गूंज और जंग के मैदान में आमने सामने खड़े दो देश जब अचानक हाथ मिला लें तो दुनिया हैरान रह जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता कुछ ऐसा ही है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया है। दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए हैं जिसने सीमा पर चल रही जंग पर तुरंत विराम लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शांति समझौते के बड़े मायने हैं। समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देश बातचीत के जरिए फाइनल डील तैयार करेंगे। इस करार को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देश इसे अपनी अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के लिए इस डील के मायने अलग हो सकते हैं। समझौते के तहत कुछ बेहद ही अहम शर्तें रखी गई हैं, जिनमें शामिल है अमेरिका की तरफ से 30 दिनों में ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह खत्म करना, ईरान की तरफ से फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित और फ्री रास्ता देना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी रखना और वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इस बीच समझौते के आर्थिक पहलुओं को लेकर भी बड़ी बातें सामने आई हैं। प्रतिबंधों के हटने से ईरान की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन मिल सकता है। डील के मुताबिक अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। साथ ही प्रतिबंधों को हटाने को लेकर भी सहमति बनी है। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का एक बड़ा प्लान तैयार किया जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए वेवर जारी करेगा। ईरान के फ्रीज किए गए पैसों और संपत्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए जारी किया जाएगा। इस भारी भरकम राहत के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को एक नई चिंता भी सताने लगी है। उनका मानना है कि इस फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में भी हो सकता है। वहीं ईरान इस समझौते को अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस डील से हिजबुल्ला और हुरमुज जलडमरू मध्य पर उसका दबदबा बना रहेगा। वहीं आशंका ये भी है कि प्रतिबंधों में ढील मिलने से ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत कर सकता है। ईरान ने हिजबुल्ला को भरोसा दिया है कि फंड रिलीज होने के बाद उसकी फंडिंग बढ़ा दी जाएगी। यानी एक तरफ जहां शांति की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बने हुए हैं। उधर अमेरिका इराक सरकार पर भी दबाव बना रहा है कि वो ईरान समर्थित मिलिशिया पर लगाम लगाए। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है, ये तो आने वाले 60 दिनों की बातचीत तय करेगी। लेकिन इस समझौते ने फिलहाल दुनिया को बड़ी राहत जरूर दी है। आज तक ब्यूरो।
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
7: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste complete.
1: राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा. चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं. पूछताछ में टिन्नू यादव और चार पुजारियों का गोलमोल जवाब.

0: जा रहे थे लखनऊ, लेकिन ट्रेन में ही पुलिस ने पकड़ लिया था। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान मारपीट में एक यात्री की गई जान। जनरल डिब्बे में घुसने के लिए हुआ था विवाद, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा पर उठे सवाल। और ट्रंप की धमकी के बाद झुका इसराइल हिजबुल्ला से सीजफायर, ईरान से डील को मिलेगी रफ्तार। जिनेवा में बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हो रहे हैं रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि चढ़ावे की चोरी के मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और इसके अलावा शिलाओं का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए 60 किलो चांदी भेंट की थी, जिसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। एसआईटी ने इस मामले में रामशंकर यादव उर्फ पिन्नू यादव, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की है। पुजारी मोहित पांडे ने हार को टिन्नू यादव को सौंप देने की बात कही थी। टिन्नू यादव का दावा यह है कि हार को ईंट के रूप में गलाने के लिए बेंगलुरु भेज दिया गया था। जांच के दौरान सामने ये भी आया कि कथित रूप से बेंगलुरु भेजे जाने का कोई ठोस रिकॉर्ड, रसीद या दस्तावेज कुछ भी उपलब्ध नहीं है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुकाओं के बारे में जानकारी नहीं होने से साफ साफ इनकार किया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह की खबरें हैं, जैसा कहा जा रहा था कि सिर्फ ये पैसे का ही हेरफेर नहीं है, यहाँ पे तमाम जो चढ़ावे के रूप में हार श्रृंगार, तमाम जो बहुमूल्य दान दिए गए हैं उनके साथ भी घपला किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए। आशीष, जैसे जैसे परत खुल रही है, एसआईटी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, और ज्यादा काला कारनामा गोरखधंधा नजर आ रहा है।
1: देखिए शशि, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक तो चढ़ावे की चोरी जैसे मामले की बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन एसआईटी अब इस बात की भी जांच कर रही, क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो राम मंदिर पर चढ़ावा दिया था वो उसकी डिटेल अब नहीं मिल रही है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो जो ज्वेलर एसोसिएशन है, जो श्रद्धालु भी हैं जो चाहते थे कि उनका राम मंदिर की नींव में जो शिलाएं हैं वो रखी जाएं और उसकी जानकारी दी जाए, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिली और एसआईटी भी उसकी जांच कर रही। इसी तरीके से जो हीरे का नेकलेस था और जो ताज था वो श्री राम लला का, उसके बारे में भी श्रद्धालु ने जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। अब एसआईटी जो आभूषण है रामलला के और जो उनको श्रद्धालुओं ने दिए थे उनके बारे में क्रम वाइज जानकारी कर रही है कि आखिर अगर वो जैसा कि टिन्नू यादव ने बताया कि उनको गलाने के लिए बैंगलोर भेजा गया था तो वो बैंगलोर में रिकॉर्डेड नहीं मिले हैं, तो आखिर वो गए कहाँ। इस पर जिसकी भी संलिप्तता है, जो भी आभूषण भेजता है या आभूषण जो भी आए थे चढ़ावे को लेकर, उनकी जो रख रखाव कमेटी है उसकी जिम्मेदारी तय होती है। इसीलिए एसआईटी अब उन जिम्मेदारियों में जो संलिप्त हैं उनसे पूछताछ अलग अलग कर रही है। ऐसे में श्रद्धालु जरूर अपना एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने जो चढ़ावा किया था,
0: समझ सकते हैं 60 किलो चांदी भेंट की गई थी जिसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसा कि बार बार सामने आ रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे परत दर परत ढेर सारी चीजें, ढेर सारे सवाल और सामने आते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश, जिसमें विनय कटियार ने आज तक से खास बातचीत की है इसी मुद्दे पर। क्या कहा उन्होंने देखिए।
2: तो भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे के साथ भ्रष्टाचार और चोरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब एसआईटी तो योगी सरकार ने गठित कर दी है और उन्होंने अयोध्या में यह भी कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 15 दिन के अंदर जांच से सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच जो लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, जो लोग मंदिर के निर्माण से जुड़े रहे, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं चढ़ावे की गिनती, चढ़ावे के कैसे उसका प्रबंधन होता है, इन सब से जुड़े हुए। खास मेहमान हमारे साथ पूर्व सांसद और बड़े नेता जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधा अयोध्या से। विनय कटियार जी, आज तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप इस पूरे आंदोलन से भी जुड़े रहे, आप आज राम मंदिर के निर्माण और उसके बाद श्रद्धालुओं का भारी हुजूम वहां पर पहुंचते हुए भी देख रहे हैं, विनय जी आप तक क्या जानकारी पहुंची है? और आज जब ये आरोप लग रहे हैं कि चढ़ावे में ही हेराफेरी कर दी गई है, उसकी चोरी का आरोप लग रहा है, तो आप इसके लिए किस तरह से इसको देखते हैं और किसे जिम्मेदार मानते हैं?
3: नहीं, अब ये तो जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है
2: जी।
3: और मुझे जो कहना था ये हमने दो दिन पहले ही कह दिया, और ऐसी स्थिति में बार बार हम कुछ बोले वो ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो इधर इधर जो आए हैं हमारे सहयोगी लोग, तो स्वाभाविक है कि उनको कोई सही बात बोलना चाहिए था, करना चाहिए था। केवल उसमें चंपत राय का ही मामला नहीं है, एक एक एक उसमें गोपाल राव है, हाँ साउथ के हैं वो। अब ये सब बिल्कुल पूरा अपना तालमेल करके अब वो सब ऐसा काम कर रहे थे जिसे अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए हमने बोल दिया कि भाई ये जो काम यहाँ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब ये सब हमारे परिचित ही थे, लेकिन लेकिन जो ये सब हुआ है अब वो हम बर्दाश्त इसलिए नहीं कर सकते कि भाई राम मंदिर का निर्माण और जहां पर वो राम मंदिर बना है वो उसका ढांचा बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन हमने कहा ये भाई मस्जिद यहां नहीं चलेगी, हमने उस लिए नहीं कर सकते कि भाई राम मंदिर का निर्माण और जहां पर वो राम मंदिर बना है वो उसका ढांचा बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन हमने कहा ये भाई मस्जिद यहां नहीं चलेगी, हमने वो कह दी और मैं चल
2: रही है ना कि भाई ये तो आस्था की बात है ना लोग, मतलब न सिर्फ पैसे की बात है, मतलब लोग सोना अपना अपना अंगूठी सब कुछ खोल के श्रद्धा में भगवान के सामने दे देते हैं। अब वही चढ़ावे के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा था, एक व्यवस्था तो बनाई गई थी, SBI को जिम्मेदारी दी गई थी, प्रबंधन की तरफ से लोग थे, तो कैसे ये व्यवस्था टूटी? आपको अयोध्या के लोग क्या बता रहे हैं?
3: नहीं, अयोध्या के ही लोग नहीं बता रहे हैं भाई, हमको सब चीज मालूम हो गई और अयोध्या के ही लोग हमसे मिलने भी आते हैं और वो

0: लिए, चूंकि आपने ये मुद्दा उठाया है, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी व्यवस्था वहां पर बने ताकि इस तरह की चोरी कभी कोई ना करने की कल्पना भी कर सके, और दूसरी तरफ SIT दोषी लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के। प्रभु श्री राम के मंदिर में लग रहे गंभीर आरोप चढ़ावे की चोरी के, और इसी के साथ साथ ये बड़ा सवाल कि क्या वाकई ये सब कुछ इतने दिनों से हो रहा था, क्योंकि आखिरकार SIT गठित की गई है, SIT जांच कर रही है, लेकिन आज सवाल बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पहले आप कह सकते हैं ये मुद्दा उठाने वाले में से एक पवन पांडे जी इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। पवन जी, इस पूरे मुद्दे को आपने जोर शोर से उठाया, और मुझे लगता है जो शुरुआत में जो लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया उसमें सबसे प्रखर आप थे। पवन जी, ये जानकारी आप तक कैसे आई कि चढ़ावे में चोरी का संदेह पैदा हो रहा है? किसने आपको जानकारी दी और किस तरीके से इसको किया जा रहा था, इस बारे में आप क्या बताएंगे? आपका आरोप क्या क्या है?
1: सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एक ट्रस्ट बना और 140 करोड़ भारतीयों को इस ट्रस्ट को सौंपा गया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग हैं उन सबके विश्वास से ट्रस्ट बना। लेकिन 2021 से लगातार कभी जमीन का घोटाला, 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ों में, नजूल की ढेर सारी जमीनें, जिन जमीनों की कीमत 1 करोड़ 2 करोड़, उन जमीनों को लिया गया 40 करोड़ 50 करोड़ में। और सबसे बड़ी बात कि जो जमीन नजूल की थी उसका न क्रय हो सकता है न विक्रय हो सकता है जब तक सरकार फ्री होल्ड न करे। तो इस तरह का काम ट्रस्ट द्वारा किया गया, एक तरह से रुपए की बंडर बांट की गई। और इधर कुछ वर्षों से ट्रस्ट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनमें ये आपस में विवाद चल रहा था कि तू बड़ा चोर कि मैं बड़ा चोर, कौन बड़ा हाथ मार के अंदर से बाहर गया। और जब चोरी का एक कंपटीशन आपस में बढ़ गया चढ़ावा चोरों के बीच में, तो ये बात मंदिर परिसर के बाहर आने लगी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो गणना के प्रभारी थे महिपाल सिंह, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोला कि जो बक्से जाते थे रुपए गिनकर बैंक, लिखा पढ़ी में रहता था 15 लाख, बक्से के अंदर रहता था 25 लाख, बक्से में लिखा जाता लिखा पढ़ी में रहता था 20 लाख, बक्से में रहता था 35 लाख। और जब उन्हें शक हुआ और शक के बाद उन्होंने जब एक दिन बक्सा रीओपन करवाया तो रजिस्टर में दर्ज था 20 लाख, निकला 35 लाख। और जब उन्होंने इसकी सूचना श्री चंपत राय जी, श्री अनिल सिंह मिश्रा जी, गोपाल राव जी, इन सारे लोगों को दी तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद महिपाल सिंह की ही विदाई कर दी गई। अभी जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी, कल उनका बयान सामने आया कि बाथरूम में रुपए मिल रहे थे। उनका बयान है कि बाथरूम में रुपए मिले मंदिर के। उनका बयान है कि निर्माण जो मंदिर का चढ़ावा है उसमें हेरा फेरी हुई है, उसमें चोरी हुई है, जो निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी ने बयान दिया
0: जी। और उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू दिया और उसमें भी उन्होंने कहा था कहीं जी, मुझे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। हाँ, मुझे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और मुझे भी उन्होंने बताया कि भारी हेरा फेरी। हाँ, पूरा कीजिए।
1: हाँ अंजना जी, एक मिनट। सबसे बड़ा तथ्य जो है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पवित्र मंदिर जी, तो पवित्र मंदिर में CCTV फुटेज को डिलीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये ट्रस्ट को बताना चाहिए। ऐसी कौन सी घटना हो गई, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी, ऐसी कौन सी आपात स्थिति पैदा हो गई थी कि ट्रस्ट को कई बार CCTV फुटेज डिलीट करना पड़ा?
0: तो आपकी क्या मांग है?
1: हम तो कहना चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह ट्रस्ट बना था, उसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में इसकी पूरी जांच हो, और जितने ये डकैत टाइप के ट्रस्टी हैं इनको सबको तब तक बर्खास्त कर दिया जाए और राम मंदिर में इनके प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। कोई मंदिर के अंदर नहीं जाएगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सारी डकैती चोरी भ्रष्टाचार सब खुल जाए और सब कुछ पूरा होने के बाद तब नए तरीके ट्रस्ट बने। और अगर ये गलत नहीं है तो इनको ट्रस्ट में स्थान दिया जाए, और अगर ये गलत है साबित हो कि इनके संरक्षण में सारा काम हुआ है तो इन पर मुकदमा लिख के इनको जेल भेज दिया जाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विधायक समाजवादी पार्टी के।
1: पेश की जाए कि दोबारा किसी मंदिर में इस तरह का चोरी ना हो
0: जी।
1: बहुत धन्यवाद।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
12: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
13: प्लीज बज्जीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
14: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
13: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बज्जीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली है। शेयर बाजारों में जोश लौटा है, क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी आई है और बड़े युद्ध का खतरा भी फिलहाल टलता नजर आ रहा है। हालांकि भारत के करोड़ों लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा, लेकिन मामला उतना आसान नजर नहीं आ रहा क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बावजूद ऊर्जा बाजार पूरी तरह से सामान्य होने में वक्त लग सकता है। समझौते के बाद बाजारों में घबराहट कम हुई है और क्रूड ऑयल में नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन सप्लाई चेन पर असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि राहत का असर आम लोगों तक पहुंचने में समय लग सकता है, खासकर उन देशों में जो तेल आयात पर ज्यादा निर्भर है। हॉर्मुज रूट खुलने के बाद भी सप्लाई सामान्य होने में 2 से 6 महीने का वक्त लगेगा। एशियाई देशों पर ऊर्जा कीमतों का दबाव ज्यादा रह सकता है और अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा करने वाले भारत जैसे देशों के लिए मुश्किल बनी रहेगी। तेल की कीमतों का असर केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने तक के सामानों तक लगभग हर सेक्टर इसकी चपेट में आता है। भारत के लिए चिंता की एक और वजह रुपए पर पड़ने वाला दबाव भी है। युद्ध के दौरान जिन एशियाई मुद्राओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा उनमें भारतीय रुपया भी शामिल रहा। युद्ध के असर से एशिया की सबसे ज्यादा प्रभावित मुद्राओं में रुपया शामिल है और ये कमजोर रुपया आयात को महंगा बना सकता है, जिससे तेल खरीद पर ज्यादा खर्च का दबाव बढ़ सकता है। अगर सरकार ईंधन पर टैक्स कम करके राहत देने की कोशिश भी करती है तो उसका असर सरकारी खजाने पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को राहत और राजस्व के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। एक और चुनौती मौसम से जुड़ी है। अल नीनो का असर बढ़ा तो खाद्य महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है, जिससे ऊर्जा और खाने पीने की कीमतें मिलकर महंगाई की चिंता को और बड़ा बना सकती है। कुल मिलाकर समझौते ने दुनिया को राहत तो दी है, लेकिन भारत के लिए असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी। अगर सप्लाई सामान्य होती है, तनाव दोबारा नहीं बढ़ता है, तभी पेट्रोल डीजल और महंगाई के मोर्चे पर ठोस राहत का रास्ता साफ होगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
3: La Que Buena.
2: ESPN Radio.
4: We know LeBron has to be the best player on the planet to
2: The Daily.
5: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: आसमान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक इंतजामों की यह तस्वीर बता रही है कि नीट री एग्जाम को पेपर लीक से बचाना अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
1: छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दें, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये सभी सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर, जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं।
0: छात्रों की परेशानी से होने वाली असुविधा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहाँ पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा केंद्र पे, और ये मेटल डिटेक्टर्स जो हैं ये कुछ देर पहले ही इस बक्से के अंदर आए हैं, जिसपे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मटेरियल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, और इसपे साफ तौर पर लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये सील को थोड़ी देर पहले ही यहाँ परीक्षा केंद्र पे खोला गया है, और ये तमाम जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, घड़ियां हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे भिजवाई गई हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने घड़ियां भी भिजवाई है, क्योंकि इस बार 15 मिनट अतिरिक्त देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने जो आप तारों का जाल देख रहे हैं, दरअसल वो कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से इस पूरे परीक्षा केंद्र में हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
0: पुलिस की साइबर सेल भी इंटरनेट की हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय पुलिस की मदद ली जाएगी।
2: कोई चूक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पूरी तरह सिक्योरिटी रहे, हर सेंटर पर सीआरपी कमांडो मौजूद रहेंगे, साथ में फिस्किंग के लिए लोकल पुलिस बल भी होगा, और इसके अलावा हर सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आईशर ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा बच्चियों के लिए अलग से कैनोपी लगाकर अलग से फिस्किंग की जाएगी उनकी।
0: उधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहे, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाई बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा के अगले दिन यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। पूछताछ में टिन्नू यादव और चार पुजारियों का गोलमोल जवाब। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत पर इशारों में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पहले कहते थे शिवसेना शिंदे गुट, अब महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही शिवसेना। कल होने वाले नीट रीटेस्ट से पहले देश भर में तैयारियों का मॉक ड्रिल, 5,500 सेंटर्स पर सुरक्षा का जायजा। कई राज्यों में छात्रों को सेंटर तक फ्री में पहुंचाएगी सरकार। रांची में आरएसएस दफ्तर पर अटैक मामले में आरोपी अमन अंसारी और सैफ का रेलवे स्टेशन से आया नया वीडियो, पाकिस्तानी एजेंट से मिलने जा रहे थे लखनऊ लेकिन ट्रेन में ही पुलिस ने पकड़ लिया था। और दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान मारपीट के दौरान एक यात्री की गई जान, जनरल डिब्बे में घुसने को लेकर हुआ था विवाद, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा पर उठे सवाल।

0: एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी के गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी गठित की है और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अब ये जांच करेगी कि भाई आखिर चढ़ावे में चोरी हो रही थी और अगर हो रही थी तो फिर जिम्मेदार कौन था। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अयोध्या फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद जी इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। देखिये ये भी एक सच्चाई है कि आज ये मामला यहां तक पहुंचा है कि एसआईटी गठित करके इसकी जांच कराई जा रही है। आप चूंकि वहां के सांसद हैं, अगर वाकई लोगों के विश्वास आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अयोध्या के सांसद हैं, देश को इस वक्त क्या बताएंगे, आपकी जानकारी में क्या क्या बातें सामने आई हैं?
2: देखिए हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं
1: जी
2: कि मेरा जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और उन्हीं की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और माँ सरयू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हम 54 फैजाबाद जनपद अयोध्या के सांसद चुने गए। और सांसद चुने जाने के बाद हमने संकल्प लिया कि जो प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है उस मर्यादा को किसी कीमत पर हम खंडित नहीं होने देंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में इस देश के करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अपने इच्छा अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसी चढ़ावे का खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने किया है। जो देश के करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़े लोगों से संबंधित है
1: जी।
2: और इसमें हमने मांग किया कि मुद्दा राज्य स्तर का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र स्तर का मुद्दा है और राष्ट्र स्तर का मुद्दा जो है उसकी सही निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है
1: जी।
2: देश को बचाने का, देश की एक अनेकता में एकता का सूत्र उसको मजबूत करने में
1: जी।
2: देश को आपातदारी भाईचारा जोड़ने का इतिहास रहा और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से ही प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनने लगा, करीब करीब बनके तैयार हो गया है।
1: हाँ।
2: थोड़ा मोड़ा जो काम है इधर उधर का वो एक साल बने कंप्लीट हुआ।
1: ठीक है।
2: तो वहां पर ये चढ़ावा में घपला की शिकायतें आई।
1: हाँ।
2: जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता अखिलेश जी ने उजागर किया।
1: ठीक है अवधेश जी, अब ये बताइए कि आप वहां के सांसद हैं तो लोग आपसे भी शिकायत करने आते थे क्या? लोगों ने क्या बताया, मतलब आपको भी तो ज्यादा जानकारी होगी ना चूंकि आप वहां के सांसद हैं, लोग क्या बताते थे? क्या चढ़ावे की गिनती ठीक से की जा रही थी, नहीं की जा रही थी, क्या हो रहा था और किस पर शक है आप लोगों को?
2: देखिए ऐसा है, ये चढ़ावा चढ़ाने का और चढ़ावे में कितना पैसा आता है, कितने लोग चढ़ावे में, इसका हिसाब किताब रखने के लिए एक कमेटी बनी है और ये सारी जिम्मेदारी उस कमेटी की है। तो उस कमेटी पर कभी हमने ना उन्हें पूछने की जरूरत समझा, हम तो यही देखते थे अयोध्या में लोगों को परेशानियां क्या है, लोगों के जो है घर गिराए जा रहे हैं, किसानों का खेती के लिए मुआवजा का है, नाली नहीं बनी, ये जनता के हित की बात का ही ध्यान मेरा रहता था। यहाँ तक चढ़ावे का सवाल है तो एक ट्रस्ट बना हुआ है, तो ये सारा चीज लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की हुआ करती है। अब ये जब शिकायत हुई तो चारों तरफ के लोग कह रहे हैं।
1: अच्छा, बहुत लोग आपकी पार्टी से भी कई जगहों से।
2: हाँ, न्यायालय
1: जी जी पूरा करें, अपनी बात पूरी करें।
2: माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही, ये बड़ा मुद्दा है, देश स्तर का है, राष्ट्र का स्तर का है, राष्ट्र के करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा मुद्दा है, तो इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, जिसके आदेश से मंदिर निर्माण हुआ, हो भी रहा है, तो
1: अवधेश जी आप ये कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच हो रही है। सुनिए अवधेश जी, अभी एसआईटी जांच कर रही है, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो न्यायालय है उसकी देखरेख में ये जांच कराई जाए? क्या आपकी ये मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में जांच कराई जाए?
2: हाँ, यस, क्योंकि ये ऐसा है कि राज्य स्तर का मामला नहीं है, ये जो एसआई टीम में है हमारे लखनऊ के कमिश्नर साहब हैं, वित्त विभाग के कई एस अफसर हैं और इधर के पुलिस के आईजी हैं, तो ये राज्य स्तर के सरकार के द्वारा है और ये मामला राष्ट्र स्तर का है, क्योंकि राष्ट्र भर के तमाम राज्यों के लोग दर्शन करने आते हैं, जिनकी संख्या कभी कभी 5-5 लाख हो जाती है, कभी कभी तो 10 लाख हो जाती है, सामान्य दिनों में 1 लाख से कम दर्शनार्थी आते नहीं, तो एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा के लिए मैंने सोचा कि हमारे उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास है
1: जी,
2: तो उसके द्वारा जब जांच टीम गठित होगी तो उसमें किसी पर प्रभाव डालने का, हस्तक्षेप करने का और जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की पूरी सतर्क संभावना रहती है।
1: ठीक है, तो सबसे बड़ी मांग अयोध्या के सांसद के तौर पर आपकी यही है कि कोर्ट की निगरानी में ये जांच की जाए। एसआईटी को लेकर आपने बताया कौन कौन से अधिकारी उसमें हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आज योगी जी अयोध्या आए थे, आपको पता ही होगा, उन्होंने कहा है कि ये राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हमें ज्ञान न दें। उन्होंने तो समाजवादी पार्टी को ही घेरा है अयोध्या पर, आपका क्या जवाब होगा?
2: ऐसा है, योगी बाबा तो अक्सर आया करते हैं और जो उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने का, तो गोली चलाने का आदेश जिसने किया है वो तो आज आपके साथी हैं, वो तो साथी हैं, दुनिया जानती है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, कौन सा राज था, कौन सा मुख्य अधिकारी था, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ना ना ना नाम लेने की जरूरत है, ये जग जाहिर है।
1: पर वो कह रहे हैं कि सरकार आपकी थी।
2: अरे भाई, सरकार की बात तो हम एडमिट करते हैं ना, लेकिन सरकार की एक व्यवस्था होती है, सरकार का एक सिस्टम होता है, सरकार का एक सिस्टम होता है, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, सरकार एक सिस्टम से और संवैधानिक एक ढांचे के अनुसार सरकार चलती है, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करती है, तो वही मैं कह रहा हूं कि यह जग जाहिर है कि सरकार में उस समय कौन सा मुख्य अधिकारी था, ये जग जाहिर है, और वो इस समय कहां है, उनके ऊपर कौन जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है।
1: ठीक है अवधेश जी, आप उनका नाम लेने से तो बच रहे हैं, हालांकि वो भी खामियों की तरफ खुलकर बोले आज तक, पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कई खामियां गिनाई हैं कि चढ़ावे की जो काउंटिंग है उसमें गलतियां हो रही हैं। लेकिन दूसरा नाम जिस पर बहुत आरोप आप ही के पार्टी के कई नेता लगा रहे हैं, चंपत राय जी को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है?
2: देखिए, जब तक किसी प्रकार की जांच रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक जांच रिपोर्ट में खुलासा ना हो जाए, किसी का नाम लेना मैं उसका औचित्य नहीं मानता। हमारे सामने जांच रिपोर्ट आ जाए, चाहे एसआईटी जांच कर रही है उसी की रिपोर्ट आ जाए, हियर से के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। हम कानून पढ़े हैं, हम वकील भी रहे हैं, हम हियरसे पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, जांच बैठी है, उम्मीद है कि मांग तो यह तो किया था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जब जांच बैठी है तो जांच रिपोर्ट जब आएगी तो अपने आप इस बात का खुलासा हो जाएगा। हम क्यों अपना अपनी तरफ से किसी का नाम बिना जाने समझे कर दें।
1: अच्छा, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, अवधेश जी, सांसद जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी 15 दिन में हो जाएगा, इससे सियासी रोटियां ना सेके, ये आस्था का मुद्दा है, इस पर क्या जवाब होगा आपका? वो तो कह रहे हैं कि टाइम बाउंड जांच हो रही है 15 दिनों की।
2: ऐसा है माननीय योगी जी तो साधु संन्यासी हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी का गठन तो सरकार ने किया, एसआईटी का गठन सरकार ने किया। अब सरकार के लंबे हाथ होते हैं, सरकार के तमाम एजेंसीज होती हैं, उनके द्वारा उनको कुछ पता चला होगा कि जो चढ़ावा है और जिसके लिए आवाज उठ रही घपला, और तभी समझदारी होकर के सेटिस्फाइड होकर और रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, तो उसमें कहीं भ्रम फैलाने का सवाल नहीं है। ये भ्रम फैलाने का कोई सवाल नहीं है, एसआईटी का गठन सरकार द्वारा हुआ अपने आप में इस बात का सबूत हो रहा है कि निश्चित तौर से चढ़ावा में घपला हुआ रहा होगा। उस घपले की जांच करने के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है।
1: अच्छा अवधेश जी, अब चलते चलते मंदिर के इशू पर तो आपने कह दी अपनी बात, आप चाहते हैं कोर्ट की निगरानी में जांच हो, आप कह रहे हैं जल्दी से जल्दी हो, आपको लग रहा है कि योगी जी ने इसीलिए जांच ऑर्डर किया है क्योंकि उनको भी कुछ पता चला है कि वहां चढ़ावा में चोरी हो रही थी, लेकिन आप जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहते हैं किसी का भी नाम लेने से पहले, अच्छी बात है। चलते चलते एक दो सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी आपसे कर लेते हैं। आजकल ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपके कई सांसद टूटने को तैयार है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने किसी सवाल पर यह कहा कि 25-26 समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने को तैयार है, हम तोड़ नहीं रहे हैं, और आज एक मीटिंग में एक जो आपकी सांसद है उनके नहीं आने पर भी बवाल है, इस पर क्या जवाब दीजिएगा अवधेश?
2: ऐसा है, सूप का है, सूप का है, चलनी का है, ये करे 72 छेद। ओम प्रकाश राजभर की क्या विसात है भाई, जिनकी अपनी स्वयं धरती नहीं है, स्वयं जमीन नहीं है। माननीय अखिलेश जी के द्वारा वो जीत गए, और भी चुनाव हुआ, लोग सब अपने बेटे को जीता नहीं पाए। असल में परेशान ये लोग ये हैं कि 4-6 महीना चुनाव रह गया है, ये चुनाव दिसंबर में हो जाएगा, और ये लोग घबराए यूं हैं कि पीडीए से और माननीय अखिलेश जी के बढ़ती लोकप्रियता से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, पीडीए से घबराए हुए हैं, और ये घबराहट में इधर उधर की बयान कर रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जिनका नाम आपने लिया, हम नाम नहीं लेना चाहते इन लोगों का, अपना स्तर नहीं संभालते, इनका नाम हम ले, तो ये घबराए हैं,
1: नाम क्यों नहीं लेते,
2: जमीन तलाशने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह है, संघर्षों की पार्टी है, नेताजी आज दुनिया में नहीं है, नेताजी एक व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थी जो इस देश में समतामूलक समाज बनाना चाहते थे, संघर्ष के कोख से हम लोग पैदा हुए हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद इधर उधर नहीं जा सकता। जो इधर उधर की बात कर रहे हैं वो घबराहट में है, छटपटाहट में है, अखिलेश यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता पर लोगों पर विश्वास बढ़ रहा है, ये घबराए हुए हैं, बताओ हमारी धरती अब कहाँ जाएगी, हम कहाँ के बचेंगे, इसलिए बेबुनियादी बात कर रहे हैं।
1: ठीक है अवधेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, बतौर सांसद अयोध्या फैजाबाद, अब ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि
2: जी
1: सांसद जी अखिलेश जी को राम मंदिर में पूजा के लिए तो ला नहीं पा रहे, राम मंदिर का मुद्दा तो उठा रहे हैं लेकिन अखिलेश जी यहाँ पूजा के लिए नहीं आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
2: ऐसा है, अखिलेश जी पूजा के लिए परिवार सहित आएंगे, और उनका मंदिर बन रहा है, मंदिर तैयार हो जाएगा, और उसके बाद अखिलेश जी अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे, और हम लोग भी, हम तो महीने में एक दो बार तो जरूर जाते हैं, हमारा तो हम पैदाइशी यहीं से हैं, हमारा जाने का न जाने क्या कर, हम तो राम की कृपा से सांसद बने हैं, तो अखिलेश जी जाएंगे, अखिलेश जी की पूरी सही माने में सही माने में प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
1: अखिलेश जी, आपने कहा कि मंदिर बनेगा, मंदिर बन जाएगा तब वो आएंगे। जी जी, आपने कहा उनका मंदिर बन जाएगा तब वो आएंगे। कौन सा मंदिर? वही मंदिर ना,
2: मंदिर बन के तैयार हो गया है
1: जी।
2: अखिलेश जी द्वारा जो मंदिर बन रहा है, बड़ा भव्य मंदिर है, दुनिया का बहुत भव्य मंदिर है।
1: कहाँ पर?
2: उसमें हम उनकी तरफ से आपको अभी से इनवाइट करते हैं।
1: ठीक है, कहाँ पर?
2: इटावा में।
1: इटावा में, अच्छा,
2: बहुत बढ़िया मंदिर।
1: अच्छा,
2: ठीक, केदारेश्वर मंदिर तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा, भव्य अच्छा। मंदिर है, आप लोगों को भी इनवाइट हम पहले से कर रहे हैं।
1: ठीक है, अच्छा, इटावा वाले मंदिर में आएंगे,
2: उसका संभावित जो मुहूर्त जो है, मुहूर्त जब होगा मंदिर के, उसका प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, हम लोग ऐसे नहीं कि बिना मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा कर दें। माननीय अखिलेश जी, हम समाजवादी पार्टी के लोग मुहूर्त पर विश्वास करते हैं, साधु संन्यासियों पर विश्वास करते, पुराण पर, धर्मों पर विश्वास करके जो मुहूर्त आएगा, जो मंदिर माननीय अखिलेश जी बनवा रहे हैं, उस मंदिर का जब मुहूर्त आएगा, तो मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, परिवार सहित आएंगे।
1: ठीक, धन्यवाद आपका अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि इटावा वाले मंदिर में अखिलेश जी जाएंगे, और आप अयोध्या में हैं, तो आप कह रहे हैं महीने में आप जाते ही रहते हैं राम मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV, with TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.

0: बीच तनाव बढ़ने लगा। जानकारी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कोलकाता लौट रहे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी समर्थक भी वहां जुट गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद ने हाथापाई का रूप ले लिया। एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई और यात्री भी घबरा गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और दोनों गुटों को अलग किया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता हथियार लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। घटना के बाद कुछ समय तक एयरपोर्ट इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा गया, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की।
1: देखिए, ये तो हर जगह में देखने को मिल रहा है। मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कानून जो दोषी है उनको सजा देगी।
0: फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। वहीं टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक संघर्ष अब सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
5: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville.
8: Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had.
7: And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast,
8: in the TuneIn app,
7: or at TuneIn.com.
9: राहुल गांधी की राजनीतिक सांगठनिक चुनावी और गठबंधन वाली क्षमता पर सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दूसरे दलों के विधायकों का भी वोट ले लिया और 4 में से 3 सीट जीत ली, लेकिन कहते हैं कि भीतरघात की शिकार होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही रद्द हो गई और रही सही कसर झारखंड में पूरी हुई, जहां वोट रहते हुए भी गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। झारखंड में 2 सीटें थी, एक सीट पर जेएमएम के बैजनाथ राम जीते, दूसरे पर निर्दलीय परिमल नाथवानी जिन्हें एनडीए का समर्थन था। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया, प्रदेश प्रभारी के राजू को फील्डिंग सौंपी, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, अजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन जब नतीजा आया तो के राजू निराश थे, आरजेडी और लेफ्ट पर धोखे का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का दावा है कि उसके 16 और जेएमएम के एक्स्ट्रा 4 प्रथम वरीयता के वोट उन्हें मिले, बाकी सहयोगी दलों ने धोखा दे दिया, बिक गए।
10: कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला, जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है। अब पैसे से सब खरीद रहे हैं भैया, लोकसभा तो मंडी बन गया है, बोली लग रही है, यहाँ विधायक भी खरीद लिए। तो
11: चोर बोले जोर से, कल जो है चोरी किया है बिहार में कांग्रेस के लोग, जो है कल चोरी किया, कल गद्दारी किया, आज वही परिणाम जो है फिर जो है झारखंड में किया। सबसे बड़ा गद्दार तो निकला यहाँ का के राजू, कांग्रेस के लोग ऊपर से ही सांठ गांठ करके और जो है इसके साथ जो है गद्दारी किया।
9: इंडिया गठबंधन में ये तकरार सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं है। कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के लिए हर दो महीने पर मीटिंग कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रदेश कांग्रेस को ममता फूटी आंख नहीं सुहाती। यूपी में समाजवादी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के नेता जुबानी जंग लड़ते हैं। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया। झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी की तोहमत मढ़ी। महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि कांग्रेस से असंतोष था। पंजाब में आम आदमी पार्टी कब का हाथ झटक चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके ने अपना डेरा अलग कर लिया है। केरल में लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
12: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप।
9: लेफ्ट अलग मुंह लाल किए बैठा है।
12: कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी गठबंधन में। इसलिए हमने उनसे लिखा है कि भई ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है।
9: और कांग्रेस कहती है कि सी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ एनडीए की एकता को चूर चूर कर देंगे। दरअसल महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपस में दूसरे दलों में अविश्वास बहुत है। खासकर झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठजोड़ में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम ने आरजेडी पर धोखे का आरोप लगाया। बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के विधायकों के बिक जाने का आरोप लगाया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
13: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

मंदिर के चढ़ावे की चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पद का बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाएं का कोई रिकॉर्ड नहीं। पूछताछ में टिन्नू यादव और चार पुजारियों का गोलमोल जवाब। ओडिशा में बीजेपी सरकार के दो साल पर बोले पीएम मोदी, डबल इंजन सरकार में ओडिशा प्रगति का प्रवेश द्वार। थोड़ी देर में बंगाल दिवस पर हुगली में कार्यक्रम, कल कोलकाता में मनाएंगे योग दिवस। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत पर इशारों में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पहले कहते थे कि शिवसेना शिंदे गुट, अब महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही शिवसेना। कल होने वाले नीट रीटेस्ट से पहले देशभर में तैयारियों का मॉक ड्रिल। 5,500 सेंटर पर सुरक्षा का जायजा। कई राज्यों में छात्रों को सेंटर तक फ्री में पहुंचाएगी सरकार। और सीज फायर के कुछ घंटे के बाद दक्षिणी लेबनान में इसराइल का हमले से ईरानी डील पर गहरा है संकट। स्थानीय मीडिया का दावा, 5 लोगों की मौत, आसमान में धुएं का गुबार।

0: एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: आइए सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। नृपेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के। बहुत बहुत स्वागत है आपका नृपेंद्र जी आज तक पर।
2: धन्यवाद
1: नृपेंद्र जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि इसके पहले अनेकों आपके इंटरव्यू लिए, लेकिन या तो वो पावन मंदिर की भूमि पर इंटरव्यूज हुए या उसी के आसपास हुए, तो हमेशा बात होती थी बड़ी पॉजिटिव कि भाई मंदिर आज कैसे इतना बड़ा हो गया। आप भी हमेशा बताते थे कि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन आज थोड़ी संकट की घड़ी है, क्योंकि आज चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो आप निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, आपकी आंखों के सामने हर स्टेज गुजरा है, वहां से जब आज ये खबर आती है तो आपको कितनी पीड़ा होती है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्ट्रोवर्सी?
2: सभी श्रद्धालु वो एक तरीके से अचंभित हैं कि उनके दान का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ
1: जी।
2: ऐसे ही हमें भी पीड़ा है कि ये जो घटना है वह श्रद्धालुओं के विश्वास पर तो चुनौती है ही, लेकिन इसी के साथ पूरे प्रबंधन पर चुनौती है। आज ट्रस्ट के प्रबंधन के अलग अलग जो अंग हैं उन सभी पे एक प्रश्न सूचक संकेत है।
1: बिल्कुल।
2: और एक माने में आप कहते हैं ना कभी कभी वॉर्न्ड एट द राइट टाइम, तो ये राइट टाइम है, क्योंकि सभी एसेट्स जो बने हैं, जो आपने भी बताया, अब वो सभी लगभग ट्रांसफर हो गए हैं ट्रस्ट को, यानी रिकॉर्ड्स साइन हो करके LNTTC से अब ट्रस्ट के पास है। तो अब तो पूरा प्रबंधन ट्रस्ट के हाथों में है और वहां पर ये कमजोरी अब दिखाई देने लगी है।
1: और उस कमजोरी में सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, क्योंकि आप एक करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, क्या प्रबंधन में बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि अब ये तय है कि अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सारा प्रबंधन का काम दिया हुआ है, अब ऐसे में कौन उसको देख रहा है, नहीं देख रहा है, नाम तो सारे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई ना बने इसलिए प्रबंधन में क्या बदलाव की जरूरत है आपकी नजर में?
2: मैंने औपचारिक रूप से तो सुझाव नहीं दिया है।
1: हाँ।
2: लेकिन मीडिया चैनल्स में मैंने अपने विचारों को साझा किया है। मेरा निश्चित मत है कि पूरा प्रबंधन एक तरीके से फॉर्मल मैनर में स्ट्रक्चर करके और अनुभवी लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए। आज पूरा प्रबंधन अनौपचारिक तरीके से है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कोई आलोचना नहीं है, ये उसका स्वरूप है।
1: हाँ।
2: आज के प्रबंधन का
1: जी।
2: जो भी वहां पर अधिकांश आज कर्मचारी हैं वो स्वयं सेवक हैं। उनको अनौपचारिक ढंग से बता दिया गया है कि आप अमुक कार्य करें, ऐसे करें वगैरह, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई डिवीजन ऑफ वर्क, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, वह नहीं है। और लगभग लगभग 1500 लोग कार्य कर रहे हैं आज पूरे इस परिसर में। इट इज ए मिनी सिटी।
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसे में प्रबंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा, हायरार्की तय करनी होगी और जिम्मेदारी स्पष्ट करनी होगी और वो सभी फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकायदा वेतन हो, नियम हो, मैनुअल बने और उसके माध्यम से कार्य करें, ऐसा मेरा सुझाव है
1: जी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भी है और उसके बाकायदा सीईओ भी होते हैं, क्या आप चाहते हैं कि इसी उन्हीं लाइंस पर यहां पर भी एक प्रोफेशनल तरीके से एक व्यवस्था तय की जाए जिसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी, सबका रोल तय होगा, सबका पैसा तय होगा, सैलरी?
2: तिरुपति देवस्थानम जो है
1: जी,
2: वहां पर यद्यपि वो कानून से टेकओवर सा हो गया है सरकार का, लेकिन वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिफाइंड है और फॉर्मल है। नियमित रूप से लोग नियुक्त होते हैं एक निश्चित अवधि में और कार्य करते हैं। तो मैं कभी यह सुझाव नहीं दूंगा कि ट्रस्ट की ऑटोनॉमी को समाप्त करके सरकारीकरण हो जाए, लेकिन अयोध्या के ट्रस्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है उसको अवश्य एक तरीके से एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से एक मिलनी चाहिए उन्हें कि वह किस प्रकार से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्मल ढंग से वह करें, और यदि उन्हें किसी अनुभवी अधिकारी की उच्च स्तर पर आवश्यकता है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
1: त्रिवेंद्र जी, आपकी नजर में भी आया होगा कि कैसे चढ़ावे की वहां पर काउंटिंग होती है। ये जानकारी आई कि 40 पेटियां वहां पर हैं जहां पर लोग चढ़ावा देते हैं और बहुत सारे हीरे जवाहरात या लोग सोना वगैरह भी दान कर रहे हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ठीक से नहीं तय की जा रही है कि वो कहां है या उसका लेखा जोखा कहां है। जो 40 पेटियां हैं उसमें पैसों की गिनती, बताया तो ये गया कि 3 लेयर्स की सिक्योरिटी वहां पर होती है और कुछ प्राइवेट फर्म के लोग, ये SBI को दिया गया है, SBI ने एक प्राइवेट फर्म को दिया है, वो प्राइवेट फर्म इंश्योर करती है कि सबके सामने काउंटिंग हो। आपको इस बारे में क्या जानकारी है और इस व्यवस्था में, चढ़ावे की व्यवस्था में क्या बदलना होगा ताकि इस तरह से श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना हो, चढ़ावा की चोरी की नौबत ना आए?
2: जो आपकी चिंता है और जो स्वाभाविक है वही मेरी चिंता है। मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है।
1: हाँ।
2: यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
1: जी,
2: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है। और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का

0: ही लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई। ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं, वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
1: निपेन जी, मेरा अगला सवाल, चूंकि ये कंस्ट्रक्शन और प्रबंधन दोनों से रिलेटेड है, सीसीटीवी को लेकर आप किस तरह की जानकारी देंगे, क्योंकि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के दौरान भी आप वहां पर रहे होंगे। क्या चढ़ावे के कमरे में सीसीटीवी ऐसे थे जिनसे निगरानी रखी जाती थी? जिस कॉरिडोर से लोग आते जाते हैं वहां पर कितने सीसीटीवी लगे थे? और ऐसी भी जानकारी आई सर कि कुछ ऐसे कैमराज लगाए गए थे जिसके बारे में मंदिर के अधिकांश लोगों को भी जानकारी नहीं दी गई थी। क्या ये इस बात में सच्चाई है? नृपेन जी,
0: अगर मैं समझाऊं कि जो डोनेशन रूम था
1: जी,
0: यहां पर जो सीसीटीवी लगा, इसका कंट्रोल दो जगहों पे था।
1: ठीक है।
0: एक जो ट्रस्ट के पास था, दूसरा जो पुलिस के पास था। पुलिस के कंट्रोल रूम में बहुत बड़ी संख्या में स्क्रीन पर शॉट्स आते हैं और बहुत तेजी से वो वहां पर जो स्टाफ है उसके सामने गुजरते हैं। ये जो स्पेसिफिक था ये ट्रस्ट को देखना था। मेरा अनुमान है कि काउंटिंग रूम के रिकॉर्ड्स सीसीटीवी में 45 दिन के अतिरिक्त कदाचित नहीं हो, यह एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा करेंगे। जो यही 44 लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों के चित्र मिले हैं, पिक्चर मिली है, लेकिन देखना तो 44 लोगों को है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 44 लोग में से 6 चोर होंगे और बाकी साधु होंगे। सबको वहां जानकारी होगी, तो ये जानकारी दी क्यों नहीं गई? जो लोग नहीं चोरी कर रहे थे वो क्यों नहीं जानकारी दे रहे थे? तो ये एक एसआईटी के लिए बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है। और 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी निष्कर्ष निकालना, मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ।
1: ये जो पुलिस का की व्यवस्था यहाँ पर मंदिर में है, अगर आप हमें बता सके कि किस स्तर के अधिकारी तक है वहां पर? क्या अलग से पुलिस चौकी में एक डीसीपी अयोध्या मंदिर, मतलब किस स्तर के अधिकारी को वहां पर दिया गया है? और देखरेख के लिए चढ़ावे के दौरान किस स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी होती है?
0: एसएसपी डीआईजी बाहर है, लेकिन प्रीमिसेस में पुलिस की तरफ से एसपी सिक्योरिटी है।
1: ठीक है।
0: और उनके अंडर में पुलिस की व्यवस्था है, लेकिन बाकी पुलिस के विंग जो हैं वहां पर, जैसे सीआईएसएफ है, टेंपल की स्पेशल टास्क फोर्स है, बीएसएफ है, इन पर भी उनका एक तरीके से सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन उनके स्तर की बात है। पुलिस को पूरा यहां पर चार्ज नहीं दिया गया कि वो पुलिस जो लोग अंदर जाएंगे उनकी फ्रिस्किंग करेंगे, जो बाहर निकलेंगे उनकी फ्रिस्किंग करेंगे, जो बक्से में रुपया गिन करके बैंक जाएगा उसके साथ पुलिस जाएगी। ये सारे कार्य कदाचित पुलिस को औपचारिक रूप से नहीं दिए गए हैं।
1: तीन बड़ी बातें जो आप कहते हैं कि भाई ये तुरंत कीजिए ताकि आस्था से श्रद्धा से खिलवाड़ ना हो।
0: सबसे पहले तो प्रशासनिक व्यवस्था नए सिरे से देखकर उसको पुनर्स्थापित या स्थापित किया जाए। पुनर्स्थापित नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं।

0: दूसरा ये जो ट्रस्ट का जो संरचना है
1: जी,
0: मेंबरशिप की, इसे भी एक नए सिरे से देखना चाहिए। और तीसरा
1: जी,
0: मैं समझता हूं जो इट कैन नॉट वेट इवन फॉर अ डे, पूरे जो वर्क मैनुअल जितनी चीजें हैं उनका एक तरीके से वर्क ऑडिट करना होगा।
1: निपेन मिश्र जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया और काफी लोग हो सकता है नाराज भी हो, खुश भी हो आपकी बात से, लेकिन एक उम्मीद जरूर बनती है कि आपके सुझाव के जरिए पूरे सिस्टम से लूपहोल को हटाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निपेन जी।
0: धन्यवाद आपको।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: 50 स्टेट्स, 1 नेशनल मॉल, 2 वीक्स ऑफ फ्रीडम। The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair. Be there.
5: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: जमीन हिलती है, लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे। क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मैक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
7: In association with
8: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक। Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
7: Hint, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
9: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
11: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
12: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
13: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
12: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
5: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल कर चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और एनसीपी।
6: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
7: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दान है।
8: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
9: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है। लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे, आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया? इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
10: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
9: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला है, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो। राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पद का बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाएं का कोई रिकॉर्ड नहीं। पूछताछ में टिन्नू यादव और चार पुजारियों का गोलमोल जवाब। ओडिशा में बीजेपी सरकार के दो साल पर बोले पीएम मोदी, डबल इंजन सरकार में ओडिशा प्रगति का प्रवेश द्वार। थोड़ी देर में बंगाल दिवस पर हुगली में कार्यक्रम, कल कोलकाता में मनाएंगे योग दिवस। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत पर इशारों में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पहले कहते थे कि शिवसेना शिंदे गुट, अब महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही शिवसेना। कल होने वाले नीट रीटेस्ट से पहले देश भर में तैयारियों का मॉक ड्रिल, 5,500 सेंटर पर सुरक्षा का जायजा। कई राज्यों में छात्रों को सेंटर तक फ्री में पहुंचाएगी सरकार। और सीज फायर के कुछ घंटे के बाद दक्षिणी लेबनान में इसराइल का हमले से ईरानी डील पर गहरा है संकट। स्थानीय मीडिया का दावा, 5 लोगों की मौत, आसमान में धुएं का गुबार।

0: सोसाइटी जांच, दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। राम मंदिर में अगर करोड़ों लोगों की आस्था की बात हम करते हैं तो वहां से उठा एक भी विवाद दरअसल केवल एक विवाद नहीं रहता है बल्कि उस आस्था पर एक आघात रहता है। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो इस समय विवाद चल रहा है, इस मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार जी जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला उठा है और जिस तरीके से इन अनियमितताओं की बात हुई है, जिस तरीके से राजनीति में इसे चंदा चोरी तक का नाम दिया जा रहा है, आपका मन क्या कह रहा है?
2: मैं आपसे सहमत हूं। राम जन्मभूमि के मंदिर के चढ़ावे के बारे में इस तरह के आरोप होना, ये विश्व भर के हिंदुओं की आस्था को आहत करता है और इसलिए यह विवाद सामने आते ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा, SIT बनाइए, वरिष्ठ लोगों की बनाइए, गहरी जांच करके दोषी का पता लगाकर उसको पूरा दंड मिलना चाहिए। SIT बनी, अयोध्या पहुंची तो स्वयं चंपत जी ने कहा कि मैं आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत होता हूं, अपनी सारी पूछताछ मेरे से शुरू करिए। हमको आश्वस्त किया गया है कि तीर्थ क्षेत्र इस मामले में जांच में पूरा सहयोग देगा और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे और वो जो कोई भी होंगे उनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट राम जी के एक एक पैसे के लिए जिम्मेवार है।
1: आलोक जी, अभी तक की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो क्या उस लेखा जोखा की व्यवस्था रही है, किस तरीके से अभी तक कंट्रोल होता आया है? क्योंकि यह भी तो सुनिश्चित करने के प्रयास रहे होंगे ना कि कहीं ऐसा हो ना। और उसी क्रम में यह था कि जो भी उस काउंटिंग के लिए जाता था उनके कपड़ों में जेब नहीं होने चाहिए थे, बाहर निकलने पर भी प्रावधान थे कई तरह के।
2: उस आंतरिक व्यवस्था के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। वो पूरा काम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ही करना था, पर मेरी ये जानकारी है कि SIT को भी ये जिम्मेवारी दी गई है कि इस पूरे सिस्टम को फूल प्रूफ बनाना, इसके लिए वो रिकमेंडेशंस करे। ट्रस्ट भी इसके बारे में परामर्श कर रहा है और जो कोई भी रिकमेंडेशंस आएंगे इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, निश्चित करना, हमको लगता है कि ट्रस्ट इसको करेगा। और आपने जो पिछला कहा तो दोनों बातों की जांच होनी चाहिए, किसका दोष इस बात का है कि उसने वहां से पैसा स्विंडल किया और किनका दोष असावधानी का है, इन दोनों बातों का पता लगाया जाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए।
1: अब से कुछ वर्षों पहले भी इस तरह की ये विवाद एक तरीके से सामने आया था और उस समय भी हम अगर ये कहें कि पर्याप्त जांच नहीं की गई तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब वो नाम सामने आए तो ये सीधे तौर पर कह दिया गया कि नहीं, बहुत ईमानदारी है, बनिस्पत इसके कि जांच की जाए और शायद जो दोषी है उस समय ही पकड़े जाते। क्योंकि अभी तो अगर राजनीतिक रूप में भी आरोप लगाए जाए आलोक जी कि 8 महीने पहले का CCTV फुटेज गायब है तो अब वो कोई तरीका ही नहीं बच जाएगा उसको सामने आने का कि आखिर हुआ क्या। क्या आपको लगता है समय रहते छोटे से छोटे आरोपों की जांच जरूरी होती है?
2: मैं समझता हूं कि अगर पहले आरोप लगे थे और जांच नहीं हुई इसका भी SIT पता लगाएगी। हम किसी को भी डिफेंड करने की कोशिश नहीं करते, ट्रस्ट भी किसी को बचाने की चेष्टा नहीं करेगा। ये सब आरोप अभी का, पहले का, इन सब की जांच करें। पर मैं ये जरूर कहूंगा दो बातें, जब तक जांच नहीं होती तब तक दाएं बाएं कीचड़ उछालना ये उचित नहीं होगा। मैं ये भी कहूंगा कि इस जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। हम जानते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में कई ट्रस्ट बने थे। एक ट्रस्ट ने तो सोने का मंदिर बनाएंगे ऐसा कहकर सोने का दान मांगा था। उन सब लोगों के भी खातों की जांच होकर के एक बार में ये सारा विषय इसका पटाक्षेप करना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि इस जांच को 2027 के चुनाव अभियान के जैसा चलाना ये ठीक नहीं होगा।
1: आपको लग रहा है इसमें राजनीति भी शामिल हो रही है बहुत ज्यादा?
2: जी, और मैंने ये बयान पढ़ा है कि इस अपराध की जांच के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई जाए। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे? क्या वो निष्पक्ष होंगे? क्या उनको इसका अधिकार है? इस तरह की हास्यास्पद मांगे, और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने कभी रुचि नहीं ली, मैं स्वयं भी बहुत लोगों के पास गया था प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए। जिन लोगों के पास गया था उन्होंने क्या क्या कहकर मुझे मना किया था और अखबार में भी वक्तव्य दिया था। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में राम के अस्तित्व पर प्रश्न किया था, वो आज किस पाले में आकर कैसे खड़े हो रहे? और इसलिए मैं मानता हूं कि इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष कि क्या राम जी के पैसे के बारे में कुछ गलत हुआ है, इसकी जांच के बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षा है कि जांच हो। पर 2027 में चुनाव है, इसलिए इस मामले को उठाओ, इसलिए किसी संत के गौरक्षा के लिए दौरा कराओ, ये धर्म का भी दुरुपयोग है, भावनाओं का भी दुरुपयोग है, और हिंदू जनता राजनीतिकरण को स्वीकार नहीं करेगी।
1: मतलब योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले इस पर सवाल न उठाएं, आप उनसे सहमत हैं?
2: मैं कहूंगा कि मैं उनकी ईमानदारी पर शक करता हूं। मैं तो उस देश का हूं जिसमें एक धोबी भी आरोप लगाए तो सुना जाना चाहिए, इसलिए आरोप लगाए तो जांच होनी चाहिए। पर वो आरोप अगर विकृत मन से लगाए, सरकार को बदलने के लिए लगाए, चुनाव जीतने के लिए लगाए, तो जनता और वोटर इस बात को समझते हैं और ये बूमरैंग करेगा।
1: आलोक जी, एक व्यक्ति, एक विसल ब्लोअर एक तरीके से इस पूरे मामले में, जिन्होंने ये कहा कि जब आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें एक तरीके से राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही करार दिया जाता है, और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि उन्होंने जब जो कंप्लेन है वो की, शिकायत की, उसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, जबकि उनके पास्ट रिकॉर्ड को देखकर ही आरएसएस की तरफ से उनको नामित किया गया था आगे ट्रस्ट में। ये अगर एक व्यक्ति एक सुझाव या एक शिकायत देता है तो, जैसा कि आपने कहा कि जहां पर धोबी भी अगर कहे तो राजा को उसकी बात सुननी होगी, ये कहीं पर चूक हुई है? ऐसी गलतियां न हो आगे?
2: इसका पता लगाया जाएगा। पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफेशनली हर मौके और हर बेमौके पे आरोप लगाना, गाली गलौज भरे आरोप लगाना गंभीरता नहीं है, ऐसे आरोप लगा
1: भी बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है इसमें। उनके जो ड्राइवर रहे उन सब की जांच हो रही है। चंपत राय जी को आप जांच के बाद क्लीन चिट देना चाहेंगे या जांच से पहले?
2: आप मेरे से कठिन सवाल पूछ रही हैं। एक वकील होने के नाते मैं कहूंगा जांच के बाद क्या होगा इसका मुझे अंदाजा है चंपत जी के बारे में, पर मुझे प्रसन्नता है कि चंपत जी ने स्वयं अपने को उस जांच के लिए प्रस्तुत किया है। हम सब लोग एसआईटी के सामने जो जो कुछ भी पूछा जाए उसके लिए तत्पर है और परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। अभी किसी भी तरह की चिट बांटना ये मेरे डोमेन में नहीं है। ना कीचड़ उछालना अच्छा है, ना प्रमाण पत्र देना अच्छा है।
1: हालांकि पूरे जब ये पूरा आंदोलन चलता रहा उस समय भी रामलला का पटवारी उन्हें कहा गया, इसीलिए उनका उनका जो रुख रहेगा और उनको लेकर जो जांच का रुख रहेगा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उसका योगदान रहेगा कि लोगों का विश्वास इस पूरे व्यवस्था में बनता है कि नहीं। क्योंकि आलोक जी, आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि सब अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देते हैं, इसमें 1 रुपया 10 रुपया 11 रुपया दान देने वाले लोगों का भी धन है जो वो शामिल है, आपको लगता है श्रद्धालुओं का विश्वास किस तरीके से इसमें बहाल हो पाएगा वापस? राम मंदिर के परिसर में सब जाते तो रामलला के सामने हैं, लेकिन वो जो 40 दान पेटियां हैं उनकी तरफ लोग देखें तो उनका विश्वास न डिगे।
2: मैं आपसे सहमत हूं कि ऐसा होना चाहिए। मैं सहमत हूं कि लोगों के विश्वास को आघात लगा। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जिसने 1 रुपया भी चढ़ाया है उसका भी स्टेक है, इसलिए एवरीबॉडी शुड कम क्लीन। प्रत्येक व्यक्ति को सामना करना चाहिए जांच का, और हमको उस जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए।
2: जी नमस्कार।
1: देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: चले बड़ी खबर आपको देते हैं। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में एसआईटी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये बहुत बड़ा खुलासा है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में यह खुलासा हुआ है। अब तक की एसआईटी जांच में ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए 60 किलो चांदी भेंट की थी, 60 किलो, जिसकी कोई भी पुख्ता जानकारी ही नहीं मिली है। एसआईटी ने इस मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की है। पुजारी मोहित पांडे ने हार को टिन्नू यादव को सौंप देने की बात कही थी। टिन्नू यादव दावा कर रहे हैं कि हार को तो हमने ईंट के रूप में गलाने के लिए बैंगलुरु भेज दिया था। हमारे संवाददाता आशीष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, ये जो नया खुलासा हुआ है जिसमें एक दूसरे के सर पर टोपी पहनाई जा रही है, ये 60 किलो की चांदी कहां गई?
4: अरे फोन कट गया
3: लगता है, आशीष से संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है और एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के बीच में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और ये भी जानकारी मिली कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान एक परिवार ने रामलला को बहुमूल्य हार, और जो बताया जा रहा है कि जौनपुर का विश्वकर्मा परिवार है, उन्होंने बहुमूल्य हार दिया, चरण और चरण भी दिए थे। अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला है। एसआईटी को हार चरण पादुका का पता लगाने की वो प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष एक बार फिर जुड़ गए। आशीष, कहां गया ये चांदी जो दिया गया था? एग्जैक्ट आखिरी बार किसके पास था ये चांदी, इतना तो पता चल गया होगा?
4: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन श्रद्धालुओं ने इसको दिया, जिन ज्वेलर एसोसिएशन ने दिया, उनका ये दावा है कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जब निर्माण होगा तो उस नींव में चांदी की शिलाएं जाएंगी, लेकिन वहां पर उनको देखने को नहीं मिली, तो पता चला शायद बाद में इसको कहीं रखा जाएगा। तो वो भी बाद में भी जब पता किया तब भी नहीं पता चली, और आज जब इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं जिसमें चढ़ावा चोरी की बात कही जा रही है, तब चिंता सताई कि आखिर हमारा वो 60 किलो का जो चिलाएं थी वो कहाँ चली गई। यही नहीं राजीव, मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो दीपक जलाते हैं तो तकरीबन 2 किलो का चांदी का था जो श्री राम लला के चरणों के पास है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दी है, वो भी अब वहां पर मौजूद नहीं है। ऐसा दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहां गया, क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया? तो अब वो एसआईटी उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये दान था, इन सबका रिकॉर्ड्स कहां है, कहां गया?
3: बहुत बहुत बड़े सवाल है आशीष। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मारपीट हुई और उसमें एक यात्री की मौत हो गई है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी पंकज धामा के रूप में हुए। आरोप है कि योगा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप धारण किया, फिर कुछ लोगों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी पंकज की। गंभीर हालत में पंकज को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने पंकज धामा को मृत घोषित कर दिया।
5: जनरल बोगी में सीट को लेकर एक विवाद एक आदमी की मौत का कारण बन गया। दरअसल ये पूरी घटना दिल्ली के शहादरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हुई, जहां पर एक आदमी जो जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसका विवाद कुछ लोगों से हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी जान चली गई। बताया ये जा रहा है कि करीब 5 से 6 लोगों ने उसे लात घूसों से इतना मारा कि वो यहीं पर बेहोश हो गया। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ और यही वो जगह है जहां पे ये पूरा हादसा है ये सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि जो ये पूरा विवाद शुरू हुआ था ये जनरल बोगी में एक सीट को लेकर हुआ था, और जब ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की गई तो ट्रेन में चढ़ने को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें 5-6 लोगों ने मिलकर के इस आदमी को बेरहमी से मारा, लात घूसों से मारा और इतना मारा कि उसकी जान चली गई। हालांकि मौके पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक सिपाही भी देखा गया, लेकिन जैसी ही घटना हुई वो सिपाही इसमें बीच बचाव करने की पहले कोशिश करता है, लेकिन लाश जो है जो बॉडी है वो यहीं पर कई देर तक पड़ी रहती है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और जब एक बार पुलिस यहां पहुंचती है तब उसके शरीर को यहां से उठा करके जीटीबी अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां अस्पताल में बोला जाता है कि उसकी मौत हो गई। हालांकि एक बड़ा सवाल ये है कि अगर आरपीएफ एक्शन में होती और यहां ज्यादा सिक्योरिटी होती और अगर आरपीएफ के जवान ने उसे बचाने की कोशिश की होती और यहां से शरीर को छोड़ने के अलावा सीधा अस्पताल ले गया होता तो क्या उसकी जान बच सकती थी। लेकिन जिस तरीके से यह मामला सामने आया है काफी बड़े सवाल उठते हैं दिल्ली में लोगों की सिक्योरिटी को लेकर के। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है।
3: और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
7: Bharat ki apni electric savari, Sokudo.
8: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
9: Oh, ouch.
8: However you make money work, we can work with that.
10: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

खुलासा नंबर एक, दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती का जिम्मा संभालने वाले दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी गिनती करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। खुलासा नंबर दो, राम मंदिर के आरएमओ यानी रेडियो मॉनिटर ऑफिसर की भूमिका कटघरे में है। आरएमओ के कंधों पर ही सीसीटीवी से निगरानी का काम था। आरोप है चोरी के वक्त सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता था। बड़ी बात यह है कि 17 सालों से आरएमओ सीसीटीवी निगरानी का काम देख रहे थे और सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करते थे। खुलासा नंबर तीन, गेट पास बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले सोमेश आनंद एसआईटी के रडार पर हैं, क्योंकि बिना गेट पास के चढ़ावे की रकम या फिर चढ़ावे के जेवरात राम मंदिर से बाहर नहीं जा सकते थे। आरोप यही है कि सोमेश आनंद ने बिना चेकिंग के चढ़ावे की गाड़ी को मंदिर परिसर से बाहर जाने दिया। सवाल यही है, ऐसा क्यों किया गया। खुलासा नंबर चार, राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी को चढ़ावे की चोरी के पूरे खेल के बारे में पता था, बावजूद इसके थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की जांच में थाना प्रभारी की भूमिका भी शक के घेरे में है। तफ्तीश के बाद ही चढ़ावा चोरी कांड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, लेकिन आरोपों में घिरे जिम्मेदार खुद को बेदाग बता रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कांड का खुलासा होने के बाद मंदिर में दान करने वाले राम भक्तों ने जिम्मेदारों पर सीधे सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा भी घट गया है। जांच के बीच अब मंदिर आने वाले राम भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आई है। पिछले कई महीनों से हर महीने औसतन 7 करोड़ रुपए के आसपास दान राशि मिल रही थी। पिछले एक पखवाड़े में ये आंकड़ा घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं कर्नाटक की एक श्रद्धालु का आरोप है कि राम मंदिर में कीमती हार दान किया था, लेकिन आज तक उसकी रसीद नहीं मिल पाई है। पता नहीं राम मंदिर में चढ़ाए हार का क्या हुआ। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार यही दावा कर रहा है कि दान में मिली राशि और उसकी गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के चलते राम भक्तों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उस चढ़ावे को लेकर जो वो राम मंदिर में आस्था के नाम पर दान करते थे। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। पूछताछ में टिन्नू यादव और चार पुजारियों का गोलमोल जवाब। ओडिशा में बीजेपी सरकार के दो साल पर बोले पीएम मोदी, डबल इंजन सरकार में ओडिशा प्रगति का प्रवेश द्वार। थोड़ी देर में बंगाल दिवस पर हुगली में कार्यक्रम, कल कोलकाता में मनाएंगे योग दिवस। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत पर इशारों में बोले गृहमंत्री अमित शाह, पहले कहते थे कि शिवसेना शिंदे गोट, अब महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही शिवसेना।

0: डील डायलॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज लगातार ये आप देख रहे हैं कॉन्क्लेव, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जो डील जो डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में हुई है, अमेरिका और ईरान के बीच में, उस पर दुनिया कितना भरोसा कर सकती है, उसमें भारत कितना विश्वास रख सकता है, भारत की क्या नीति होनी चाहिए, इंडिया फैक्टर जब इस पूरे मंच में हम देखते हैं, जो पूरी युद्ध की शुरुआत हुई और वहां से लेकर अब तक जो युद्ध का एक पूरा परिदृश्य, सबसे पहले तो इसी पर चर्चा हो रही कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मसूद पेजेशकियान जो कि राष्ट्रपति है ईरान के, उन्होंने इसको पोस्ट किया है, तो इसका एक पूरा प्रिंटआउट हमने निकाला है जिससे ये समझ में आता है कुल 14 जो पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं, जिन 14 शर्तों की बात हो रही थी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, उसमें फाइनल डील विल बी एंडोर्स्ड बाय अ बाइंडिंग यूएनएससी रेजोल्यूशन। अब दोनों ने दस्तखत तो कर दिए हैं, लेकिन ये जो $300 बिलियन पैसा देना है अमेरिका को, ईरान को, वो कैसे देगा, इसी में एक पॉइंट है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अमेरिका अपने छठे पॉइंट में, अमेरिका अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ, रीजनल पार्टनर्स कौन है उसके, मिडिल ईस्ट में जितने ये देश हैं वो सब जिन पर ईरान ने हमला किया, तो इन देशों ने हमला भी झेला, अब पैसा भी इनको आगे करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 समिट के दौरान शांति समझौते के MOU पर साइन किए। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पीस डील के MOU पर दस्तखत किए, लेकिन जिस वक्त MOU पर साइन हुए उस वक्त ईरानी राष्ट्रपति अकेले थे, उनका चेहरा बहुत गंभीर था। डील पर दस्तखत हो गए, लेकिन अब शांति समझौते के MOU पर ईरान क्यों और कैसे राजी हुआ, इसका खुलासा ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई ने किया। पीस डील पर पहली बार मुज्तबा खामिनई ने बयान दिया है। ईरान अमेरिका शांति समझौते को लेकर मुज्तबा खामिनई ने 5 बड़ी बातें कही। नंबर 1, ईरान बात करेगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। नंबर 2, शांति समझौते के मसौदे से सहमत नहीं था। नंबर 3, ईरानी राष्ट्रपति के कहने पर मंजूरी दी। नंबर 4, ट्रंप शांति समझौते के लिए बहुत बेचैन थे। नंबर 5, अंतिम समझौता भी ईरान की शर्तों पर होगा। दरअसल शांति समझौते को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई के इस बयान के 3 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, अमेरिका के साथ पीस डील को लेकर ईरान में विरोध की आवाज को शांत करना। दूसरा, अमेरिका के साथ आगे की बातचीत के लिए जमीन तैयार करना। तीसरा, अगर अमेरिका के साथ हुआ शांति समझौता रद्द होता है तो ठीकरा ईरान के राष्ट्रपति के सिर फोड़ना, क्योंकि ईरानी सेना और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति और नियत पर भरोसा नहीं है। मुज्तबा का बयान उस वक्त आया है जब शांति समझौते के बाद भी ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। मतलब यही है कि ट्रंप दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि डील अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की मजबूरी थी।
2: If they don't, then that's, you know, that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We have the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective.
0: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद भी हैं, राष्ट्र प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय उपाध्याय जी प्रोफेसर साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मोहम्मद फैज खान कन्वीनर MRM के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मौलाना अंसार रजा साहब चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। और 2 मेहमान हमने एक ईरान से एक अमेरिका से जोड़ा है। अब देखिए वैसे तो दोनों भारतीय हैं लेकिन उस मुल्क में रह रहे हैं, लंबे वक्त से रह रहे हैं। तो आज हमारे साथ MH सूरतवाला जुड़ रहे हैं जो कि ईरान और वेस्ट एशिया अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, और प्रमित मकोड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम USA के। तो सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। भारत का जो इंडिया फैक्टर है, जो पोलिटिकली इसको अगर हम देखें तो हम कहां पर खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात भी, बायलैटरल मीट हमने देखा जो G7 के साइडलाइंस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, वहीं पर फिर वो हस्ताक्षर भी कर देते हैं MOU पर। हमारा रिश्ता आज अमेरिका से कहां पर खड़ा है, ईरान से कहां पर खड़ा है?
3: देखिए भारत ने इस पूरी जो घटनाक्रम हुआ उसमें अपनी एक बहुत विशिष्ट स्थिति सुदृढ़ता के साथ बनाकर रखी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब खमेनी साहब की डेथ हुई तो उसके बाद हमारे विदेश सचिव गए और उन्होंने हस्ताक्षर किए शोक प्रस्ताव पे। बहुत से लोग कहेंगे कि साहब सरकार ने क्यों नहीं किया, उसका एक टेक्निकल रीजन था, क्योंकि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हेड ऑफ द स्टेट होता, वो सुप्रीम लीडर थे, ये उनका अंदरूनी अरेंजमेंट था। जैसे भारत में किसी समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह हेड ऑफ द स्टेट थे और सोनिया गांधी जी सुप्रीम लीडर थी, मगर हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा उन्हीं को था।
0: ये आपने नया कॉइन कर दिया बीच में।
3: नहीं, ये मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। फरवरी 2025 में जब इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति ईरान के, वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे, भारत सरकार ने बाकायदा शोक व्यक्त किया था और एक या दो दिन का शोक मनाया भी था। तो पहली बात तो ये क्लियर है। अब हाँ, वर्तमान समय में देखें तो भारत का सबसे बड़ा इंटरेस्ट था दो चीजों में। एक, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो निरंतर समस्या सामने आती जा रही थी, उसमें हमें राहत मिलने की संभावना दिख रही है तात्कालिक। दूसरा, हमारे 1 करोड़ लोग जो कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में रहते हैं, जिनके लिए एक रोजगार और मतलब जान दोनों का संकट था, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और वैसे नॉट टू बी टेकन अदरवाइज, 75% मुस्लिम है। खैर, अब दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो मैं ये मानता हूं कि अगर हम इसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस करें तो पहली बात तो ये लगभग 60 दिन के बाद ऐसा मानना है कि इसके पूरी बारीकियां सामने आएंगी डील की। फिर भी यदि यह मान लिया जाए तो जितनी आसानी से इस चीज को समझा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यह उतना आसान है। जैसे ईरान के ऊपर अमेरिका ने क्यों अटैक किया था, क्या आपको लगता है कि मतलब कोई उनके दिमाग में एकदम से आया गुस्सा और उन्होंने अटैक कर दिया फिर अचानक वापस कर लिया? नहीं जी, बहुत सोची समझी बात थी। चाइना की ऑयल सप्लाई दो ही कंट्रीज से आती थी, वेनेजुएला और ईरान। जब चाइना ने क्रिटिकल मिनरल को लेकर अमेरिका की बाह मरोड़ी तो अमेरिका को यह मौका मिला कि वो किस ढंग से उनकी पेट्रोलियम सप्लाई लाइन के ऊपर करें। वेनेजुएला पर टोटल उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब जो ये डील दिख रही है, अब तो बड़ा तर्कसंगत ढंग से, कोई आर्थिक विशेषज्ञ होगा तो बेहतर ढंग से समझ सकता है। अब अगर ईरान $300 बिलियन लेगा अमेरिका से, तो पहली बात तो समझिए, कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका चेक काट देगा और फिर जैसे मनाएगा वैसे ईरान खर्च करेगा। वो निश्चित रूप से इन्वेस्ट करेगा, उसमें खर्च कराएगा, और जब वो कह रहा है साथ वाले लोगों को साथ में लेके, यानी ये एक प्रकार की व्यवस्था भी हो सकती है कि जो मिडिल ईस्ट के यूएस एलाइज हैं, बहरीन, कतर, अबू धाबी, जेद्दा, ओमान, यूएई, उन्हीं की पेरिफेरी में धीरे धीरे ईरान को भी लाया जाए। दूसरी, अब यह बहुत बड़ी समस्या चुनौती हो गई चाइना के लिए कि अभी तक ईरान जो ट्रस्टेड चाइनीज एलाई था, अगर वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस ईरान अमेरिका के ऊपर होने जा रहा है, तो अगर इस दृष्टि से देखें तो इसमें अमेरिका ने क्या सोचा है, ये हमारे लिए थोड़ा सोचने का विषय है।
0: जो आप कह रहे थे ईरान को पेरिफेरी पर लाए, मतलब
3: ऐसा है कि मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, उन्होंने भी ईरानी
0: तो एलाइज है, वो तो एलाइज है यूएस के।
3: वही कह रहा हूं, सिर्फ अमेरिकन पेरिफेरी के बाहर तो सिर्फ ईरानी था। तो अब $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा और वो कह रहा है उन 7 के देशों के साथ मिलकर करेंगे, तो हो सकता है आसपास की सड़क भी बनेगी, पुल भी बनेगा, एयरपोर्ट भी वो बनाएंगे, तो उस पेरिफेरी में आने की संभावना।
0: आप ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका का रीजनल पार्टनर बनने वाला है?
3: नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं।
0: ठीक है, तो
3: ईरान में अमेरिका का हस्तक्षेप जो अभी सरहद पे दिखाई पड़ रहा था, वो अब उनके डेवलपमेंट में भी आ सकता है। दूसरा, भारत की दृष्टि से अगर आप देखें तो हमारा जो चाबहार पोर्ट था, जिसपे कि भारत और ईरान के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, अच्छा, और पाकिस्तान के ग्वादर के काउंटर में अगर देखा जाए तो फारस की खाड़ी के मुहाने के ऊपर चाबहार था। अब चाबहार पे हमारी एक्टिविटी और बेहतर हो सकती है। दूसरी बात, अगर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट ईरान के अंदर बढ़ता है, चाहे डेवलपमेंट के नाम पर ही सही, तो मुझे लगता है कि जो चाइना ने सीपैक बनाकर ग्वादर तक अपना इन्फ्लुएंस बनाया था, उस इन्फ्लुएंस के आगे की सीट के ऊपर वहां पर अमेरिकन्स का आ जाना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होगा। आप दूसरे दृष्टि से देखें, अगर अमेरिका को ये सीख मिली कि उसे अकारण युद्ध में नहीं उलझना चाहिए था, यदि इसका सिनेरियो नंबर 2 देखें, तो हमें लगता है कि हमारे लिए यह और बेहतर होगा, क्योंकि ईरान से हमारे संबंध मधुर थे, पाकिस्तान के संबंध खराब थे, मगर ईरान से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। आप देखिए, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान से भारत के संबंध अच्छे हो गए। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इस समय भारत में वनडे की सीरीज खेल रही है। अगर हम इस प्रक्रिया के माध्यम से ईरान से और नजदीक आ सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान में हमने उनकी संसद भी बनाई, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किए, अगर हम भी उसमें जाके करते हैं, तो मुझे लगता है भारत के लिए ये दोनों दृष्टियों से एक तात्कालिक राहत भी है और दीर्घकालिक संभावनाएं भी दिखाई पड़ रही।
0: ठीक है, जल्दी से अजय उपाध्याय जी, आपका कमेंट। और इस ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप लोग कैसा देख रहे हैं?
4: देखिए, ये 14 सूत्री जो इस्लामाबाद MOU इसको कहा भी जा रहा है, इसका नाम ही इसी तरह से इस पूरे मेमोरेंडम में आया है, अपने आप में इसके मायने कई हैं। यदि भावना के दृष्टिकोण से देखें और शब्दों के दृष्टिकोण से देखें, ये दोनों सही होता है तो ये मानकर चलिए आपकी अंतर्राष्ट्रीय शांति की प्रगति के लिए कहीं ना कहीं ये सहायक है। पर इसका जो भारत के परिपेक्ष में जो अभी चर्चाएं चल रही हैं, इस बात को हमको ध्यान रखना होगा कि जो भू राजनीति और भू जो जो सामरिक सुरक्षा का प्रश्न है या सुरक्षा संरचना की यदि बात हम करें तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में भारत के संदर्भ में देखेंगे तो एक बड़ी चुनौती और गंभीर चुनौती हमारे लिए भी सामने आ रही है। जिस तरह इस्लामाबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्टेंस मिल रहा है इस पूरे क्रम में और ये शांति स्थापित करने के क्रम में कहीं ना कहीं वो केंद्र में आ गया, चाइना से लेकर के और गल्फ देशों के साथ अमेरिका के भी एक आपसी तालमेल बैठाने में उसकी एक अहम भूमिका हो गई और भारत जो वैश्विक स्तर पर विशेषकर एशिया और साउथ एशिया के संदर्भ में जो हम एक पावर सेंटर होते थे वो एक अपने आप में प्रश्न के दायरे में आने की संभावनाएं दिख रही हैं भविष्य में, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए उसका उदाहरण कैसे अभी दिख रहा है। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड की जो बात चल रही थी 18 में आया था और उस पर बहुत सारे कहानियां भी चली, हम बहुत नजदीक हो गए अमेरिका के, हम विश्व पावर हो गए, एशिया में हमारी ताकत बढ़ी। आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में कैसी घटनाक्रम हुई है, उसमें से इंडो शब्द अमेरिका ने हटाया है। ये सामान्य घटना नहीं है, ये इसी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो का कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये परिणाम है और अमेरिका के लिए आज के संदर्भ में भारत के बनिस्पत कौन सा देश ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि इससे हमको बाहर कर दिया। और आप सबने देखा, ये आपने एक दो दिन पहले रिपोर्ट भी की है कि किस तरह से इस मैप में भारत की स्थिति को किस तरह से गंभीर किया, पीओके को उसने जो है उसके साथ जोड़ दिया है। मतलब भारत अब पीओके से बाहर करके और भारत की जो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन थी उस पर प्रश्न लगाने का काम इस मैप के द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ वार है अमेरिका का, उसके मैप जो जारी किए गए हैं उसके संदर्भ में है। तो हमें लगता है कि बड़ी सतर्कता के साथ भारत की जो चुनौतियां हैं, सिक्योरिटी चुनौतियां भी हैं, ज्योग्राफिकल जो जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है इसको ध्यान रखना होगा। तीसरी बात, गल्फ के देशों के साथ जो हमारे रिलेशन है और गल्फ जिस तरह से संकटग्रस्त आज है और जैसे ईरान का दबदबा जब गल्फ में बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा इंपैक्ट है। गल्फ अभी भी उस स्टेज में नहीं है कि वो ईरान के साथ व्यवहारिक समझौता कर पाए, मजबूरियां जरूर कुछ ना कुछ कह रही हैं। चौथी बात, इजराइल को लेकर अभी भी असहमति और कहीं ना कहीं मेमोरेंडम ऑफ, इसको हम मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जरूरी नहीं है कि एमओयू जो है उसी संदर्भ में रहे, अभी भी इजराइल अड़ा हुआ है। इजराइल के साथ भारत के प्रधानमंत्री की अंधभक्ति दिख रही

0: मैंने अपना हठ बना रहा उसका, तो कहीं ना कहीं इस पीस पूरे पीस सिस्टम पर जो शांति समझौता हो रहा है इस पर एक बड़ा प्रश्न आएगा भविष्य में, इसके भी कहीं ना कहीं डायमेंशन और मायने होंगे। ये जरूरी है, ईरान यदि स्वस्थ होता है, सिक्योर होता है, समझौता ठीक से आगे बढ़ता है, तो हमारे लिए जो रणनीतिक गल्फ में जो हमारी जो उपलब्धि है और हमारा जो वहां संबंध है, आर्थिक भी और ऊर्जा जरूरतें भी हैं, उसके लिए जरूरी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी सुरक्षित रहे।
1: हाँ।
0: और कहीं ना कहीं गल्फ के देश जीसीसी जो देश हैं उनका भी कहीं ना कहीं
1: पीएम ने भी वहां पर बोला था, पीएम ने भी बोला था कि हॉर्मुज का खुलना और ये सब। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं ईरान और अमेरिका
2: चलूं। एक पॉइंट में बहुत क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को इस्लामाबाद डिक्लेरेशन से इस्लामाबाद लग रहा है, उसका फैक्ट ये है कि 1979 में जब ईरान में अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को बंधक बना लिया गया था जिमी कार्टर के जमाने में, और जब रीगन आए तब छोड़ा गया, उसके बाद से अमेरिका की कोई एम्बेसी ईरान में नहीं है, ना ईरान को जरूरत थी। मगर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब अमेरिका यूनिपोलर पावर हो गया वर्ल्ड की, तो ईरान को भी जरूरत थी कि अमेरिका से कोऑर्डिनेट करे। 1992 से ऑफिशियली पाकिस्तान में जो ईरान की एम्बेसी है वही अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। तो ये बीच में संदेशवाहक और पत्रवाहक की जो व्यवस्था है ये पाकिस्तान 1992 से निभा रहा है। अब यहां पर मैं कहूंगा द लाइटर नोट, भाई वो मैंने प्यार किया वाला कबूतर है और उसे पता नहीं क्यों लोग सलमान खान बनाने में लगे रहते हैं, इस यथार्थ को भी समझना चाहिए।
1: बताइए,
2: मगर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा,
1: पाकिस्तान कबूतर है, आप उसको सलमान खान बना रहे हैं।
2: देखिए, एक पॉइंट मैं और भी कहूंगा, जो इन्होंने इसराइल की बात कही वो सीरियस है, क्योंकि इसराइल ने इसके बाद भी लेबनान पे अटैक जारी रखे हैं। अमेरिका के लिए समस्या ये होगी, अगर उसने एग्रीमेंट कर दिया और उसके बाद इसराइल नहीं मान रहा है तो अमेरिकी इसराइल संबंधों में और तनाव आएगा। मगर यह अमेरिका के लिए भी चैलेंज होगा कि उधर नाटो के साथ भी संबंधों में समस्या और इसराइल के साथ भी समस्या, और इसराइल में सिर्फ यह समस्या नहीं है, जो ज्यूइश लॉबी है वो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री में उसका बहुत स्ट्रांग कंट्रोल है, ये भी एक एंगल है। अब इसका दूसरा पक्ष समझिए, ईरान के लिए भी समस्या ये होगी कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि अगर ये सत्य है कि $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा, डेवलपमेंट होगा, तो वो एक तरफ इस पे ध्यान दें अपने लोगों को या हिजबुल्ला के समर्थन में जाकर, क्योंकि इसराइल तो ये स्टैंड ले रहा है कि हिजबुल्ला पे अटैक कर रहे हैं, तो अब वो हिजबुल्ला के लिए लड़े जाकर या अपने लोगों का ध्यान।
1: नेटो देशों से क्या मुश्किल है, आप देखिए ना, ये देखिए कैसे ताली बजा रहे हैं वहां बैठ के इमैनुअल मैक्रों। मतलब ठीक है, उस वक्त पर किसी ने साथ नहीं दिया,
2: लेकिन
1: डोनाल्ड ट्रंप घुसते हैं, आई एम द बॉस।
2: जो ट्रंप ने कहा है कि अब हम आपको इस जंग से डिफेंस का सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, 5% ऑफ द जीडीपी खर्च करिए अपना डिफेंस में। अब ये बताइए हमें, ये यूरोपियन कंट्रीज कहां खर्च करेंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग अपने यहां करेंगे, इकोनॉमिकली अनवायबल, अमेरिका में ले जाएंगे, फर्दर मोर अनवायबल, ओनली टू ऑप्शन, चाइना और इंडिया। चाइना पे हो गया मिस्ट्रस्ट, भारत के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं कि जो यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री है उसका, और उसका प्रमाण देखिए, डेजॉल्ट एविएशन ने जो रफाल जहाज बनाती है उसने अपना फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा एयरोस्पेस को दिया है। तो अगर आप देखें तो यहां पर जो अमेरिका और नाटो के बीच में जो हो रहा है इसका लॉन्ग टर्म जो प्रभाव होगा उसको अगर भारत सतर्कता से देखे तो भारत के लिए बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है।
1: ठीक है, छोटा सा जी,
0: अजय, तस्वीरें तालियां और तारीफें हम चाहे जितनी कर लें और जितनी सुन लें, बस सच्चाई जो है उसको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हमको लेना पड़ेगा। ठीक है कि अच्छा रहता कि वो कबूतर ही बना रहता, पर दिक्कत क्या है कि आजकल वो शांति दूत का कबूतर के रूप में उसका उपयोग हो रहा है, ये ठीक नहीं है। कबूतर का वो भी प्राय होता है, जबकि जो आतंकी दूत के तौर पे पूरे विश्व में जाना जाता था, यदि उसको ये रिकॉग्निशन मिल रही है और हम जो शांति दूत के तौर पे विश्व में अपनी पहचान बनाने में वर्षों से हमारी वो पहचान रही है, कहीं ना कहीं वो कहीं कम होती है, कमजोर होती है, तो ये भारत के राष्ट्रीय हित में नहीं है, पहली बात।
1: दूसरी बात,
0: ईरान की बात आपने की है, ईरान से हमारे जो दोस्ताना पुराने संबंध रहे हैं इस दौरान जरूर मिसट्रस्ट हमने पैदा किया, चाहे कारण जो भी रहा है, सबने देखा कैसे हम उसके साथ समय पर खड़ा नहीं हो पाए, और वो मिसट्रस्ट को दूर करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें एक लंबा सफर तय करना होगा। दोस्ती और दुश्मनी इतनी आसानी से यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खत्म हो जाती तो फिर चीजें बदल जाती। इसराइल को लेकर हम लोग जरूर आज भी कह रहे हैं कि आप इसराइल का पीठ थपथपाना बंद कीजिए या वहां जाकर अपना पीठ मत थपथपाइए। देश के लिए जरूरी है कि वैश्विक राजनीति में जिस तरह से गल्फ के देशों से हमारे पुराने रिलेशन है, ईरान का जिस तरह से वहां पे अपना ताकत बढ़ा है, आज जो भी मानिए ना मानिए ट्रंप को तो झोला उठा के जाना ही पड़ा है, सच्चाई तो इसको स्वीकारना ही पड़ेगा, आगे क्या होगा बात की बात
1: वो है। कह रहे संभल तो जाइए इसराइल को छोड़िए,
0: आज जो है हमें गल्फ के देशों के साथ

0: साथ यदि संबंध सौहार्द पूर्ण रखना है तो ईरान के साथ भी अपने मैंने जो संबंध है उस संबंध को
1: पड़ेगा,
0: तभी भारत आगे मजबूती के साथ खड़ा होगा। तस्वीर से ताली से काम नहीं।
2: देखिए बिल्कुल पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर एनालिसिस नहीं करना चाहिए। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाए जिसमें यूएई शामिल है, मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं और इसराइल का हाइफा बंदरगाह उसका सेंटर है और यूएई ने मान्यता दे दी है इसराइल को, क्योंकि सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था तभी तो अक्टूबर 2023 का अटैक कराया गया। ये मुस्लिम वर्ल्ड की आपसी लड़ाई थी। इसलिए अगर किसी को यह ना समझ में आ रहा भाई है हमारे साथ यूएई का एफटीए हमारे साथ हो चुका है और वो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में इसराइल के साथ है, मुझे लगता है ये यथार्थ को समझना चाहिए बजाय इसके कि पूर्वाग्रहग्रस्त।
1: सूरत वाला जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि ईरान किस तरह से ईरान में इसको देखा जा रहा है ये जो एमओयू है, क्योंकि अगर ये बीबी यानी नेतन्याहू अटैक नहीं रोकते हैं लेबनान पर, क्योंकि उस पर एकदम क्लियर पॉइंट इसमें डाला गया है कि लेबनान को लेकर जो अटैक्स हैं वो रुकेंगे, अगर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं नेतन्याहू तो क्या स्थिति पैदा हो सकती है और इस एमओयू को लेकर वहां क्या चर्चा है?
3: जी, मैं आपके और तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों की खिदमत में आधा वर्ड करता हूँ। ईरान के अंदर ईरान के स्पीकर जो नेगोशिएटिंग कमेटी के हेड थे और ईरान के स्पोक पर्सन फॉरेन मिनिस्टर के, इन दोनों ने इस एमओयू के साइन होने के बाद में पहले अपनी जीत का ऐलान किया है इस तरह से कि वो जो कुछ डिमांड्स पहले से कह रहे थे उसको मनवाने में वो लोग कामयाब हो गए। दोनों से इंटरव्यू के दरमियान एक सवाल पूछा गया कि अगर इस पर अमल नहीं हुआ या इसराइल या खुद अमरीका किसी वजह से हमला नहीं किया यानी इसके ऊपर अमल नहीं करते और वो हमला करते हैं तो क्या गारंटी है इसको आगे बढ़ाने के लिए? तो ईरान के स्पीकर ने जो जवाब दिया है कि इसके आगे बढ़ाने की गारंटी हमारी मिसाइल की ताकत है। अगर आज अमेरिका हमसे इस मसूदे के ऊपर और इस एमओयू के ऊपर साइन करने पर मजबूर हुआ है तो इसलिए नहीं है कि उसको हम पर कोई रहम आ रहा है, बल्कि हमारी मिसाइल की ताकत की वजह से और हमारे हमलों की वजह से वो यहाँ पर आने के लिए मजबूर हुआ है। तो वो इस तरह से इसको देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी जीत हुई है और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि उनके पास गारंटी है कि अपने हमलों के जरिए से अगर कहीं पर उसने अमल नहीं किया तो ये जवाब देकर उसको वापस मजबूर कर सकते हैं। एक पॉइंट जो ईरान के स्पीकर ने कहा है मुझे लगता है कि वो आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी होगा। कहते हैं कि कोई भी जंग उसका खात्मा किसी ना किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है। वो डॉक्यूमेंट के जिसके ऊपर जंग का खात्मा होता है उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई हैं कि वो तमाम शर्तों से नजदीक है और तमाम वो शर्तें हैं जो ईरान पिछले कई दिनों से कह रहा था और ईरान की तकरीबन सब शर्तों पर सर न सिर्फ ये कि माना गया है बल्कि एक महीने का भी जहां पर टाइम लिया गया था 3 दिन के अंदर अमेरिका ने वो ब्लॉकेट हटा भी दिया है। ये ईरान के स्पीकर के वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं।
1: तो जो यूएस नेवल ब्लॉकेट है वो पूरी तरह से हट गया है।
3: जी, ईरान के स्पीकर ने कहा है कि 30 दिन वाला काम इन्होंने 3 दिन के अंदर ये पूरी तरह से कर दिया है और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर इन्होंने ये किया है तो ये इनके लिए इस वजह से वो कर पा रहे हैं कि हमारी ताकत, हमारी लॉजिक और हमारे मैदान के अंदर भी और हमारे निगोशिएट करने के तरीके से वो उनको हार मारना।
1: ठीक है सूरज वाला जी, जल्दी से मोहम्मद फैज खान साहब, वो कह रहे हैं कि ईरान के मिसाइल पावर के सामने अमेरिका झुक गया है, डर गया है, इसलिए ये हस्ताक्षर हुए और एक एक शर्त उसमें ईरान की ही मानी गई है।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं निवेदन करता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो इनका बयान ना सुने और इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उनको ना सुनाया जाए क्योंकि ये तो भड़काने वाली बात कर रहे हैं लगातार। जब एक अच्छे मंच पे भारत की जो मैं बार बार कहता हूँ पंचशील की नीति थी, अनाक्रमण, हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संप्रभुता, वो सब इस मेमोरेंडम में है। आप देखेंगे तो सबको अच्छे से लागू किया गया। अब ये कहना हमारी मिसाइल की ताकत से बाहुबल के कारण अमरीका डर के ये मतलब ये एमओयू कर रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और फिर मैं बताऊं कि यदि सचमुच में इन सब का पालन किया जाता है तो पूरे क्षेत्र के लिए और विश्व के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अंजना जी, ये इतना हास्यास्पद है, इसके पूरे 14 सूत्र आप पढ़ेंगे ना तो उसमें कुछ $300 बिलियन अमेरिका देगा। हाँ, मैंने सर्च किया,
1: साइन किया डोनाल्ड ट्रंप ने
4: साहब, $300 बिलियन कब्र से लेकर पालने से लेकर कब्र तक ईरान की टोटल जीडीपी है, यानी कि अब ईरान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। $300 बिलियन अमेरिका देगा तो वहां पर बच्चा पैदा होगा और वहां पे जो खत्म होगा उसके कब्र की भी व्यवस्था अमेरिका ही करेगा, इतना बड़ा अमाउंट है टोटल जीडीपी के बराबर। तो ये हास्यास्पद नहीं लगता है कि अमेरिका देगा और अमेरिका युद्ध हर जाने के रूप में देखा अमरीका जैसी महाशक्ति,
5: तो ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। सुनिए, ये
1: तो साइन क्यों किया ट्रंप ने?
5: सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ, ये MOU है। MOU उतनी ही मान्यता रखता है कि कोई यहाँ पर आकर महात्मा गांधी जी की समाधि पे जैसे वो करते हैं ना श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन, तो हम ये नहीं कह सकते वो सदा सत्य का पालन करेगा, अहिंसा का पालन करेगा और सदा चरखा चलाएगा। भैया MOU की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, एकॉर्ड की लीगल बाइंडिंग होती है। और मैं आपको बताऊं, ओस्लो एकॉर्ड जिसके कारण यासिर अराफात, शिमोन पेरेस, आइजेक रेबिन को नोबल पीस प्राइज मिला था, वो ओस्लो एकॉर्ड आज तक लागू नहीं हो पाया है जिसकी लीगल बाइंडिंग है। वो अब्राहमिक एकॉर्ड जिसमें यहूदी ईसाई और मुसलमानों को एक साथ चलने की बात की गई थी, आज तक अब्राहमिक एकॉर्ड लागू नहीं हो पाया है। सुधांशु भैया के पॉइंट के अनुसार ना अब्राहमिक एकॉर्ड लागू हो सकता है, ईरान यदि उस पेरिफेरी में आ जाए तो शायद कुछ हो सकता है। वो लागू MOU कहां से लागू होगा? MOU ऐसा है कि आपने श्रद्धांजलि दी, आज शाम को आपके सम्मान में भोज हुआ और कुछ थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी कर लिए कि भाई हम लोग आते जाते रहेंगे मिलते जुलते। MOU की इतनी ही वैलिडिटी होती है, तो इसको बहुत गंभीरता से
1: लेना चाहिए। वाला जी, क्या ये वैलिड पॉइंट नहीं है जो वो रेज कर रहे हैं? और बार बार डोनाल्ड ट्रंप G7 में भी, आवियन में भी, वो बार बार यही कह रहे थे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है।
5: जी
3: मैडम, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ट्रंप ने साइन किया है, दूसरी चीज ये कि ये कहते हैं कि इसके ऊपर अमल जरूरी नहीं है, ब्लॉकेड उन्होंने हटा दिया है, तीसरी चीज ये कि इसराइल के अंदर बेचैनी इस बात के ऊपर बर्पा हो गई है कि ट्रंप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम लुबनान पर हमला करें या ना करें। यानी जो चीज पूरी दुनिया को समझ में आ रही है और पूरी दुनिया समझ रही है कि उसके ऊपर अमल करना है, इसराइल उसके ऊपर बिखरा हुआ है, पैसा पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ साइन हुई है। ये साइन होने में कितना टाइम लगा और किस तरह से हुआ है और फिर उसका रिएक्शन और लोगों की और पूरी दुनिया में उसका असर, ये तमाम चीजें, ऑयल की कीमत इतनी ज्यादा नीचे आ गई है, सब पूरी दुनिया फर्क देख रही है और फैसला बड़ी आसानी से इस मंच पे कह रहे हैं कि नहीं ये कोई जरूरी चीज नहीं है, इसकी वैलिडिटी नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि इस तरह की बात है। लेकिन आपने जो पॉइंट कहा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने साइन किया है, ईरान के प्रेसिडेंट ने साइन किया है, उसका असर हम लोग कुछ हद तक के अभी देख रहे हैं, चाहते भी हैं कि कंटिन्यू हो और ये जंग रुके। हम लोग सब लोग ये चाहते हैं कि जंग रुके,
5: मिसाइल से हमला करने की बात, हमारे मिसाइल से डर गए कहते हैं अमेरिका और कह रहे हैं जंग रुके।
3: मैंने कोट किया है,
1: प्रमित जी का एक जवाब इस पर ले लेते हैं। प्रमित जी, वो कह रहे हैं कि ईरान के मिसाइल पार के सामने अमेरिका को आखिरकार झुकना ही पड़ा।
6: देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है, इस पे कमेंट करना ठीक है? फिर मैं बार बार ये कहता हूँ, टीवी स्टूडियो में आकर प्रोपोगंडा के अंतर्गत कुछ भी कहना बड़ा आसान है, बट अमेरिका मिलिट्री इज बाय फार दी मोस्ट पावरफुल, दी बेस्ट मिलिट्री इन रिस्पेक्ट टू एनी अदर कंट्री एज वेल। तो आप ईरान की बात छोड़ ही दीजिए, अमेरिका हैज शोन इन दिस लास्ट 4 months इट्स मिलिट्री डोमिनेंस, डॉलर डोमिनेंस एंड डिप्लोमेसी डोमिनेंस एज वेल। अब ये जो MOU आप कहते हैं कि ये इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स ईरान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें अमेरिका की मेन शर्त, पहले तो पूरी दुनिया ने जो दबाव अमेरिका पे भी बनाया, ईरान पे भी बनाया, और उसमें इंडिया का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तुरंत खोला गया है दोनों देशों द्वारा, और जिससे पूरे वेस्ट एशिया पे जो एक प्रेशर था इन्फ्लेशन का, इंक्लूडिंग अमेरिका में भी इन्फ्लेशन का प्रेशर था, दैट विल ईज आउट। सो दैट वो एक सबके लिए अच्छी बात है। दूसरा जो है कि इट इज also tied up with performance based benefits. एक जो $300 बिलियन का जो reconstruction की जो बात की गई है, इसमें एक अमेरिका की बहुत बड़ी जीत है और चाइना की एक तरह से कुछ हद तक हार है। It is China also has been cornered and with this strategic move. क्योंकि पहले आपने पढ़ा होगा कि China was going to invest $400 बिलियन for reconstruction of Iran. अब उसकी जगह पर now American allies, American friends, American supports will do the reconstruction. So whole reconstruction architecture of Iran. And जैसे हमारे पैनल co-panelist ने कहा, $300 बिलियन is definitely a huge amount. Now $300 बिलियन अगर अमेरिका के सहयोगी और अमेरिका के allies अगर वहां पर अब खर्च कर या रिबिल्ड करेंगे, तो उसमें अमेरिका का एक बड़ा इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर रहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ईरान की जो सामान्य जनता है वो भी ये चाहती है, दे आर फेड अप विद IRGC एंड हार्डलाइनर्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, दे वांट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड दे वांट डेमोक्रेसी टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जो नाराज भी थे आपने उनको उनके साथ कर दिया साहब, थोड़ा क्रेडिट ले लीजिए। जो नाराज भी थे ना ईरान में लोग, वो भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। अमेरिका के खिलाफ। प्रमित जी
6: अभी देखिए मैडम, ये फिर से अगर आप उसको डीप सर्वे करें तो अमेरिका में भी कई सारे ईरानी लोग हैं जिनके बहुत सारे रिश्तेदार वहां पर हैं और वो वहां की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हैं, दे से दैट इन फ्यूचर दे आर वेलकमिंग ऑल दिस एमओयू एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग दे आर इन ऑन अ वेरी वेलकमिंग साइड ऑफ दिस एमओयू एंड व्हाटएवर इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इरान।
1: मौलाना अंसार रजा साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसकी भी तरफ ये टिल्टेड हो, अब इसको अमेरिका अपनी तरफ बताएगा वो बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर ईरान की शर्तें क्या थी? वो चाह रहे थे कि उनके बैन हटे, वो चाह रहे थे कि भाई उनको पैसा मिले इस युद्ध की वजह से, वो भी $300 बिलियन, हॉर्मूज खुले, और अभी उनका दावा है कि वो नेवल ब्लॉकेड भी हट गया। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है उसमें साफ दिख रहा है कि ईरान को फायदा हुआ है इस युद्ध से। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि पता नहीं क्यों डोनाल्ड ट्रंप वहां पर गए थे, सबको परेशानी दे दी पूरी दुनिया में, भारत में भी हमने झेला, और अब वापस उसको ज्यादा पैसा के साथ वापस हट रहे हैं।
7: अंजना जी, आपको याद होगा आपके एक शो में मैंने एक बात कही थी तो आप उस वक्त मेरी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी कि मैंने ये क्या कह दिया। मैंने उस दिन ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका को ईरान घुटने पे ले आएगा, और आज भी वो आपके पास रिकॉर्ड होगा, वो आप उठा करके देख सकते हैं। जहां तक सवाल 300 बिलियन का है, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी रकम होती है, ये साहब जो अमेरिका से बोल रहे हैं कि साहब ह्यूज रकम होती है, डोनाल्ड ट्रंप को उसके जीरो नहीं पता, जो साइन करके आए हैं इन दोनों लोगों को पता है कि ह्यूज रकम होती है। सोचने वाली बात है, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति है, एक दूसरे मुल्क का राष्ट्रपति साइन कर रहा है, उसको जीरो नहीं पता, इन दोनों को पता है। नंबर
1: इन दोनों को,
7: फैज साहब को भी पता है और वो जो अमेरिका से बैठे उनको भी पता है। दूसरी चीज देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, इन्होंने पहले तो ईरान से दुश्मनी लेकर के अमेरिका को जगह दी, फिर बम खाए, अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मतलब नमाज छुड़ाने गए तो रोजे गले पड़ गए, ये हुआ।
1: देखिए भाई, आप पे है ये जो जो बोल रहे हैं आप।
7: ना मैं
1: बोल रहा हूं, संभालिएगा,
7: मैं हल्की बात
1: नहीं करता, संभालिएगा। तो मैं धर्म के आधार पर, मैं धर्म के आधार पर जो भी जो वह पूजा पद्धति है उसके खिलाफ
7: मैं एक बात कह रहा हूं,
1: ये कहावत है, लेकिन फिर भी बच के चलिए।
7: मेरे कहने का
1: आजकल भावनाएं बड़ी जल्दी हाथ,
7: नहीं मैम, ये कहावत है, पूरी दुनिया में मशहूर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दो मुल्कों का जो फैसला हुआ है ये पूरी दुनिया के लिए खुशी का कदम है।
1: तो अमेरिका कहां घुटने पे टेक गया, गिर गया?
7: ये क्या है जो आपने 3-4 शर्तें बताई, ईरान ने मानी है कि अमेरिका ने मानी है?
1: हॉर्मुज तो खोलना ईरान को पड़ रहा है ना,
7: खोलना पड़ रहा है, तो किसकी वजह से,
1: किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से,
7: अमेरिका की वजह से। तो उसने शर्तें मानी ना उनकी,
1: ईरान ने मानी,
7: ईरान ने उनकी शर्तें
1: मानी, अमेरिका ने भी मानी,
7: ठीक है ना, उन्होंने उनकी शर्त। मेरे कहने का मतलब दुनिया में सुकून तो आया ना, दुनिया में सुकून तो आया, लोग चैन की सांस तो ले रहे। अब इसमें जो अहम किरदार था इसराइल का, वो कूदा कूदा फिर रहा है।
1: कभी कौन, इस पाले कूद रहा है, मिडिल ईस्ट कूद रहा है और इजराइल।
7: देखिए, मिडिल ईस्ट की तो समझ में आ गया कि अब अगर हमने ईरान का साथ दिया तो हमारा क्या होगा, ये उनकी समझ में आ चुका है, पूरी तरीके से समझ में आ चुका है।
1: ईरान के खिलाफ गए तो क्या होगा?
7: मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर हमने
1: ईरान के
7: ईरान के खिलाफ गए तो क्या होगा, वो उनकी समझ में आ गया है। अब इन्हें पैसे भी चुकाने पड़ेंगे, वहां काम भी करना पड़ेगा।
1: आप खुश हो रहे हैं इस बात से? बड़े
7: खुश इसलिए हो रहे हैं कि हमारे मुल्क का नाम आया है बीच में कि भारत की वजह से हॉर्मुज खुला, हमें इस बात की खुशी है। दुनिया क्या हो रही है वो अपनी जगह है। हमारे भारत का नाम रोशन हुआ है, हमारे भारत का नाम ऊंचा हुआ है, हमारे लिए खुशी की बात है।
2: अब तो जो फैज खान साहब ने कही थी, कोई भी अकॉर्ड होने के बाद क्या होता है, कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 में हुआ जिसमें इजिप्ट पहला मुस्लिम देश बना जिसने इसराइल को मान्यता दी, और 1981 में अनवर सादात की हत्या हो गई। तो अभी इसके इंटरनल डायनेमिक्स क्या होंगे इंप्लीमेंट होने के बाद भी, वो भी दूसरी बात। देखिए, एक बात मैं पूरे हद अदब से कहना चाहूंगा भाई साहब, कासिम सुलेमानी से लेके इब्राहिम रईसी से लेके पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप ईरान की खत्म हो गई, पूरे क्या? आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, पूरी आपकी आर्मी लीडरशिप मार दी, और उसके बाद अंदर क्या क्या हुआ है वो तो एक महीने तक इंटरनेट बंद था। दुनिया में किसी देश के कुछ हिस्सों में तो महीनों बंद रहा है, पर पूरे कंट्री में इंटरनेट बंद रहे 3 महीने पहली बार हुआ। तो अंदर मैं पूरी बात
1: साहब,
2: तो कोई ये कहे कि साहब अपनी पूरी लीडरशिप खत्म करके, पूरी मतलब फौजी लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म करके इतनी बम्बार्डिंग होके और मेरे लिए जश्न का सबब है, तो इसे तो मैं वो कहूंगा ना कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो इसको जश्न मनाने वाली बात तो नहीं, एक मिनट में पूरी बात, अब मैं दूसरी बात में कह रहा हूं, सुनिए साहब। चाबार में रेलवे चाइना ने बनाया था, आप पूरे गहराई से समझिए, जो कहा है हमारे ईरान से बैठे हुए साहब ने उनकी बात भी गहराई से समझिए। ये अमेरिका को आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी है भाई, 300 मिलियन फोकट में दे रहा है। आज तक किसी व्यापारी को देखा है 300 मिलियन फोकट में देते? आप सुनिए, वो 300 मिलियन कैसे आएगा? डॉलर में आएगा ना, कि वो अमेरिका से कहेंगे आप डॉलर की बजाय हमको चाइनीज रेमिनबी में दो ना। अभी तक ईरान का व्यापार किससे चल रहा था? चाइनीज करेंसी से। तो उसने अपना डी डॉलराइजेशन वाला एंगल लगा दिया ना, अब तो अपना तो देगा ही देगा, बाकी भी अब ईरान कह पाएगा मैं बगैर डॉलर के करूंगा? नहीं साहब, अब तो आप सारा तेल भी डॉलर में खरीदोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डॉलर में खरीदोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके इसका एनालिसिस करिए, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से ये करने की कोशिश में। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो आएगा, अब आप कह रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान को भी किस ढंग से आपने देखा, वहां पर जो अमेरिका ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट सर्व किए हैं, फिर चाहे पे उन्होंने अपना वो डाटा सेंटर बनाया है, जो भी कराया है, कोई भी कार्य, और उससे भी कौन सी डील कर रहा था? चाइना डील कर रहा था। आप इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, इतनी आसानी से मत समझिए कि आप, मतलब ये भी कर रहा हूं, अमेरिकन्स आर वेरी इंटेलिजेंट
8: इसमें कुछ,
2: और ईरानियंस आर इमोशनल। आप ये समझिए इमोशन और इंटेलिजेंस के ऊपर, इस्लाम में इस समय इमोशनल जज्बा है कि हम लड़ रहे हैं, मगर वो लोग हर चीज में दिमाग से चल रहे हैं।
9: अंजना जी, चर्चा बहुत गंभीर हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं में जो है वाकई हर आदमी को देखना है, चूंकि देश के लोग देखेंगे इसको, तो देश के, हमारे देश के नागरिकों को इस बात की ज्यादा दिलचस्पी है कि इस पूरे प्रक्रम में हम कहां थे, हमें क्यों सजा मिली, हमने तो कुछ न खाया न पिया न कहीं थे। वैश्विक स्तर पर एक व्यक्ति के महामूर्खतापूर्ण अहंकार के कारण ये पूरी वर्ल्ड ऑर्डर पर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का काम हुआ। लीगलिटी की बात की जाए तो सही बात है कि समर्थ को कोई दोष, एक सेकंड, एक देखें
2: बोल रहे
9: हैं, समर्थ को नहीं कोई, एक मिनट, समर्थ को नहीं दोष, जो गुसाई वाला जो कंसेप्ट है हमारा, कहीं ना कहीं यही हुआ, हमारे नाविक मारे गए, हमारे नागरिक फंसे रहे, हमारे लोग जो है यहाँ पेट्रोल डीजल के तेल के महंगाई से मारे जा रहे हैं, आए दिन कमर टूट रही है हमारी, हमारा आयात निर्यात का मामला बिगड़ गया है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर प्रश्न है, किया कौन, क्या किया कोई और, खा रहा है, भुगत रहे हैं हम, तो ये, या दूसरी बात, ये कहावत है ना वो छोटी सी कि आप कोई अपराध हो जाता है तो अपराध को ठीक करने के लिए कि आप क्या प्याज खाएंगे कि डंडे खाएंगे, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, तो यहाँ दोनों हाल हुआ है, प्याज भी खाना पड़ रहा है और बीच बीच में डंडा भी खाना पड़ रहा है, जो जिसने जिसने जिसने ईरान के संप्रभुता पर प्रश्न लगाने का काम किया, वैश्विक स्तर पर अमेरिकन से जाकर के पूछिए, अमेरिका के लोगों से कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी आज क्या हालत है, अमेरिका के जो राष्ट्रवादी लोग हैं ऑल टाइम लो है, क्यों
6: जल्दी
9: से, क्योंकि उसने
6: ये बड़ी जल्दी से, मैडम यहाँ के जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं दे आर वेरी हैप्पी कि ईरान जैसे फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक जिहादी रिजीम, एंड अमेरिका इज नॉट अगेंस्ट एवरी मुस्लिम regime and every Muslim person, that is not at all true, but Islamic fundamentally jihadis ke against America hai, kyunki unka ek maksad hai ki wo debt to America ko bada zor shor se kehte hain, aur न्यूक्लियर वॉरहेड इस जैसे देश के पास अगले 10 से 25 साल तक नहीं आएंगे, ये अमेरिका की और पूरे दुनिया की इसमें सबसे बड़ी जीत है। सो शॉर्ट टर्म पेन्स वेर देयर फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स फॉर एवरीवन।
1: सूरत वाला जी, इसमें एक लाइन ये भी है जो शर्त नंबर 9 है कि कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान, ये भी तो लिख के देना पड़ रहा है हस्ताक्षर के साथ।
6: और इसराइल की जो बात हुई थी मैडम, इसराइल का भी एक मैं ऐड कर दूं, इसराइल और अमेरिका की जो फ्रिक्शन दिखा रहे हैं,
1: प्लीज वेट सूरत वाला जी। हाँ सूरत वाला जी बोले।
10: जी मैं कह रहा था कि जो आपने पॉइंट नंबर 9 बताया है, ऑलरेडी IAEA बहुत बार इस बात को कह चुका है, ईरान ने उसी को कंफर्म किया, लेकिन सुधांशु जी ने जो थोड़ी देर पहले कहा लीडरशिप के खात्मे की, टॉप लीडरशिप की, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद एक शिया हूँ, शिया मुसलमान हूँ, और ईरान भी शिया मुसलमान और मुहर्रम का महीना है। ये लोग अपनी लीडरशिप का खात्मा, इमाम हुसैन की शहादत जिसका जिक्र सब आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, इनके लिए लीडरशिप से ज्यादा हदफ इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग अपने हदफ और मकसद में कामयाब हो जाते हैं, अमरीका ने कहा था ईरान पर कब्जा करेगा, हुकूमत को गिराएगा, उसमें कामयाब नहीं हुआ, वहां के लोगों ने 100 रातों से ज्यादा रास्ते पर उतर के अमेरिका को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दिया है। ये 300 बिलियन डॉलर जो वो दे रहा है, ये कोई दान नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान की वो डिमांड के, तुमने जंग शुरू की थी तो अब जंग का भुगतान तुमको भुगतना होगा और तुमको हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी जगह तुम्हें उसकी भरपाई करना होगी, इस वजह से वो दे रहा है।
1: दो लाइन का रिस्पॉन्स, जल्दी से टाइम खत्म हो गया, जल्दी से।
8: भी मुसलमान है और इमाम हुसैन को सुन्नी भी उतना मानता है जितना शिया मानता है, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत का इस्तेमाल राजनीतिक हित को साधने के लिए नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अमेरिका $300 बिलियन का हर्जाना दे रहा है, एक बार डोनाल्ड ट्रंप के कान में बात पढ़ने दो फिर क्या होगा।
1: इसी के साथ इस बहस में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी। From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
8: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
9: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
10: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
11: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
10: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: यूएस ईरान के बीच हुई पीस डील के बाद हॉर्मुज का नजारा काफी दिनों बाद बदला हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 3 महीने बाद जहाजों की आजाद आवाजाही ने शांति का एहसास कराया है। गुरुवार को सऊदी अरब के झंडे वाले 3 बड़े तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। इनमें करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल लदा था। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों की ये आवाजाही पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एमओयू पर दस्तखत के बाद हुई।
1: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. On the military side, the Iranians, for the second night in a row, did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So,
0: Iran aur America ke beech samjhote ke baad Hormuz jhaldamaru mein tel tankeron ki movement dekhi ja rahi hai. Lekin tel companies sangharsh ke dauran Iran ki or se bichhai gayi means ko lekar kafi satark hain. इसके अलावा प्रतिबंधों, आतंकवाद से जुड़े कानूनों और टोल पेमेंट को लेकर भी स्पष्टता की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

भारतीयों का चांदी और सोने से रिश्ता केवल शौक का नहीं है, ये तो सदियों और पीढ़ियों पुराना भरोसा है। सुख दुख के साथी माने जाने वाले इन कीमती मेटल्स की चमक आज हर भारतीय घर की तिजोरी की शान बढ़ाती है। इसी दीवानगी की वजह से जब देश का पैसा पानी की तरह बहकर विदेशी बाजारों में जाने लगता है तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। दरअसल देश के बढ़ते व्यापार घाटे को काबू में करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सोने के बाद चांदी के इंपोर्ट पर नए सख्त नियम लागू करने के साथ कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार ने चांदी के बेलगाम इंपोर्ट को रोकने के लिए इसे फ्री से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। अब चांदी का इंपोर्ट केवल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के लाइसेंस के जरिए हो पाएगा। इसके साथ ही चांदी, सोने और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी में भी इजाफा कर दिया गया है। इस कदम का मकसद देश से बाहर जाने वाले डॉलर्स की रफ्तार को थामना और ट्रेड बैलेंस को सुधारना है। इसकी वजह यह है कि विदेशी बाजारों से होने वाले इस भारी भरकम इंपोर्ट से देश का विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में आ रहा था। इस सख्त फैसले के पीछे की असली कहानी भारत के बढ़ते इंपोर्ट बिल और चांदी के रास्ते हो रही सोने की हेराफेरी से जुड़ी है। पिछले कुछ समय से कारोबारी दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाकर सस्ते में चांदी भारत ला रहे थे। इतना ही नहीं, चांदी के बहाने सोने को देश में घुसाने के अवैध खेल पर लगाम लगाना भी बेहद जरूरी हो गया था। सरकार के इस कदम से घरेलू मार्केट और आम ग्राहकों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। इन नियमों से घरेलू बाजार में चांदी की सप्लाई पर तुरंत असर पड़ेगा। सप्लाई घटने और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से आने वाले दिनों में चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस पाबंदी से डोमेस्टिक ज्वेलर्स और चांदी का इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्री की लागत बढ़ेगी। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि इस साल कड़े फैसले से हर महीने बाहर जाने वाले अरबों डॉलर की बचत होगी। यानी फेस्टिव सीजन और शादियों के इस दौर में चांदी खरीदना आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में मची उथल पुथल के बीच देश की आर्थिक सेहत को बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। सरकार की कोशिश है कि कीमती मेटल्स के इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जाए और लोग देश के फाइनेंशियल सिस्टम में निवेश करें। सराफा बाजार के कारोबारी सरकार के फैसले के मुताबिक अपने बिजनेस मॉडल को ढालने की तैयारी में जुट गए हैं। साफ है कि देश के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए इस कदम से बाजार की चमक थोड़ी धीमी जरूर पड़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देश के हित में है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
5: इतिहास का अध्याय खोल दिया।
6: राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
7: सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
8: आज तक के पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चढ़ावे की रकम की गिनती होती दिख रही है। इस चढ़ावा चोरी मामले में जिन लोगों पर संदेह की सुई घूमी है वो है श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस ने 10 लाख नकद बरामद किया। अन्य आरोपियों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, के डी तिवारी और मनीष यादव के नाम शामिल हैं। ये सारे वो लोग हैं जो चंदे की गिनती या मंदिर प्रशासन के कामकाज से जुड़े हुए थे। राम मंदिर का चढ़ावा वहां लगी 40 दान पेटियों में जाता था जिसकी गिनती ट्रस्ट के कर्मचारियों की निगरानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी करते थे। इस बीच जब चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच एसआईटी कर रही है तो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी साफ तौर पर चढ़ावा निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं माना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को स्थानीय तौर पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे पवन पांडेय ने उठाया, फिर 7 जून को अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में आरोपों को दोहराया। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी तो बनाई है लेकिन समाजवादी पार्टी को एसआईटी पर निष्पक्षता का भरोसा नहीं है।
9: ये जो एसआईटी में है हमारे लखनऊ के कमिश्नर साहब हैं, वित्त विभाग के कई अफसर हैं और इधर के पुलिस के आईजी हैं, तो ये राज्य स्तर के सरकार के द्वारा है तो एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा के लिए मैंने सोचा कि हमारे उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास है तो उसके द्वारा जब जांच टीम गठित होगी तो उसमें किसी पर प्रभाव डालने का, हस्तक्षेप करने का और जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की पूरी सतर्क संभावना रहती।
8: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस मामले पर जहां विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग भी बेहद नाराज हैं।
10: हमारे जो प्रमुख लोग हैं उसमें एक दो, उनको इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था और यही हमको गुस्सा लग गई कि ये काम ऐसा कैसे कर रहे हैं। ऐसी अगर चोरी हो जाएगी और सीना चोरी भी हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा।
8: राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का वो विषय है जिसके लिए आंदोलन हुए, अदालतों में लड़ाई लड़ी गई। इसीलिए चढ़ावा चोरी का ये मामला सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला भर नहीं बल्कि एक ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित शायद नहीं हो सकता। आज तक ब्यूरो

दो दिन के बंगाल दौरे पर हुगली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल। कल कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। पूछताछ में टिन्नू यादव और चार पुजारियों का गोलमोल बयान।

0: परभणी में बड़ा हादसा। यशवाड़ी मारुति मंदिर परिसर में निर्माणाधीन सभा मंडप की छत गिरने से अब तक 4 लोगों की मौत। दबे लोगों को बचाने का काम जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। वक्त चला है दंगल का, लेकिन हम बात करेंगे पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज की, जो दल बदल पर होगा। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो महाराष्ट्र के परभणी से आ रही है। यहां मारुति मंदिर परिसर में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां दरअसल मंदिर का एक निर्माणाधीन छत बनाने का काम चल रहा था और वहां वो गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। अभी मलबे में कुछ और लोग फंसे होने की आशंका भी वहां पर जताई जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं। अब देख सकते हैं कि वहां पर निर्माणाधीन छत का काम चल रहा था। ये छत निर्माणाधीन था, कुछ वहां पर मरम्मत का काम चल रहा था और ये छत गिर पड़ा। कुछ 15 से 20 लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उसमें से 4 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। दिलीप पाणी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिलीप, क्या खबर आप बता सकते हैं? ये तस्वीरें हम यहां पर देख रहे हैं, 15 से 20 लोग वहां पर मौजूद थे और 4 लोगों के मौत की पुष्टि यहां पर हो चुकी है। अब वहां पर बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है, वो जरा बताइए।
3: कार्य तो बड़ी पैमाने पे प्रशासन ने हाथ में लिया है, वहाँ के गांव के लोग भी बड़ी पैमाने में कार्य को जुटाए गए हैं। लेकिन 5 की मौत की पुष्टि अभी अभी कलेक्टर साहब ने दी है। यहाँ पे बहुत सा शिलान्यास का काम चल रहा था, सभा मंडप का खड़ा करने का काम चल रहा था। छत नहीं गिरा है, ये शिला गिरी है। बड़े बड़े पत्थर के जो शिला होती है, वो शिला गिरने से बहुत लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अभी तक जो मरीज है उनको अस्पताल में दाखिल किया गया है। 15 लोगों को अभी तक राहुल पाटिल के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, कुछ सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। अभी भी लोगों का बचाव कार्य शुरू है, कुछ देर में अभी बाकी की सब खबरें सामने आ जाएगी। साहिल जी,
0: ठीक है, बाकी की जानकारी थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मंदिर में ये छत का की मरम्मत का काम वहां पर चल रहा था, यह निर्माणाधीन काम था। वहां पर आप देख सकते हैं कि लकड़ियों का एक ये लगाया गया है ताकि वहां पर मरम्मत हो सके, और वहीं पर लोग वहां पर प्रसाद ले रहे थे और अचानक ये छत वहां पर गिर गया। 5 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है, बाकी लोग वहां पर 15 से 20 लोग वहां पर दबे होने की आशंका भी वहां पर जताई जा रही है। लेकिन आज यहां पर होगी दल बदल पर हमने पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज किया हुआ है, लोगों से सवाल पूछे हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में कभी कभी कुछ आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं होते, वो समाज की चुप्पी को आवाज देते हैं। आज जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो सिर्फ एक सर्वे नहीं है, बल्कि देश के राजनीतिक मानस की धड़कन भी हम कह सकते हैं। और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और गंभीर भी। टीएमसी में टूट और शिवसेना यूबीटी में बगावत के बीच जब सीना ठोक कर यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर हम कर चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस में चुनाव होने के एक महीने के भीतर 67 विधायक और 20 सांसद टूटकर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि अब हमारा उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे में सवाल यह है कि देश क्या सोच रहा है, जनता दल बदल को किस तरीके से देख रही है। क्या विधायक और सांसद वही सोचते हैं जो मतदाता सोचता है? जब कोई नेता चुनाव लड़ता है तो क्या जनता सिर्फ उसका चेहरा चुनती है, या फिर पार्टी, विचारधारा, वादे और वो मुद्दे भी जिसके आधार पर उस उम्मीदवार ने वोट मांगे थे और उसी आधार पर मतदाताओं ने उसके नाम पर मुहर लगाई थी, क्या उसके बारे में भी सोचा जाता है? अगर चुनाव जीतने के बाद वही जनप्रतिनिधि दल को बदल देता है तो क्या सिर्फ दल बदलता है या उसको मिला जनादेश भी बदल जाता है? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने कही थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया हुआ शासन है। लेकिन अगर जनता एक दल को चुनकर भेजे और सत्ता का गणित किसी दूसरे के पक्ष में चला जाए तो क्या लोकतंत्र की आत्मा वही रहती है? कहीं वो टूट तो नहीं जाती? संविधान सभा में बहस के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेहतर हो, लेकिन अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है, वो उसी बेहतरी से उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, विश्वास की भी रचना है। सत्ता बदलना राजनीति हो सकती है, लेकिन जनादेश बदलना एक नैतिक सवाल खड़ा कर देता है। और आज शायद इसी वजह से देश का मिजाज नेताओं से कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो आज के बहस के केंद्र में क्या सवाल है, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल इस केंद्र में यह होगा कि क्या दल बदल जनादेश का अपहरण है। कई बार दल बदल कानून बनाने के बाद यह सवाल ही सबके सामने खड़ा किया गया है कि जनादेश का अपहरण नहीं होना चाहिए। क्या विधायक की सीट व्यक्ति की सीट है या उस मतदाता की जिसने उस विधायक को या सांसद को चुनकर भेजा हुआ है? क्या राजनीतिक नैतिकता सत्ता की राजनीति में हार रही है? क्या दल बदल कानून अब और सख्त होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता की सोच और नेताओं की राजनीति के बीच की दूरी अब बढ़ती नजर आ रही? आज के आंकड़े इसी नैतिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में सभी सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मौजूदा घटनाक्रम के बयानों पर जरा एक बार नजर डालते हैं। यह दल बदल को नेता किस तरीके से देखते हैं?
4: हमारे जो सांसद है, हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे।
5: उन्होंने सांसद की बैठक बुलाई थी 11, उसमें लोकसभा के 3 सांसद बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, ये पार्टी हित का उल्लंघन है।
6: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते, वो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
7: टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर के सब चल दिए उधर, वैसे ही इधर से टूट के अब जाएंगे।
8: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ती है। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए।
0: इसमें एक बयान और एक जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि कल शिवसेना की रैली हुई थी, शिवसेना का स्थापना दिवस था, दो रैलियां हो रही थी। एक तरफ उद्धव ठाकरे बात कर रहे थे जो कह रहे थे कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे आकर ये कह रहे थे कि जो 6 सांसद टूटे हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो इस पिक्चर में और कितने विधायक, पार्षद और सांसद रहेंगे ये देखना अभी बाकी रहेगा। तो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे। 6 सवाल हमने लोगों से पूछे थे, वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। एडवोकेट सुशीबेन साहा शिवसेना की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगी। एकनाथ शिंदे उनके पार्टी के नेता का जो बयान है वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाया। रजत सेठी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और उसके साथ साथ आशुतोष भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। ये किसी एक दल विशेष के लिए चर्चा नहीं है। जो पॉलिटिकल सिचुएशन आज की स्थिति में देश में चर्चा में है, उस रचना को लेकर भी यह चर्चा होगी, तो दल बदल से उठकर भी हम चर्चा कर सकते हैं। 6 सवाल हमने पूछे थे, उसमें से पहले 3 सवाल मैं पहले इस पैनल के सामने रखूंगा, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, सी वोटर के इस सर्वे में हमने जो पूछा था उसमें पहला सवाल यह था कि सांसद या विधायक पार्टी क्यों बदलते हैं। सबसे पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला सवाल यह पूछा गया था कि सांसद और विधायक पार्टी क्यों बदलते हैं, उसमें महत्वाकांक्षा की वजह से 28.9% लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से वो पार्टी बदलते हैं। उसमें एनडीए समर्थक भी कहते हैं कि 36.8% एनडीए समर्थक भी मानते हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से पार्टी बदली जाती है। जीत की संभावना की वजह से 12.6%, वैचारिक मतभेद सिर्फ 6.2% लोग मानते हैं कि वैचारिक मतभेद होता है। हर बार कारण यह दिया जाता है कि पार्टी के साथ में, पार्टी नेतृत्व के साथ में हमारे वैचारिक मतभेद है, इसीलिए हम पार्टी चेंज कर रहे हैं। लेकिन लोग समझते हैं, लोगों को लगता है, 6.2% लोगों को ही लगता है कि उसके वजह से बदला जाता है। दबाव या प्रलोभन, सबसे गंभीर बात, 35.3% लोग ये कहते हैं कि चुने हुए सांसद या विधायक दल बदल प्रलोभन या दबाव के वजह से करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। और उसमें एनडीए समर्थक भी 24.3% है, विपक्ष के लोग 48.8% है और अन्य 30.5% है, अन्य कोई कारण 4.4%। दूसरा सवाल जो हमने लोगों को पूछा था, क्या सांसद और विधायक का दल बदलना विश्वासघात माना जाना चाहिए, सीधा सवाल था लोगों से, लोग क्या समझते हैं। हाँ कहने वाले 28.9% लोग, ना कहने वाले 12.6% लोग हैं, पता नहीं कहने वाले 13.5% लोग हैं। यानी ज्यादातर लोगों को लगता है कि बदलता विश्वास है। मेरे ख्याल से ये आंकड़े थोड़े से गड़बड़ है, क्योंकि दल बदलना विश्वासघात है। 73.9% लोगों का ये मानना है कि ये विश्वासघात है, यानी ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये विश्वासघात है। तीसरा सवाल जो हमने पूछा था कि चुनाव से पहले का दल बदल वोटरों के फैसले में कितना महत्वपूर्ण होता है, यानी कोई अगर चुना हुआ उम्मीदवार दल बदल करता है तो अगली बार जब वो चुनाव का सामना करता है तो वहां का मतदाता क्या इस बारे में ख्याल रखता है मन में कि इसने दल बदल किया हुआ है। 61.3% लोग कहते हैं कि हाँ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद इनमें से कई ज्यादा लोग जीत कर आए हुए भी हमने नजर आए हुए हैं, कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। 11.9% लोग, कोई खास महत्व नहीं है। 11.6% बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। 9.8% कह नहीं सकते। 5.5% लोग इसके बारे में कहते हैं। चर्चा शुरू होगी इस पूरे मामले को लेकर, बाकी सवाल भी हम चर्चा के दौरान लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन शिवम त्यागी, साफ नजर आता है कि जनता को लगता है कि चुनाव के बाद जो चुने हुए विधायक है या सांसद है, अगर वो अपनी भूमिका बदल देते हैं तो वो ठीक नहीं है। उन्हें लगता है कि किसी न किसी, ज्यादातर लोगों को लगता है कि दबाव के वजह से बदल रहे हैं, और ये विश्वासघात है, ये मानने वाले भी 73% लोग यहां पर नजर आते हैं।
9: देखिए साहिल जी, आपके डेटा और आपके सर्वे का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पहली बात तो ये कि अगर कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है और उसको डर और दबाव और प्रेशर लगता है तो माफ कीजिए, ये जगह उसके लिए है नहीं। समाज सेवा या जनता की सेवा करने के लिए जब आप इस रास्ते को चुनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए वो सब चीजें, क्योंकि आपको सब चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि एक बार लग गई तो अगर कोई बड़ी बात हो गई तो बात अलग है, वरना 30 साल तक या 20 साल तक या 25 साल तक या 40 साल तक आपका कोई टेस्ट नहीं है। हर पांच साल में लिटमस टेस्ट देकर जनता के बीच में आदमी को जाना पड़ता है, आपको चार काम कराने पड़ते हैं, हर किसी के पास जाना पड़ता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमना पड़ता है, और अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और अगर आपको लगता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो महत्वाकांक्षा की वजह से है तो आप हार जाएंगे, आप नहीं जीतेंगे। इस देश की जनता उनको देखती है, अच्छे तरीके से समझती है। और रही बात, मैं मानता हूं कि इससे फर्क पड़ता है बिल्कुल, लेकिन एक चीज बहुत है, इसका सिर्फ यही कारण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक जो आपके कैप्टन हैं, अगर वो बहुत ही शिथिल हैं, वो बहुत ही डेड हैं, वो राजनीतिक तौर पर बिल्कुल एक्टिव नहीं है, वो अपनी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल नहीं रहे हैं, पार्टियों को जो है फैमिली प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, तो माफ कीजिए, आपकी पार्टी के नेता, सांसद, कार्यकर्ता आपके एम्प्लॉई नहीं, उनको कि आप और आपके बेटे

0: रहेंगे, आपको लगता है कि नहीं रहना है नहीं रहिए, लेकिन इस्तीफा दिया जाता है उसमें। आपको मालूम है कि अगर कंपनी बदलनी है तो इस्तीफा देना पड़ता है, सही है ना? तो राजनीति में इस्तीफा देने का चरण खत्म हो गया, इसीलिए लोगों को लगता है कि विश्वासघात है।
1: नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इस्तीफा नहीं देते तो क्या 3 साल बाद 4 साल बाद या फिर 5 साल बाद
0: शिवम त्यागी, आपके ऑडियो पे कुछ मुद्दा आ रहा, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है, वो जरा ठीक की जाएगी, उसके बाद दोबारा आपसे संपर्क किया जाएगा। लेकिन अभय दुबे, जिस तरीके से चीजें यहां पर नजर आ रही है, शिवम त्यागी माफ करिए, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वो ठीक किया जाएगा। लेकिन अभय दुबे, यही सवाल आपके तरफ, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी या बाकी धड़े कर रहे हैं, हमने देखा कि तोड़फोड़ की राजनीति तो आपके समय पर भी हुई थी और लोगों को ये कभी पसंद नहीं आता था, यही बात आज भी यहां पर दिखाई दे।
2: बहुत ही अच्छा आपके सर्वे के परिणाम है। भारत का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर भी हूबहु यही भावना रखते थे कि दल बदल एक विश्वासघात है, अगर 73% लोग कह रहे हैं। और प्रलोभन और दबाव की वजह से और महत्वाकांक्षा, मतलब वो भी उसी का एक हिस्सा है, आर्थिक या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, वो 63% लोग कह रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का प्रावधान क्या है, वो कहते हैं मेंबर शेल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड वेयर हिज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। मतलब पहले पूरे राजनीतिक दल अगर मर्ज नहीं करता तो चाहे उसके टू थर्ड मेंबर चाहे तो भी किसी राजनीतिक दल में नहीं जा सकते। शिवसेना के केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़िए, उन्होंने कहा कि ये गलत बात है कि कोई लेजिस्लेटिव पार्टी, मतलब कोई विधायकों के प्रतिनिधि व्हिप का निर्णय ले ले कि कौन होगा, कोई विधायकों के प्रतिनिधि नेता के पक्ष के नेता का निर्णय ले ले कौन होगा, नहीं, राजनीतिक दल को यह तय करना है। और उन्होंने ये भी कहा, यहां तक कह दिया कि गवर्नर ने जो फ्लोर टेस्ट का निर्णय लिया था वो भी अवैधानिक था, लेकिन चूंकि ठाकरे साहब इस्तीफा दे चुके थे इसलिए हम उस निर्णय को रिवर्स नहीं कर सकते। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय
0: दिखाई दे रहा है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है।
2: सुन नहीं ना, मैं बता रहा हूँ
0: अभय दुबे जी, एक बात तो देखनी पड़ेगी ना। देखिए, एक तरफ तो लोग कहते हैं कि विश्वासघात है, एक बात अलग होती है कि लोगों के मन में क्या है। लोगों को दिखता है कि विश्वासघात है, लेकिन देखिए महाराष्ट्र में आप जिन पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं उसमें से 95% लोग तो जीत कर आ गए दोबारा, तो ये विश्वासघात वोटिंग के समय कहां जाता है?
2: मेरा साहिल जोशी जी, इस बात का संदेह माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने व्यक्त किया था, जो आप कह रहे हैं ना प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने कहा था आडवाणी जी ने कि ये नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई, कुछ लोग निजी हित साधने आए हैं। तो अडानी जी का पैसा और श्री राम मंदिर के चंदे चोरी के पैसे से विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त की जा रही है, क्या बात करते हैं आप? जो सिटीजन नेशनल पार्टी एक कोई पार्टी है जिसका एक सांसद नहीं है, और क्या कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष को कि साहब एक काम कीजिए, हमने मर्ज कर दिया इस पार्टी में, हमें अलग बैठने की व्यवस्था दे दीजिए। अरे जिसका एक भी सांसद नहीं है, जिसके सांसद में एग्जिस्टेंस नहीं है, उस राजनीतिक दल की आप मान्यता को स्वीकार कराकर एक आपको लड़ना है इस्तीफा दे दीजिए। चुनाव लड़िए, आपने ठीक कहा, आप इस्तीफा देकर चुनाव आइए, लड़िए मैदान में, उसके बाद तय होगा। लेकिन ये सीधे खरीद पर क्यों कर रहे हैं, आखिरी बात कहना चाहता हूँ, ये इसलिए कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री क्योंकि वो चाहते हैं कि जो डिलिमिटेशन का बिल है वो अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए पास करें। आखिरी बात कहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा
0: इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एडवोकेट सुसीबेन शाह,
2: अटल जी
0: कल तो आपके नेता कह रहे थे कि जो 6 सांसदों का हुआ है वो तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन ये पिक्चर अलग कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब सर्वे में लोगों को पूछा जाता है तो वो कोई और पिक्चर वहां पर रख रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये विश्वासघात है पब्लिक मैंडेट के साथ में। 2024 में जो सांसद मशाल पर जीतकर जाते हैं, उस मुद्दे पर जीतकर जाते हैं जिस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे खड़े थे, आज वही मुद्दा बुलाकर जब आपके साथ आ रहे हैं तो उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है। भले अगले चुनाव में वो जीत जाए, लेकिन आज की स्थिति में पिक्चर तो लोग यहां पर यह रखने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देखती है आप इसको?
3: नमस्ते साहिल भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो, एंड नमस्ते मेरे सारे सहभागी मित्रों को भी। जैसे मैंने शिवम भाई को, मैं जस्ट एक लाइन ऐड करना चाहूंगी साहिल भाई, कि पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ नहीं होती है। हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर पार्लियामेंट एमएलए एमपी को, ही इज अ करियर पॉलिटिशियन, और उन्हें अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी

0: अपने कार्यकर्ता को जोड़ के रखना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, आजकल के कार्यकर्ता वेरी इट्स एन एस्पिरेशन क्लास, वो चाहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ बदलाव हो, प्रगति हो, विकास हो, और इसलिए उसमें उनका सहभाग जब होगा जब एमएलए और एमपी काम कर पाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा यू राइटली आंसर्ड कि जो आपका जो सर्वे है जिसमें आपने बताया कि लोग नाराज है, लेकिन 2022 में उठाव किया और आप देखिए इलेक्शन में अभी एमएलए हम डंके की चोट पर जीते जीत के आए गए विधानसभा में, तो जो काम करता है, जो डिलीवर करता है, जो विकास करता है, वो आगे बढ़ता है। एज फार एज शिवसेना के मैं बात करूं, मैं समझती हूं दिस इज होम कमिंग। हमारा पक्ष शिवसेना है, हमारा चिन्ह धनुष बाण है, और विश्वास सारे प्रतिनिधि को, सारी जनता को एकनाथ राव जी शिंदे के साथ है, वो काम करते हैं। और मैं मानती हूं कि ये छह जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जुड़ेंगे, तो वो क्यों आए हैं? क्योंकि शिवसेना के साथ आए और हमने मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि वेन जब आप जब बड़े एमपीओ की बात करते हैं, दिग्गज नेता हैं, उनमें आगे पीछे मन मुटाव होते रहते हैं, लेकिन हमारे एकनाथ राव जी शिंदे ने और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने मेहनत की, उनको पर विश्वास रखा, उनके साथ कम्युनिकेट किया, उनको समझाया कि देश की प्रगति के लिए, विकसित महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि विकसित भारत चाहिए तो रास्ता विकसित महाराष्ट्र से ही जाता है। तो मैं समझती हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है, इट्स अ होम कमिंग एंड वी वेलकम इट। मेरे भाई अभय दुबे जी बता रहे थे
1: आशुतोष
0: अबाउट
1: जी,
0: एंटी लॉ।
1: यही बात
0: अभय
1: कही
0: भाई
1: जाती है बार बार।
0: प्लीज एक मिनट, साहिल
1: जब भी
0: भाई वन
1: लोगों
0: सेकेंड
1: को दूसरे पार्टी
0: वन
1: से
0: सेकेंड
1: लिया
0: वन
1: जाता है, तब यही
0: मिनट
1: कहा जाता है कि हम तो विकास की राह पर निकल पड़े हैं। अगर
0: वन
1: आप विपक्ष में
0: मिनट
1: रहेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। सर्वे में लोग कुछ भी कहे, विश्वासघात है या बाकी है वो जरा दिखा दीजिएगा।
0: नहीं नहीं
1: से
0: साहिल भाई
1: 73% लोग कहते हैं कि विश्वासघात है,
0: क्यों नो अभय
1: लेकिन
0: भाई
1: जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तब तो मामला कुछ और निकल के आता है।
0: नहीं,
1: आशुतोष,
0: जनादेश आप सुन लीजिए साहिल भाई, जनादेश पर
1: नहीं
0: उठे
1: देखिए,
0: हैं
1: अभी
0: और जो
1: भारतीय
0: अवाम
1: जनता
0: को
1: पार्टी
0: दिए
1: के
0: गए
1: प्रवक्ता ने कहा कि
0: अशोक जी
1: प्राइवेट
0: आता हूं
1: लिमिटेड
0: आपके पास,
1: कंपनीज बन
0: बाकी भी
1: जाए।
0: सवाल है,
1: आएंगे
0: एक
1: आपके
0: सेकेंड
1: पास
0: एक
1: आएंगे।
0: सेकेंड,
1: आशुतोष जी,
0: जो
1: आपके आप
0: प्राइवेट
1: पहले, आप
0: कंपनीज
1: उसके
0: बन
1: बाद
0: जाए,
1: रजत सेठी। हाँ,
0: मैंने
1: बीजेपी
0: सुना
1: के
0: है
1: प्रवक्ता ने
0: प्राइवेट
1: कहा कि चूंकि
0: कंपनीज बन
1: चूंकि पार्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है, इसलिए लोगों को दिक्कत होती, छोड़ के चले जाते हैं। अब अभी मैं सुसीमेन शाह को सुन रहा था, उन्होंने क्या कहा, एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे, यानी पहले वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, आज एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। तो
0: एक
1: बदलाव
0: आदित्य
1: क्या
0: ठाकरे
1: हुआ भाई?
0: सेम, नहीं, आशुतोष
1: आप
0: भाई
1: सुजीबेन शाह, हमारे ख्याल से जो असली शिवसेना है उसके किसी कुछ और बड़े
0: एक ही
1: नेताओं का नाम ले
0: शिवसेना है
1: सकते थे,
0: भाई
1: लेकिन उन्होंने नाम लिया
0: आशुतोष
1: एकनाथ
0: भाई, एक ही
1: शिंदे
0: शिवसेना
1: का और
0: है।
1: श्रीकांत शिंदे का नाम लिया। इसका मतलब यह है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये
0: He's an
1: सांसद आ गए।
0: MP.
1: खैर छोड़िए छोड़िए इसको, मैं इस डिबेट में नहीं पड़ता। दूसरी बात, अभी सुशीलबेन शाह ने क्या कहा कि ये करियर पॉलिटिशियन है। हम तो समझते थे कि ये जो लोग एमपी एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, दरअसल ये लोग जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, करियर बनाने के लिए नहीं आते। करियर बनाने के लिए साहिल जी आप हैं, आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार रहा हूं, तो हम लोग
0: मैं
1: करियर
0: क्यों
1: बनाने के
0: लाते
1: लिए
0: हैं
1: आते हैं, या एडवोकेट है वो करियर बनाने के लिए आते हैं। हमें नहीं मालूम था कि एमपी एमएलए नेता जो है वो

0: ये करियर पॉलिटिशियन है। हम तो समझते थे कि ये जो लोग एमपी एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, दरअसल ये लोग जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, करियर बनाने के लिए नहीं आते। करियर बनाने के लिए साहित्य आप हैं, आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार रहा हूं, तो हम लोग
1: इसलिए
0: करियर
1: क्यों
0: बनाने
1: आते
0: के लिए
1: हैं?
0: आते हैं, या एडवोकेट है वो करियर बनाने के लिए आते हैं। हमें नहीं मालूम था कि एमपी एमएलए नेता जो है वो करियर बनाने के लिए आते
1: आप
0: हैं,
1: चौबीस
0: वो
1: घंटा
0: जनता की सेवा करने के लिए नहीं आते हैं। इसीलिए जो आपका ये सर्वे कह रहा है कि 73.9% लोग कह रहे हैं कि दरअसल
1: दल
0: हाँ
1: पार्लियामेंट
0: जी
1: में, सुन लीजिए
0: साहिल
1: आशुतोष जी, इट
0: साहिल,
1: इज योर
0: पार्लियामेंट में
1: करियर,
0: सबसे
1: ये
0: बड़ा दल
1: टेक इट
0: कैसे हो गए? एक मिनट एक
1: सीरियसली।
0: मिनट एक मिनट एक एक मिनट आशुतोष, एक मिनट। सुशीपेन, पार्लियामेंट में सबसे बड़ा दल कैसे बन गए आप महाराष्ट्र में, जरा बताइए।
1: महाराष्ट्र से,
0: 2024 के
1: महाराष्ट्र
0: नतीजे
1: से,
0: कुछ और कहते हैं।
1: महाराष्ट्र
0: हाँ,
1: से
0: कैसे कैसे बने बताइए, महाराष्ट्र में कैसे
1: नहीं,
0: बने,
1: कैसे
0: कैसे
1: बने
0: बने?
1: यानी हमारे खुद के
0: दो हजार चौबीस के
1: शिवसेना
0: नतीजे
1: के
0: क्या है?
1: 30, नहीं, साहिल भाई, लेट मी टेल यू दिस, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये जो हमारे सांसद हैं, 6 सांसद हैं, वो वापस घर वापसी हो रहे हैं, हमारे साथ शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं।
0: तो आपके आपके घर से चुनाव क्यों नहीं लड़ा था उन्होंने?
1: नहीं,
0: वो पहले आपके पास
1: क्योंकि
0: आते और आपके आपके
1: उनको
0: घर से चुनाव लड़ लेते।
1: उनको नहीं, आप सुन लीजिए, शिवसेना तब जब यूबीडी के साथ लड़ा था, नहीं, होल्ड ऑन दुबे जी, रुक जाइए,
2: साहिल जी,
1: जब वो लड़े थे उनको विश्वास
2: साहिल
1: था
2: जी,
1: कि जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी थी,
2: हाँ
1: मशाल लेके आगे चलेगी, हमारे
2: हाँ
1: साथ वॉक द टॉक, कंधे से कंधा मिला के लड़ेगी। साहिल भाई, ऐसा
2: ठीक
1: हुआ
2: है,
1: नहीं।
2: चलिए।
1: आप जानते हैं जिला परिषद में क्या हुआ, जब पूरा
0: एक
1: एक
0: बयान
1: तरह
0: सुशीबेन शाह का
1: से,
0: बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा दिलचस्प बयान है। लोग
1: आप
0: भले
1: लिखिए
0: आज की स्थिति
1: जनादेश
0: में
1: में,
0: रजत सेठ
1: देखिए,
0: जी इस बात
1: काम
0: को
1: करिए,
0: मान
1: आप
0: रहे हो,
1: जीतेंगे।
0: अगर लोग नहीं, एक मिनट सुशीबेन जी, एक मिनट प्लीज।
1: जी,
0: रजत, आज की स्थिति में ये बात तो सुशीबेन ने सही कहा कि भाई अभी लोग कह रहे हो कि ये विश्वासघात है, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव में कहां इसका असर होता है?
2: साहिल जी, फर्क तो पड़ना चाहिए। और जिस तरह से आइडियोलॉजी और वैचारिकी को दरकिनार करके ये उठापटक जो चल रही है राजनीति में, ये कहीं से भी एथिकल नहीं है। कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस भी कर रही है, कर्नाटका में भी करती है, तेलंगाना में भी करती है, और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, शिवसेना भी कर रही है, सारी पार्टियां गलत कर रही हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता कि आपको जिस वैचारिकी पे जनता ने चुन के भेजा है उस पे आपको टिक के रहना है कम से कम 5 साल, और अगर आप नहीं टिक
0: लेकिन
2: सकते
0: रजत,
1: तो
0: दो पॉलिटिकल पार्टी के नेता, आपने पूरी आपने सुना ना, क्योंकि आप पांचवें हैं इस पूरे लाइन में। दो लोगों ने कहा जो सत्ता में है आज की स्थिति में, करियर पॉलिटिशियंस हैं, करियर पॉलिटिशियंस हैं,
1: जनता।
0: करियर पॉलिटिशियंस आइडियोलॉजी के बारे में नहीं सोचते, करियर पॉलिटिशियंस कौन से राजनीतिक पार्टी में है उसके बारे में नहीं सोचते हैं।
2: साहिल जी,
0: यही
2: मैंने
0: यही तो दलील दी गई है ना आज की पूरे डिबेट में,
1: ये
0: आपने सुना उसको?
2: नहीं, ये देखिए, ये जो वोकेशनलाइजेशन हुआ है राजनीति का, लोग महत्वाकांक्षी हैं, उनको लगता है कि कब तक मेरी उम्र निकलती जा रही है, कब तक विपक्ष में बैठे रहेंगे बेंचेस में, कोई यहाँ पे कोई एक विचारधारा के लिए लड़ने वाला है ही नहीं। और विपक्ष में ये और ज्यादा बड़े व्यापक तरीके से दिखता है, क्योंकि वहां पे वैचारिकी और ज्यादा कमजोर है। आप देखिए ना कि वैचारिकी अब 10 साल में क्या निखर के नहीं आ सकती थी विपक्ष की? भारतीय जनता पार्टी भी तो विपक्ष में बैठी थी, वहां ऐसा होता था कि उनके बड़े दिग्गज नेता पार्टी लगातार छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। जब विपक्ष में बैठे तो एक एक चीज पे टिक के बैठे ना, और इसीलिए मैं बोलता हूं एक आइडियोलॉजिकल बैकबोन होने की जरूरत है। संघ को ये लोग चाहे जितना गाली दे लें, लेकिन कुल मिला के ये बात है जिसको ये दरकिनार नहीं कर सकते कि एक आइडियोलॉजिकल स्पाइन है, पूरे मूवमेंट की एक आइडियोलॉजिकल स्पाइन है कंजर्वेटिव मूवमेंट की इस देश में, और यहां पर कांग्रेस मात खाती है, और कांग्रेस के जितने भी गठजोड़ दल हैं जो समाजवाद की राजनीति लेके चलते हैं लेकिन प्लेन में घूमते हैं, चार्टर में घूमते हैं, और आलीशान बंगलों में रहते हैं, वो समाजवाद को
0: ये बड़ी
2: किनारे
0: दिलचस्प
2: करके उन्होंने
0: टर्मिनोलॉजी यहां
1: राजनीति
0: पर
1: की है,
0: आशुतोष रजत
1: इसीलिए
0: सेठी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी दिलचस्प पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी यहां पर रजत सेठी इस्तेमाल कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल स्पाइन, यानी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। बड़ा इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है ये, लेकिन क्या आज की स्थिति में किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के पास ये रीढ़ की हड्डी बची है क्या? पर्सनल महत्वाकांक्षा के अलावा किसी के पास भी रीढ़ की हड्डी बची है क्या? यही कारण है कि इस तरीके से
1: देखिए,
0: हमें दल बदल लगातार दिखाई देता है। चर्चा आगे बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन जरा दो और सवाल आपके सामने रखता हूं, पैनल के सामने, उसके बाद ही आगे बढ़ाएंगे। शिवम त्यागी भी बहुत देर से इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछली बार उनको बोलने का मौका नहीं मिल पाया था। दो अगले सवाल भी जरा आपके सामने रख दूं मैं। चौथा सवाल जो पूछा गया था जनता से, चौथा सवाल यह था कि सांसद और विधायक का पार्टी बदलना कितना स्वीकार्य है, क्योंकि लोगों को भी पूछना चाहिए, वही जीत जितवा कर देते हैं या हरवाते हैं, तो कितना स्वीकार्य है पार्टी बदलना? पूरी तरह स्वीकार्य है 14.8% लोग कहते हैं, विशेष परिस्थिति में स्वीकार्य हो सकता है, ये एनडीए के समर्थक ज्यादा संख्या में कह रहे हैं कि विशेष परिस्थिति में 34.6% इनकमिंग उनके पास है, तो जाहिर सी बात है कि विशेष परिस्थिति में स्वीकार्य है।

0: वो कह रहे हैं, लेकिन 29.1% लोग कुल मिलाकर ये कहते हैं कि सिर्फ विशेष परिस्थिति में, पूरी तरीके से अस्वीकार्य है, नहीं होना चाहिए। 49.3% यानी करीब करीब 50% लोगों को लगता है कि अस्वीकार्य होना चाहिए, और इसी के वजह से दल बदल कानून बनाया गया था। क्या नहीं सकते 6.8%। पांचवा सवाल, क्या दल बदलने पर सांसद और विधायक की सीट खाली हो जानी चाहिए? क्या आज की स्थिति में अब ये नौबत आ गई है इस देश में कि पॉलिटिकल मोरालिटी खत्म होने के बाद अब यही चीज होने की जरूरत है कि सीट खाली कर दीजिएगा? अगर आप दल बदलना चाहते हैं चुनाव के बाद में, तो सीट खाली करिए, दोबारा चुनाव लड़िएगा। हाँ कहने वाले एनडीए के समर्थक भी 60.2% लोग कहते हैं कि हाँ सीट खाली करवाइए, दोबारा चुनाव लड़वाइए और फिर आप वापस संसद में या विधानसभा में आकर बैठिए। 64.5% लोग कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं कहने वाले 14.3% और 21.2% कहते हैं कि पता नहीं। यही पर शिवम त्यागी सवाल उठता है कि पॉलिटिकल रीढ़ की हड्डी, आइडियोलॉजिकल रीढ़ की हड्डी, आइडियोलॉजिकल स्पाइन, ये कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। जिस तरीके से कर्नाटक में आपके यहां पर कांग्रेस के विधायक आए, उन्होंने सारे 15 विधायकों ने इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के विधायक आए, सभी लोगों ने इस्तीफा दिया, दोबारा वहां पर चुनाव लड़ा। लेकिन आज पिछले एक महीने से इस देश में जो देखा जा रहा है, लोग कहते हैं कि इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए और फिर आपको जो तय करना है कर लीजिए।
1: साहिल जी, 5-6 सवाल इकट्ठे हो गए। सबसे पहले तो ये प्रवक्ता कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की तरफ अगर लोग जा रहे हैं तो इनके पास अडानी है, इनके पास अंबानी है, इनके पास चुनाव आयोग है, ये है वो है, फलाना है ढकना है। मेरा सीधा सवाल है, और ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र पर खतरा है और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में 1967 से लेकर 1971 के बीच में 45 राज्यों की सरकार गिरी, 16 जगह राष्ट्रपति शासन लगे और 1800 विधायक सांसद इंदिरा जी की तरफ को गए। 1800, ये एक महीने की कहानी नहीं है भाई, आप ये सिलेक्टिवली पिक नहीं कर सकते। और मेरा आपसे निवेदन है कि एक साइड आप देख रहे हैं, कृपया दूसरी भी देखिए, मैं उस पर भी आ रहा हूं, एक, एक, एक दूसरा एंगल जो आप नहीं देख रहे हैं। आप जो शिंदे जी को लेकर खास तौर पर कह रहे हैं, द्रोणाचार्य के दो शिष्य हुए, एक उनका बेटा अश्वत्थामा और एक हुआ अर्जुन, लेकिन जब बात विश्व के सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने या बनाने की बात आई तो अर्जुन ही बना, वो बेटे को नहीं बना सकते। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस एक चीज है? क्यों नहीं आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते कि जब इस तरीके से लोग छूट कर जा रहे हैं, अपने में भी कोई कमी है? क्यों आप इस बात को नहीं मानने को तैयार हैं कि स्थितियां इतनी बद से बदतर क्यों होती जा रही है? क्या इस देश में बाकी पार्टियां नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ जब था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और
0: अर्जुन बन गया
1: मुखर्जी जी ने उस,
0: लेकिन अर्जुन का
1: आगे नहीं गए? क्या भारतीय जनता
0: थामा का अंगूठा काट कर तो अर्जुन को नहीं बनाया गया था ना?
1: नहीं, किसने कहा काट कर बनाया गया? मैं तो खुद कह रहा हूं, लेकिन आप बेटे हैं इसीलिए सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे उतना जरूरी नहीं है। आप गलत वो
0: ठीक है, अभय दुबे जवाब
1: नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप गलत टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं। अगर आप बेटे, प्लीज थोड़ा समय दीजिए 10 सेकंड, मैं बोला नहीं बिल्कुल भी, आप अगर बेटे हैं
0: ठीक है 10 सेकंड,
1: तो उनकी बात खत्म होने की वजह से आप सर्वश्रेष्ठ बने वो नहीं रह सकते। थैंक यू। और एक और चीज कहना चाहता हूं, जहां तक बात सरकारों की और तमाम सारी चीजों की है, इस देश में पार्टियां किसने नहीं तोड़ी? इंदिरा गांधी पार्टी तोड़कर नहीं आई थी क्या? कांग्रेस वो बनाई थी। पीएस संगमा पार्टी तोड़कर नहीं आए थे क्या? ममता बनर्जी पार्टी तोड़कर नहीं आई थी क्या? इसके अलावा वाईएसआरसीपी कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी जो है पार्टी तोड़कर नहीं आए थे क्या? बताइए आप मुझे, इस देश के कितने लोग हैं? और शरद पवार जी पार्टी तोड़कर नहीं आए थे? कौन कह रहा है ये आज की कहानी है? ये कहानी इस देश में, इस राजनीति में हमेशा से रही है, लेकिन जब लोग आपकी तरफ जा रहे थे
0: बदलनी नहीं चाहिए,
1: बहुत फल फूल
0: रहा, कहानी पहले चल रही है वही कहानी आगे बढ़ती रहनी चाहिए।
1: तो कहते हैं
0: ये कहानी घर घर की होनी चाहिए, ये कहानी जब तक इस देश में राजनीतिक लोकतंत्र जिंदा है तब तक ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। इस देश का राजनीतिक चरित्र बदलने की कोई जरूरत नहीं है, यही कहने की कोशिश तो नहीं हो रही है यहाँ पर? अभय दुबे जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद यही सवाल लेकर मैं आशुतोष जी के पास भी जाऊंगा। अभय दुबे जी, लेकिन सबसे पहले आपका जवाब, जो चरित्र आपने बनाया हुआ है वो कंटिन्यू किया जा रहा है?
1: इनकॉम्पिटेंट बनाइए उनको, अच्छा करें।
2: नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं बनाया, हमने देश में प्रजातंत्र स्थापित किया। इनको चुप कराइए साहिल जी, गलत बात है ये। साहिल जी
0: बोलिए बोलिए। अभय दुबे जी आपकी बारी।
2: सबसे पहले प्रजातंत्र पर आघात किया जनता पार्टी ने, 12 कांग्रेस शासित राज्यों की सरकार एक के बाद एक गिराई आजाद भारत के इतिहास में। सबसे पहला आक्रमण किया जनता पार्टी ने, जिसमें उस समय की तत्कालीन आज की भारतीय जनता पार्टी।
0: तो 1980 में इंदिरा गांधी जब लौट कर आई, उसके बाद उन्होंने भी तो वही किया। उसके बाद जनता पार्टी के सारे सारे सारे राज्यों को उन्होंने गिरा कर रख दिया। तो यही तो इस देश में चलता आ रहा है कि जनता पार्टी करेगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस पार्टी कर रही है तो आज बीजेपी करेगी। ये चरित्र ऐसे ही चलता रहेगा क्या? यही तो सवाल है अभय दुबे जी।
2: कभी आजाद भारत के इतिहास में ऐसा देखा कि देश का प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल जाए और कहे शुभेंदु अधिकारी टेलीविजन पर भ्रष्टाचार के पैसे लेते हुए पकड़ाए और उसको चीफ मिनिस्टर बना दे? कभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जाए असम और कहे हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है, एक बुकलेट उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी निकाले और उसको चीफ मिनिस्टर बना दे? आपने देखा कि यामिनी यादव, यशवंत यादव, प्रदीप सरनाइक ये और अजीत पवार, हसन मुश्रीफ, प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों को भ्रष्टाचारी और आतंकवादी का साथ बताएं और उनको सत्ता सौंप दे? कभी आपने देखा? तो ये जो है छापा मारो
0: और
2: विधायक सांसद हड़पो, ये नीति अपना रहे। मैं कह रहा हूं बहुत मोटे
0: जनता को आखिरी सवाल ये भी पूछा गया था, क्योंकि ये सब तब चल रहा है और बार बार जब ये कहा जाता है कि पहले भी ऐसा होता था, वही बदलने के लिए दल बदल कानून बनाया गया था, तो आखिर में ये भी पूछा गया है कि क्या सख्त दल बदल विरोधी कानून की जरूरत है? 75.5% लोग कहते हैं कि हाँ, दल बदल कानून और सख्त करने की जरूरत है। आशुतोष, क्या ये जरूरत आ पड़ी है या बंद कर देना चाहिए?
3: नहीं देखिए साहिल, सबसे पहले तो मैं रजत ने जो बात कही मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सम्मान लंबे समय तक करता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी में कभी डिफेक्शन नहीं होता था। मतलब उनके उनके अपने लोग नाराज होकर एक अलग पार्टी बना लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि 10 सांसद निकल गए किसी दूसरी पार्टी में, कम से कम मेरी नॉलेज में तो नहीं। ये इसलिए था क्योंकि विचारधारा की पार्टी थी। ये जो राजनीतिक पार्टियां जो तमाम टूट रही हैं, इनके अंदर विचारधारा की कमी है या विचारधारा नहीं है, लेकिन अब उल्टा भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गया। 40% लोग जो एमपी एमएलए बन रहे हैं वो दरअसल दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, करियर पॉलिटिशियन है जिनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। खुदा ना खास्ता अगर कल ऐसी स्थिति हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी टूटने की, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ये लोग टूटेंगे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से वहां आए हैं। जहां तक दल विरोधी
0: दल बदल कानून और सख्त होना चाहिए, आशुतोष ओरिजिनल
3: मेरा
0: दल बदल कानून और सख्त होना चाहिए।
3: साहिल, सिंगल लाइन का कानून होना चाहिए, जो कोई भी व्यक्ति सांसद एमएलए अपनी पार्टी छोड़ेगा इमीडिएटली उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी।
0: बस डू यू अग्री विद दिस जल्दी से आप इसे अग्री कर रहे हैं?
4: बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए और इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता है। जनता यही चाहती है और जनता की आवाज को सुनना चाहिए। आइडियोलॉजिकल फिडेलिटीज पैरामाउंट है राजनीति में। ये राजनीति में जो ये जिस तरह का ये रील का जगत में आ गया है ना, कि आप लोग कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल डूल के बन जाते हैं नेता, बड़े बड़े लोगों का चेहरा दिखा के, ये सब पॉलिटिक्स से जनता नफरत करती है। मजबूरी के तहत ऐसे लोगों को चुन रही है,
0: जनता जो नफरत करती है
4: नहीं मिलती है, मिलता है लोगों को।
0: ईवीएम के जरिए कभी दिखाई भी देगा कि अगर आपके राज्य में या आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका नेता अगर दल बदल करता है तो क्या वो ईवीएम में दिखाई देगा? यह भी सबसे बड़ी बात रहेगी। लेकिन इस बीच मेरा समय इस वक्त खत्म हो गया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जनता को जो हमने पूछा सी वोटर के जरिए, वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की थी। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हुगली में है, पश्चिम बंग दिवस के मौके पर एक जनसभा को भी वो संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और टीएमसी पर एक बार फिर जमकर हमला बोला है। पीएम ने क्या कहा वो जरा आपको एक बार।
5: मैं नाता रहा हूं उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी। दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है।
0: अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
6: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
7: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
8: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
7: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? I challenge you, Bajipa. अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे, हमें भी तो कमाने दो। I wanna ring you. Wait. Come.

खुलासा नंबर एक, दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती का जिम्मा संभालने वाले दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी गिनती करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। खुलासा नंबर दो, राम मंदिर के आरएमओ यानी रेडियो मॉनिटर ऑफिसर की भूमिका कटघरे में है। आरएमओ के कंधों पर ही सीसीटीवी से निगरानी का काम था। आरोप है चोरी के वक्त सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता था। बड़ी बात यह है कि 17 सालों से आरएमओ सीसीटीवी निगरानी का काम देख रहे थे और सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करते थे। खुलासा नंबर तीन, गेट पास बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले सोमेश आनंद एसआईटी के रडार पर हैं, क्योंकि बिना गेट पास के चढ़ावे की रकम या फिर चढ़ावे के जेवरात राम मंदिर से बाहर नहीं जा सकते थे। आरोप यही है कि सोमेश आनंद ने बिना चेकिंग के चढ़ावे की गाड़ी को मंदिर परिसर से बाहर जाने दिया। सवाल यही है, ऐसा क्यों किया गया। खुलासा नंबर चार, राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी को चढ़ावे की चोरी के पूरे खेल के बारे में पता था, बावजूद इसके थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की जांच में थाना प्रभारी की भूमिका भी शक के घेरे में है। तफ्तीश के बाद ही चढ़ावा चोरी कांड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, लेकिन आरोपों में घिरे जिम्मेदार खुद को बेदाग बता रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कांड का खुलासा होने के बाद मंदिर में दान करने वाले राम भक्तों ने जिम्मेदारों पर सीधे सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा भी घट गया है। जांच के बीच अब मंदिर आने वाले राम भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आई है। पिछले कई महीनों से हर महीने औसतन 7 करोड़ रुपए के आसपास दान राशि मिल रही थी। पिछले एक पखवाड़े में ये आंकड़ा घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं कर्नाटक की एक श्रद्धालु का आरोप है कि राम मंदिर में कीमती हार दान किया था, लेकिन आज तक उसकी रसीद नहीं मिल पाई है। पता नहीं राम मंदिर में चढ़ाए हार का क्या हुआ। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार यही दावा कर रहा है कि दान में मिली राशि और उसकी गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के चलते राम भक्तों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उस चढ़ावे को लेकर जो वो राम मंदिर में आस्था के नाम पर दान करते थे। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: राम मंदिर के दान को कितनों ने लूटा। राम भक्तों का दान किसने लूटने दिया। कितने किरदार और कितने राजदार। क्या गुनहगारों के चेहरे होंगे बेनकाब। हे राम, चोरी किसका काम। आरोप यही है कि आस्था के जिस मंदिर में राम भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया, उसी राम मंदिर में बीते 8 महीनों से दान पेटियों से चढ़ावे की रकम को चोर हजम कर रहे थे। चोर दान पेटियों को खाली करते रहे और जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे रहे। अब चढ़ावा चोरी के इन्हीं सनसनीखेज आरोपों की जांच SIT कर रही है। शुरुआती जांच में SIT को शक है कि सुनियोजित साजिश के तहत सिंडिकेट बनाकर राम मंदिर के चढ़ावे की राशि और जेवरात पर हाथ साफ किए गए। यही वजह है कि राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े जिम्मेदारों की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन राम मंदिर में पलीता कौन लगा रहा है। किसने राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया है। कौन है वो चढ़ावा चोर जिसने राम मंदिर की दान पेटियों को भी नहीं छोड़ा। ये तब है जब राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण ने भारतीय जनता पार्टी के चमत्कारी उत्थान की पटकथा लिखी। तो क्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी कांड ने विपक्ष को बैठे बिठाए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा थमा दिया। आरोप प्रत्यारोप को सियासी चश्मे से देखा जा सकता है, लेकिन राम मंदिर के दान से हुए खिलवाड़ का मामला जितना संगीन है उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज है, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोपों की आँच राम मंदिर की देखरेख करने वाले जिम्मेदारों तक पहुँच रही है। सबसे पहले आरोपों के कटघरे में खड़े किरदारों के बारे में आपको बताते हैं। किरदार नंबर एक, नाम चंपत राय, आरोप चढ़ावे की चोरी में शामिल। किरदार नंबर दो, नाम टिन्नू यादव, आरोप चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड। किरदार नंबर तीन, नाम गोपाल राव, आरोप राम भक्तों के दान को लूटा। किरदार नंबर चार, नाम अनिल मिश्रा, आरोप चढ़ावा चोरी में कमीशन खाया। राम मंदिर की दान पेटियों से चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जांच कर रही SIT ने संदिग्धों से पूछताछ की। SIT चढ़ावा चोरी के पूरे खेल का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाने में जुटी है। इसी कड़ी में राम मंदिर के जिम्मेदारों से SIT टीम पूछताछ कर चुकी है। राम मंदिर की दौलत लूटने वाले गुनहगारों के चेहरों को बेनकाब करने के लिए SIT कई एंगल से जांच कर रही है। SIT ने राम मंदिर में राम भक्तों की तरफ से चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए जाने वाले जेवरात का पूरा सिस्टम समझा, मतलब दान में आने वाले जेवरों का हिसाब किताब कैसे किया जा रहा है और खुलासे से पहले जेवरों पर हाथ कैसे साफ किया गया। आरोपों की जांच करते हुए SIT ने राम मंदिर की दान पेटियों का साइज चेक किया ताकि पता चल सके कि दान पेटियों में कितना चढ़ावा आ सकता है। जांच टीम ने CCTV और दूसरे निगरानी इंतजामों की जांच भी की। बड़ी बात यह है कि SIT ने बीते कुछ सालों में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीनों की डिटेल को खंगाला, क्योंकि आरोप ये भी है कि कौड़ियों के भाव की जमीन मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदारों ने ऊंचे ऊंचे दामों पर खरीदी।
1: में भी क्या शुरू हो गया है ऑपरेशन लोटस। क्या समाजवादी पार्टी में भी महाराष्ट्र जैसी कहानी दोहराने की तैयारी है। बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के कई सांसद बगावत के मूड में हैं और 2027 के चुनाव से पहले सपा में बड़ी टूट हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है या वाकई समाजवादी कुनबे में एक और दरार पड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी में जल्द बगावत का दावा नंबर एक, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार।
2: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।
1: दावा सिर्फ डिप्टी CM तक सीमित नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा में भगदड़ की भविष्यवाणी कर दी। दावा नंबर दो, चुनाव में हार के डर से बीजेपी में आएंगे समाजवादी पार्टी नेता।
3: देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर।
1: राजभर ने अब नया हमला बोलते हुए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा को लेकर भी सवाल खड़े किए। पीडीए कार्यक्रम में उनके नहीं पहुंचने पर राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर असंतोष है और इसी बहाने उन्होंने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव पर भी निशाना साधा। राजभर का आरोप पार्टी टूटेगी और उन्होंने इशारा किया कि शिवपाल यादव ही समाजवादी पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के टूटने की भविष्यवाणी हुई है, क्योंकि समाजवादी परिवार की सियासत में दरार और फिर जुड़ने की कहानी पुरानी है। साल 2012, पार्टी एक, परिवार एक, समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती और अखिलेश यादव यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदल गई। 2017 में परिवार की कलह खुलकर सामने आई। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरी बढ़ी। नतीजा सपा 47 सीटों पर सिमट गई। 2018 में परिवार की लड़ाई ने नया मोड़ लिया। शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद अखिलेश की पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत सकी और फिरोजाबाद जैसी पारिवारिक सीट भी शिवपाल के अलग लड़ने से हाथ से निकल गई। 4 साल बाद कहानी फिर बदली। अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर आए, परिवार फिर साथ दिखा और 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया। अब 2027 से पहले फिर वही सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार अखिलेश यादव अपने कुनबे और सांसदों को संभाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी खेमे की तरफ से एक के बाद एक दावे आ रहे हैं। केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दिनेश शर्मा, सबका दावा अलग अलग लेकिन निशाना एक, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं जो डर जाएगा वही दल छोड़ेगा, बीजेपी के मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। तो यूपी की सियासत में सवाल यही है, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा खेल होगा या फिर ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस का सियासी शोर है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
5: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: ओडिशा के बाद हुगली पहुंचे पीएम मोदी, पश्चिम बंग दिवस समारोह में टीएमसी और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम भी शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटें और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, पूछताछ में टिन्नू यादव और चार पुजारियों का गोलमोल जब। महाराष्ट्र के परभणी में बड़ा हादसा, यशबाड़ी मारुति मंदिर परिसर में निर्माणाधीन सभा मंडप की छत गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव का काम जारी। प्यार क्या रहा एनकाउंटर पर सियासी बवाल के बाद सम्राट सरकार का फैसला, न्यायिक जांच के आदेश जारी, आज मुख्यमंत्री ने डीजीपी को भी किया था तलब। कल नीट रीटेस्ट से पहले देशभर में तैयारियों का मॉक ड्रिल, 5,500 सेंटर पर सुरक्षा का जायजा, राहुल ने कहा उम्मीद है कि किसी बच्चे की ना टूटे उम्मीद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर कितनी पीढ़ियों के समर्पण और संघर्ष के बाद बना, ये आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मुद्दा बड़ा है, जब आज हिंदू आस्था की उस पावन भूमि से चढ़ावा चोरी का आरोप लग रहा है तो हर राम भक्त ठगा महसूस कर रहा है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के SIT की जांच पर भरोसा रखने की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए धर्म का मतलब धन है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के हर पहलू पर आज खुलकर बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अरबों करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर लगी चोट पर होगी। हमने साधु संतों का, इसीलिए जिनका बहुत जुड़ाव है अयोध्या से, उन सब का एक पैनल बुलाया। हल्ला बोल का मुद्दा है राम जी के चढ़ावे पर लगा चोर, सियासत घनघोर। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत।
1: राम का नाम, चढ़ावा चोरी का काम।
2: 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो। के SIT जांच, दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी।
1: चढ़ावे चंदे की लूट, कैसे मिली ये छूट?
3: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
1: चरण पादुका गायब, बहुमूल्य हार का पता नहीं।
4: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
1: टिन्नू से पूछताछ, चार पुजारियों से सवाल। जवाब गोल बोल, कब दूध का दूध पानी का पानी। राम मंदिर में भ्रष्टाचार, कौन गुनहगार?
5: भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग।
1: छठे दिन SIT जांच, कहां तक आंच?
2: अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
6: और उनकी श्रद्धा अयोध्या के प्रति नहीं है तो दूसरे की श्रद्धा पर सवाल उठाने का काम नहीं।
7: आज उस चढ़ावे की आस्था को, चीजों को आपने लूट लिया। कहां हैं आपके सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले?
0: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण पीठाधीश्वर श्री कल्की धाम संभल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर दास प्रवक्ता है खाड़ा परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश तिवारी जी धर्म गुरु के तौर पर जुड़ रहे हैं। यतीन्द्रानंद गिरी जी महामंडलेश्वर है जूना अखाड़ा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वेद मूर्तिनंद सरस्वती धर्मगुरु जुड़ गए हैं। आचार्य राज मिश्रा कथावाचक जुड़ गए हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज कथावाचक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महंत नवल किशोर दास जी, आप ही के पास आना चाहती हूं, क्योंकि अब मन में लोगों के बड़ा ही भाई, अब SIT तो गठित कर दी गई है लेकिन सियासी रूप से उस पर भी प्रश्न किया जा रहा है कि सच आएगा सामने नहीं आएगा। आप कैसे देख रहे हैं आरोपों को जो चढ़ावे की चोरी का आरोप लग रहा है?
8: सुन सुरेश रघुवीर सुवाऊ, निज अपराध रिसाइन काहू। जो अपराध भगत कर रही, राम रोष पावक सो जरही। देखिए, भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, आराधना का प्रतीक है, और वहाँ लोग समर्पण के साथ जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, आनंद के साथ जाते हैं। मंदिर बना, बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु निसंदेह कहीं न कहीं थोड़ी परेशानी तो है, पीड़ा तो है कि ये किस प्रकार की व्यवस्था में कहीं कोई चूक रह गई। जैसे राम राज्य हो रहा था तो मंथरा रूपी कहीं न कहीं खीर में नमक पड़ गया था, ये कहीं न कहीं व्यवस्था में कोई चूक तो रही है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हालांकि हमारी राज्य सरकार ने SIT गठित कर दी है, मुझे विश्वास है कि जो जो कमी रही होंगी, जो लोग दोषी हैं उनको दंड दिया जाएगा। प्रशासन तो दंड देगा पर भगवान भी दंड देगा। ये श्रद्धा का दोहन है, जिसने भी किया हो, मुझे नहीं पता किसने किया है, पर जिसने भी किया है अपराध है, भगवती अपराध है। भगवान का अपराध है और भगवान के अपराध से सबको बचना चाहिए। ये श्रद्धा का कहीं ना कहीं दोहन हुआ है, जिन लोगों ने भी किया होगा उनको दंड मिलना चाहिए। परमात्मा तो दंड देंगे पर प्रशासन का दंड भी मिले ऐसी मैं कामना करता हूं, और किसी की श्रद्धा को ठेस न पहुंचे मैं सबसे प्रार्थना करता हूं। कि ये व्यवस्था की कमी है, आप लोग जिस तरह से श्रद्धावान थे ऐसे ही बने रहें, अयोध्या जाएं, भगवान का दर्शन करें, अपना जो भी समर्पण कर रहे हैं वो करें। व्यवस्था में जो कहीं ना कहीं कमी रही है प्रशासन उसे अपने ढंग से देखेगा और आगे इसमें ठीक से सुधार हो ऐसी भी मैं कामना करता हूं।
0: आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं आरोपों को?
9: देखिए अंजना जी, कहीं ना कहीं धुआं तभी उठता है जब चिंगारी लगती है, लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर, योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी दुनिया के सामने लेकर के आएंगे। SIT गठित हुआ है, लेकिन अभी जो मैं सुन रहा था इसमें समाजवादी पार्टी जो है वह राजनीति कर रही है 2027 के लिए। कैसे समाजवादी पार्टी को शुरुआत में ही पता चल गया, और समाजवादी पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे को तुल दे करके लोगों के सामने यह प्रस्तुत कर रही है कि यह मुद्दा उन्हीं का है, यह पूरी तरह से राजनीतिकरण है। जैसा कि नवल किशोरदास जी महाराज ने बताया, ठीक मंथरा का काम समाजवादी पार्टी अथवा विपक्षी पार्टियां इसमें कर रही हैं। अगर कोई निश्चित तौर पर चोरी किया है तो उसका दंड भगवान भी देंगे और प्रशासन भी दंड देगा। मुझे योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर पूरा विश्वास है। अगर राज्य में किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि या तो उसका इनकाउंटर हुआ है, या उसके घर पर बुलडोजर चला है, या वह जेल गया है। इसमें भी चाहे वह कोई भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा कोई भी व्यक्ति हो, मुझे योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर, उनके स्वच्छता पर पूरा विश्वास है। निश्चित तौर पर उन्हें दंड मिलेगा, और साथ ही साथ भगवान के घर में चोरी होती है तो देर नहीं अंधेर नहीं होता, तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है। प्रभु श्री राम निश्चित तौर पर उसको दंड देंगे और पब्लिक के सामने यह ठीक आएगा। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति हो रही है उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी बार बार अपने आप को कह रही है कि हमने इस मुद्दे को लेकर क्या है, तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी की संलिप्तता भी है, क्या इसका भी जांच होने की जरूरत है।
0: ठीक है, ठीक है। आपके पास मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी अब आना चाहती हूँ। मैं तो चाह रही हूँ शुरुआती तौर पर जो जो जानकारी आप लोगों के पास है या आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल रही है वो आप लोग शुरू में हम लोगों को बताएं ताकि लोगों को चले। वेदमूर्ति नंद सरस्वती जी, आप बताएं आप कैसे देख रहे हैं?
10: देखिए अंजना जी, बहुत ही गंभीर विषय है। 100 करोड़ सनातनियों की आस्था के ऊपर प्रहार है। हमारे साधु संतों ने, कितने उन लोगों ने प्राणों की आहुति दी, और आजकल लोग जो राम भक्तों पर गोलियां चलाए थे वो राम राज्य की परिकल्पना की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो राम मंदिर की स्थिति है, राम मंदिर का धीरे धीरे व्यापारीकरण होता जा रहा है, धार्मिक आस्था खत्म होती जा रही है। आप अगर देखेंगे तो वही हनुमानगढ़ी में सारे सनातनी जाते हैं जो राम मंदिर में जाते हैं, वहां पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, वहां पे भक्तों को तिलक लगाया जाता है, वहां पे पूजन पाठ होता है। लेकिन वही राम मंदिर में सिर्फ राम भगवान जो है 100 पीस बन करके रह गए हैं। और ये कारण क्या है कि कुछ संगठन के लोगों को वहां पर लाया गया और साधु संतों को वहां से दरकिनार कर दिया गया, जबकि मठ मंदिर का संचालन सही रूप से अगर तभी होता है जब वहां के संचालन साधु संतों के द्वारा होता है। हम लोगों ने कई वर्षों से मांग किया है कि हमारे जो जितने भी मठ मंदिर है जहां पे सरकारी कब्जा है उसको मुक्त करें, साधु संतों को सौंपा जाए, तभी वहां की धार्मिक महत्व बचेगी, तभी वहां धार्मिक संस्कृति बचेगी, तभी जाकर के लोगों को जो भक्त आते हैं उनको भंडारा का प्रसाद मिलेगा, उनको वहां प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था होगी। लेकिन आज जो जिस तरह की बात होती, देखिए कुछ गुप्त दान भी आते हैं, तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तो हमारे यहाँ तो कहा गया है 60 वर्ष सहस्त्रानी क्रियते हरितमया, यानी जो दान का पैसा खाते हैं ना वो 60,000 वर्षों तक कीड़ा बनते हैं। तो इस तरह की चीजें, जो भी इस तरह के लोग हैं उनको तत्काल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो वहां के पदाधिकारी हैं उनको भी इस चीज को विशेष ध्यान रखते हुए अपने पद का त्याग करना चाहिए, जिससे लोगों को सही रूप से SIT का जांच हो सके
0: और विश्वास हो। आचार्य राज मिश्रा जी, संकट तो विश्वास का ही हो रहा है ना कि आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़।
11: अंजना जी, बहुत श्रीरामचरित मानस के अंतर्गत भगवान राम ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा था कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहो एक, और पाल ही पोस ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया इस प्रकार का होना चाहिए जो उस संस्था का पालन पोषण इस प्रकार करे, विवेक के साथ करे। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं कहूंगा कि इसमें जो लोग उस संस्था को चला रहे हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। मुझे लगता है सरकार की भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, बहुत साधारण विषय नहीं है। राम मंदिर साधारण विषय नहीं था। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत डिबेट किया है, आप लोग बहुत लड़े हैं, हम साधु संत जाकर के उस पर बहुत लड़े हैं। पूरे 154 देशों के अंतर्गत जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसका प्रसारण किया गया। माताओं ने आकर के अपने स्वयं सोचिए वहां आती हैं, अपनी कीमती ज्वेलरियां निकाल करके, हीरे जवाहरात निकाल करके, और माताएं बहनें आकर के उस दान पेटी के अंदर डाल करके चली जाती हैं, और फिर वहां इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। मुझे लगता है यह साधारण विषय नहीं है, इसका कठिनतम जांच होना

0: कल्पना जी, और ये मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर देखना चाहिए, आगे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए कि ये नहीं होने पाए। ये ऐसा कलंक है सनातन पर जिसको धोना बहुत आसान नहीं होगा, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए।
1: आचार्य चंद्रांशु जी बिल्कुल, और यही से बात को आगे ले जाते हुए, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप पलट नहीं सकते एक बार हो गया तो।
2: बिल्कुल अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य का विषय भी ठीक है अपनी जगह पर कि भगवान राम करोड़ों करोड़ राम भक्तों की आस्था के केंद्र है, और वहां पर इस तरह किसी की तरह की अनियमितता है या चंदा चोरी का जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे हम सबको शर्मसार होना पड़ रहा है। सामाजिक तौर पर अयोध्या की प्रतिष्ठा गिर रही है और कुछ लोगों की वजह से गिर रही है, और ये बिल्कुल जरूरी है कि जो लोग भी दोषी हैं उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दो टूक में उनका सभी देश ने भी सुना, हम सब लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी बन करके सुना। अब एक प्रश्न सामने उठता है कि विश्वास किस पर करना है, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाया है या जिनका खुद भी राम मंदिर आंदोलन से गहरा संबंध रहा, जो राम मंदिर आंदोलन में रहे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनके गुरु जी स्वामी अवैधनाथ जी और उनके भी गुरु जी स्वामी दिग्विजयनाथ जी भी राम मंदिर से जुड़े रहे। राजी एक सब अगर मुख्यमंत्री जो खुद राम आंदोलन का साक्षी है और इस बात को कह रहा है कि इतना टाइम आपने दिया, 500 वर्ष आपने इंतजार किया है, आप 15 दिन का टाइम हमको भी दे दीजिए, और उन्होंने यह भी अपील किया, आप मेरी बात सुनो, उन्होंने यह भी अपील किया है कि आपके पास जो भी साक्ष्य है आपराधिक तत्व पर SIT को उसको देने का काम करिए, और अपना टिप्पणी अगर हम पर सरकार पर आरोप लगाना, मेरी बात सुनिए, ट्रस्ट जो है वो राज्य सरकार के अधीनस्थ नहीं है, केंद्र द्वारा संचालित है। ट्रस्ट ने खुद भी मांग किया है कि यहां पर देखिए बिना तथ्यों को जाने केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने के बल पर, क्योंकि लगातार जो लोग राम भक्तों पर गोली चलवाए, जो लोग लगातार राम को काल्पनिक बताए और आप भी साथ में बैठकर खड़े होकर कहते, वो लोग नहीं आएंगे। अगर जांच के बाद में कार्यवाही नहीं होती है तब इस बात का प्रश्न उठता है, यह मुद्दा हो सकता है उस समय कि क्या हुआ, पर एक योगी जो खुद राम मंदिर से गहरा संबंध रखते हैं, जो खुद अयोध्या की खोई हुई अश्वि तक लौटाने काम करते हैं, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बना हुआ है पर पूरे अयोध्या का कायाकल्प जिस तरह हुआ है योगी जी की वजह से हुआ है, मोदी जी की वजह से हुआ है, उसको हम नकार नहीं सकते, उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात को कहना कि SIT पर विश्वास नहीं है या व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है, हमको लगता है यह गलत होगा, यह उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करना चाहिए, और जो भी कितनी बड़ी कोई भी हो उनका भी सब संदेश है, और हम सब अयोध्यावासी नहीं पूरे देश के राम भक्त यही चाहते हैं कि जिसने भी ये पाप किया है चंदा चोरी करने का, क्योंकि खून पसीने कमाई से लोगों ने दिया हुआ है, और उसमें जिसने चंदा चोरी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और उसको जेल के कटघरे पर जाना जो भी होना चाहिए वो होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं। पर आजकल जिस तरह से तुष्टिकरण के लिए लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, जिन लोगों ने राम भक्तों का खून बहाया, जिन लोगों ने लगातार राम को काल्पनिक पात्र बताया, जिस तरह वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं, यह भी सहनीय नहीं होना चाहिए, इसका भी विरोध होना चाहिए। और जो लोग यहाँ का चंदा का नाम लेकर के ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं वो भी कोई राम भक्त थोड़ी है, वो भी गद्दार ही है। जो लोग योगी जी पर प्रश्न उठा रहे हैं, किसी ने अध्यक्ष परिचय दिया, वो भी कोई धार्मिक थोड़ी हो सकता है, वह भी कहीं ना कहीं गद्दार ही हो सकता है, इसलिए इस चीज को नहीं कह सकती।
1: ठीक है, अब जवाब दीजिए चंद्रांशु जी, आपकी आवाज इतनी देर तक माफ कीजिएगा आचार्य राज मिश्रा जी, इतनी देर तक नहीं जा रही थी क्योंकि चिल्लाने के लिए तो हम लोग आए नहीं है, अब उन्होंने बात कही, अब आप उसका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि विश्वास कीजिए जो योगी जी ने कहा है, जांच सामने आएगी।
0: मैं एक बात बता रहा हूँ, राजेंद्रा जी एक बात मुझे बताइए, अब तो मैंने पहले भी इस बात को कहा था, हमको नहीं चाहिए भाई, हम ना उनकी सुनने जा रहे हैं ना हमको सुनना है, हम राम भक्त पर गोलियां चलवाने वाले रामायण चलवाने वालों से तो हमारी कोई उम्मीद ही नहीं है भाई, हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हम उस कांग्रेस के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं जो सनातन को डेंगू कहता है मलेरिया कहता है, मुझे क्या लेना है उनसे भाई, वो तो सनातन के लिए आए ही नहीं। लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि आज उनको हंसने का मौका मिला या नहीं मिला, आप बताइए, आज उनको उंगली उठाने का हमारे सनातन पर मौका मिला या नहीं मिला, आज उनको दुष्प्रचार करने का मौका मिला या नहीं मिला, आखिर हमने वो मौका दिया ही क्यों, आखिर वो गलती हमसे हुई है क्यों, आखिर हमने ऐसे लोगों को सिलेक्ट वहां पर किया ही क्यों, जो लोग इस प्रकार के कार्य कर सकते थे, क्या इसको मैं अपना फेलियर नहीं कह सकता हूं। एक्चुअली में मुझे लगता
1: है आचार्य चंद्रांशु जी, एक छोटा सा जवाब।
2: निश्चित तौर पर अपराध करने वाले के पक्ष में न अयोध्या का कोई खड़ा है, न देश का कोई राम भक्त खड़ा है, हर कोई न उनको बचाने कोई कवायद चल रही है, उनको उनके किए की सजा मिले उसके लिए सब लोग प्रतिबद्ध हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बात की भी सराहना करनी चाहिए कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही इस बात का मार्ग

0: एक एसआईटी गठन करके जो दोषी है वो चंपत राय ही है, वो ट्रस्टी है जिसने मांग किया हुआ। तो इस बात को कहना कि बिल्कुल सब दोषी हैं, कुछ लोगों ने बिल्कुल अपराध किया है और घोटाला हुआ है, चंदा चोरी है, सब किसी को नकारना नहीं चाहिए, सत्य स्वीकार करना चाहिए, पर किसी ने अपराध किया है उस पर दंडात्मक कार्यवाही या जिसने भी किया है उसको सबक सिखाने का ही काम हो सकता है, किया हुआ वापिस तो नहीं लौट सकता है। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो सेक रहे हैं, उनका क्या है उसको जवाब दीजिए, उसका बताइए, उसका उत्तर चाहिए।
1: ठीक है
0: क्या कि इसको छोड़ करके जिसने राम मंदिर बनवाने के लिए काम किया,
1: जी,
0: जिसने राम मंदिर के लिए अयोध्या के लिए कृत संकल्प होकर के कम से कम 200 बार चक्कर काटते हैं, जो दर्द बदर आकर के बार बार यहाँ के अयोध्या वासियों से अपील करते हैं, उस पर विश्वास करना है, उस रामद्रोही पर विश्वास करना है जिसने रक्त रंजित किया, सरजू माता जी उद्धार को लाल किया है, उन लोगों पर करना, बाकायदा हल्फनामा किया है,
1: ठीक है।
0: जो
1: अब
0: अपराध
1: हमारे
0: किए
1: साथ
0: हैं मैं उसका
1: स्वामी
0: सपोर्ट नहीं कर रहा,
1: यतीन्द्रानंद
0: जिसने
1: गिरी जी जुड़ रहे हैं जो कि महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। मैं आपके पास आना चाहती हूँ स्वामी जी, और आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब चढ़ावा चोरी का आरोप तो बड़ा गंभीर है।
2: निश्चित रूप से बहुत गंभीर है, और पूरा देश, पूरा सनातन हिंदू समाज इसको लेकर चिंतित भी है। और समय रहते ये चोरी पकड़ी गई है, हालांकि काफी दिन से ये चोरी है। तो ये जो एसआईटी का गठन हुआ है तो हम इसका स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दोषी चाहे कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। और एसआईटी को पूरी प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, कड़ाई के साथ इस पर जांच करनी चाहिए। और जांच के बाद जो भी अपराधी हो, क्योंकि भगवान राम मंदिर से करोड़ों करोड़ों जो हिंदू समाज है, सनातन हिंदू समाज है, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से कई ट्रस्टियों का भी नाम आ रहा है। तो क्योंकि कुछ ट्रस्टियों को तो मैं व्यक्तिगत जानता हूं, उनके जीवन को जानता हूं, तो अगर उनसे भी भूल हुई है तो सजा जरूर होनी चाहिए। मैं इसका लेकिन जहां तक चंपत जी का नाम आ रहा है, तो चंपत जी का व्यक्तिगत जीवन अभी तक बहुत पवित्र रहा है। अगर उनसे कहीं भूल हुई है, क्योंकि वो एक मेन जो है इसके ट्रस्टी हैं, और वास्तव में जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो मुख्य मुख्य ट्रस्टियों को आगे आकर अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि भाई हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो कर्मचारी है, आखिर कर्मचारी किसी के निर्देशन में तो काम कर रहा है,
1: बिल्कुल।
2: कर्मचारी को भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए। है जो कर्मचारी को देखेंगे तो केवल कर्मचारी को हम अपराधी मान के नहीं छोड़ सकते, केवल चोर को हम चोर नहीं कह सकते। जो पहरेदार है उनका भी कर्तव्य बनता है कि
1: बिल्कुल।
2: वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी ले। और इसमें चूंकि ये एक ऐसा मामला है कि देश के सामने एकदम स्पष्ट होना चाहिए, और इस प्रकार की आगे की व्यवस्था बननी चाहिए कि जिससे इस प्रकार की पुनरावृत्ति भारत के किसी भी धार्मिक समाज में, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके, ऐसा भी कोई कानून निश्चित रूप से बनना चाहिए। क्योंकि जो धार्मिक स्थलों पर दान दिया जाता है वो लोगों की श्रद्धा का है,
1: बिल्कुल।
2: श्रद्धा और विश्वास
1: और
2: का
1: इससे बड़ी बड़ी क्या पूजा होती है भाई? आज राम मंदिर बना है तो लोगों की ही वजह से बना है ना, उन्हीं के सबने अपना अपना योगदान दिया, उस पैसे से मंदिर बना है। अब सबके मन में तो नवल किशोर जी यही आ रहा है ना कि भाई ये होता रहा और पता ही नहीं चला, मतलब ये कैसे हो गया, इतने इतने लोग, इतना बड़ा ट्रस्ट, सब कुछ गठित किया गया। अगर ये वाकई चल रहा, सबकी नजर इस बात पर होगी कि भाई चढ़ावे का जो पूरा प्रबंधन है कि चढ़ावा कैसे अकाउंट होना है, एसबीआई को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये सब कोई तो देखने वाला होगा ना कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, जो लोग अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं उनकी फ्रिस्किंग हो रही है नहीं हो रही है, पैसा कैसे आगे जा रहा है। महंत नवल किशोर जी,
3: निसंदेह निसंदेह बहन जी, अंजना जी, जो ट्रस्ट के प्रमुख लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो भी वहाँ काम कर रहे थे उनको नियुक्त उन्होंने किया है। और मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे रामशिला पूजन हो, चाहे भारत यात्रा हो, संत यात्रा हो, पूरे देश के संतों ने अपनी परंपराओं से ऊपर उठ करके दिन रात राम जन्मभूमि निर्माण के लिए कार्य किया। अब ट्रस्ट में जो संत हैं, पूज्य छावनी वाले महाराज जी हैं, वो भी अस्वस्थ रहते हैं, पूरे वासुदेवानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी, वो भी अस्वस्थ रहते हैं, युगपुरुष जी महाराज जी भी लगभग अस्वस्थ जैसे रहते हैं। हमें नहीं पता कि मंदिर बनने के बाद इन संतों को कितनी मीटिंगों में इनकी उपस्थिति हुई कि नहीं हुई। तो कुछ ही लोग पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो बनती है। क्यों भाई, मैं इस आश्रम में रहता हूँ, इस आश्रम में कोई घटना घट जाए तो मुझे ही पूछा जाएगा कि भाई आपके रहते कैसे हो गया। तो मुझे लगता है जो प्रमुख लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, और जो कमेटी गठित हुई है उसके सामने पेश होकर के जो जो कमियां हुई उनको दंडित करने का प्रयास करेंगे। श्री अयोध्या जी में श्री हनुमानगढ़ी है, श्री कनक बिहारी विराजमान है, कितने एक साल हो गए वहां भगवान के पास, सब व्यवस्था ठीक है। उसमें मुझे लगता है कि पता तो लगता नहीं है प्रारंभ में कौन कैसा व्यक्ति है, कई बार कोई कपट मुनि, कोई बगुला भगत भी चले जाते हैं। तो इस व्यवस्था में कुछ लोग, मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग चले हो गए होंगे जिन्हें राम से मतलब नहीं था, केवल दाम से मतलब था, उन लोगों ने गड़बड़ी की होगी या कुछ लोगों से प्रेरित रहे होंगे। परंतु दुखद घटना है, ये घटना दुखद है।
1: और आचार्य शैलेश तिवारी जी, मुख्यमंत्री जी आज अयोध्या गए थे, उन्होंने कहा है कि आप लोग 500 वर्षों तक इंतजार किया तो 15 दिन का और इंतजार कीजिए। अब समाजवादी पार्टी तो ये सवाल भी खड़ा कर रही है कि भाई आप SIT भी तो आप ही के लोग हैं, राज्य सरकार के ही लोग हैं, राज्य सरकार के ही अधिकारी हैं।
4: देखिए अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 500 वर्षों तक आपने जब प्रतीक्षा किया है तो अगले 15 दिन तक प्रतीक्षा करें। निश्चित तौर पर घटना घटी है, घटना घटी है तभी बाहर तक खबरें आई हैं। साथ ही साथ अभी चाहिए कि चंपत राय जी अपने पद से इस्तीफा दे करके, क्योंकि उनके ऊपर एक आंच आया है, लांछन लगा है, उससे मुक्त होने के लिए अभी अपने पद से इस्तीफा दे करके और पूरी तरह से जांच में सहयोग कराए, जिससे निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। वैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, दे करके और पूरी तरह से जांच में सहयोग कराए, जिससे निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। वैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनके कार्यशैली पर पूरे देश को विश्वास है, पूरे सनातनियों को विश्वास है। तो अभी प्रभु श्री राम के भक्तों को अगले 15 दिनों तक इंतजार करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर रिजल्ट जो है वह दुनिया के सामने दूध का दूध पानी का पानी आएगा, और योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से जो दोषी होता है उसको तात्कालिक रूप से उसे सजा देते हैं और निश्चित तौर पर सजा देंगे। कुछ दिन तक, 15 दिन तक लोग विश्वास करें और प्रतीक्षा करें। ऐसे पूरे विश्व के सनातनियों का श्री राम मंदिर सिरमौर है, और भारत के सभी साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के 500 वर्षों तक सिंचा है, तब जाकर के हम लोगों ने राम मंदिर को प्राप्त किया। कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, और खासकर भारत में रह रहे आजादी के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, भारत के प्रभु श्री राम हैं, लोगों ने यह नहीं समझा, लोगों ने धर्म को लेकर के जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनाया, 1991 में जिस तरह की घटनाएं घटी, इन सब से होते हुए जिस तरह से हम लोग विजय प्राप्त किए हैं, हम लोगों को प्रतीक्षा करने की जरूरत है।
1: ठीक है, निश्चित तौर सच पर सामने आना चाहिए, सबकी नजर इसी बात पर है आचार्य शैलेश जी की, सच सामने आए। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी पीठाधीश्वर श्री कल्की धाम के हमारे साथ संबल से इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आचार्य जी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस जानकारी ने और इन आरोपों ने राम भक्तों को बहुत विचलित किया है।
5: और देखिए अंजना, चोरी राम मंदिर में हो या किसी के घर में हो या किसी भी व्यक्ति के घर में यदि चोरी हो रही है और उसमें धन की लूट हो रही है तो इसका समर्थन तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन इसका उपाय सोचना पड़ेगा। और ये क्यों हुई, लेकिन सवाल इसका है कि जिन्होंने चोरी की है उनको नहीं बख्शा जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर की इस चोरी के कंधे पर रख कर योगी आदित्यनाथ को बदनाम करना चाहते हैं, चंपत राय को बदनाम करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा रावण का खानदान है, ये तो खरदूषण और मेघनाथ और कुंभकर्ण सब मिलके ये अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी एंड कंपनी अभी मुक्तेश्वर आनंद, ये तो राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ थे। इन्होंने तो राम मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया, इन्होंने राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए, ये कब से राम भक्त हो गए? अरे राम मंदिर के अंदर यदि चोरी हुई है तो उस चोरी पर जांच बैठ चुकी है, उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन ये कभी सोमनाथ के ऊपर हमले पर तो नहीं बोले, काशी विश्वनाथ के ऊपर तो नहीं बोले, श्री कल्कि धाम के निर्माण पर पाबंदी लगी तब नहीं बोले। तो ये प्रश्न उठता है अंजना कि इसमें पॉलिटिकल अपने मोटिव और अपने टारगेट अचीव करने की लड़ाई है, ये राम मंदिर की चोरी के पीछे थोड़ी है। राम मंदिर की चोरी जिसने की है वो इस लोक में भी सजा पाएगा अंजना और परलोक में भी सजा पाएगा।
1: लेकिन आचार्य जी अब उनका तो ये कहना है ना कि अगर हमने जोर शोर से मुद्दा नहीं उठाया होता, दबाव नहीं बनाया होता तो SIT भी गठित नहीं होती, मामला दबा दिया जाता। वो कह रहे हैं कि जमीन में धांधली का जो मामला था उस वक्त भी दबा दिया गया, इस वक्त भी दबा दिया जाता, वो क्रेडिट ले रहे हैं।
5: अंजना जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरा जीवन इन चीजों को देखा है। 2027 का चुनाव है, हिंदुओं को बांटना है, हिंदुओं को डिवाइड करना है। अगर हिंदू डिवाइड नहीं हुआ तो बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन जाएगी। इन्हें तो योगी आदित्यनाथ को बदनाम जिसे जीवन में एक बार मिला हूं, लेकिन जिस आदमी का जीवन समर्पित हो गया वो ये राम मंदिर की चोरी करेगा? जिन हजारों कार्यकर्ताओं ने लाखों करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के लिए मालाएं जपी हैं, अपना बलिदान किया है, ये उस पूरी त्याग और तपस्या और बलिदान की पूरी पृष्ठभूमि को खंडित करना चाहते हैं, गंदा करना चाहते हैं, उस पर आरोप लगा करके हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते हैं। अरे सूप बोले बोले चलनी बोले 72 छेद रामलला के ऊपर गोलियां चलाकर तुमने सरियों को उनके लहू से लाल कर दिया, शर्म नहीं आती अखिलेश यादव को? शर्म नहीं आती राहुल गांधी को? शर्म नहीं आती इन लोगों को जिन्होंने राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए? तो अंजना आई एम सॉरी टू से कि राम मंदिर की चोरी में जो भी कोई पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप यकीन रखिएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, मगर राम मंदिर की चोरी का बहाना करके राम के भक्तों को बांटने का काम ना करें और राम मंदिर के नाम पर ये सनातन धर्म पे कलंक लगाने का एक राजनीति करने का षड्यंत्र ना करें।
1: आचार्य राज मिश्रा जी आप तो कह रहे थे कि तुरंत एक्शन की जरूरत है, आपने सुनी उनकी बात?
6: नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगा कि एक्शन की जरूरत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि मौका तो उनको मिला जो बार बार राम मंदिर को बनने में जो रोड़े अटका रहे थे, जो बार बार सनातनियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो बार बार राम चरितमानस को जला रहे थे, आखिर उनको मौका तो मिल गया ना राम भक्तों को क्रिटिसाइज करने का, धर्म को क्रिटिसाइज करने का, सनातन को क्रिटिसाइज करने का, आखिर दुर्भाग्यपूर्ण रहा मौका तो उनको मिला ना, तो इसको मैं अपनी कमी मानूंगा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी कि सर्व सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति, और उसके साथ एक बार और भगवान राम ने कहा था कि विनय न मानत जलत जल गए तीन दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। ये हमारे लिए मैं इसको मानूंगा, मैं बार बार इस शब्द को कह सकता हूं, मैं मानता हूं।
1: आचार्य प्रमोद कृष्ण जी वो ये कह रहे हैं कि एक बार ये हो गया तो अब ये अंडू नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं कि अन्य लोगों को एक मौका मिला, अगर ऐसा हुआ तो एक मौका मिला जिससे वो कीचड़ उछाले हम पर।
5: अंजना जी मुझे आप बताइए, अगर गाड़ी कोई चोरी करके ले जाए तो जरूरी है उसमें ड्राइवर को सूली पर चढ़ाओ? ड्राइवर की नेग्लिजेंसी हो सकती है। अगर हमारे घर में कोई लूट हो जाए तो जो हमारे पहरे पे व्यक्ति होता है, चौकीदार होता है, या जो ताला लगाने वाला है, मान लो ताला लगाना भूल जाए, तो उसकी गलती है इतनी कि वो भूल हुई है, चूक हुई है, मगर क्या उसको चोर सिद्ध किया जा सकता? उसी को चोर सिद्ध कर दिया जाए जिसकी दुकान में चोरी हो, जिसके घर में चोरी हो, फिर तो उसी को चोर सिद्ध कर दिया जाए। तो मेरा मतलब यह है चोरी हुई है इसे कोई भी व्यक्ति सही नहीं ठहराएगा, ना कोई SIT सही ठहराएगी। अरे भैया चोरी हो गई, एक घोटाले का पता चला तो सरकार का दायित्व बनता है, ट्रस्ट का दायित्व बनता है निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी हो। अरे प्रतीक्षा तो करो, आपने तो बंदूक जो है तान दी कि योगी आदित्यनाथ के राज में चोरी हो रही है, आपने कह दी साहब राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री जी के इशारे पर हुआ, किसी ने बोल दिया साहब आप प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, अब प्रधानमंत्री हो आकर के क्या लठ लेके बैठेंगे चोरों को रोकने के लिए? ये व्यवस्था का प्रश्न है, लेकिन व्यवस्था के प्रश्न को आधार मान करके ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जो किया जा रहा, मैं इसके खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं कतई चोरी के पक्ष में नहीं, मैं चाहता हूं जितना भी बड़ा अधिकारी यदि चोरी में लिप्त है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम SIT करे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग भी करता हूं, मैं तमाम SIT के जो पदाधिकारी हैं उनसे मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच करें और राम लला के भक्तों, भगवान राम के भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए धन को जिसने लूटा है उससे बड़ा पाप इस धरती पर नहीं हो सकता है, लेकिन निष्पक्ष जांच का इंतजार तो करें।
1: चलिए ठीक है, इसी बात पर अंत करते हैं शो का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हर राम भक्त हर आस्थावान यही चाहता है कि सच सामने आए कि आखिर ऐसा हुआ, और अगर हुआ तो किसने किया और जवाबदेह कौन। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।
4: अब महाराष्ट्र के परभणी से आपको बड़ी खबर देते, जहां पर मारुति मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। मंदिर के निर्माणाधीन छत गिर गई, निर्माणाधीन छत गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अभी मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे की तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं, डरा देने वाली तस्वीरें आपके सामने हैं। निर्माणाधीन ये छत और वो एकाएक भर भरा कर गिर जाती है नीचे। देखिए आपकी वहां पंक्तिबद्ध लोग थे, शायद प्रसाद लेने के लिए पंक्ति में खड़े थे, उनको एक एक करके दिया जाता, लेकिन एकाएक ये छत गिर जाती है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी मिल रही की जो है दुख जताया, संवेदनाएं व्यक्त किए, साथ साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संवेदनाएं जताई है। कई घायलों की स्थिति गंभीर है, आशंका है कि जो मरने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। शनिवार का दिन है और इस वजह से हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी, बहुत ज्यादा संख्या में लोग थे और इस वजह से अभी 6 की मौत हुई है, घायलों की संख्या काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के इस परभणी की घटना पर दुख प्रकट किया, कहा इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है दुखद है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द स्वस्थ हो जो घायल हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दुख जताया, उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, परभणी जिले की यशवाड़ी में स्थित हनुमान मंदिर में निर्माणाधीन छत का हिस्सा गिरने से श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर तो हम हादसे की आपको दिखा रहे हैं कि वहां निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन वो निर्माण कार्य कैसे चल रहा था आप अंदाजा लगा सकते हैं, कमियां स्वाभाविक थी। उस कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट देने के लिए जो आप देखेंगे कि वहां पर लोहे की जो रॉड्स लगाई गई थी वो भी उस भार को, उस वजन को सह नहीं सके और एक साथ वो भरभरा कर गई। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेकअप और नूंगे हासिर, आप देखते रहिए आज तक।
7: एक चीता आपको इस समय एक ताजा शिकार को अपने खाते में देख सकते हैं।
8: ये जो अफ्रीकी शेर है ये चैन की नींद अपनी सो रहे हैं इस समय।
9: 50 states, 1 national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
10: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: This is the sound of Jack, buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
12: Oh, ouch.
11: However you make money work, we can work with that.
13: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
16: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
17: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिंझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मैक्स टीएमटी बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
7: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
9: 25 saalon se, jahan tiki hai desh ki nazar. Mere saath, phir se shuru ho raha hai wahi safar. Ye hai khabre saath tak, dekhte rahiye. आज तक
10: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
11: प्लीज बज्जीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
12: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
11: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बज्जीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में। Waiting. Come.

0: तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 समिट के दौरान शांति समझौते के MOU पर साइन किए। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने पीस डील के MOU पर दस्तखत किए, लेकिन जिस वक्त MOU पर साइन हुए उस वक्त ईरानी राष्ट्रपति अकेले थे। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। डील पर दस्तखत हो गए, लेकिन अब शांति समझौते के MOU पर ईरान क्यों और कैसे राजी हुआ, इसका खुलासा ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई ने किया। पीस डील पर पहली बार मुज्तबा खामिनई ने बयान दिया है। ईरान अमेरिका शांति समझौते को लेकर मुज्तबा खामिनई ने 5 बड़ी बातें कही। नंबर 1, ईरान बात करेगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। नंबर 2, शांति समझौते के मसौदे से सहमत नहीं था। नंबर 3, ईरानी राष्ट्रपति के कहने पर मंजूरी दी। नंबर 4, ट्रंप शांति समझौते के लिए बहुत बेचैन थे। नंबर 5, अंतिम समझौता भी ईरान की शर्तों पर होगा। दरअसल शांति समझौते को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई के इस बयान के 3 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, अमेरिका के साथ पीस डील को लेकर ईरान में विरोध की आवाज को शांत करना। दूसरा, अमेरिका के साथ आगे की बातचीत के लिए जमीन तैयार करना। तीसरा, अगर अमेरिका के साथ हुआ शांति समझौता रद्द होता है तो ठीकरा ईरान के राष्ट्रपति के सिर फोड़ना। क्योंकि ईरानी सेना और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति और नियत पर भरोसा नहीं है। मुज्तबा का बयान उस वक्त आया है जब शांति समझौते के बाद भी ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। मतलब यही है कि ट्रंप दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि डील अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की मजबूरी थी।
1: If they don't, then that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We have the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective.

0: यूएस ईरान के बीच हुई पीस डील के बाद हॉर्मुज का नजारा काफी दिनों बाद बदला हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 3 महीने बाद जहाजों की आजाद आवाजाही ने शांति का एहसास कराया है। गुरुवार को सऊदी अरब के झंडे वाले 3 बड़े तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। इनमें करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल लदा था। हॉर्मुज पर तेल टैंकरों की ये आवाजाही पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एमओयू पर दस्तखत के बाद हुई।
1: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. On the military side, the Iranians, for the second night in a row, did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So,
0: Iran aur America ke beech samjhote ke baad Hormuz jhaldamaru mein tel tankeron ki movement dekhi ja rahi hai. Lekin tel companies sangharsh ke dauran Iran ki or se bichhai gayi means ko lekar kafi satark hain. इसके अलावा प्रतिबंधों, आतंकवाद से जुड़े कानूनों और टोल पेमेंट को लेकर भी स्पष्टता की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: ये इसराइल का अजेय सुरक्षा कवच आयरन डोम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कवच की असली चाबी वॉशिंगटन के पास है। आंकड़ों की बात करें तो साल 1948 में इसराइल के जन्म के बाद से अब तक अमेरिका उसे $158 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी सैन्य मदद दे चुका है। मौजूदा 10 वर्षीय समझौते के तहत अमेरिका हर साल इसराइल को $3.8 बिलियन की निश्चित सैन्य मदद देता है, जिसमें से $500 मिलियन सिर्फ मिसाइल डिफेंस के लिए होते हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई लाइन का है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस जिन अत्याधुनिक F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के दम पर ईरान और लेबनान में तबाही मचाता है, वो सब 100% अमेरिकी है। इसराइल के कुल हथियार आयात का 69% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। इस 3 महीने की लंबी जंग में जब इसराइल के तोप के गोले और गाइडेड बम खत्म होने की कगार पर पहुंचे, तो अमेरिका ने आपातकालीन एयरलिफ्ट के जरिए हजारों टन गोला बारूद यरूशलम पहुंचाया। लेकिन इसराइल के लिए अमेरिका सिर्फ बारूद का सौदागर नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेटिक बॉडीगार्ड भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में जब भी पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाती है, अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलग थलग होने से बचा लेता है। इतिहास में अमेरिका ने 45 से ज्यादा बार इसराइल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसराइल अमेरिका पर इतना निर्भर है तो नेतन्याहू ट्रंप की बात क्यों नहीं मान रहे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसराइल के पास कुछ महीनों की जंग, अकेले लड़ने का हथियारों का बफर स्टॉक और खुद की मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री जैसे एल्बिट सिस्टम्स जरूर है, लेकिन अगर ईरान के साथ लंबी खींचने वाली जंग होती है तो अमेरिका के बिना इसराइल की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसों की बदौलत इसराइल सुरक्षित है, इसलिए उसे वॉशिंगटन के शांति रोड मैप का सम्मान करना ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। नेतन्याहू जानते हैं कि अमेरिकी मदद के बिना ईरान से लंबा युद्ध लड़ पाना उसके लिए संभव नहीं है, इसीलिए वो ट्रंप की लाइन को पूरी तरह काटे बिना आखिरी क्षण तक अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय का खेल खेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: दक्षिण लेबनान का कफर तेबनीत इलाका और मलबे में तब्दील इसराइल का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला मरकावा टैंक, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में इसराइल सेना के लिए ये सबसे काला दिन साबित हुआ है। हिजबुल्ला ने घात लगाकर इसराइल के 52वें बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल डोर गेडालिया बेन शिमोन समेत 4 जाबाज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने गाइडेड मिसाइलों से इसराइल के 3 टैंक उड़ा दिए। हैरानी की बात यह है कि ये भीषण हमला उस समझौते के ठीक एक दिन बाद हुआ जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ साइन किया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का लक्ष्य साफ था। अमेरिका ने फरवरी 2026 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था ताकि ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को तबाह कर हुर्मुज को खोला जा सके, तेल की कीमतें घटाई जा सके और नवम्बर में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनावों में जीत हासिल की जा सके। ट्रंप के लिए ये मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गेम प्लान बिल्कुल अलग है। इसराइल ने इस युद्ध को ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया था, जिसका मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन और हिजबुल्ला का समूल नाश था। सैनिकों की मौत से भड़के नेतन्याहू ने लेबनान पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोल दिया है, जिसमें शुक्रवार को ही 18 लोग मारे गए। नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि इसराइल लेबनान के सिक्योरिटी जोन से अपनी सेना कभी नहीं हटाएगा, क्योंकि इसराइल इस अमेरिकी समझौते का हिस्सा नहीं था। इस जिद की वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की तकरार अब सरेआम हो चुकी है। डिप्लोमेटिक गलियारों से आ रही खबरें बेहद चौंकाने वाली हैं। लेबनान पर अंधाधुंध हमलों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को बुरी तरह फटकारा और अब शब्दों तक का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा था, बीबी यानी नेतन्याहू, तुम पूरी दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकते। यहां तक कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी बैंस ने भी इजरायली मंत्रियों को जमीनी हकीकत समझने की नसीहत दे डाली है। नेतन्याहू की इस आक्रामकता का असर यह हुआ कि ईरान ने इजरायली हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए स्विट्जरलैंड में होने वाली महावार्ता को सस्पेंड कर दिया है। ट्रंप इस बात से बेहद नाराज हैं और वो नेतन्याहू को क्रेजी और मुश्किल इंसान तक कह चुके हैं। भले ही अमेरिका आज भी परमाणु खतरे के वक्त इसराइल के साथ खड़े होने का दावा करता हो, लेकिन इस समय दोनों देशों के रास्ते पूरी तरह जुदा हैं। ट्रंप डील मेकर बनकर दुनिया में शांति का सेहरा अपने सिर बांधना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू मैक्सिमम प्रेशर की नीति से लेबनन की जमीन पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि महाशक्ति अमेरिका की चलती है या इसराइल की जिद इस ऐतिहासिक शांति समझौते को बारूद के ढेर में तब्दील कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शाम के 7 बजने वाले आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी जरूरी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के परभणी में बड़ा हादसा, यशबाड़ी मारुति मंदिर परिसर में निर्माणाधीन मंडप की छत गिरी, 6 लोगों की मौत, पीएम और सीएम ने जताई संवेदनाएं। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं, पूछताछ में टिन्नू यादव और 4 पुजारियों का गोलमोल बयान। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बनी मजारों और कब्र पर चला बुलडोजर, 6.5 बीघा भूमि पर था अवैध कब्जा, मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया होर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप। तो शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। महाराष्ट्र के परभणी से बड़ी खबर, मारुति मंदिर में जहां बड़ा हादसा हुआ है, यहां मंदिर की निर्माणाधीन छत गिर गई जिससे 6 लोगों की अभी मौत हो गई है। मलबे में अब भी बताया जा रहा है कि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। यहां मंदिर के ठीक सामने सभा मंडप बनाने का काम चल रहा था, दोपहर का समय था, लोग प्रसाद ले रहे थे, अचानक मंदिर का स्ट्रक्चर टूट जाता है, पत्थर भर भरा कर गिर पड़े। शनिवार होने के चलते मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा थी, हम तस्वीर उस समय की आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है।
3: यही है यशवाड़ी का मंदिर, जो कि आज फिर 3:16 पर दुर्घटना घटी है, जो कि अलग अलग जख्मी को अलग अलग अस्पताल में शरीक किया गया है, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पर बुरी पैमाने पे अपना काम कर रही है, देहाती इलाकों के लोग भी मदद कार्य के लिए जुटे हैं। आज वो 3 बजे से जो दुर्घटना घटी है जिसमें 6 लोगों की मौत बताई जा रही है, ये मंदिर का निर्माण 1.5 महीने से शुरू किया गया था जिसका अधूरा काम हो चुका था, जिसमें राजस्थान के कारागिर ये मंदिर के निर्माण के लिए हाजिर हुए थे, जिनके सभा मंडप का काम अधूरा हो चुका था, जो आज दोपहर में इन दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो चुका है। आज तक के लिए दिलीप माने, परभणी।
2: अब बात राम मंदिर के, जहां पर दान चोरी की जांच के बीच में अब आभूषणों के गायब होने का भी मामला सामने आ रहा है, जिसकी जांच एसआईटी टीम लगातार कर रही है।
4: राम मंदिर में दान के पैसों के हेरफेर के बीच अब आभूषण की हेराफेरी का दावा भी किया जा रहा है।
5: ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
6: जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
5: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
6: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
4: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
6: तो ये देखिए, रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
5: दीपक आपने दिया था?
6: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
5: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
6: अब मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
4: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के चार पुजारियों से पूछताछ की गई, जहां से ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब SIT अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है।
7: दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहा गया, क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया। तो अब वो SIT उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये गुप्त दान था, इन सबका रिकॉर्ड कहाँ है।
4: श्रद्धालु परिवार का कहना है कि उन्हें रामलला पर हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह फोटो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: अब बात शिवसेना की, जहां पार्टी में टूट के बीच में असली शिवसेना साबित करने की होड़ जारी है। इस बीच शिंदे ने उद्धव गुट में आगे भी टूट के संकेत दिए हैं।

0: दो मंच, बाला साहेब की तस्वीरें और खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। उद्धव गुट में टूट के बीच मुंबई में एक बार फिर शिवसेना के दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट में सेंधमारी के बीच ऑपरेशन टाइगर 3.0 के संकेत दिए।
1: बाला साहेबांचे विचार, धर्म वीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
0: दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
2: अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
0: उधर बागियों को लेकर शिवसेना सख्त नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा। इसके पहले कल शिवसेना की रैली में उद्धव ने इमोशनल कार्ड के चलते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
3: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे, माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही।
0: उधर अमित शाह भी जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब शिवसेना में गुट पूरी तरह से खत्म हो गया है।
4: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
0: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है। ये न सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: उधर पंजाब में भगवंत मान की कथित वीडियो को लेकर अकाल तख्त सख्त है, जहां भगवंत मान के पेशे का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं।
6: सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी का वीडियो सार्वजनिक किया। वीडियो में मुख्यमंत्री और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के बीच कथित विवादित वीडियो को लेकर हुए सवाल जवाब सामने आए। संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी का वीडियो सार्वजनिक किया। वीडियो में मुख्यमंत्री और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के बीच कथित विवादित वीडियो को लेकर हुए सवाल जवाब सामने आए।
7: निजी
8: वो
7: बंदा जिड़े मैं इधर बारे दस देना, वो बंदा जी जिड़ा जगमन जगमन है कोई, वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर पे ठीक नहीं, संगल लग देने जी, वो इस तरह दिया पौंदा रहना जी। उस तो पहला उन्हें मेरिया कोई ओसे कमरे दिया, कोई होर भी बना के भेजे सर, फोरेंसिक जांच कराने का मतलब नहीं, जो तुसी कहना जी असी उन्होंने इन्हें करा दें, पर नकली है। मैं जी
9: कोर्ट का ऑर्डर है जी, उन्होंने इन्होंने प्राइवेसी होने करके
7: नहीं, वो कहना जो ब्लैकमेल करता सीगा कि असी यार रिलीज कर देंगे।
10: कोई नहीं पर लंत जी, तुसी सानू दो लाइनां दसो
7: जी,
10: अकाल का साहब इस वीडियो की जांच कराओ।
7: बिल्कुल कराओ,
10: जे झूठ होया तो कोई गल नहीं, जे सच होया तो
7: मेरा था। जी।
6: वीडियो में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके संबंध में प्रसारित की जा रही वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एआई से तैयार की गई है।
7: देख लो आजकल एआई है तो उसी तरह आप ही कह के सोशल मीडिया का पता नहीं की बर्बाद इसी डर की फोटो ना लाती हुए आही कमरा आही फोटो सुबीर वाली फोटो भी लाई करते नहीं मजीठी की फोटो भी बची लाइन करते नहीं उही यही कमरा और उन्होंने कमलापन की किया ये फड़िया जिहड़ा अपन नंगिया अखा फोरेंसिक तो बिना भी मैं दस देना जी वो होटल का कमरा जिहड़ा इंटीरियर है होटल दे विच कौन गुरु साहब की फोटो लगा।
6: जत्थेदार ने सीएम से भिंडरा वाले और पंथ की मर्यादा को लेकर कई सवाल पूछे। अकाल तख्त सीएम मान को पंथ विरोधी और गुरु दोषी घोषित कर चुका है। ये फैसला जत्थेदार गड़गज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील से सुनाया था, जिसके बाद अब भगवंत मान की सफाई का ये वीडियो जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
5: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिन के पंजाब के दौरे पर हैं, जहां पर वो दौरे के पहले दिन अमृतसर पहुंचे। नितिन नवीन ने सबसे पहले सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका, गुरुघर का आशीर्वाद लिया और सरबत के भले की अरदास की। इस दौरान उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब परिसर का भी भ्रमण किया, सिख परंपराओं के प्रति सम्मान प्रकट किया। पंजाब चुनाव से पहले नितिन नवीन का यह दौरा अहम माना जा रहा है, जहां बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है। अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में घमासान जारी, एक और घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
0: मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बने तनाव की ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बाड़ वाले हिस्से का फायदा उठाकर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजने की तैयारी है। जिस घुसपैठ का मुद्दा बनाकर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में आई, उस घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का भरोसा सरकार बंगाल की जनता को दे रही है।
8: बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है, मैं विश्वास दिलाकर जाता हूँ, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे।
0: उधर कोलकाता एयरपोर्ट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से आ रहे अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथापाई हो गई।
11: मुझे आम दिखा था। मैं जब उसको पकड़ा, मुझे आम दिखा था। मार देने के लिए अभिषेक बनर्जी को मार आया था। ये आदमी अभिषेक बनर्जी को मार आया था।
12: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था हमसे कर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने।

0: बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के डीजीपी को तलब किया है। मुख्यमंत्री ने मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा दिया है। बिहार पुलिस ने भोजपुर जिले में एनकाउंटर का कथित वीडियो सामने आने के बाद शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मलाकार समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एनकाउंटर को लेकर सरकार के नेता भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और बड़ी खबर यूपी के मऊ से देते हैं, जहां पर सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गांव वालों ने पुलिस की टीम पर भी पथराव कर दिया है, जमकर बवाल काटा गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ में सड़क हादसे में जहां एक महिला की मौत हुई, इसके बाद से लोगों का आक्रोश सड़कों पर कुछ इस तरह दिखाई दिया। जब लोग सड़कों पर उतर आए और उसके बाद से आप देखेंगे कि उन्होंने खूब बवाल काटा है सड़कों पर। अब बात करते हैं दुनिया के, जहां पर शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, वहीं उन्होंने खुद को बॉस कहने वाले अपने बयान को एक मजाक बताया।
2: They've had some very good numbers announced. He stays out of wars, which is smart. He's 1.5 billion people. He's actually the biggest. India's actually the biggest. Modi's a great leader and we do a lot of business with them, but now we do fair business. They used to really rip us off. I don't blame them for that. You know, we had stupid politicians, but that allowed that to happen. But now we do a lot of business. They're not that happy about it because they used to do a lot better. So, but Modi's great.
1: एक तरफ वर्ल्ड कप फुटबॉल का फीवर चल रहा है तो दूसरी ओर आज भारत और अफगानिस्तान के बीच में तीसरा वनडे खेला जा रहा है। इस बीच में भारतीय क्रिकेट की दो अहम खबरें आई जो फैंस को खुश भी करेंगी और मायूस भी।
3: आपकी स्क्रीन पर यह है भारतीय क्रिकेट की दो अहम खबरें, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज ये कि विराट कोहली तेजी से चोट से उबर रहे हैं और बैड न्यूज ये है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। आईपीएल के बाद ही विराट कोहली की हैमस्ट्रिंग इंजरी की खबर सामने आई थी और बीसीसीआई ने इंग्लैंड में अगले महीने होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम का चयन टालने का ऐलान भी कर दिया था। अब विराट के फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं। बीसीसीआई की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीम ने लंदन जाकर उनकी रिकवरी को जांचा परखा है। अब 22 जून को विराट बेंगलुरु आकर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब बात हार्दिक पांड्या की। बीसीसीआई ने पाया कि हार्दिक अपनी चोट की वजह से वनडे में जरूरी ओवर करने लायक फिलहाल नहीं है, लिहाजा उनकी फिटनेस को देखते हुए वनडे टीम में उन्हें नहीं चुना जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज 14 जुलाई से बर्मिंघम में शुरू होने वाली है। अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए विराट कोहली की हर सीरीज में मौजूदगी न सिर्फ भारतीय ड्रेसिंग रूम का हौसला बढ़ाएगी बल्कि एक और आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करने की उम्मीदें भी जगाएगी। नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक।
1: और बुलेटिन में अब रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत।
5: लेस इंटरप्शन, मोर लिसनिंग विद ट्यून इन प्रीमियम। गेट लेस एड्स ऑन ऑल म्यूजिक, न्यूज एंड स्पोर्ट्स सो यू कैन गेट बैक टू व्हाट रियली मैटर्स। लिसन टू ऑल योर फेवरेट स्टेशंस ऑन ओवर 200 डिवाइसेस सो यू नेवर मिस अ सेकंड ऑफ एयर टाइम। Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
6: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Lion Host Family, Super
6: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
0: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
2: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Share bazaar, jahan kuch log seekhte reh jate hain aur kuch itihas likh jate hain. Aakhir bada paisa banta kaise hai? Kaun si soch, kaun si ranneeti? और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तर की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख सिर्फ बिस्तर पर।
4: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
5: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
6: प्लीज बज्जीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
7: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
6: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बज्जीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 समिट के दौरान शांति समझौते के MOU पर साइन किए। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने पीस डील के MOU पर दस्तखत किए, लेकिन जिस वक्त MOU पर साइन हुए उस वक्त ईरानी राष्ट्रपति अकेले थे। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। डील पर दस्तखत हो गए, लेकिन अब शांति समझौते के MOU पर ईरान क्यों और कैसे राजी हुआ, इसका खुलासा ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई ने किया। पीस डील पर पहली बार मुज्तबा खामिनई ने बयान दिया है। ईरान अमेरिका शांति समझौते को लेकर मुज्तबा खामिनई ने 5 बड़ी बातें कही। नंबर 1, ईरान बात करेगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। नंबर 2, शांति समझौते के मसौदे से सहमत नहीं था। नंबर 3, ईरानी राष्ट्रपति के कहने पर मंजूरी दी। नंबर 4, ट्रंप शांति समझौते के लिए बहुत बेचैन थे। नंबर 5, अंतिम समझौता भी ईरान की शर्तों पर होगा। दरअसल शांति समझौते को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई के इस बयान के 3 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, अमेरिका के साथ पीस डील को लेकर ईरान में विरोध की आवाज को शांत करना। दूसरा, अमेरिका के साथ आगे की बातचीत के लिए जमीन तैयार करना। तीसरा, अगर अमेरिका के साथ हुआ शांति समझौता रद्द होता है तो ठीकरा ईरान के राष्ट्रपति के सिर फोड़ना। क्योंकि ईरानी सेना और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति और नियत पर भरोसा नहीं है। मुज्तबा का बयान उस वक्त आया है जब शांति समझौते के बाद भी ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। मतलब यही है कि ट्रंप दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि डील अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की मजबूरी थी।
1: If they don't, then that's, you know, that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We had the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective.
2: राजस्थान में भर्ती एजेंसियों की गलत सवाल पूछने की आदत बेरोजगारों पर बहुत भारी पड़ रही है, इसीलिए आज खबरदार करती इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। आज तक संवाददाता शरद कुमार को बुलाकर ये छात्र अपनी समस्या पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं। वजह, राजस्थान में 15 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट है। साथ ही जहां कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि लेवल 1 में 11 और लेवल 2 की परीक्षा में 25 प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिए, इन्हें अब डिलीट कर दिया गया। अब कुछ छात्र कोर्ट गए दावा ये करके 7 और सवाल गलत पूछे गए हैं। दावा इसी चक्कर में वर्षों भर्ती लटक जाती है। एक उदाहरण से समझिए। सवाल पूछा गया कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के इन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अब इसमें सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर का था, लेकिन विकल्प में सुरेंद्र सिंह गुर्जर लिख दिया गया। मतलब सवाल ही गलत पूछ लिया।
3: बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसको कोई भी आदमी एक बार सरसरी नजर से देखे तो भी देख सकता है। सुंदर सिंह गुर्जर और सुरेंद्र आराम से इनको कोई भी पढ़ सकता है। इस टाइप की मिस्टेक जो है प्रश्न पत्र में हो रही है, और एक प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव से कोई भी अभ्यर्थी जो पहले चयन जिसका हो सकता था अब उसका चयन।
2: पेपर सेट करने वाले ही गलत पेपर सेट कर रहे हैं। नतीजा, शिक्षक भर्ती 2021 के उन बेरोजगारों से मिलिए जो गलत सवाल पूछे जाने की वजह से 5 साल में ओवरएज हो गए। 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 बार रद्द हुई। 2022 में परीक्षा हुई, 81 सवाल गलत पूछे जाने का दावा हुआ। मामला कोर्ट पहुंचा, 18 प्रश्न गलत पूछे जाने पर मामला सेट हुआ। रिजल्ट दोबारा जारी हुआ, नौकरी पाए 1300 लोग बाहर कर दिए गए। नए रिजल्ट में 750 लोगों को फिर से नौकरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा अब पद ही नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में अटे, जहां 36 प्रश्न डिलीट हुए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 23, LDC भर्ती में 14 सवाल, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10, पटवारी भर्ती में 10 सवाल गलत पूछ लिए गए। RPSC की बहुत सी परीक्षाओं में गलत प्रश्न पूछे गए, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14 सवाल, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग में 6, असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड परीक्षा में 4, कृषि अधिकारी में 3, जनसंपर्क अधिकारी में 2 सवाल गलत पूछे जाने पर हटाना पड़ा।
4: इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है। तीसरा, जो मेहनत कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद, दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो ढंग के क्वेश्चन बनाए?
2: इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज भी चिंतित हैं।
5: होना नहीं चाहिए, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसका कंट्रोल है हमारे पास नहीं होता है। ये हम लोग पेपर खुद नहीं बनाते, हम उसको बनवाते हैं, बाहर से बनता है और उस पर कंट्रोल उस सेटर का होता है और सेटर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कंट्रोल उस पर होता है। हमारा प्रयास होता है कि अच्छा सेटर हो, अच्छे विशेषज्ञ हो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है, तो ये बात पीड़ादायक भी है। मुझे खुद इसका बहुत ही अफसोस भी है कि इसको मैं इस समस्या को पूरी तरह में हल नहीं कर पाया।
2: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई को इसे छात्रों के साथ अन्याय मानते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा और मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, मगर 1.5 महीने बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
3: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की आप सभी को बधाई। और आज योग दिवस के मौके पर मैं आपसे कहूंगी कि अगर आज तक आपने योग नहीं किया है तो आज तक के साथ आज योग कीजिए।
4: ये बात एकदम ठीक है।
3: स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। जब जब योग की बात होती है तो स्वामी जी का जिक्र होता है, क्योंकि मैं तो यही कहूंगी स्वामी जी आपसे ही योग बना है, है ना। एक तो हम आंध्र प्रदेश की धरती पर ये बड़ा आयोजन योग दिवस के मौके पर हो रहा है, और दूसरा पश्चिम बंगाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे। स्वामी जी इतना समय क्यों लग गया वहां तक योग पहुंचने में?
5: योग युगो युगो से भारत में है। योग हमारा एक सांस्कृतिक पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है, और योग पूरी दुनिया की जरूरत है। अब देख रहे दाई तरफ बाई तरफ छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारा प्यारा योग कर रहे हैं, पीछे से मुड़ करके यहाँ आ गए कि जो है आकंठ जो है योग में पूरे खो गए। और यहाँ ये पीछे तो पावर योग चल रहा है, देखो ऐसे ये योग पूरे देश में जिस दिन होगा उस दिन ये पूरा देश स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा, संस्कारवान बनेगा, और पूरी दुनिया को जरूरत है। पूरी दुनिया में मोटापा है, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और बीमारी ना हो जीवन को भी तो अच्छा बनाना। मैं कहता हूँ ना, एक बहुत बड़ा तत्व है मेरी बहन पूजा जी, पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। योग से अपने भीतर का वो देवत्व, योग से भीतर की वो दिव्यता। अब इतना कठिन योग ना हो किसी से तो घबरा नहीं रहे हमसे तो ये इतना।
3: मेरे को तो बहुत समय लगेगा ये करने।
5: पूजा सूत्री कहे मुझे स्वामी जी ना कह दे कि ये करो। तो ये योग इतना कठिन भी हो तो इतना तो होगा आपसे कि आप जो है भस्त्रिका कर सके, कपाल भाती कर सके, आप भी और हम भी कर सकेंगे। ये बिल्कुल ये बिल्कुल सहज मंडूकासन सब कर सकते, ऐसे आगे झुक गए मंडूकासन हो गया। तुम कह रहा था स्वस्थ जीवन के लिए इस बार का थीम रखा है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर एंटी एजिंग, योगा फॉर प्रिवेंशन, बीमारियों का प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, बीमारियों का क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट, एंड थ्रू योगा वी आर अचीविंग इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, हेल्थ, पीस, जॉय, हैप्पीनेस। अब देखो एक तो ये यहाँ पर हमारे साथ योगा फॉर यूथ, योगा फॉर जेंजीज है। और देखो क्या ये तो नजारा ही देखिए, और यहाँ कृष्णा नदी का ही पावन। चंद्रबाबू नायडू जी जो एक देश के विजनरी मुख्यमंत्री, जैसा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है ऐसा देश के सभी मुख्यमंत्री हो जाए तो जो मोदी जी का सपना है 2047 में भारत को विकसित बनाना 2037 तक ही पूरा हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम यहाँ इस बार आंध्र प्रदेश में इसलिए नहीं, सच में विजन होना चाहिए, एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा सभी मंडूकासन, गोमुखासन, जिससे जितना बन पाए योग भी करें, और जरा सोचे कि योग करते करते क्या कर्म योग करना है, क्या अपना कर्तव्य करना है। तो योग में योग भी है, योग में कर्मयोग भी। गीता के 18 अध्याय अष्टादश योग है पूजा जी।
3: बिल्कुल स्वामी जी, आप क्योंकि बोल रहे हैं कि सबको ही योग करना चाहिए,
5: सबको योग करना, जाति वर्ग समुदाय का कोई इसमें भेद नहीं है। और वैसे भारत के मुसलमानों के बारे में तो कहूंगा, भारत के मुसलमानों का डीएनए और हमारा डीएनए एक है, अर्थात हमारे पूर्वज एक है, सब हमारे पूर्वज योगी थे। और योग तो बात यहाँ कोई इस्लाम की, कोई ईसाइयत की, कोई आस्तिकता नास्तिकता की है ही नहीं, बात मानवता की और बात ह्यूमन वैल्यूज की, बात हेल्थ की है। अब सबको मोटापा है ना, अब देखो मोटे हैं, यदि ये करे मैं तो कहता हूँ ये दो ही अभ्यास करे। ये देखो ये बाई तरफ तो क्या गजब आसन कर रहे हैं बच्चे, टिट्टी भासन, इधर भूनो बनासन हो रहा है और इधर पीछे पावर योग चल रहा है।
3: स्वामी जी मैं कह रही थी कुछ योग दीदी के लिए भी बता दीजिए, क्योंकि दीदी जी काफी परेशान है बंगाल में।
5: ये उलट पुलट योग करना चाहिए, देखो ये। अब आप कहेंगे दीदी को क्या योग करना चाहिए, अब दीदी से हम कहेंगे हनुमान आसन, फिर ये इधर कठिन कठिन आसन, ये तो नहीं हो पाएगा। दीदी को प्राणायाम करना चाहिए,
3: धैर्य बनाए रखे,
5: अनुलोम विलोम, जो पंछी उड़ गए अब नए एमपी बनाने पड़ेंगे, नए एमएलए बनाने पड़ेंगे, नई पार्टी बनानी पड़ेगी, पार्टी पूरी खंडबंड हो गई। तो योग में राजयोग भी सन्निहित है, योग में अध्यात्म योग है, योग में राजयोग है। अब योग धर्म, योग धर्म बनेगा ऐसा हमारा विचार है। तो मैं तो आश्वस्त हूँ कि आज लोग प्रेरणा लेंगे, और जैसे आपने कहा आज तक शुरू नहीं किया तो आज शुरू कर दे,
3: आज तक के साथ शुरू कर,
5: आज तक के साथ शुरू कर दे। और योग जब आदत बन जाएगी ना, तो सुबह उठने की आदत बन जाएगी, योग करने की आदत से सब बुरी आदतें, नशा की आदत, ज्यादा खाने की आदत, उल्टा पुल्टा सोचने की, उल्टा पुल्टा देखने सुनने की, बोलने की, करने की आदत, बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। योग में कितना कुछ है, माने योग करेंगे सब बीमारियां, सब बुराइयां, सब बुरी आदतें, सब रोग, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। योग युक्त होंगे तो रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त, दरिद्रताओं से मुक्त और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होंगे।
3: स्वामी जी, क्या भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो जाएंगे? जैसे ये राम मंदिर का जो मामला सामने आया है, और
1: चंदा चोरी वाला,
3: बिल्कुल, और कह रहे हैं जो योगी जी हैं शीर्षासन करवा देंगे सबको।
5: हाँ, वो तो कराना ही पड़ेगा। देखो चंदा चोरी, चोरी चकारी पूरे देश में, देखो एक बात अच्छी है, या आंध्र प्रदेश में आपको ना के बराबर चोरी चकारी मिलेगी, या क्राइम और ये चोरी आदि ये लगभग जीरो है। इस बात के लिए भी आंध्र प्रदेश का भाई जोरदार अभिनंदन है, ये बहुत बड़ी बात है। आज तो देखो आप हमारे सामने भी हजारों योगी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये वातावरण पूरे देश में बनना चाहिए। देखो मंदिरों में भी दो तरह से चोरी हो रही है, एक तो जो भगवान का चढ़ावा आता उसकी चोरी हो रही है, एक तो प्रबंधन में जो लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट प्रबंधन है, चाहे वो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, या गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तीन तरह की चोरी हो रही है। एक जो इंडिविजुअल जहां पर लोग हैं वहां पर भी चोरी हो रही है। भगवान का पैसा धर्म के लिए है, किसी का घर परिवार संसार बसाने के लिए नहीं, एक परिवार के निर्वहन के लिए जितना बहुत नितांत आवश्यक है उतना तो लोगों को मिल ही जाता ना। फिर ट्रस्ट और सोसाइटियों में भी चोरी हो रही है, और देश के मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की तो का डाका तो ये सरकारें भी तो डाल रही है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, तो बहुत बड़ा विषय है। तो योग से जीवन में शुचिता जरूर आएगी, शुचिता पूर्ण जीवन योग से होगा, ये एकदम पक्की बात है। पूजा जी,
3: स्वामी जी, जैसे हम ऑफिस में होते हैं ना पूरे समय, तो बहुत समय नहीं मिल पाता, जैसे मैं बहुत सुबह सुबह ऑफिस जाती हूँ तो योग करने का समय ही नहीं मिल पाता, तो क्या करें हम ऑफिस में बैठे बैठे कुछ ऐसे आसन?
5: ये तो सुबह सुबह करके चले जाना, मंडूक आसन आगे झुकने वाला, अब ये योगा प्रोटोकॉल में भी है उष्ट्रासन, ऐसे ये तो बहुत ईजी है। और फिर देखो एक है आगे झुक गए ऐसे, ये शशकासन, तो ये तो सुबह सुबह करके जाना, सुबह सुबह एक बार आप जाने से पहले। अब बच्चों को तो शीर्षासन करना चाहिए, जैसे बच्चे शीर्षासन कर रहे, अब देखो सुबह सुबह यदि ये करके चले गए ना, इससे तो पूरी जिंदगी बन जाती है, ऊपर उठे नीचे आए ऐसे, ये ऐसे, तो देखो घर जाने से कहीं पर भी ऑफिस में जाने आदि से पहले भुजंगासन करके निकल, मैं तो कहता हूँ एक भुजंगासन भी कर लेंगे ना, तो देखो हम आपकी तरह हम भी दुबले पतले
3: तो नहीं है स्वामी जी
5: लेकिन आपके भी पूजा जी ऐसे ही बना देंगे, ये देखो पूरा शरीर सुंदर सुंदर लाकर
3: जाऊंगी तो जल्दी बन जाएंगे
5: सोमवार मुझे हासिल करना है तो, और अश्वगंधा शतावर थोड़ा खा लेना। और फिर देखो ये बच्चों को इधर देखा तो मैंने देखा ही, मैंने कहा कोई टूट फूट तो नहीं गए, और इधर से
3: रबड़ की तरह जहाँ मुड़े वहां मुड़ जाते हैं।
5: और देखो ऊपर के ये पावर योग चल रहा है, ऐसे आज का हमारा एक संदेश भी है, पावर योग आपको चाहिए तो भी कर, योगा फॉर यूथ पावर योग। फिर जिनको डायबिटीज है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको ओबिसिटी है, सबके लिए योग। तो और इसके साथ जो आप बोल रहे थे ऑफिस में बैठे बैठे ये कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे ये कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे भस्त्रिका कर सकते हैं, ये तो मेन है ना, भस्त्रिका सांस लिया और छोड़ा कपाल भाति, फिर ये अनुलोम विलोम, बाई से लिया दाई से छोड़ा, दाई से लिया बाई से छोड़ा ऐसे, फिर ये भ्रामरी ओम, कभी आपस में गुस्सा ज्यादा हो जाए बोस लोग
3: तो तुरंत आसन कर लें
5: तो थोड़ा अपने चित्त को अपने मन को शांत करने के लिए शीत ली। हाँ ये शीत का ये, और कभी ये नहीं खड़े होकर के भी ना, जैसे ये बड़ा अच्छा है, ऐसे कर लिए। तो मैं तो कहूंगा अभी जब भी थोड़ी फुर्सत मिले, कुछ लोग सिगरेट का सुट्टा लगाने निकल जाते हैं। अपने वैसे इतना पोल्यूशन, इतना रेडिएशन, और उसी से तो सब लाइफस्टाइल डिजीज, तीन ही तरह की तो बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज, मोटापा, बीपी, शुगर, था स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, फिर जेनेटिक डिजीज, जीन्स में भी चेंज आ रहा है। मैंने कहा ना रेडिएशन, पोल्यूशन, और चारों तरफ यूरिया, डीएपी, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, ये सब के कारण से लोगों की जिंदगियां बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो योग से जेनेटिक चेंज आता है, माने योग करेंगे ना तो देखो ये भी कर लेना चाहिए, कंधे खुल जाते हैं। योग से जेनेटिक बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीज, और जिनको इनकेरेबल डिजीज बोला जाता है ना, हम तो लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज, ऑटोमेटिक डिजीज, इनको भी ठीक करते हैं। तो ये तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कहीं पर भी फुर्सत मिली, और ऑफिस में भी बैठ के प्राणायाम तो सबसे हो जाता है, तो सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम। हाँ ये सर्वांगासन, सर्वांगासन, चलो हलासन करो, बट सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये सबको करना चाहिए। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, चलो बच्चों चक्रासन करो। चक्रासन खड़े होकर के करते हैं। अब देखो खड़े होकर के चक्रासन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा।
3: खड़े होकर नहीं होगा, बैठ कर मैं कर लूंगा।
5: हाँ आप लेट करके करो, चलो ऐसे ऐसे लेट करके। तो अरे पूजा ने भी अच्छा किया भाई, जोरदार अभिनंदन है। तो जो है
3: स्वामी जी आपसे ही सीखा है योग तो मैंने, आप भी जानते हैं स्वामी जी, इस बार का जो योग का थीम है उस पर क्या कहें, क्योंकि हर बार योग का थीम बदल ही रहा है।
5: योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अब देखो आप तो हमसे आधे से भी कम उम्र के हो लेकिन हम भी आपसे दुगने उम्र के नहीं लग रहे। इसको कहते हैं योगा फॉर हेल्दी एजिंग। एजिंग धीरे धीरे एजिंग होती है, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट। कोई सामान बाजार से लाते तो लिखा रहता है 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में एक्सपायरी हो जाएगी। खाने पीने की चीजों में जल्दी एक्सपायरी होती है, कुछ चीजें थोड़े लंबे टाइम तक चल जाती है। तो व्यक्ति की भी एजिंग है। व्यक्ति 100 साल तक युवा रह सकता है, 150 साल तक, 200 साल तक जी सकता है। प्राचीन काल में 400 साल तक जिया करते थे। इसके लिए एक तो प्राणायाम, प्राणायाम से हमारे बॉडी के जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, अष्ट चक्र नवद्वार, बेहतर को बेहतर लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र नवद्वार, देवाराम, पुर, अयोध्या, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, आनंदमय कोश, 86 ब्रेन के, जो 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स, और उनका पूरे शरीर में जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, वो अच्छा हो जाता है डीप ब्रीदिंग से। हेल्दी एजिंग के लिए डीप ब्रीदिंग, फिर कपाल भाती।
3: वैसे तो विश्व में भी अब योग किया जा रहा है, योग को एक बहुत बड़ी पहचान मिली है, अब और इसको एक बड़े लेवल पर ले जाने के लिए क्या सोचा है?
5: मेरे चित्त में ये चल रहा है, वैसे तो मैं जन्म जन्मांतरों से, जुगन जुगन से हम जोगी है, एक कबीर साहब का भजन है, जुगन जुगन हम योगी, तो युगों युगों से योग चला रहा है। और मैं तो 50 साल से योग कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि सारी दुनिया योग करेगी, और सबसे ज्यादा जरूरत तो ट्रम्प साहब को है, सबसे ज्यादा जरूरत तो पुतिन साहब को है, जेलेंस्की जी को है, खामनाई को है। अच्छा पूरी दुनिया युद्ध मचा हुआ, युद्ध समाधान नहीं, योग समाधान, और ये चारों तरफ हिंसा, घृणा, नफरत, मार, धाड़, लूट, मार, ये सब क्या चल रहा है? तो योग से युद्ध भी रुकेंगे, योग से लोगों में सच्चरित्रता, पवित्रता आएगी, योग से सच्चे अर्थों में जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यूनिवर्सल जो वैल्यूज है वो योग से ही उभरेंगे। इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ पूरी दुनिया में योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ, योग फॉर वर्ल्ड पीस, योग फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सब जगह योग होगा,
3: क्योंकि योग से
5: ही उद्योग भी अच्छा हो, और एक दूसरे का योग करें, सहयोग करें, योग के पथ पर चले। और चलाए मैं तो कहता हूँ कम से कम इंटरनेशनल योग डे पर, जैसे क्रिसमस के दिन तो सब लोग चर्च में जाते हैं भाई,
3: हाँ।
5: है? कि आज तो चलो, लोग ईद और जो है रमजान आदि में तो कहते हैं भाई आज तो चलो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, जब कोई गुरु पर्व होता है तो कहते हैं चलो आज तो गुरुद्वारा चलते हैं, जैसे रामनवमी जन्माष्टमी है तो बोलो आज तो चलो मंदिर में चलते हैं, आज तो चलो तिरंगा फहरा लेते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी है, चलो आज तो योग दिवस है, तो शुरुआत तो कहीं से होगी तो फिर धीरे धीरे योग जीवन में समा जाएगा।
3: बिल्कुल, तो आज तक के साथ आज से आप योग की शुरुआत करिए,
5: तो आज तक के साथ
3: आज से योग की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया,
5: एक बार जरा हास्यासन करेंगे, ये भी योग है, हास्य योग, लाभ योग,
3: ये भी एक योग,
5: हास्य योग और सिंहासन, दहाड़ो कला थायराइड भी लोगों का गड़बड़ा।
3: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ यहाँ पे हमें समय देने के लिए, तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: एक चीता आपको इस समय एक ताजा शिकार को अपने खाते हुए देख सकते हैं।
4: ये जो अफ्रीकी शेर है ये चैन की नींद अपनी सो रहे हैं इस समय।
6: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
4: Oh, ouch.
6: However you make money work, we can work with that.
7: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.

0: समाजवादी पार्टी में झूठ की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही हैं।
1: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं। उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
0: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
1: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
0: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
2: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता।
3: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
0: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
3: जी,
2: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है। और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है। SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु, अंगूठी
3: जी,
2: कड़ा,
3: चेन,
2: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक वो, जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, यह है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थी और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

महाराष्ट्र के परभणी में बड़ा हादसा। यशवाणी मारुति मंदिर परिसर में निर्माणाधीन मंडप की छत गिरने से 6 लोगों की मौत। पीएम और सीएम ने जताई संवेदना। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला। कहा, बेड़ियों से आजाद हो रहा बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। पूछताछ, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं। पूछताछ में टिन्नू यादव और चार पुजारियों का गोलमोल जवाब। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बनी मजारों और कब्रों पर चला बुलडोजर। 6.5 बीघा भूमि पर था अवैध कब्जा, मौके पर फोर्स तैनात। सीज फायर को लगा बड़ा झटका। ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप।

0: of which direction he is going in. So we had a pride of lion in this bush area.
1: रात के रहस्यमयी अंधेरे में जाग उठता है जंगल। घनी झुरमुटों के बीच से झांकते अद्भुत जीव। सन्नाटे में रह रह कर गूंजते अकल्पनीय पुकार। शिकार और शिकारी के बीच एक अविश्वसनीय खेल।

चलिए दुनिया के सबसे अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय जंगल, दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों के पास।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो अमेरिका, यूरेशिया, स्कैंडिनेविया में फैला है वो है टाइगा जंगल। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका का अमेज़न। दुनिया का सबसे पुराना जंगल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का डेंट्री जंगल। लेकिन आज हम जिस जंगल में आपको लेकर जा रहे हैं वो है दुनिया का सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जंगल। जी हाँ, आज हम आपको देश ही नहीं दुनिया के उस अद्भुत पहलू के बारे में बताने वाले हैं जो हमें दिखी अफ्रीका के केन्या के मसाई मारा में।

0: जंगल का कानून कहता है जिसके पास ताकत है वो जिंदा रहेगा और वही हुकूमत करेगा जंगल पर। आज उसी जंगल में जिंदगी का अद्भुत संघर्ष दिखाएंगे। ताकत का अविश्वसनीय दृश्य दिखाएंगे। शेरों के मुंह से शिकार छीनते इंसानों की अकल्पनीय तस्वीर दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ जंगल की उस दुनिया में केन्या के मसाई मारा। जंगल का नियम है कि शेर, तेंदुए और चीते एक दूसरे के इलाके से दूर रहते हैं, लेकिन हमने सुना कि मसाई मारा के जंगलों में ये 100 मीटर के दायरे में देखे जा सकते हैं। कल्पना करके देखिए वो दृश्य कितना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय होता होगा। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम जंगल के उस नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए केन्या के मसाई मारा पहुंची। हम बिल्कुल नजदीक से देखना चाहते थे कि दुनिया के सबसे खूंखार बब्बर शेरों की दुनिया कैसी है। हम सुनना चाहते थे जंगल के सन्नाटे में गूंजती हर पल मौत की उस आहट को जिसे जंगल का राजा कहते हैं। हम महसूस करना चाहते थे मसाई मारा के जंगलों की उन रहस्यमयी कहानियों को जिनमें सुना है कि इंसान शेरों के मुंह से उनका शिकार छीन लेते हैं। हमें खुद चलकर देखना था दुनिया का वो सबसे बड़ा पलायन जिसमें 15 लाख जानवर एक साथ खून की नदियों और मौत के दरियाओं को पार कर जाते हैं। स्वागत है आपका केन्या के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मसाई मारा जंगल में।
1: केन्या का जो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन का एग्जांपल है, मसाई मारा का जो फॉरेस्ट है काफ़ी बड़ा है और घास के मैदान है, उस घास के मैदान पे विजिबिलिटी बहुत क्लियर रहती है, शिकारी और शिकार स्पष्ट तौर पे दिखाई देते हैं, लेपर्ड, एलिफेंट, राइनो, लायन वहाँ के मुख्य जीव हैं।

मसाई मारा यानी दुनिया के प्राकृतिक अजूबों में से एक, मसाई मारा यानी जीवों का अद्भुत संसार, मसाई मारा यानी जंगली जानवरों का रहस्यमयी साम्राज्य। मसाई मारा में हमारा सफर शुरू हुआ इस उम्मीद के साथ कि हम करीब से देखेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन शिकारी माने जाने वाले बब्बर शेरों को। मसाई मारा नाम दरअसल बना है दो शब्दों को जोड़कर, मसाई कबीले के लोगों और मारा नदी से। ये पूरा क्षेत्र 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जब हम सफारी पर चले तो मौसम साफ था, नीले आसमान के नीचे घास का अंतहीन सा नजर आने वाला मैदान था। हर नजर के साथ कोई ना कोई जीव या जंतु हमें नजर आ रहा था, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त। उस वक्त ये कौन सोच सकता था कि शांत से दिखने वाले इस जंगल में रोज जिंदगी और मौत का खेल चलता रहता है। हमारी नजरें खूंखार बब्बर शेरों के झुंडों को तलाश कर रही थीं। तभी दूर से हमें दिखाई दिया एक हाथी। हम जिस हाथी को देख रहे थे वो अकेला घूमता हुआ अफ्रीकी नर हाथी था। नर आम तौर पर अकेले ही रहते हैं। जमीन का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर अफ्रीकी हाथी। सात दशमलव 5 मीटर तक लंबा, 3.3 मीटर ऊंचा और 6 टन वजनी तक हो सकता है। ये हाथी बेहद बुद्धिमान लेकिन सामाजिक रूप से जटिल होते हैं। हम थोड़ा और आगे चले तो हमने हथनियों का झुंड देखा जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे।

0: हाथियों की सबसे अद्भुत बात ये होती है कि इनके समूह का नेतृत्व मादा हाथी करती है, यानी अफ्रीकी हाथी मात्र सत्तात्मक होते हैं। इनके झुंड में नर नहीं होते हैं। ये हथिनी आकार में सबसे बड़ी और उम्र दराज होती है। मसाई मारा के सवाना में हर हथिनी के झुंड में करीब 10 सदस्य होते हैं।
1: मैट्रियार्कल परिवार है जहाँ जो मादा हथिनी है वो मुख होती है, वो लीडर होती है। इसलिए हाथियों के समूह में अगर देखेंगे तो जो सबसे बड़ी और एक्सपीरियंस्ड बहुत सारे मेमोरी के साथ हथिनी हैं वही इसके समूह को लीड करती हैं, क्योंकि उनको पता है पानी कहाँ है, खाना कहाँ है, बच्चे को सुरक्षित कैसे रखना है, थ्रेट परसेप्शन कहाँ कहाँ है जंगल में। इसलिए अधिकतर हाथियों के समूह में हथिनी ही ग्रुप को लीड करती है।
0: दरअसल अफ्रीकी और एशियाई हाथियों में कुछ फर्क होता है। अफ्रीकी हाथी आकार में बड़े होते हैं, जबकि भारत में पाए जाने वाले हाथी उनसे छोटे। अफ्रीकी हाथियों का वजन 4000 से 8000 किलोग्राम के बीच होता है। एशियाई हाथियों का वजन 3000 से 6000 किलोग्राम के बीच होता है। अफ्रीकी वयस्क हाथी की ऊंचाई 4 मीटर तक होती है। एशियाई वयस्क हाथी की लंबाई 3.5 मीटर तक होती है। अफ्रीकी हाथी 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। एशियाई हाथी 48 साल तक जीवित रह सकते हैं।
2: एशियन एलिफेंट और जो अफ्रीकन एलिफेंट में उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अफ्रीकन एलिफेंट साइज में बड़ा होता है, उसके कान भी बड़े होते हैं और उसकी पीठ में थोड़ा सा झुकाव सा रहता है, जबकि एशियाई जो एलिफेंट है उनमें थोड़ा सा उठाव रहता है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकन जो एलिफेंट्स होते हैं उनके जो मेल फीमेल दोनों के टस्क होते हैं, लेकिन एशिया में केवल मेल के ही टस्क होते हैं।
0: अक्सर शांत से दिखने वाले ये हाथी हर साल दुनिया में करीब 500 से 600 लोगों को मार देते हैं। धीरे धीरे हथिनियों का झुंड हमारी आंखों से ओझल हो गया और हम आगे बढ़ गए। रास्ते में हमने बबून भी देखे और कुछ कुछ दूरी पर सियार और लकड़बग्घे भी हमें नजर आए। जब हमने सफर शुरू किया था तब धूप खिली थी और हमारे अब तक सफर में धूप सिर के ऊपर आने लगी थी, यानी कि समय तेजी से बीत रहा था और हमारी बब्बर शेरों की तलाश अभी तक अधूरी थी।

0: जिराफ आमतौर पर बबूल के पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। शेर और लकड़बग्घे इनके प्रमुख शिकारी होते हैं। मसाई मारा में कभी इनकी आबादी बहुत होती थी, लेकिन अब काफी कम रह गई। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें झाड़ियों में कुछ हलचल सी दिखी। हमारे साथ आए जंगल के अधिकारियों ने सतर्क रहने का इशारा किया और चुपचाप झाड़ियों की तरफ देखने का इशारा किया। हमारे सामने एक चीता था और वो अपने ताजे ताजे शिकार को खा रहा था।
1: मसाई मारा का संरक्षण कुछ इस तरह का है कि आप इस तरह की तस्वीरें बार बार देख सकते हैं। अब देखिए, जिन चीतों को भारत में देखना इतना दुर्लभ होता है, खासकर इसलिए भी क्योंकि नमीबिया से वो चीते हमारे पास आए हैं, लेकिन ये केन्या में मसाई मारा की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर एक चीता आपको इस समय एक ताज़ा शिकार को अपने खाते हुए देख सकते हैं।
0: मसाई मारा के खुले मैदान चीते के शिकार के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चीता भागता है तो उसके पैर जमीन पर मानो पड़ते ही नहीं हैं। सभी बड़ी बिल्लियों में चीता दुनिया की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली प्रजातियों में से एक है, खास तौर पर अपनी रफ्तार के लिए। चीते की रीढ़ लचीली होती है। जब चीता तेज दौड़ लगाता है तो उसकी रीढ़ मुड़ती और सीधी होती है, जिससे उसके पिछले पैर लंबे कदम भर पाते हैं। चीता सिर्फ 3 कदमों में ही 0 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होता है। 28 इंच की उसकी लंबी पूंछ नाव की पतवार की तरह काम करती है, जिससे वह फुर्तीले शिकार का पीछा करते समय बेहद तीखे मोड़ आसानी से ले पाता है।
1: यहाँ जो कैट फैमिली का जो पॉपुलेशन है, उसे संरक्षण के जरिए बहुत ही समृद्ध किया गया है। न केवल चीता बल्कि टाइगर्स, शेर, वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे।
0: मसाई मारा अफ्रीका में चीतों को करीब से जानने की सबसे शानदार जगहों में से एक है। लेकिन जानते हैं मसाई मारा के चीतों का सबसे अद्भुत रिश्ता किसके साथ होता है? चीते देखने के लिहाज से मसाई मारा को और भी खास बनाती है यहाँ मौजूद दीमकों के टीले या टर्माइट माउंट्स की भरमार, जिनका इस्तेमाल ये जंगली बिल्लियां निगरानी चौकियों के रूप में करती है। शिकार खत्म करने के बाद चीता धीरे धीरे घास के मैदान में गायब होने लगा। हमने देखा वो लंगड़ा कर चल रहा था, यानी उसे शिकार के समय या किसी और कारण से चोट लगी थी

हम धीरे धीरे मसाई मारा के जंगल में और अधिक अंदर तक पहुंच चुके थे और धीरे धीरे हमें ये लगने लगा था कि क्या वाकई हमें बब्बर शेर करीब से देखने को मिलेगा। ये सवाल इसीलिए क्योंकि समय बीत रहा था और हमें वापस भी लौटना था। तभी अचानक हमने कई जानवरों को एक साथ आगे बढ़ते देखा। इनमें ज़ीब्रा, वाइल्डबीस्ट और हिरन शामिल थे जो एक साथ एक दिशा में बढ़ते चले जा रहे थे। हर साल जुलाई से अक्टूबर तक मसाई मारा दुनिया के सबसे शानदार नजारों का गवाह बनता है, द ग्रेट माइग्रेशन। 15 लाख से अधिक वाइल्डबीस्ट, ज़ीब्रा और दूसरे जानवर तंजानिया के सेरेंगेटी से केन्या के मसाई मारा की ओर एक विशाल और खतरनाक सालाना यात्रा करते हैं। यह यात्रा भोजन और पानी की तलाश में होती है और यही यात्रा मौका बनती है मसाई मारा के शिकारियों के लिए सबसे बड़े शिकार। ये दृश्य दुनिया के सबसे अद्भुत दृश्यों में गिना जाता है क्योंकि हर साल कम से कम 15 लाख वाइल्डबीस्ट और ज़ीब्रा भोजन की तलाश में एक साथ पलायन करते हैं। और ये पलायन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की यात्रा नहीं होती बल्कि जीवन और मौत का सबसे बड़ा संघर्ष भी होता है। ये माइग्रेशन

0: धरती का सबसे बड़ा शो होता है।
1: ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं द ग्रेट माइग्रेशन, यानी एक ऐसा पलायन जिसे अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नेचुरल वंडर माना गया है, अद्भुत माना गया है। लाखों की संख्या में ये वाइल्ड बीस्ट अपने सूखे जंगलों को छोड़कर हरियाली की तरफ, बारिश की तरफ बढ़ते हैं। ये दो देशों की सीमाओं को पार करना भी होता है, लेकिन आखिर इनके लिए किस देश की सीमा, कौन सा सरहद, कौन सी बंदिश?
0: हर वर्ष तंजानिया के सेरेंगेटी से लाखों जानवर पानी और खाने की तलाश में मसाई मारा आ जाते हैं, लेकिन इस बीच उन्हें मारा नदी से होकर गुजरना पड़ता है।
2: वो एक तरह से उसको मृत्यु और जिंदगी के संघर्ष के तौर पे देखा जाता है। वो जब नदी क्रॉस करते हैं तो उस पर मगरमच्छ उनका इंतजार करते हैं, वो भी एक प्रीडेटर के तौर पे इनका इंतजार करता है। और पानी और घास के मैदान के लिए एक ये जो माइग्रेशन ऑफ द जो ईयर कहलाता है, काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें अपने जान बचाने और अपने भोजन के लिए, घास के लिए, पानी के लिए जो ये पलायन होता है, ये पृथ्वी पे लाखों की संख्या में किसी हर्बीवोर का इतना बड़ा पलायन कहीं नहीं देखा गया है।
0: मारा नदी को पार करते वक्त कई जानवर मगरमच्छों का शिकार बन जाते हैं, कई घायल होकर बाहर निकल आते हैं तो दूसरे हिंसक पशु उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। जीवन की विडंबना देखिए कि एक तरफ तो पानी और खाने की तलाश में लाखों जानवर मसाई मारा आते हैं, दूसरी तरफ मसाई मारा के शेरों, तेंदुओं, लकड़बग्घों जैसे शिकारियों के लिए ये जानवर खुद भोजन बनकर चले आते हैं। यही है मसाई मारा का सबसे बड़ा जीवन युद्ध। सिर्फ जीवन मृत्यु के युद्ध के हिसाब से ही ये माइग्रेशन अद्भुत नहीं है, बल्कि जिस तरह की इसमें व्यवस्था दिखती है वो इसे दर्शनीय बनाती है। ज़ेब्रा बड़ी बड़ी पत्तियों को खाकर वाइल्डबीस्ट के लिए आगे का रास्ता बनाते हैं, फिर इस रास्ते पर गजेल और हिरन आदि अपनी क्षमता के अनुसार खतरों से सबको आगाह करते चलते हैं। लाखों जानवर मारे जाते हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़े माइग्रेशन का यह अद्भुत क्रम नहीं रुकता। प्रतिवर्ष ये ऐसे ही चलता रहता है, निरंतर, लगातार।
3: ये इसीलिए आवश्यक होता है कि उस सेरेंगेटी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का होना, जब ये माइग्रेट करते हैं तो इन ये ग्रेज करते हैं, जिससे वहाँ के वनस्पतियों को एक नया आधार मिलता है उगने का, पनपने का, बढ़ने का, और ये बहुत सारे प्रीडेटर को सजोते हैं, वो लायन हो या मगर हो, सबको, सबके लिए भोजन भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये बायोडाइवर्सिटी के लिए और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए बड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फिनोमेना है।
0: मसाई मारा के अजूबे देख रहे थे, लेकिन हमारा मन अभी भी ये सोच रहा था कि क्या हम दुनिया में सबसे खूंखार माने जाने वाले मसाई मारा के शेरों को देख सकेंगे, और क्या ऐसा हो सकेगा कि हम उन्हें बिल्कुल पास से देख सकें? हम आगे बढ़े ही थे कि हमको वो जानवर नजर आया जो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़े अफ्रीका के सबसे घातक जानवरों में से एक हैं और हर साल सैकड़ों इंसानी मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे खतरनाक स्तनधारियों में गिने जाते हैं। दरियाई घोड़े मारा नदी में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, नर नदी के हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं और अपने समूह की रक्षा करते हैं। जंगलों में जानवरों की सारी लड़ाई ही पानी के कब्जे को लेकर होती है, और दरियाई घोड़े इसको लेकर बहुत उग्र होते हैं। ये जानवर ग्रेट माइग्रेशन के दौरान जेब्रा और विल्डरबीस्ट के लिए नदी पार करते समय एक बड़ा खतरा बनते हैं। वैसे दरियाई घोड़ों को देखकर उनके मोटापे पर मत जाइएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दरियाई घोड़ों के शरीर में सिर्फ 2-5% ही फैट होता है, बाकी उनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियां ही होती हैं। दरियाई घोड़े 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और एक बार में शेर तक को मार सकते हैं। दरियाई घोड़ों को हम देख ही रहे थे कि हमें तेंदुआ नजर आ गया। अद्भुत था ये देखना कि जहां अभी कुछ ही देर पहले हमने चीतों को देखा, वहीं तेंदुआ भी दिख गया, वो भी इतने पास पास के एरिया में।
2: लायन, लेपर्ड और चीता 100 मीटर की दूरी में बहुत कम देखे जाते हैं। एक्सीडेंटल वे में हो सकता है ये करीब आ जाए, लेकिन तीनों एक दूसरे का अवॉइड करते हैं। लायन इनमें सबसे पावरफुल होता है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में लायन के सामने दोनों नहीं टिक पाते हैं और लेपर्ड के सामने चीता नहीं टिक पाता है। पानी के स्थान पर या किसी शिकार का पीछा करते हुए ही एक्सीडेंटल वे में तीनों करीब आ जाते हैं, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए ये तीनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं।
3: वो इसलिए दूरी बना के रखते हैं क्योंकि रिसोर्स पार्टीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हैबिटेट पार्टीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है वाइल्ड लाइफ में, कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में भोजन को अपने लिए मुहैया कर पाना सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट एनिमल में होता है, उनका भोजन एंड हैबिटेट रिक्वायरमेंट। तो इसलिए ये सारे प्रेडेटर आसपास होते हैं, लेकिन हैबिटेट पार्टीशनिंग के हिसाब से, रिसोर्स पार्टीशनिंग के हिसाब से एक निश्चित दूरी बनाते हैं।
0: लेकिन जरा रुकिए, अभी तो सबसे बड़ा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था, और वो भी हमें कुछ मीटर की दूरी तय करने के बाद नजर आ गया। हमारी आंखों के सामने मसाई मारा के शेर थे, वो बब्बर शेर जिनको देखकर ही शरीर से सिहरन सी दौड़ जाती। शानदार, शक्तिशाली, खतरनाक मसाई मारा के शेर अफ्रीका के जंगलों के खौफ का जीता जागता सबूत है। लेकिन वो इस वक्त आराम के मूड में लग रहे थे। ऐसा तब होता है जब वो भरपेट शिकार करके सुस्ता रहे होते हैं।

0: देखिए यहाँ पर आपको चार शेर सोते हुए नजर आ जाएंगे। जो एशियाई गिर शेर होते हैं उनसे काफी आपको मिलते जुलते देखने में लगेंगे इस समय, लेकिन काफी सारा फर्क होता है एक अफ्रीकी शेर में और एक एशियाई शेर।
1: अफ्रीकन शेर को देखें तो उनके मेंट, जिसकी वजह से हम बबर शेर उनको कहते हैं, काफी बड़े होते हैं, जबकि एशियाई शेरों में ये मेन जो सामने बाल होता है गर्दन पे वो बहुत स्पार्स होते हैं और छोटे होते हैं। इनकी बेली जो एशियाई इंडियन शेर हैं जो गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं, अभी एक ही घर है पूरे विश्व में एशियाई शेरों का, सिर्फ एक ही घर है। तो इनकी बेली फोल्डेड होती है जिससे बड़े दूर से आप देख के समझ सकते हैं। इनके प्राइड भी छोटे होते हैं अफ्रीकन शेरों की तुलना में।
0: ये शेर अपनी शक्ति और एकता के दम पर यहाँ के मैदानों पर राज करते हैं। मसाई मारा और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 900 शेर हैं, जो इसे अफ्रीका के सबसे अधिक शेरों के घनत्व वाले स्थानों में से एक बनाता है। ये कई अलग अलग झुंडों में संगठित हैं। शेरों के ये झुंड ही इस जंगल की सामाजिक धड़कन तय करते हैं। मसाई मारा के शेरों को एपेक्स प्रेडेटर बोला जाता है, यानी इनसे अच्छा शिकारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ₹1500 वर्ग किलोमीटर में फैले ये 900 शेर अलग अलग झुंडों में बंटे हुए हैं, जिनके नाम उनके राज करने की कहानी की गवाही देते हैं। रोंगाई प्राइड, सर्वे प्राइड, ब्लैक रॉक प्राइड, सोपा प्राइड, कासकासी बॉयज, मार्श प्राइड। इन अफ्रीकी शेरों का अपने क्षेत्र पर वर्चस्व है। ये राज करते हैं, परिवार बनाते हैं, शावकों की रक्षा करते हैं। मसाई मारा के शेर सामाजिक झुंडों में रहते हैं, जिनका नेतृत्व आमतौर पर एक या दो प्रभावशाली नर करते हैं। एक झुंड या प्राइड में 5 से 30 सदस्य हो सकते हैं। कई शेरनियां और उनके शावक भी इसी में शामिल होते हैं। शिकार का ज्यादातर काम शेरनियां करती हैं। नर शेर झुंड की रक्षा करते हैं, अपने वंश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और दुश्मनों को दूर रखने का काम करते हैं। मसाई मारा में शेर का एक पूरा दिन आराम और शिकार के बीच संतुलन का होता है। वो अपनी ऊर्जा बचाने के लिए दिन के लगभग 20 घंटे छांव में आराम करते हैं।
2: और चूंकि कच्चा मांस रॉ मीट जो रहता है उसको खाने के कारण उनको डाइजेशन का वो रहता है इशू, इसलिए वो कंफर्टेबल थोड़ा सा अपने आप को सपोर्ट करने के लिए सोते हैं।
1: अफ्रीकन सवाना का तापक्रम इतना भारी होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उनको बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है और हंटिंग के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखना होता है।
0: लेकिन जैसे ही शिकार की बारी आती है पूरे सवाना का माहौल एकदम बदल जाता है। आज हमारी किस्मत हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी, क्योंकि शेरों को देखकर जैसे ही हम आगे बढ़े हमें चालाक शिकारी समझी जाने वाली शेरनियां भी हमारे सामने थी। शिकार की जिम्मेदारी शेरनियों की होती है। बेहतरीन योद्धाओं की तरह रणनीति बनाकर शिकार का पीछा किया जाता है, लेकिन शिकार के बाद भोजन का पहला अधिकार शेर का ही होता है। शेर की आवाज से मसाई मारा के मैदान गूंज उठते हैं। ये गहरी गूंजती आवाज 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, जो शेर के प्रभुत्व और इलाके का ऐलान करती है। मसाई मारा लगभग 50 वर्षों से वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना मूल रूप से 1961 में हुई थी और उस समय इसका क्षेत्रफल महज 520 वर्ग किलोमीटर था। बाद में अभयारण्य का क्षेत्रफल बढ़ा और 1974 में इसे राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ की भूमि का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों यानी मसाई जनजाति को वापस कर दिया गया और ये स्थानीय समुदाय ही हमारी अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय यात्रा का अगला पड़ाव है।

0: अब जो आप देखने वाले हैं वो जंगल के कानूनों के पूरी तरह से पलट देने वाले दृश्य हैं। ये मसाई जनजाति के लोग हैं, शेर के पंजों से निवाला छीनने के लिए ये मशहूर है। दरअसल तंजानिया और कुछ केन्या के इलाकों में आमतौर पर तीन तरह की जनजातियां रहती हैं। मसाई, माकोंडे और मनाते। ये आदिवासी शुरू से ही पुराने तौर तरीकों के साथ रह रहे हैं। इनका मुख्य पेशा मवेशियों का पालन है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। इन लोगों को बहुत बहादुर कहा जाता है। ये लोग जंगलों में अपनी गायों की रक्षा के लिए जंगली शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से भी लड़े जाते हैं। बिना किसी हथियार के इन खूंखार जानवरों को मार डालते हैं।
1: पहले ऐसा होता था कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको शेर को अपने हाथों से मारना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि जंगल कमाई का जरिया भी है।
0: दरअसल ग्रेटर मसाई मारा क्षेत्र में मसाई मारा पार्क शामिल है, लेकिन इसमें कई संरक्षण क्षेत्र भी शामिल हैं। ये जमीनें मसाई परिवारों की निजी जमीनें हैं। सफारी लॉज मसाई लोगों से जमीन पट्टे पर लेते हैं, जिससे इन मसाई परिवारों को शिक्षा या विकास परियोजनाओं में निवेश करके अपने समुदायों में योगदान करने का अवसर मिलता है। संरक्षण क्षेत्रों में अक्सर मसाई किसान और उनके चरते हुए मवेशी दिखाई दे जाते हैं। इन संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना पर्यावरण और मसाई दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुई है।
2: बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन जोन है जो इकोसिस्टम फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। खास करके ये कम्युनिटी जो मसाई कम्युनिटी हैं उनके लिए इको टूरिज्म के जरिए लाइवलीहुड सपोर्ट प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये एक ऐसा रिजर्व है जो बायोडाइवर्सिटी रिच भी है और कम्युनिटी को भी बहुत मदद करता है। इसलिए मसाई मारा का महत्व पूरे विश्व पटल पे माना जाता है।
0: हम भले ही दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही अकल्पनीय है कि भारत खूंखार जंगली जानवरों के लिए विश्व का सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। यह भारत ही है जहां अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, हर जगह से जंगली जानवरों को लाकर बसाया जाता है। जानते हैं क्यों?

0: भारत में नमीबिया से जब चीते लाकर बसाए गए तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई।
1: पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये कूनो नेशनल पार्क है। अगर समूचे पार्क के इलाके को हम देखें तो ये 1235 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसमें से जो कोर एरिया है वो 748 वर्ग किलोमीटर है। चीतों के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें ज्यादा जगह की जरूरत रहती है, खासकर ये जो अफ्रीकी चीते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें और भारत के जंगलों की, मध्य प्रदेश के जंगलों की बात करें, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से इनके लिए खान पान की कमी रहती नहीं है।
0: लेकिन अद्भुत ये है कि सिर्फ चीते ही नहीं बल्कि दुनिया भर से हजारों की संख्या में जंगली जानवरों को लाकर भारत के चिड़ियाघरों में बसाया जा रहा है। इनमें पक्षी, सरीसृप, चिपांजी, गोरिल्ला और बाघ जैसे जानवर शामिल हैं। यानी वन्य जीवों के लिए भारत नंबर वन डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ के चिड़ियाघर में आकर वो नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। विलुप्त वन्य जीवों और वनस्पतियों की अंतरराष्ट्रीय खरीद फरोख्त पर काम करने वाली संस्था साइट्स के अनुसार 1978 के बाद से भारत में लाए जाने वाले जानवरों में से 90% सिर्फ पिछले 4 सालों में आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 235 जानवर, 2022 में 486 जानवर भारत लाए गए, 2023 में 4051 जानवर, 2024 में 1640 जानवरों को विदेश से लाकर भारत के चिड़ियाघरों में बसाया गया। 2024 में कुल 2922 जानवर दुनिया के अलग अलग देशों ने इंपोर्ट किए, इसमें सबसे अधिक 1640 जानवर भारत लाए गए। सबसे अधिक जंगली जानवरों को दक्षिण अफ्रीका से मंगाया गया। 1978 से 2024 तक दक्षिण अफ्रीका से 2072 जानवर आयात किए गए। कूनो के चीते भी वहीं से आए थे। इसके बाद यूएई से 995 जानवर, चेक गणराज्य से 854, मेक्सिको से 816, ऑस्ट्रेलिया से 687, गयाना से 364 जानवर भारत लाए गए। भारत का वातावरण, यहाँ का मौसम, यहाँ का इकोसिस्टम ऐसा है जो जंगली जानवरों के लिए अनुकूल माना जाता है। यहाँ हिमालय से लेकर रेगिस्तान और समुद्र तटों तक अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हैं, जो कई जानवरों की तमाम प्रजातियों को घर देते हैं। विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि चिड़ियाघरों के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले जानवरों में बाघ ही पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर शेर और तीसरे नंबर पर चीते आते हैं। दरअसल सिर्फ वातावरण ही नहीं बल्कि जानवरों को संरक्षित करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स या जो कदम भारत उठाता है, वैसे दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रोजेक्ट्स ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया है जहां न सिर्फ जंगली जानवरों के संरक्षण पर गंभीर कदम उठाए जाते हैं बल्कि इन प्रोजेक्ट्स के कारण भारत में विलुप्त हो रहे जानवरों की संख्या भी बढ़ी है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत ने एक विज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। सच है, भारत का जंगली जानवरों के साथ रिश्ता अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है।
1: अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
2: Oh yeah.
1: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffeehouse. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
5: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
4: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
6: आगे आगे
7: अरे उधर
6: उधर
7: क्या करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
12: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
6: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
5: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
7: आगे आगे,
8: अरे उधर
7: उधर
8: गिर। करेक्ट करेक्ट,
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे। क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
11: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
12: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
13: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
11: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
14: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
12: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
11: जहां खबर वहां खबरदार।
15: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
17: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
18: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
17: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? I challenge you, Bajipa. अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। I wanna ring. Waiting. Come.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दो दिनों के दौरे पर, जहां पर कल वो योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक योग करते हुए दिखाई देंगे। और बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल का दौरा है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से टीएमसी पर जमकर हमला किया।
3: पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया।
2: तो बंगाल के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री मोदी अब योग दिवस पर योग भी करेंगे। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

खुलासा नंबर एक, दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती का जिम्मा संभालने वाले दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी गिनती करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। खुलासा नंबर दो, राम मंदिर के आरएमओ यानी रेडियो मॉनिटर ऑफिसर की भूमिका कटघरे में है। आरएमओ के कंधों पर ही सीसीटीवी से निगरानी का काम था। आरोप है चोरी के वक्त सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता था। बड़ी बात यह है कि 17 सालों से आरएमओ सीसीटीवी निगरानी का काम देख रहे थे और सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करते थे। खुलासा नंबर तीन, गेट पास बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले सोमेश आनंद एसआईटी के रडार पर हैं, क्योंकि बिना गेट पास के चढ़ावे की रकम या फिर चढ़ावे के जेवरात राम मंदिर से बाहर नहीं जा सकते थे। आरोप यही है कि सोमेश आनंद ने बिना चेकिंग के चढ़ावे की गाड़ी को मंदिर परिसर से बाहर जाने दिया। सवाल यही है, ऐसा क्यों किया गया। खुलासा नंबर चार, राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी को चढ़ावे की चोरी के पूरे खेल के बारे में पता था, बावजूद इसके थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की जांच में थाना प्रभारी की भूमिका भी शक के घेरे में है। तफ्तीश के बाद ही चढ़ावा चोरी कांड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, लेकिन आरोपों में घिरे जिम्मेदार खुद को बेदाग बता रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कांड का खुलासा होने के बाद मंदिर में दान करने वाले राम भक्तों ने जिम्मेदारों पर सीधे सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा भी घट गया है। जांच के बीच अब मंदिर आने वाले राम भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आई है। पिछले कई महीनों से हर महीने औसतन 7 करोड़ रुपए के आसपास दान राशि मिल रही थी। पिछले एक पखवाड़े में ये आंकड़ा घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं कर्नाटक की एक श्रद्धालु का आरोप है कि राम मंदिर में कीमती हार दान किया था, लेकिन आज तक उसकी रसीद नहीं मिल पाई है। पता नहीं राम मंदिर में चढ़ाए हार का क्या हुआ। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार यही दावा कर रहा है कि दान में मिली राशि और उसकी गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के चलते राम भक्तों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उस चढ़ावे को लेकर जो वो राम मंदिर में आस्था के नाम पर दान करते थे। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बहस बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और बहस बाजीगर के इस एपिसोड में मुद्दा जितना दिलचस्प है उससे ज्यादा दिलचस्प आज की ऑडियंस है। तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार दिखा दीजिए सारे बच्चों को। अब इतने दिनों से आप लोग ये शो देख रहे हैं तो समझ ही गए होंगे कि नीला, सफेद और लाल गमछे के पीछे एक पूरी कहानी है। तो वो कहानी क्या है आपको दिखा देते हैं। बीते कुछ दिनों में देश की राजनीति में बगावत का एक मौसम आया हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कई क्षेत्रीय दलों में टूट एक के बाद एक हो रही है। खास तौर पर बंगाल में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद टीएमसी के सांसद मानो अचानक से जाग गए। विधायक तो टूट ही गए उनके साथ, और उन्होंने कहा कि भाई हमें अभिषेक बैनर्जी जो भतीजा है ममता बैनर्जी का, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ममता बैनर्जी को हम नेता मानते हैं, वो अगर हमारे साथ आना चाहती हैं तो आ जाए। लेकिन ममता दी ने ऐसा नहीं किया और ऋतव्रत बैनर्जी ने 60 विधायकों के साथ विपक्ष का नेता चुन लिया। अब अगली कहानी आई सांसदों की, तो टीएमसी के सांसद यहां दिल्ली में टूट गए। ऐसे ऐसे सांसद जो कि ममता बैनर्जी के नाम के कस्मे खा रहे थे, वो सब भी इधर से उधर चले गए। मतलब अलग पार्टी बनाकर एनडीए का साथ देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सायोनी घोष, आप में से कितने लोगों ने सायोनी घोष को फॉलो किया था इलेक्शंस में? सुना था? किसने सुना था? अच्छा ठीक है, दो चार ही लोग हैं। अब देखते हैं कि कितनी पॉलिटिकल रुचि है आप लोगों की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि वो भी मतलब एक तरह से एनडीए के समर्थन में आ गई है, अगर अलग गुट बनाकर, और काकुली दस्तेदार कह रही है कि भाई हम तो एनडीए का साथ देने वाले हैं। फिर बगावत शुरू हुई उद्धव ठाकरे की पार्टी में। पहले ही शिंदे साहब सारे विधायकों को लेकर जा चुके थे, सरकार में शामिल हो चुके थे, सीएम बने, इस बार डेप्यूटी सीएम बने। लेकिन अब सांसदों ने भी बागी तेवर अपना लिए हैं और 9 में से 6 सांसद लगातार बागी दिख रहे हैं, जिनमें ये माना जा रहा है कि वो भी बड़ा खेल करने वाले हैं। तो एक तरफ दल बदल कानून है इस देश में, एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इस वक्त कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें सरकार को इन सांसदों की जरूरत है। टीडीपी और जेडीयू के सहयोग से सरकार चल रही है, लेकिन क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है? आपने सुना होगा यही आरोप बार बार विपक्षी दल लगाते हैं कि हमारे सांसदों को डरा कर वो ले जा रहे हैं। भाई उनको डर क्या होता है? वो कहते हैं भ्रष्टाचार के मामले उन पर गढ़ दिए जाते हैं, वैसे ही सांसदों के साथ हो रहा है। तो इस आरोप में कितना दम है यही जानने के लिए हमने सोचा कि आज का मोशन रखा जाए, क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है? तो ये हिस्सा मानता है कि सत्ता का डर है। आप लोग मानते हैं कि सत्ता का डर है, इसी डर की वजह से वो जा रहे हैं? आप लोग क्या मानते हैं? सफेद गमछे वाले विचार करेंगे, सुनेंगे सबको, फिर करेंगे मन की, अंदर में बटन जो मन आएगा वो दबा देंगे। और ये लाल वाले हिस्से जो ये मानते हैं कि सत्ता का डर नहीं है, वो अपनी वजह से जा रहे हैं, यही मानते हैं। तो ताली बजा लीजिए अपने लिए। इसी के साथ तो ये 3 हिस्से हैं, आप समझ गए हैं। हालांकि आप लोगों को ये भी बता दें कि अगर आप जो प्रतियोगी यहाँ आते हैं, भाई 6-6 लोग बोलने वाले हैं, तो अगर आप उनकी बात से प्रभावित होते हैं तो आप अपना गमछा बदल भी सकते हैं। नीले गमछे वाले सफेद या लाल ले सकते हैं। सफेद वालों के तरफ पास दोनों तरफ का ऑप्शन खुला हुआ है, लाल या नीला, और लाल गमछे वाले सफेद या नीले। और आप कोशिश कीजिए कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, आप भी कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग आए। लेकिन अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं अपने 3 जजेस को। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और 3 ताल के ताऊ, तालियों के साथ स्वागत कीजिए कमलेश किशोर जी का। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। अब तो जितना शो ये पुराना हो गया, उतने पुराने आप भी इस शो पर हो गए हैं ताऊ जी। चलिए, लेकिन बातें इतनी दिलचस्प करते हैं कि युवा पीढ़ी भी सुनिए कितना इनको सुनती है, अलग ही तालियां बजती हैं ताऊ के लिए। चलिए अब अपने पहले 2 प्रतियोगियों को यहाँ बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉली शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, और प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दोनों अपनी अपनी पार्टी के धुरंधर सिपाही हैं, जबरदस्त अंदाज में बोलते हैं और कई बार दोनों जीत भी चुके हैं, क्योंकि आज बहस बाजीगर भी तय होगा। इन 6 लोगों में से कोई एक बहस बाजीगर बनेगा जो सबसे अच्छे तरीके से दलील को सामने रखेगा। अब आइए अपने अगले 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। स्वागत कीजिए, आइए तिवारी जी, आइए किशोर तिवारी जी और गुलाब चंद दुबे प्रवक्ता एकनाथ शिंदे जी के पीछे पीछे और उद्धव जी के आगे आगे चले आ रहे हैं। देखते हैं किसमें ज्यादा दम है, सांसद और विधायक तो लग रहा है छिटके जा रहे हैं। हाँ तिवारी जी स्वागत है, आइए बैठिए बैठिए। जख्मों को ना कुरेदे, आइए इधर आइए, जख्मों को कुरेदने की इजाजत नहीं, बैठिए तिवारी जी बैठिए। और चलिए दोनों टीमों की तरफ से आखिरी दो वक्ताओं को बुलाते हैं। मलुक नागर जी जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के और अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी धीरे धीरे चल रहे कि थोड़ा ताली और देर तक बजाओ, हमारी शान में कुछ तालियां और बजाई जाएं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो चलिए आज का विषय एक बार फिर से, जब छह वक्ता यहाँ पर आ चुके हैं उनको भी बता दें, क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है।
1: आज की बहस का मकसद और आधार बनी है देश की सियासत में चल रही बगावत। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देश में मॉनसून आने वाला है, लेकिन सियासत में इस वक्त पतझड़ चल रहा है। एक तरफ वफादारियां बदल रही हैं, तो दूसरी तरफ बरसों पुरानी पार्टियां ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। बंगाल में कल तक जो विधायक और सांसद ममता बनर्जी की कसम खाते नहीं थकते थे, आज उन्होंने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बगावत का सुर छेड़ दिया है। अभी दीदी इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाला किला एक बार फिर दरक गया, और अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खेमे में भीतर ही भीतर दरार की चिंगारी सुलगने के दावे किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि नेताओं का ये हृदय परिवर्तन अचानक सोते जागते खुद ब खुद हो रहा है, या फिर इसके पीछे सत्ता के जादूगरों का कोई नया पावर गेम चल रहा है। लोकतंत्र में नेताओं की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए दल बदल कानून की भारी भरकम ढाल तो बनाई गई है, लेकिन जब रातों रात दो तिहाई कुनबा ही बदल जाए तो क्या कहा जाए। तो क्या विपक्ष में मची इस भगदड़ की असली वजह सत्ता का रसूख है, या फिर किसी खास डर का असर।
0: यह आरोप विपक्षी लगाता है कि भाई हमारे नेताओं को वो डरा कर ले जाते हैं, उन पर केसेस कर देते हैं ईडी के और अन्य केसेस। तो क्या इस आरोप में दम है, इसके मोशन के खिलाफ बोलने के लिए प्रदीप भंडारी जी आएंगे और मोशन के पक्ष में बोलने के लिए आज डॉली शर्मा आएंगी। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डेढ़ मिनट का टाइम मिलेगा और आप लोगों को यहाँ की एनर्जी का एहसास हो रहा होगा, तो उम्मीद है कि आप इनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और अपनी बात को उतने ही बलवान और शक्तिशाली तरीके से बोलेंगे। क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है, इस मोशन के खिलाफ बोलने का आपका डेढ़ मिनट का समय प्रदीप भंडारी शुरू होता है अब।
2: देखिए, परिवारवादियों को सत्ता जाने का डर था और इस डर में उन्होंने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया और इन सभी परिवारवादी दलों में लोकतांत्रिक आवाज उठ रही है और ये लोकतांत्रिक आवाज को आप अलग अलग दलों में देख रहे हैं। ये फोटो याद करिए, पूरी की पूरी शिवसेना बनी थी सोनिया गांधी के खिलाफ। उद्धव ठाकरे को अपने बेटे को सत्ता में लाना था, बालासाहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को नकार दिया। एक जमीनी कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे ने हर शिव सैनिक की आवाज को आगे उठाया और पूरी की पूरी शिवसेना जनता के मैदान में महाराष्ट्र में गई। जनता ने भी उस मैंडेट पर अपना मुहर लगाया और ये परिवारवादी दल वापस से दूर चले गए। तृणमूल कांग्रेस में बॉबी हकीम ने पूरा का पूरा अपना जीवन ममता बनर्जी के पक्ष में दिया, परंतु ममता बनर्जी ने सत्ता के मोह में अभिषेक बनर्जी को चुना और आज बॉबी हकीम भी ममता बनर्जी के साथ में नहीं है। किरदार गमांग भारतीय जनता पार्टी के एक सीट से हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को यहां पे बुलाया और कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की सरकार गिरा दी, उसको कहते हैं सत्ता का डर। आज सच्चाई की बात यह है कि लोकतंत्र में हर परिवारवादी दल को यह समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र ऊपर होता है, ना कि परिवारवाद ऊपर होता है। सपा और बसपा साथ में आ गए क्योंकि सत्ता का घमंड था और फिर भी हार गए, तो जनता ने अपना मोहर हमारे पक्ष में सुनाया, इस मोशन के खिलाफ।
0: समय समाप्त हुआ भाई, ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से जबरदस्त बल्लेबाजी की है और अब इस तरफ से इस मोशन के पक्ष में बोलने के लिए डॉली शर्मा जी, आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
3: देखिए, विपक्ष की ताकत सिर्फ संख्या बल से नहीं होती, विपक्ष की ताकत होती है जनता की आवाज को उठाना, जैसे किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, जैसे आज नीट, CBSE, CUET, भर्ती घोटाले, ये जो लगातार जिनसे जनता, आम नागरिक, युवा इस देश का दुखी है, वो विपक्ष की ताकत होता है। और वही संख्या बल लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों को जब आप सत्ता का बल दिखा के ईडी, CBI, ना जाने क्या क्या दिखाकर, डराकर, धमकाकर, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, कहीं EVM में आग लग जाती है, जब शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव आता है तो उनके दफ्तर में आग लग जाती है, कहीं अंकिता भंडारी के जब सबूतों की बात आती है तो फार्म हाउस में आग लग जाती है। लगातार हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उतारने का काम और उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। ये जो सांसद इधर से उधर जा रहे हैं ना, कोई पहले सस्ते समोसे की बात करता था ना, जनता का सस्ता समोसा, जनता के लिए इतना महंगा चाय, इतना महंगा ना जाने क्या क्या, आज मलाई चाटने उधर पहुंच गए, जनता जाए भाड़ में। एक शब्द किसी ने नहीं सुना उनके मुंह से नीट के बच्चों के लिए, उन आत्महत्या करते बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए। 22 लाख 18 लाख बच्चे नहीं, करोड़ों परिवार है जो आज देश में सफर कर रहे हैं।
0: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त भाई, दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने जो आज पारी खेली है। चलिए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, कुछ सवाल पूछना है क्या? आइए आइए, आ गया आ गया आ गया, मन में सवाल आ गया है ताऊ के सवाल मन में आ गया, आ जाइए जल्दी आ जाइए।
4: आप लोग मुद्दे पे ही रहें, पर क्या है कि लोकतंत्र का पूरा मजाक बना दिया है।
0: हाँ।
4: मेरा दोनों तरफ से सवाल है।
0: हाँ।
4: कि ये अद्भुत चीज नहीं है जो हो रहा है, कुछ जो कुछ भी IPL में भी प्लेयर ट्रांसफर होता है, पर हमको मालूम होता है कितने में हुआ। यहाँ पे जो है, मैं मानता हूँ कि ये सब अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही गए हैं, मैं ये मानता हूँ अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही गए होंगे लोग, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 15, कुछ लोग कहते हैं 50, तो जनता को सिर्फ ये जानने का अधिकार है कि रेट क्या है, GST कितना है, फ्लाइट के जो चार्टर्ड प्लेन है वो किसके बिल में जाएगा, क्रेता के विक्रेता के, इस तरह की जो सूचना है। पारदर्शिता जो है वो डेमोक्रेसी का एसेंस है, हमको पारदर्शिता के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े वो हमें लड़नी ही चाहिए। क्या होता है कि ये लोग, जैसे देखिए, लाड़की बहन, लाड़ली बहना, लाड़का, जो भी है, तरह तरह की योजना है, साइकिल, TV, 2 बोतल दारू इत्यादि,
0: फ्रिज,
4: हमको पता है कि किस चुनाव में क्या रेट चल रहा था वोटर के वोट का। अब उन करोड़ों वोटों की कीमत, कितने करोड़ लगती है, ये अगर वो जानेंगे तो फिर अगली बार वो डिमांड करने में आसानी होगी कि उनको, कि एक साड़ी से नहीं चलेगा। इसलिए जो है पारदर्शिता के लिए प्रयास मैं चाहता हूं कि आप दोनों पार्टियां करें, क्योंकि एक क्रेता की तरफ,
0: मतलब आप कह रहे हैं कि एंड यूजर जो है, जो वोटर है, उसके हकों की रक्षा की जाए,
4: RTI इस पे लागू हो।
0: तो ये पूरी तरह से अब आपके खेमे में आ चुका है, माइक उठाकर इसका आप जवाब दें।
2: देखिए, संजय राउत कह रहे हैं भाई 10 करोड़ दिए तो क्या वो वोटों की मशीन गिन रहे थे, या उनके पास पैसे का कुछ दूरबीन है तो वही दिखा दे। ये कह रहे हैं कि भाई ईडी CBI की वजह से हुआ तो जरा वो वीडियो फिल्म दिखा दे कि भाई ईडी CBI के कोई वॉइस कॉन्वर्जेशन हुआ। आपने तथ्यों की बात करी था, आज मैं तथ्य आपके सामने रखता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पब्लिक डोमेन में क्या लिखा है। अभी झारखंड चुनाव के अंदर राज्यसभा चुनाव हुए, जहां इनके पार्टी का कैंडिडेट हारा, और हमने वोट इनके खिलाफ ही नहीं किया, इनके खुद के लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया। और सुनिए CPM वाले क्या कह रहे हैं, बोल रहे हमें पीड़ा होती है कि कांग्रेस वाले हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं किया। कांग्रेस के किन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, ये कांग्रेस को जांच करनी चाहिए। तो भाई जिनके खुद के घर में लोग बिकाऊ हैं, जो खुद ही अपने कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाह रहे, इनके रेवंत रेड्डी ने तो कह दिया था बीआरएस वालों को आ जाओ 10th शेड्यूल से हम छोड़ देंगे। तो इनको सोचना चाहिए, हम तो साफ है

0: आपको शर्म आनी चाहिए।
1: चलिए
0: आपको शर्म आनी चाहिए। राजस्थान कांग्रेस के आप तो राहुल गांधी ने विपक्ष में रहो, राहुल गांधी विपक्ष में रहो।
1: अगले दो आइए, दुबे जी और तिवारी जी आइए। किशोर तिवारी जी आइए आइए, बहुत सा गुलाबचंद दुबे जी और किशोर तिवारी जी। ये एकनाथ शिंदे जी का पक्ष रखेंगे और ये उद्धव ठाकरे जी का पक्ष रखेंगे इस मोशन पर कि क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है, इसके खिलाफ बोलने का।
2: एक मिनट, मैं ओरिजिनल सेना का, शिवसेना जो ओरिजिनल है उसका पक्ष रखूंगा, और डुप्लीकेट शिवसेना जो इलेक्शन कमीशन ने बनाई है उसका समर्थन वो करेंगे।
1: हो गया, जनता ने किसको चुना। चलिए चलिए, गुलाब जी आपका इस विषय पर, इस विषय के खिलाफ बोलने का, क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है, 1.5 मिनट का समय। माइक उठा लीजिए सर, माइक, 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
3: हमारे भाई किशोर जी ये कह रहे हैं कि सच्चा और झूठा, असली और नकली। संपूर्ण देश को यह पता चल चुका है कि असली नकली क्या। आज इनके पास जला हुआ मसाल था, वो भी मसाल बुझ गया। इनके बात नहीं समझ में आ रही, इनके सांसद 9 थे उसमें से 6 हमारे खेमे में आ गए। रस्सी जल गई, ऐठन अभी नहीं गई है, अभी भी झूठे और सच्चे और असली नकली के बीच में पड़े हुए हैं। अरे नकली घी देसी घी के कहाँ चक्कर पड़े हैं तिवारी जी आप। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से जो प्रेरित होकर के बगावत हुई थी शिवसेना में, 1991 में छगन भुजबल 17 विधायकों को लेकर के निकल गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि वह हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे का विचार कायम था। फिर उसके बाद 1993 में एक बगावत हुई, बगावत होने के बाद उस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उद्धव ठाकरे को, वहां से कहीं ना कहीं सुभाव टूटी। फिर उसके बाद वहां से 2006 में नारायण राणे बगावत किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2006 में राज ठाकरे साहब बगावत किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2022 में एक ऐसा बगावत हुआ, वहां पर असल और नकल का बगावत हुआ। उसके लिए इतना ही मैंने कहना चाहूंगा कि किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है तिवारी जी, किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, तो समझ लेना हम सब बागी हैं, बगावत काम है मेरा, मर मिटेंगे नीच हक के लिए, यही पैगाम है मेरा। अब असली नकली की
1: समय समाप्त हो, अब पूरा शेरो शायरी आई है इधर से, मिडिल ऑर्डर ने अच्छी बल्लेबाजी कर ली है, तो आप इधर से पिच संभाल लें, बैट आपके हाथ में है।
2: बागी बागी बोलना ये बिकाऊ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपमान है, क्योंकि वो स्वतंत्र संग्राम में जो लड़े थे उनको बागी बोलती थी। हाँ ये तो ऐसे संग्राम में लड़ रहे हैं, अब ये बात कर रहे थे कौन, प्रदीप भंडारी, कि इन्होंने मोटर लगा के क्या मशीन लगा के पैसे मुझे क्या। मैं बताता हूँ, मैं यवतमाल से आता हूँ, 2 सांसद चुन के आए शिवसेना के वहां से, ओरिजिनल जो अभी 6 महीने पहले चुन के आए है, तो ये ओरिजिनल हरदम ही कायम रहेगा, क्योंकि ना हमारे वोट कम हुए ना हमारे, अब ये सांसद चुराने की आदत पुरानी है, लेकिन इसका एपिडेमिक अभी अभी आया है, और अभी देख रहे हैं आपकी सत्ता लोलुप्त लोगों को आप राजनीतिक पक्ष टिकट क्यों देते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते, तो ऐसी बिकाऊ माल बाजार में आ गया और बिकाऊ माल अभी खरीदा जा रहा है। लेकिन जो पार्टी निष्ठा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निर्माताऊ और संस्कार, इसके लिए राजनीति में आई थी, वो कहती है कि
1: समय समाप्त हो गया। पूरी कर ली,
2: एक कर लेता हूं मैं,
1: कर लीजिए।
2: अभी क्या हुआ, वो पार्टी इसमें इंजीनियरिंग

0: कर रही है, अब
1: कहती है
0: इंजीनियरिंग कर रही है, पैसे पुरा रही है, चार्टर प्लेन पुरा रही है, और
1: कहती है
0: और क्या बोले
1: आप कुछ कह रहे थे ना, कहती है
0: नहीं नहीं वो पार्टी चुप है।
1: अच्छा।
0: और वो कहते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अपने दिल से आत्मा की आवाज से जा रहे हैं।
1: अच्छा, समय समाप्त हुआ, चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का। अपनी अपनी जगह पर जाइए, अपनी अपनी जगह पर जाइए। सवाल है त्रिवेदी जी, पूछिए।
2: देखिए अंजना जी, ताऊ ने जो सवाल किया था
1: हाँ।
2: वो सवाल बिल्कुल ताजा था, मुझे लगा ये दोनों लोग तो उसका जवाब दे ही सकते
1: हैं। इन दोनों को तो बिल्कुल, और आपने भी जो पूछा विनोद जी
2: ने सवाल पूछा था उसका जवाब दोनों लोग दे सकते थे, दुबे जी भी और तिवारी जी, क्योंकि दोनों के पास डिमांड सप्लाई जो भी व्हाटएवर कहा। और फिर लेकिन तिवारी जी की बधाई देनी चाहिए, तिवारी जी को बधाई देनी चाहिए,
3: विक्रेता
2: नहीं, तिवारी जी को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई वो लोग चले जाते हैं जिनको टिकट देते सब खरीदा गया था, बेचा गया था, या जिनकी निष्ठा नहीं थी। अपनी पार्टी के बारे में इतना ईमानदारी से बोलने वाले को तो बधाई देनी चाहिए।
0: नहीं, मैं ताऊ तुमको अपडेट करता हूँ और आपको नए लोगों को भी
1: के सवाल में एक सवाल मैं भी जोड़ दूं।
0: बोलो बोलो हा? आप तो बोलेंगे।
1: अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि टिकट का रेट आजकल क्या चल रहा है, ये रेट भी पता चल रहा है।
0: टिकट का रेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से चलता है और
1: कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से,
0: और ऑक्शन भी होती है। और लेकिन इसमें इसमें बीजेपी भी अचूती नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन लेकिन रीजनल पार्टियों में दलबद्ध लोगों को टिकट देने से उनको यह दिक्कत हो रही है।
1: माइक पे बोल रहे हैं आप, मैं याद दिला दे रही हूँ, बस माइक पे बोल रहे हैं, टीवी पे बोल रहे हैं।
0: अरे भाई,
1: रेट
0: मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर टिकट बेचोगे तो सांसद बिकेंगे।
2: ये जवाब है,
0: मैं बता रहा हूँ राजनीति के जिस प्रिंसिपल के लिए बीजेपी आई थी, उस सब प्रिंसिपलों को तिलांजलि देकर या 362 के लिए यह एक्सरसाइज किया जा रहा है। और
1: उनके सांसद तो जा नहीं रहे, जा आपके रहे।
0: अरे चलती गाड़ी में से कोई उतरता नहीं है।
1: सही कहा,
0: तो मैं बात कर
1: सही कहा है। अरे बोलते हैं धीरे लेकिन घाव करे गंभीर, हैं? गाँव करे गंभीर भाई।
0: नहीं नहीं,
1: अब आप माइक उठाइए।
0: हाँ। नहीं नहीं,
1: थोड़ा सा रहा, थोड़ा बचा है, थोड़ा सा बचा है।
0: एकनाथ शिंदे ये बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता है। एकनाथ शिंदे, ये परिवारवाद में क्या होता है कि बहुत लोग सक्रिय हो जाते, तो एकनाथ शिंदे को मार्जिनाइज कर रखा गया। एकनाथ शिंदे पे अन्याय हुआ, ये बात मैं कबूल करता हूँ। और एकनाथ शिंदे के मेरिट पर यह काम नहीं हुआ, एकनाथ शिंदे को अमित शाह जी ने आदेश दिया था और वो सेवक बोलकर उन्होंने काम किया है। तो बीजेपी जो राज्य में है उनकी किरकिरी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इज अ सीएम इन क्यू।
1: चलिए दुबे जी, आप उनकी बात का जवाब दीजिए जो विनोद जी ने पूछा।
3: मैंने जो कहा था कि आखिर क्या वजह है कि कार्यकर्ता जो है छोड़ के जाते हैं, क्या नेतृत्व तो उनके दुख सुख का ख्याल नहीं रखता, और जो उसमें और जोड़ देता हूँ कि अंतरात्मा अचानक क्यों जागती है।
1: हाँ।
3: खास करके जब रिजल्ट आ जाते हैं तब।
1: हाँ। और ये रनिंग रेट भी बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ।
4: जी विनोद जी, इसका रनिंग रेट तो संजय राउत ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ उन्होंने बयाना दिया, यानी टोकन मनी दिया, और बाकी शेष बाकी है।
0: 2022
4: में जो
0: अपमान हो रहा है उनका,
4: किशोर जी
0: जब 2 करोड़ की बात हुई है,
4: 50 खोखे की बात की, ओके की बात आपने की,
0: और
4: 50 गद्दार की बात आपने की,
0: अपमान कर रहे हैं
4: आपने, तमाम आरोप लगाने के बावजूद
0: मान दिया है।
4: आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में
0: हमारे मित्र लोग हैं उनका अपमान हो रहा है।
4: 2024 का हमारा स्टैग रेट था 47.38 लोकसभा में, फिर उसके बाद विधानसभा में 80 में से 60 हम जीते, फिर उसके बाद महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, तमाम ऐसे चुनाव में हम 70% हमारा स्ट्राइक रेट था। तो गद्दार आप हुए कि गद्दार हम हुए, एक ये समाज और ये सदन इसका निर्णय देगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इस विषय पर ये दोनों बोलने वाले हैं, तो आपका मलुक नागर जी, मोशन के खिलाफ बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है।
5: कोई भी इस देश में बता दो जो चुनाव हारता हो या उसके विधायक या सांसद छोड़ के जाते हो जो ये कहता हो कि उनकी लीडरशिप नाकाबिल है, उनकी पार्टी बेकार हो चुकी है, सब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे ही, उसी क्रम में ये कह रहे हैं। और मैं जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इनका अगर इतिहास में जाए पीछे, गहलोत की सरकार जहां पे चल रही थी कुमारी बहन मायावती जी की, बीएसपी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही थी बगैर शर्त के, बगैर सरकार में साझी हुए। वो 6 विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए, छीन के ले गए, महाराष्ट्र इसके मध्य प्रदेश से 7 विधायक उनके तोड़ के ले गए, छीन के ले गए, उत्तराखंड से 3 विधायक मायावती जी के तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए। और तो और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी, 2004 से 2014 तक बगैर शर्त के सपोर्ट कर रहे थे, और पिछड़ों के कद्दावर नेता माननीय मुलायम सिंह जी और दलितों की और सर्व समाज की कद्दावर नेता मायावती जी को आय से अधिक संपत्ति के केस में डाल के जेल भेज रहे थे, क्योंकि उनके वो सांसद तोड़ना चाहते थे। खुद करें तो ठीक और दूसरे करें तो हिपोक्रेसी।
1: बहुत अच्छा, समय समाप्त हुआ। इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी तो एक एक सवाल बच्चों से भी लेंगे आप दोनों से, जल्दी से। अनुराग जी, आपका इस विषय पर बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
6: देखिए, सवाल ये नहीं है कि विपक्ष के नेता क्यों तोड़े जा रहे हैं, सवाल ये है क्या आज की राजनीति में असहमति की राजनीति खत्म हो गई है क्या? कि आज की राजनीति में विरोध की राजनीति खत्म हो गई है क्या? कि आज की राजनीति में जनता की समस्या की बात उठाना ये गुनाह हो गया है क्या? आज की राजनीति में अगर किसी भी प्रॉब्लम जो समाज के अंदर घटित होती है उस पर अगर विपक्ष आवाज उठाता है मजबूती से, तो क्या सत्ता उसको सुनना नहीं चाहती क्या? क्या सत्ता ये नहीं चाहती कि लोकतंत्र मजबूत हो? लोकतंत्र मजबूत सिर्फ सत्ता मजबूत होने से नहीं होता है, लोकतंत्र मजबूत विपक्ष के मजबूत होने से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर विपक्ष को कमजोर करके आप संविधान और लोकतंत्र पे को आप कमजोर करना चाहते हैं क्या? और विपक्ष में जो लोग नेता जो टूट के जा रहे हैं, या तो उनको सत्ता का लालच है या उनकी कोई विचारधारा नहीं है। और जो विचारधारा के लोग नहीं होते, जो राजनीति में चले आते हैं, वो सिर्फ सत्ता के लालच में आते हैं, सत्ता का सुख भोगने आते हैं, उन्हें कोई विचारधारा से मतलब नहीं, उन्हें कोई जनता से मतलब नहीं है, उन्हें कोई सरोकार नहीं अपनी लोकसभा से, उन्हें मतलब है तो कैसे उनको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के बाद कैसे उनको अपनी सुविधाओं का भुक्तभोगन करना है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और ऐसे नेताओं की जगह इस देश में होनी नहीं चाहिए, जो नेता अपना दल बदल के दूसरे दल में जाते हो, आप विचारधारा के बदल देते हो, आप जीते हो किसी के चिन्ह पे। अगर टीएमसी के नेता टीएमसी के चिन्ह पे जीते हैं, शिवसेना का नेता शिवसेना के चिन्ह पे जीते हैं, उनकी विचारधारा पे जीते हैं, और आपने चुनाव जीतने के बाद अपनी विचारधारा बदल दी, आप बिक गए, दूसरी तरफ चले गए, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को 240 में कितने समेटा था? जनता ने समेटा था। तो जनता ने जब 240 में समेटा था, जिनको जिताया था, अगर वो दोबारा उसमें शामिल हो जा रहे हैं तो जनता के साथ धोखा हो रहा है कि जनता जिनको चुनती है वो सत्ता के साथ चले जा रहे हैं। लास्ट लाइन है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, याद होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, हम सब उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा था अगर तोड़ के एमपी को खरीद के अगर मुझे सत्ता बनानी पड़ेगी, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे।
1: चलिए,
5: इनकी बात कुछ एक एक सवाल यहां क्लियर हो गया, ये अपनी पार्टी को कोस रहे हैं, इनकी पार्टी के जो सांसद छोड़ छोड़ के तो खुद ही अपने आप को कोस रहे हैं, इस देश के नेशनल टेलीविजन पर खड़े हो गए ये लोग।
7: रिस्पेक्ट पूरे पैनल को, पहली बात तो बिकॉज मैं एक यंग वोटर हूँ, यहाँ पे बात हो रही है कि टिकट प्राइस और वोटिंग लाइक उसको क्वांटिफाई करा जा रहा है, तो मेरे लिए एक बहुत डिस्ग्रेसफुल बात है कि मेरे वोटिंग राइट को ऐसा मेरे को दिख रहा है कि वो बिक रहा है। वी वोट ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर पॉलिसीज लाइक जिनसे मैं एज अ वोटर अलाइन करता हूं। अब जब इसके बाद एमपीज अपने अलाइज ऑफ फैक्शन चेंज कर लेते हैं, तो इजंट इट द नलिफिकेशन ऑफ माई वोटिंग राइट, माई वोटिंग वेट, इजंट इट इनजस्टिस टू अ वोटर?
1: ठीक है, आपको पूछना है इधर से लाल वाले हिस्से से एक सवाल।
8: मैम, मेरी सवाल तिवारी जी से थी कि वो जो अब के नेता हैं, जो कि जो पहले उनके पक्ष में थे, अब विपक्ष में जा चुके हैं, उनके लिए आप बोल रहे हैं कि वो नेता बिकाऊ हैं, वो जो पक्ष वाले हैं वो उसे चुरा रहे हैं, ये कौन सी आप एक नेता को खिलौना समझ रहे हैं क्या? लोगों ने उनको वोट दिया है, उन्होंने नेता चुना है, और आप उनको बोल रहे हैं कि वो बिकाऊ हैं। और दूसरी बात ये कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो लीडरशिप है वो अब दिन ब दिन बदतर होते जा रही है, कि आपके 9 में से 6 नेता वहां से बागी होते जा रहे हैं?
1: ठीक, इधर से।
9: बात जब आइडियोलॉजी की आती है तो अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी इतनी अच्छी है, आपकी आइडियोलॉजी जब आपके नेता राघव चड्ढा जी की आइडियोलॉजी पार्लियामेंट में नहीं मानी गई थी, ये बोला आप राघव चड्ढा जी ने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि आपकी उनके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बात कर रही है, तो अगर आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बात हो रही है तो फिर बीजेपी क्यों जो बीजेपी के अगेंस्ट
1: कह रहे हैं कि जो आपके खिलाफ बोलते हैं उसको भी आप क्यों अपना लेते हैं?
10: ठीक है, भंडारी जी इसका अच्छा जवाब देंगे थोड़ी देर में, अब शुरू करते हैं आप दोनों, तब तक
6: जवाब देता हूँ। देखिए सवाल ये है, हमने पहले बोला था जो नेता जिस आइडियोलॉजी से चुन के गए हैं, जनता ने चुना है, जनता ने वोट देके उनको सदन पहुंचाया, तो जनता के साथ धोखा नहीं कर रहे हो आप। आपको जनता ने चुना था किसी दूसरे चिन्ह से, दूसरी विचारधारा से, और आप दूसरी विचारधारा में जाकर शामिल हो गए। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जनता से तो मैं नहीं जीत सकता, जनता तो मुझे हराएगी, इसलिए वो नेता खरीदने लगी, नेता तोड़ने लगी, ताकत से, ईडीआई से, सीबीआई से, जिससे अपने तंत्र का दुरुपयोग करके नेता तोड़ना चाहती है। ये देश के लिए ठीक नहीं है बच्चों। अगर पार्टी नेता किसी को जनता चुनती है और नेता को आप खरीदोगे, तोड़ोगे, भय दिखाओगे, ईडी, सीबीआई, या नेता अपने लालच में जा रहा है विपक्ष का जो भी नेता है, इसके मतलब वो आपके साथ धोखा कर रहा है।
3: सवाल का जवाब, छोटा सवाल है, आपके कितने विधायक सांसद टच में हैं बीजेपी के?
6: देखिए समाजवादी लोग समाजवादी विचारधारा पे चलते हैं, उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, जनता के प्रति है, छात्र के प्रति है,
5: मतलब
6: के
5: ये
6: है,
5: लोग है,
6: हम लोग कोई नहीं टूटते, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर मंदिर के दान पात्र में गड़बड़ी हुई है तो समाजवादियों ने उठाई है कि मंदिर के दान पात्र में चोरी कैसे हुई है, ये आवाज हमने उठाई, बीजेपी ने नहीं उठाई है। बीजेपी बोल रहे
1: धन्यवाद, ताली बजा दीजिए, बहुत धन्यवाद। आ जाइए धीरे धीरे, आई बबुआ समाजवाद धीरे धीरे आई। आइए प्रदीप भंडारी जी और डॉली जी, कितने लोगों को अब गमछा बदलना है इससे पहले कि हम सेकंड राउंड शुरू करें? आपको बदलना है बदलिए, जितने लोगों को गमछा बदलना है आप लोग बदल सकते हैं, बदलिए भाई, जिसको जिसको टीम बदलना है बदलिए। भाई ये तो पूरा खेल हो गया मिस्टर भंडारी, ये तो बिल्कुल बदल गया है मामला,
11: पिछली बार भी बदल गया था।
1: हाँ, हाँ, हाँ, आपको क्रेडिट जाता है। अब क्या कीजिएगा प्रदीप जी, ये जो सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सबको शामिल किए चले जा रहे हैं, तो जनता उधर बही ही जा रही है।
12: अरे जनता हमारे साथ है, वोट चोरी हो जाएगी वोटिंग के समय, तुम मत बोलना।
1: एक मिनट का आपका रिबटल टाइम डॉली जी, इस विषय पर बोलने का शुरू होता है अब जी।
13: जो कल तक थे कटघरे में आज वो सरताज है, लगता है सत्ता की चौखट पर सारे गुना माफ है। वो पूछते हैं विपक्ष क्यों बिखर रहा है आज, हम पूछते हैं लोकतंत्र पे ये कैसा दबाव है आज। जनता के सवालों से नजरें चुराना आसान है, मगर सच वही है कि हर तख्त का एक इम्तिहान है, हर तख्त का इम्तिहान है। ये बच्चे जो आज लाल से नीले गमछे में परिवर्तित हुए हैं ना, ये सीख जाइए यहां से कि इनके मुद्दे देश में अहम है, और वो नेता भी सीख जाएं जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा उड़ा कर अपने फायदों के लिए पार्टियां इधर से उधर कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, उन पर भी कानून लागू हो जाए कि वो ना बदल पाए और इस देश के मुद्दे सबसे ऊंचे हो जाए।
1: चलिए अब आपका समय शुरू होता है, एक मिनट का रिबटल टाइम मिस्टर भंडारी। अब
14: देखिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लोकतंत्र की आवाज नहीं दबानी चाहिए और जो जिस विचार में उसी विचार में रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध लड़ा, अलायंस किसके साथ किया? कांग्रेस पार्टी के साथ किया। कांग्रेस पार्टी एक बैकस्टैबर पार्टी है, पीठ में छुरा घोपने वाली पार्टी है। प्रदीप भंडारी नहीं कह रहा है, डीएमके कह रही, जिसने सालों साल कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया। तृणमूल कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा अस्तित्व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया और आज टीएमसी और कांग्रेस साथ में आ रहे हैं। उद्धव सेना ने पूरा का पूरा अपना अस्तित्व जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया और कांग्रेस पार्टी के साथ विलय कर लिया। समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा जीवन बसपा के खिलाफ लड़ा, बसपा के साथ अलायंस किया, 6 बीएसपी के एमएलए को समाजवादी पार्टी के अंदर जोड़ लिया, कांग्रेस के सांसद को समाजवादी पार्टी के अंदर जोड़ लिया, ये सब ठीक हो गया। ये सब परिवारवादी दल, इनके चाचा नाना नानी काउ सब इनके राजनीति के अंदर, और यह लोकतंत्र की बात करें, आप सब युवा हैं, आज एक युवा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता से शीर्ष पद पर पहुंच सकता है, ये आप सब भी जानते हैं। हम वापस से कहेंगे, रेट ये कोट करते हैं, भ्रष्टाचारी ये है, हमारे साथ जो भी आता है सिर्फ विकास के लिए आता है।
10: समय समाप्त।
14: तो केरला में भी है कोई बीजेपी का व्यक्ति टूटा, हम तो तमिलनाडु में भी है, कुछ हुआ आंध्र में भी है, पंजाब में भी है, हम जहाँ सत्ता में भी नहीं रहते तब भी हमारे लोग हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि विचार मतलब भारतीय जनता।
10: समय समाप्त हुआ, चलिए जल्दी से आप
2: प्रदीप जी से
10: एक सवाल। हाँ
2: हाँ, प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से बात को रखा है, लेकिन अभी अभी तो चुनाव लड़ा आपने ममता बनर्जी के खिलाफ, वो सारे एमपी आपके साथ आ गए, शायद उनके खिलाफ ही लड़ा होगा, शिवसेना के खिलाफ भी लड़ा होगा, और प्रदीप जी बात कर रहे हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी में, वो तो ठीक है, लेकिन कमरा तो उतना ही बड़ा है, ये सारे लोगों को बैठा लेंगे तो प्रदीप भंडारी जैसे कार्यकर्ताओं को जगह कम मिलेगी वहां पर, ये इसको देखिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि डॉली जी और अनुराग जी बहुत खुश हो रहे हैं कि लोग जो है जनता इधर से उधर चली गई, आप मत परेशान होइए, आपको तो एमपी चाहिए ना।
3: अनुराग जी मेरा सवाल भी जोड़ लीजिए उसके बाद। प्रदीप जी ने कहा कि सपा और बसपा एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन मायावती को चीफ मिनिस्टर तो 3 बार आपने बनाया उत्तर प्रदेश में, सपा ने तो नहीं बनाया, तो आप भी तो बसपा के साथ जो है 3 बार गए और 3 बार अलग हुए।
14: हम किसी के साथ भी अलायंस करते हैं, हम हमारे विचार के हिसाब से अलायंस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर राम मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर आर्टिकल 370 हटा, हम यूसीसी पे कायम है, हमारे साथ इतने घटक दल आए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना विचार कब चेंज किया? क्या कोई आया उसकी वजह से हमने हमारे आउटकम्स चेंज किए? नहीं चेंज किए। एज एनडीए हम जो चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है वही करते हैं, और ये हमारे विचार का दायित्व है कि अगर हमारे विचार में ज्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या? हम 22% की वोट शेयर पार्टी थी, 38% की वोट शेयर पार्टी है, कल हम चाहेंगे 50% की वोट शेयर पार्टी हो। जो बीजेपी में आता है, जो एनडीए में आता है, वो एनडीए के हिसाब से चलता है, एनडीए किसी को लेती है उसके हिसाब से नहीं चलती, इनमें और हमें ये फर्क।
10: ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है आपसे कोई सवाल नहीं, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह आइए आइए आइए। तिवारी जी, दुबे जी, जल्दी जल्दी आइए, एक एक मिनट का, मैंने कहा था ना आपको सेकेंड राउंड मिलेगा सर,
3: कार्यक्रम
10: मुंबई से बुलाया हमने,
3: कार्यक्रम की सबसे शानदार जोड़ी,
10: सबसे शानदार,
15: ये नागपुर से है, मुंबई से।
10: अच्छा, मुंबई से आप आए हैं, ये नागपुर से आए हैं, अब नागपुर में हेडक्वार्टर तो संघ का है, लेकिन आप नागपुर से आए दादा, अभी एक मिनट, आपका एक मिनट का समय शुरू होता है अब। दुबे जी,
16: जैसे कि लोकतंत्र की गवाही और दुहाई देने वाले यहाँ के कुछ हमारे नेतागण जिस तरह से कह रहे हैं कि संस्कार और लोकतंत्र की मर्यादा में रह करके पार्टी गतिविधि की बात करते हैं, हमारे भदौरिया साहब जिस ढंग से कह रहे थे कि किसी पार्टी में फला फुला कोई व्यक्ति सांसद हो या विधायक हो, चाहे जिस पद पे पदासीन होने के बाद उस दल से निकलने का मतलब कि जनता को धोखा देना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव के ही शरीर से पैदा हुए आपके नेता, उन्होंने भरे मंच पर जिस तरह से अपमान किया, चाहे शिवपाल यादव जी का, चाहे स्वयं अपने पिताजी का, यह राजनीतिक लुलपता रही। बात लोकतंत्र की मर्यादा न सिखाएं, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करा, अभी परसों बीता हुआ कल इस दल बदल सांसदों 6 सांसदों को लेकर के जो महाराष्ट्र से एक आवाज एक सुर निकली, संजय राउत जी जिस ढंग से मर्यादा को उन्होंने रोत करके गाली गलौज उतर आए, उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति ने इसमें कोई चर्चा नहीं की।
10: ठीक,
16: अब मेरे ही नहीं समझ में आ रहा है कि मर्यादा और लोकतंत्र की कहां किस मर्यादा किस तरह।
10: बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, चलिए आपका तिवारी जी अब एक मिनट का समय, थोड़ा तेज तेज बोलना होगा सर, एक मिनट ही टाइम।
17: मैं बात कर रहा हूँ,
10: थोड़ा घड़ी स्लो चलाइएगा
17: थोड़ा। हाँ,
10: बोलिए।
17: तो मैं अभी बात कर रहा हूँ।
10: हाँ?
17: कि मुझे सवाल आया था, उसके जवाब भी देना पड़ेगा।
10: हाँ, बोलिए बोलिए।
17: वो उन्होंने सवाल बोला कि कमियां अगर हम में थी, हाँ कुछ तो कमियां रही होगी, नहीं तो इतने तो बेवफा नहीं होते। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर दल बदलू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए तो मैं चाहता हूं, और विनोद जी ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले जो है और बीजेपी में जो है वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो कुछ तो कमियां हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम में। और डिग्रेडेशन पॉलिटिशियन का बहुत ज्यादा हुआ है।
10: समय समाप्त हो गया, मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया।
14: कांग्रेस में जो है उसको हार पहना दो।
16: अंजना जी,
17: नहीं ये बात तो मुझे बोलना पड़ेगा।
16: अंजना जी, ये और नकली लोग हैं, ये नकली लोग हैं कि ये लोग जमी पर रह के कलमों में कयाम करते हैं, कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हैं।
17: देखिए जितने भी भट्टाचारी बीजेपी में गए, आज वो सबसे ज्यादा राष्ट्र संपन्न चारित्र संपन्न हो चुके हैं। हाँ, मैं नाम किसी के लूंगा नहीं, क्योंकि सारे के ही नाम लेना पड़ेगा।
10: एक सिंपल सा सवाल है, बाला साहब की आइडियोलॉजी क्या थी? बाला साहब कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे या नहीं लड़ रहे थे?
17: देखिए, बाला साहब ठाकरे यह एक ऐतिहासिक पुरुष थे। वो कांग्रेस के साथ ही रहे बहुत दिन तक, कांग्रेस के साथ
16: एकदम झूठ।
17: अरे मेरे को
16: झूठ झूठ
17: मुझे बोलने दो, मुझे
16: झूठ।
17: राजनीतिक समझौता हर पार्टी से करती है। बीजेपी ने बीएसपी से किया था, बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से किया था, बीजेपी ने कम्युनिस्टों से भी किया था, बीजेपी ने मुस्लिम लीग से किया था। अरे यार, ये बच्चा पार्टी, ये कॉकरोच पार्टी, ये कॉकरोच जनता पार्टी से आए, ये कॉकरोच जनता पार्टी से
16: इसी दिल्ली के।
10: चलिए, एक मिनट का रिबटल टाइम आपका शुरू होता है अब।
5: किसी भी राजनीतिक परिवेश को दो तरीके से देखा जा सकता, एक व्यवहारिक और एक संवैधानिक। व्यवहारिक में जाए, पश्चिम बंगाल में जाए, उन्होंने पहले कांग्रेस को लंबे समय तक प्यार दिया, फिर वामपंथियों को लंबे समय तक प्यार दिया, ममता जी को 15 साल लंबे समय तक प्यार दिया, और अब एनडीए और बीजेपी को जो प्यार दिया वहां की जनता ने, तो वहां के नेताओं ने सोचा लंबा चलेगा, और इसलिए अगर वो गए तो व्यवहारिकता में ठीक, और अगर महाराष्ट्र में जाएं तो बाला साहब ठाकरे साहब की जो विचारधारा थी उसके खिलाफ जाके कांग्रेस में समझौता करा तो व्यवहारिकता के हिसाब से उन लोगों को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो गए। अब आती है संवैधानिक। संविधान की क्लॉज 10 के पैरा 4 के अनुसार 2/3 अगर इकट्ठे होकर चले जाएं तो संवैधानिक तरीके से वो ठीक है, तो संविधान के हिसाब से भी ठीक और व्यावहारिकता के हिसाब से भी ठीक। अरे ये कांग्रेस और उनके साथी पार्टी रोते रह जाओ, क्योंकि इनके खुद के बस की कुछ है ही नहीं।
10: समय समाप्त। अनुराग जी, आपका समय शुरू होता है।
6: भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कह रहे हैं कि जनता का प्यार मिला, जनता का प्यार मिला नहीं,
16: मैं बोलता तो बोला
6: जनता का प्यार लूटा, लूटा एसआईआर के माध्यम से। ये वो लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। कौन डर से झुक गया, कौन लालच में बिखर गया, ये वक्त की किताब है, हर पन्ना खुलकर कहेगा, सब खुल के कह गया है कि कौन बिका है, कौन डर से है, कौन क्यों गया है। ये विचारधारा की बात कर रहे हैं। पीडीपी के साथ, पीडीपी को कहते हैं कि पीडीपी का सरकार नहीं बनाएंगे, लड़ते थे पीडीपी के साथ, इन्होंने मलाई मारने के लिए सरकार बना ली थी कश्मीर में। सोचो आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार बना ली थी, और आपको बातें करेंगे, नफरत की बात करेंगे ना, जब सत्ता पानी होती है तो पीडीपी के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, बीएसपी के साथ, शिवसेना के साथ, किसके साथ इन्होंने सरकार नहीं बनाई है? जहां जहां इन्हें मौका मिला सरकार बनाने का, मलाई खाने का, वहां बीजेपी ने सरकार बनाई नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, एक ही विचारधारा है, सत्ता।
10: अब वक्त है जब आप वोट करेंगे। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं, आप भी क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय डाल सकते हैं। आज का प्रश्न साफ है, अब जितने ऑडियंस यहां पर है, क्यूआर कोड स्कैन करके वोटिंग शुरू होने वाली है। विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है, अगर आप मानते हैं हां तो आप वोट करेंगे टीम डॉली शर्मा के लिए, तो आपको टीम डॉली शर्मा के लिए हां पर वोट डालना है। अगर विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है ऐसा आप नहीं मानते हैं तो आप प्रदीप भंडारी के लिए करेंगे नहीं पर। आप वोटिंग शुरू कीजिए, आपको 60 सेकंड का वक्त मिलेगा जिसमें आपको अपना वोट डालना है, और देखते हैं वोटिंग किस तरफ जाती है। विपक्ष में टूट के पीछे क्या सत्ता का डर है? हाँ कहने वाले आज 66% है, 65%, 69, 70%, 24% नहीं कह रहे हैं, कह नहीं सकते वाले 7% है, 66% कह रहे हैं हाँ, 25% नहीं वाले हैं, कह नहीं सकते वाले 9% है, 68, 67, आखिरी के अब 30 सेकंड बचे हैं, आखिरी के 30 सेकंड। किधर, इधर ही है, जो है इधर है, उधर किधर कुछ नहीं है। 15 सेकंड आखिरी के, जिसके बाद वोटिंग, सबने अपना वोट डाल दिया है। चलिए आखिरी के 10 सेकंड, 9, 8, 7, 6, 5,
15: चार तीन दो एक, और इसी के साथ 70% टीम डॉली शर्मा जीत गई है, जिसमें विपक्ष के पीछे टूट के पीछे सत्ता का डर है। 70% लोग कह रहे हैं हाँ, नहीं वाले 25% है, कह नहीं सकते वाले 5% है। और अब बारी है जब आपको बहस बाजीगर बताना है, जल्दी से बता दीजिए आज का बैठ जाइए
3: अपना इनाम तो सुन लो।
18: आज का जो बहस है वो बहुत मजेदार रहा, आनंददायक रहा। दो सेनापतियों ने इसे दो सेना की लड़ाई बना दिया था, लेकिन दोनों बहुत मनोरंजक थे। पर बाजीगर तो एक ही होता है।
15: आप कह रहे हैं कि कॉमेडी ज्यादा थी।
18: हाँ, आज कॉमेडी का जो है अंश ज्यादा था, पर आज अच्छा, लेकिन बाजीगर तो एक ही हो सकता है। हाँ। तो आज के बहस बाजीगर हैं टीम डॉली शर्मा के श्री अनुराग भदौरिया।
15: भदौरिया जी, ओ वाह वाह, ओ हो हो, ऐसा पहली बार हुआ है भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों के साथ आज के बहस बाजीगर अनुराग भदौरिया के लिए ताली बजाइए। आपको विश्वास हो रहा है ना? इसी के साथ बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
3: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
4: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
2: मतलब
4: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
3: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
4: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
5: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
6: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
7: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
8: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
4: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
9: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
10: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
9: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही हैं।
3: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं। उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
2: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
3: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
2: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
4: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता।
5: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
2: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, पूछताछ में टिन्नू यादव और चार पुजारियों का गोलमोल बयान। बिहार के आरा एनकाउंटर पर सियासी बवाल के बाद सम्राट सरकार का फैसला, न्यायिक जांच के आदेश जारी, तेजस्वी ने मुठभेड़ को कहा फर्जी। महाराष्ट्र के परभणी में बड़ा हादसा, यशबाड़ी मारुति मंदिर परिसर में निर्माणाधीन मंडप की छत गिरने से 6 लोगों की मौत, पीएम और सीएम ने जताई संवेदना। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हॉर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप।

0: जब अमेरिकी ताकत और उसके प्रभाव का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ईरान का जिक्र जरूर होगा। एक ऐसा देश जिस पर दशकों तक प्रतिबंध लगाए गए, जिसे आर्थिक तौर पर तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन युद्ध के मैदान से लेकर बातचीत की मेज तक ईरान ने दिखा दिया कि प्रतिबंध किसी देश की इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ते, बल्कि वो उसको एक हथियार बना देते हैं। ईरान के केस में वो रेजिस्टेंस है। करीब 4 महीने तक चले इस संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू साइन हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि जिन शर्तों को कभी अफवाह, कभी फेक न्यूज बताकर ट्रंप खारिज कर रहे थे, आज वही समझौते का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और वॉर रूम में आपका स्वागत है। एक ऐसा वॉर रूम जहां पर शांति की बात है, लेकिन शांति कहीं खत्म ना हो जाए इसका डर भी है। पश्चिम एशिया की इस बड़ी डील के 14 अहम बिंदु सामने आए हैं। सवाल यह है कि इस समझौते में किसे क्या मिला, किसने क्या खोया, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस जंग का कोई विजेता भी है। अमेरिका और ईरान तुरंत और हमेशा के लिए अपनी सभी सैन्य कार्रवाइयां रोकेंगे। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दोनों देशों ने अगले 60 दिन के भीतर फाइनल डील पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाएगा, इसके बदले ईरान हॉर्मुज जलमार्ग फिर से खोलेगा, जो शुरुआती 60 दिनों तक बिल्कुल मुफ्त रहेगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की आर्थिक योजना पर काम करेंगे। ईरान के तेल निर्यात, बैंकिंग, बीमा और ट्रांसपोर्ट पर लगी पाबंदियों में अमेरिकी ट्रेजरी की तरफ से छूट दी जाएगी। साथ ही ईरान की फ्रीज की गई विदेशी संपत्ति भी चरणबद्ध तरीके से जारी होगी। ईरान ने दोहराया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यूरेनियम का निपटारा IAEA की निगरानी में होगा। जब तक अंतिम समझौता नहीं हो जाता, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएगा और अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इस अंतिम डील को कानूनी और अंतरराष्ट्रीय वैधता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का इस्तेमाल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस मेमोरेंडम को बारीकी से देखें तो तत्काल और ठोस फायदे ईरान के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। ईरान को मिला आर्थिक सहारा। पिछले कुछ समय से ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब दौर से गुजर रही थी। ईरानी रियाल कमजोर से भी कमतर होता जा रहा था, महंगाई आसमान पर थी। ये डील ईरान की अर्थव्यवस्था में जान फूंक सकती है। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटने और तेल निर्यात पर छूट मिलने से ईरान की अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो सकेगी। इसका फायदा IRGC और उसकी प्रॉक्सीज को होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
1: अमेरिका ने खुद खड्डा खोदा है अपने लिए। और ओबामा की जो डील की बात करते हैं, बात हो रही थी, ओबामा डील में था ये केवल यूरेनियम का मुद्दा था, उसमें मिसाइल्स का मुद्दा नहीं था और हूती प्रॉक्सीज का नहीं था। तभी नेतन्याहू कहते थे नहीं, तो बड़ी खराब डील है, और नेतन्याहू अमेरिका में जाके लॉबी करेगी डील को कैंसिल, ट्रंप ने करी। अब आज जो डील आ रही है, इस डील में बैलिस्टिक मिसाइल का कोई मेंशन नहीं है,
2: प्रॉक्सी का कोई जिक्र
1: नहीं, बल्कि रिवर्स हो गया है
2: बिल्कुल,
1: कि भाई लेबनान को तो प्रोटेक्ट किया जाएगा, राइट। तो अमेरिका ने अपने लिए खड्डा खोदा है, नो डाउट।
0: ईरान के तेल से बैन हटने और फ्रीज संपत्ति वापस मिलने से भी ईरान फायदे में ही नजर आ रहा है, जबकि इसके बदले में उसने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई बहुत सख्त या स्थायी कदम अभी तक नहीं उठाया है। परमाणु मुद्दे के सबसे पेचीदा फैसलों को अगले 60 दिनों के लिए टाल दिया गया है, जो कि ईरान के लिए राहत की बात है। यही वजह है कि अमेरिका के भीतर ही इस डील की आलोचना शुरू हो गई। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो रही है कि वित्तीय प्रतिबंधों में ढील देना ईरान पर से सबसे बड़ा दबाव हटा लेने जैसा है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील का पुरजोर बचाव किया है। ट्रंप का कहना है कि जो लोग इस डील का विरोध कर रहे हैं वो गलत हैं।
3: A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man.
2: Who said that?
3: Donald Trump.
2: Oh, that's what I thought you were going to say.
3: So how do you go back to the United States and convince a skeptical American public that this deal
2: is
3: a win?
2: Well, look, here they lost militarily, okay? It's very tough because I know that no matter what, if I would go, by the way, if I'd go another 3 or 4 weeks, those same people that are critical would say, he went too long, he should have done, you know, no matter what. If they raised the white flag of surrender, and if they said, praise be to Allah, Donald Trump is the greatest president ever. We totally concede. We totally give up. This war is over. We have failed. The New York Times and CNN and a couple of others are not all that dishonest. They'd say Iran had a great victory. Okay.
0: Deal ke hote hi antarrashtriya bazaar mein Brent crude ke daam girkar $77 prati barrel par aa gaye hain. और अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें महीनों बाद $4 प्रति गैलन से नीचे आ गई है, जो अमेरिकी जनता के लिए राहत है। कूटनीति के समर्थकों का भी मानना है कि यह दशकों पुरानी टकराव की नीति को बदलने का एक अच्छा मौका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार फिलहाल ये डील ईरान के पक्ष में ज्यादा दिख रही है, उसे तुरंत आर्थिक राहत और सैन्य दबाव से छुटकारा मिला है। वही अमेरिका को तेल की कीमतों में गिरावट और युद्ध थमने से घरेलू राहत मिली, लेकिन उसके पर्पस ऑफ वॉर अभी पूरा होता दिख नहीं रहा। अब असली परीक्षा अगले 60 दिनों की बातचीत में होगी, जहां परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम जैसे मुश्किल मुद्दों पर फैसला होना है। अगर सहमति नहीं बनी तो टकराव का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से जुड़ी हुई। ईरानी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है, यानी कि जिस तरह की अटकलें और जिस तरह की आशंकाएं सबके मन में थी, एक एक करके वो सारी चीजें सामने आ रही है। कितने दिन टिक सकती है ये शांति? आप कहेंगे ये शांति अभी ठीक से आई भी नहीं है और हम ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, एक एक करके मैं परिचय उनका करवा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त पूर्व डीजी इन्फेंट्री भारतीय सेना के। हमारे साथ है मार्शल संजीव कपूर, जुड़ रहे हैं सेवानिवृत्त पूर्व डीजी इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी इंडियन एयरफोर्स के रहे हैं। और साथ में हमारे कैप्टन डी के शर्मा हैं, पूर्व स्पोक्सपर्सन भारतीय नेवी और कंसल्टेंट भारत शक्ति के। तो हम चूंकि इस पूरे युद्ध में आपने हर पहलू देख लिया है और इसीलिए जरूरी है ये समझना कि खासकर ये जो 14 पॉइंट जनरल प्रसाद जो हमारे सामने इस पूरे डील के एमओयू के जो सामने हैं, वो इशारा क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये देखकर तो ये लग रहा है कि अमेरिका जीता तो नहीं है, ज्यादा तो ईरान के टर्म्स में हमें ये दिखता है। तो इस केस में हम समझ सकते हैं कि शांति अभी कम से कम 2 महीने तो रहेगी।
4: जी, उम्मीद सभी करते हैं कि शांति रहे और शांति बनी रहे। ये डील किसके बीच में हुई है? ये डील बीच में हुई है अमेरिका के और ईरान के। अब ये समझना जरूरी है कि इस डील में कौन कौन इन्वॉल्व है, हु आर द विच आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस डील। एक तो अमेरिका है ही, एक ईरान है, आपने बता दिया। हमने ये नहीं बताया कि इसमें IRGC कहाँ है।
5: जी,
4: IRGC आप सबको मालूम है कि IRGC यूनिट बाई इटसेल्फ वो अपने सरकार के नीचे काम नहीं करती है ईरान के अंदर।
5: मतलब आपको लग रहा है पेजेशकियन के दस्तखत है, उसके बावजूद IRGC की सहमति हो सकता है ना हो?
4: कागज पर तो नहीं आई है ना।
5: हाँ।
4: ना कोई इसका बयान आया है। सो दैट इज अनदर प्लेयर इन द गेम। इसमें इसराइल का साइन तो नहीं है, हालांकि लोग कहते हैं कि वो मान चुके हैं। इसमें हिजबुल्ला का साइन तो है नहीं, जिसमें वो मान चुके कि नहीं मान चुके। हमास कहाँ है, हूती कहाँ है, यमन कहाँ है? तो इस गेम में खिलाड़ी बहुत हैं। अभी 2 खिलाड़ियों में तो बातचीत हो चुकी, मान गए, क्योंकि दोनों इस लड़ाई से निकलना चाह रहे थे।
5: हम अगर 1% ये मान लें कि IRGC की भी हामी है इस चीज को, तो केवल ईरान से ये होगा या फिर इसराइल आपको लगता है हाथ खींचेगा लेबनन को लेकर?
6: हुआ यूं है कि 40 दिन का युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध विराम हुआ, 100 से ऊपर दिन हो गए हैं, अभी 60 दिन का फिर हुआ है, 21 स्कर्मिश चलती रही है। बस पूरे उसमें इसराइल मेरी समझ से वीक हुआ है। वीक इसलिए हुआ है कि अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में कम होती जा रही है। अमेरिका ने जो गल्फ कंट्रीज के ऊपर प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला दिया था वो एक्सपोज हो गया इस युद्ध में। जो साउथ ईस्ट एशिया में, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, उधर से इन्होंने अपने असेट्स खींच के मिडल ईस्ट में लेके आए, तो वो देश बोले कि इस वक्त अभी हमारे पे चीन अगर अटैक करते तो हमारे पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। बोला नहीं, मुझे चाहिए। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं रियलाइज किया कि हम अमेरिका को अपना गारंटर मानते हैं, बट जब चिप्स डाउन होंगे तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे साथ में खड़ा होगा। इसराइल जो कि अमेरिका के बल पे अटैक करने गया है, उसका जो मेन टारगेट था कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज किया जाए, वो नहीं हुआ। उनका नेक्स्ट मकसद था हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, वो नहीं हुआ। एंड जो यमन और इराक में जो इनके सेल्स हैं ऑफ हूतीस एंड इराकी, वो भी पनप रहे हैं। तो ये अगर युद्ध विराम हुआ तो ये जो 60 दिन का समय है वो उनको रीग्रुप के लिए मिलेगा।
5: कैप्टन शर्मा, पहले मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना क्रूशल रहेगा इस लास्टिंग पीस के लिए। भले ही ये कहा जा रहा है कि जिस दिन ये डील साइन हुई उस दिन से वहां से अमेरिकी जो नौसेना है उसके हटने का क्रम शुरू हो जाएगा, ओमान से अभी बात आगे होगी बारीकियों को लेकर कि कैसे निकलें, लेकिन आपका जजमेंट क्या कहता है?
7: ओके श्वेता, तीन चार बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, एंड श्वेता दिस कंडीशन ऑफ मेकिंग द शिप्स कम आउट और गो इनसाइड एंड पिक अप द एनर्जी एंड कम आउट, दिस फ्री बिजनेस विल बी फॉर 60 डेज। एक तो ब्लॉकेट बाहर लगा हुआ है, वो ब्लॉकेट हटा नहीं है अभी हटा नहीं है, बोला गया है कि हट रहा है और ये इन्होंने बोला है एज पर द MOU दैट इट विल बी कंप्लीटली लिफ्टेड इन 30 डेज। दे आर स्टिल लुकिंग एट इट के वेदर इट इज हैपनिंग, ये हो जाएगा कि नहीं हो गया, सब कंडीशनल है, सब कंडीशनल है। आप बात कर रहे थे डिस्ट्रक्शन की, डिस्ट्रक्शन इज द फंड विच दे हैव टू नाउ यू नो केटर फॉर इज 300 बिलियन, 24 लाख करोड़। कहना आसान है, 24 लाख करोड़ का फंड इज रिक्वायर्ड, एंड हु इज गोइंग टू फंड दैट? द US एलाइज इन द गल्फ विद ईरान एंड इमीडिएट रिलीज ऑफ द सैंक्शनड अमाउंट। ये जो आप बोल रहे हैं कि ये पीस अकॉर्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, इतनी कंडीशन है श्वेता इस पे, अगर आप इसको देखना शुरू करें एक एक करके।
5: सही बात।
7: एंड IRGC जो सर ने पॉइंट उठाया, दे आर अगेन अ वेरी वेरी टफ कस्टमर, वेरी टफ कस्टमर। दे विल, यू सी राइट नाउ आफ्टर दिस मच ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, व्हाट दे वांट राइट नाउ इमीडिएट

0: यू डोंट इवन नो कितने माइंस लगाई
1: हैं। सबसे बड़ी बात यह है आप सजेसी को इलेबोरेट कर रहे हैं कि माइंस कहीं भी लगाते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, इनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है।
0: रिकॉर्ड ही नहीं है क्योंकि आपने तो मेरी पूरी नेवी बर्बाद कर दी।
2: कि अगर ये लास्टिंग पीस होनी है तो आपके हिसाब से क्या एक या दो या तीन फैक्टर्स जिनका ख्याल रखने की जरूरत होगी दुनिया को?
1: मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले ईरान ये एक्सेप्ट कर ले कि इसराइल हैज गॉट अ रीजन टू सर्वाइव। इसराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इज फाइटिंग फॉर इट एग्जिस्टेंस। तो ईरान कह दे कि हम इसराइल के बरखिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, एकदम ये भी कह दे और कह दे हम इसराइल को अब रिकग्नाइज करते हैं,
2: ठीक है।
1: मेरे ख्याल से काफी हद तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
3: मेरा टेक जो इब्राहिम अकॉर्ड्स का है वो बिल्कुल उल्टा है। जब तक युद्ध शुरू हो रहा था और शुरू शुरू में जब ट्रंप ने कहा कि ये जो देशों ने इब्राहिम अकॉर्ड साइन किए उनको नहीं किए उनको करना चाहिए, इस युद्ध और सीज फायर के बाद जिन्होंने साइन किया वो भी मना कर देंगे।
2: सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे?
1: ये कहना चाह रहा हूँ एक सवाल का जवाब सब दे दें, क्या इसराइल को अपनी रहने की इज्जत है? इज इसराइल अलाउड टू लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ कंट्री? कौन कहता है कि इसराइल का एक बर्बाद करके खत्म कर दीजिए, कहाँ जाएंगे वो? सो प्लीज अंडरस्टैंड इब्राहिम अकॉर्ड ओनली सेज कि प्लीज रिकग्नाइज इसराइल एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट।
2: कैप्टन ठीक है आपके हिसाब से?
4: मेरे हिसाब से यू सी व्हाट जनरल सर इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यू हैव टू इफ यू हैव टू कम ऑन द टेबल कम विद जस्ट थिंग्स। मतलब आपने इतनी बड़ी डिमांड कर ली है कि मेरे को रिकंस्ट्रक्ट करिए, मेरे को ये करिए, मेरे सैंक्शंस यू नो सारे के सारे, आई शुड बी पेड बैक वट एवर यू नो वॉज हेल्ड बैक बाई यूएस, बट देन दे ऑल्सो हैव टू कम ऑन बोर्ड, उनको भी आना पड़ेगा टेबल।
2: ईरान की भी जिम्मेदारी रहेगी।
4: ईरान शुड कम एंड यू नो वट जनरल प्रसाद इज सेइंग
3: द विजिट बाई ट्रंप टू चाइना इन माई ओपिनियन लेफ्ट हिम मोर वीकर देन एनीथिंग एल्स।
1: अनडाउटेडली
3: Had he not gone, he still would have been in a better bargaining position. He exposed himself to a level where even the Chinese have understood that he is not left with much power. So that is my point.
2: लड़ाई इधर हुई लेकिन सबसे बड़ा फायदा चाइना का रहा इसमें। बहरहाल इस सब के बीच पाकिस्तान भी बहुत सारी उम्मीदें लगा रहा होगा, लेकिन दुनिया को इस समय एक ही चीज चाहिए, वो है शांति। अब MOU जो है उस पर साइन हो चुका है, लेकिन इंतजार है कि अगले दो महीनों में क्या होगा कि दुनिया को कम से कम उस अनिश्चितता की तरफ न धकेला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे लेबनन फ्रंट ईरान अमेरिका पीस डील में गले की हड्डी बन गया है। आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ट्यून इन इज योर ऑल इन वन ऑडियो ऐप, रेडियो, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, न्यूज एंड पॉडकास्ट्स ऑल इन वन प्लेस। बट हियर समथिंग यू माइट नॉट नो, यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू साउंड. With TuneIn Explorer, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTA को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
1: इन एसोसिएशन विद

0: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
5: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
6: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
7: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
6: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

ये इसराइल का अजेय सुरक्षा कवच आयरन डोम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कवच की असली चाबी वॉशिंगटन के पास है। आंकड़ों की बात करें तो साल 1948 में इसराइल के जन्म के बाद से अब तक अमेरिका उसे $158 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी सैन्य मदद दे चुका है। मौजूदा 10 वर्षीय समझौते के तहत अमेरिका हर साल इसराइल को $3.8 बिलियन की निश्चित सैन्य मदद देता है, जिसमें से $500 मिलियन सिर्फ मिसाइल डिफेंस के लिए होते हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई लाइन का है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस जिन अत्याधुनिक F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के दम पर ईरान और लेबनान में तबाही मचाता है, वो सब 100% अमेरिकी है। इसराइल के कुल हथियार आयात का 69% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। इस 3 महीने की लंबी जंग में जब इसराइल के तोप के गोले और गाइडेड बम खत्म होने की कगार पर पहुंचे तो अमेरिका ने आपातकालीन एयरलिफ्ट के जरिए हजारों टन गोला बारूद यरूशलम पहुंचाया। लेकिन इसराइल के लिए अमेरिका सिर्फ बारूद का सौदागर नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेटिक बॉडीगार्ड भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में जब भी पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाती है, अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलग थलग होने से बचा लेता है। इतिहास में अमेरिका ने 45 से ज्यादा बार इसराइल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसराइल अमेरिका पर इतना निर्भर है तो नेतन्याहू ट्रंप की बात क्यों नहीं मान रहे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसराइल के पास कुछ महीनों की जंग, अकेले लड़ने का हथियारों का बफर स्टॉक और खुद की मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री जैसे एल्बिट सिस्टम्स जरूर है, लेकिन अगर ईरान के साथ लंबी खींचने वाली जंग होती है तो अमेरिका के बिना इसराइल की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी करदाताओं के पैसों की बदौलत इसराइल सुरक्षित है, इसलिए उसे वॉशिंगटन के शांति रोड मैप का सम्मान करना ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। नेतन्याहू जानते हैं कि अमेरिकी मदद के बिना ईरान से लंबा युद्ध लड़ पाना उसके लिए संभव नहीं है, इसीलिए वो ट्रंप की लाइन को पूरी तरह काटे बिना आखिरी क्षण तक अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय का खेल खेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
1: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
2: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
3: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
4: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
5: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है। लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया। इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
6: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
5: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला है, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो। राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जाँच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, इसराइल हिजबुल्ला तनाव से जुड़ी हुई है। सीज फायर के बावजूद हिजबुल्ला की तरफ से 50 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स इसराइल की तरफ दागे गए हैं। ये दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला की तरफ से ये प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए हैं। सीधी सी बात है, इस बड़ी खबर के साथ अब शांति को लेकर एक नया संशय पैदा हो रहा है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनन में इसके जवाब में कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। क्या सीज फायर टूटने की कगार पर है? देखिए ये रिपोर्ट। वॉर जोन में शांति रहेगी या नहीं रहेगी, ये इस बात पर निर्भर है कि इसराइल और लेबनन के बीच क्या होता है। अब लेबनन फ्रंट पर भड़की भीषण हिंसा में इजरायली सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। दक्षिण लेबनन के कफर तेबनीत गांव में हिजबुल्ला ने एक इजरायली टैंक को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में इजरायली सेना के टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। हिजबुल्ला न रुक रहा है न पीछे हटने के लिए तैयार है। इजरायल हिजबुल्ला को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। वहीं ईरान अपने प्रॉक्सी का इस्तेमाल जिस तरह से कर रहा है, उसने इस पीस प्रोसेस पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं।

हिजबुल्लाह के हमलों में 4 इजरायली सैनिक मारे गए। इस बड़े सैन्य नुकसान के बाद इसराइल ने भी दक्षिण लेबनान के नबातिये इलाके में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 16 लोगों के मारे जाने की खबर है।

0: लेबनान में 24 घंटे तक चली भीषण हिंसा और गोलाबारी के बाद अब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर फिर से पटरी पर लौटता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशों को भी नई रफ्तार मिली है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची स्विट्जरलैंड में मुलाकात हुई, जहां दोनों पक्षों के बीच डील पर अहम चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने पर स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत खटाई में पड़ गई थी।
1: The president has grown frustrated sometimes is that we seem to be right on the cusp of a major breakthrough in the agreement, and then all of a sudden there's a major explosion that goes off in a civilian population center in Beirut, and a lot of people who have nothing to do with Hezbollah lose their lives. That's not acceptable. That's the sort of thing that we've asked for closer coordination so that we ensure it doesn't happen.
0: इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद साफ कर दिया है कि जब तक इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक इजरायली सेना दक्षिण लेबनान से बाहर नहीं निकलेगी।
2: אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו, כשם שהחזרנו. כשם שהחזרנו את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כי הרצועה הזאת מפרידה בין מחבלי חיזבאללה לאזרחינו ויישובינו.
0: दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान पहले ही इस एमओयू पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जारी तनाव के बीच इस डील की सफलता को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। अमेरिका के भीतर भी ईरान से हुई डील को लेकर घमासान मचा है। रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टियों के कई नेता इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस डील का विरोध कर रहे इजराइल की बड़े ही कड़े शब्दों में आलोचना की है।
1: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: लेकिन इस पूरी डील पर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पोम्पियो ने सोशल मीडिया पर लिखा,
3: अमेरिका और इसराइल के बीच मतभेद की खबरें इसराइल विरोधी ताकतों के लिए किसी संगीत की तरह है, जबकि इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए सिर्फ एक ही देश जिम्मेदार है और वो है ईरान।
0: रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस एमओयू के मसौदे में कहीं भी ये शर्त नहीं है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को वित्तीय मदद देना बंद करेगा, जिसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।
4: इसराइल के कुछ कंसर्न्स तो जेन्युइन है, दूसरे जो कंट्रीज है उनका बहुत ज्यादा रोल, उनको पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि ये जो मतलब जैसे एक टाइम पे जो इजिप्ट ने डील करी थी इसराइल के साथ, सो उस किस्म का कुछ यू नो वी कैन वी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर।
5: लेकिन क्या इसराइल मानेगा मैम, क्योंकि इसराइल तो कहता है कि हिजबुल्ला का खात्मा ही, संपूर्ण खात्मा ही।
4: पर वो तो सबको यू नो बहुत मुश्किल है, पर जो दूसरे हैं अब जो हिजबुल्ला वगैरह उनके साथ कौन बातचीत करेगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया है। और जब भी देखो वो वेस्ट बैंक एंड ये और वो, इसमें जो है मतलब सारे जो प्लेयर्स हैं हर एक का कुछ ना कुछ योगदान रहा है टू डिस्टेबलाइज द रीजन।
0: एक तरफ कागजों पर अमेरिका और ईरान स्थायी समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेबनान में मौतों का आंकड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि पश्चिमी एशिया की ये जंग इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। बड़ी खबर ईरान की तरफ से एक और चेतावनी के रूप में। आपको बता दें, ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मूज जलमार्ग को बंद करना सिर्फ पहला कदम है। तेहरान का कहना है कि इसराइल की लेबनान पर कार्रवाई अमेरिका के साथ हुए समझौते का उल्लंघन है। ये एमओयू के अलग अलग जो पॉइंट्स थे उसमें शामिल था। अब अगर ये कार्रवाई जारी रही तो और कड़े फैसले ईरान की तरफ से लिए जाएंगे। 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग 2026 तक पहुंच गई है, लेकिन तबाही का सिलसिला रुक नहीं रहा। रूस के हर वार पर उससे बड़ा पलटवार कर रहा है यूक्रेन। जंग लगातार और खतरनाक होती जा रही है।

0: आग बदले की आग। ये जवाब है उस हमले का जो रूस ने यूक्रेन पर इस हफ्ते की शुरुआत में किया था। ये तस्दीक है उस भरोसे की जो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फ्रांस में ट्रंप से मुलाकात के बाद लेकर आए। रूस यूक्रेन जंग को 4 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन तबाही की आग ठंडी होने के बजाय और भड़क उठी है। जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां हर दिन के साथ वार और पलटवार का लेवल बढ़ता जा रहा है। रूस पर यूक्रेन ने इस साल का दूसरा सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस ने 555 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के इन हमलों में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर हुए प्रहार से तेल टैंकों में आग लग गई और चारों तरफ धुआं फैल गया। लगातार बढ़ते हमले बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग अभी थमने वाली नहीं है। यूक्रेन की रणनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है और उसके निशाने पर सीधा रूस के शहरी इलाके हैं। रूसी समाचार एजेंसी TASS के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जून का महीना रूस के लिए कितना भारी रहा है। रूसी समाचार एजेंसी TASS के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जून का महीना रूस के लिए कितना भारी रहा। यूक्रेन के 555 ड्रोन्स को रूस के मार गिराने से पहले इसी महीने की 6 तारीख को 376 ड्रोन्स का हमला नाकाम किया गया था। वहीं जून की शुरुआत में यानी 3 जून को 354, 10 जून को 326 और 11 जून को 330 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए थे। इससे पहले 17 मई को रिकॉर्ड तोड़ 556 ड्रोन से हमला हुआ था। इन हमलों ने रूस यूक्रेन युद्ध को एक चरण आगे पहुंचा दिया है। इस जंग में इंसानों के साथ साथ आस्था पर भी चोट किया जा रहा है। इस जंग में 11वीं सदी के पवित्र लावरा मठ को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसको ईसाइयत के खिलाफ रूस का अब तक का सबसे बड़ा पाप कहा है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने तो इसे नोटरडेम पर बमबारी जैसा बता दिया, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने सिर्फ हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को उड़ाया है और इस पवित्र जगह पर जो मिसाइल गिरी वो यूक्रेन की ही अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल थी जो पुरानी होने के कारण रास्ता भटक गई थी। अब सवाल यह है कि 4 साल की इस खूनी खींचतान के बाद आज दोनों देश जमीन पर कहां खड़े हैं, किसने किसकी जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। जमीन पर कब्जे की जंग देखें तो रूस यूक्रेन सीमा के काफी अंदर तक घुस चुका है। 2014 से क्रीमिया उसके कब्जे में है, लुहांस्क पर उसका पूरा कंट्रोल है और डोनेत्स्क के बड़े हिस्से समेत प्रोकोव्स्क शहर पर भी रूसी फौज का कब्जा है। यही नहीं, दक्षिण में खेरसोन और ज़ापोरिज़िया के बड़े इलाकों पर भी रूस का ही राज चल रहा है। लेकिन यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजधानी कीव, ओडेसा, लवीव और निप्रो जैसे बड़े शहर आज भी पूरी तरह यूक्रेन के पास सुरक्षित हैं। उत्तर में साल भर चले रूसी हमले को नाकाम करके यूक्रेन की सेना ने कुपियांस्क मोर्चे को मजबूती से थाम रखा है, जबकि डोनेत्स्क के क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क शहरों में यूक्रेन की ऐसी तगड़ी किलेबंदी है जिसे तोड़ना रूसी सेना के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।
1: लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर नहीं हो रही, यूक्रेन ने पासा पलटते हुए रूस के अपने इलाके यानी कुर्स्क में घुसकर उसके सीने पर अपनी चौकियां बना रखी हैं। सुमी और खार्कीव के बॉर्डर पर आज भी ऐसी भीषण आमने सामने की जंग चल रही है जहां दोनों ओर से हर मिनट तोपें गरज रही हैं। लेकिन इस पूरी खूनी बिसात पर सबसे बड़ा खेल खेल रहा है वॉशिंगटन। ट्रंप जो कभी यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर सवाल उठाते थे, आज उनका रुख बदला हुआ दिख रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फ्रांस के G7 समिट में साफ साफ कह दिया कि इस जंग को लेकर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका है। ट्रंप अब जमीन की हकीकत को समझ रहे हैं और वॉशिंगटन इस लड़ाई को रोकने के लिए पर्दे के पीछे से भारी डिप्लोमेटिक प्रेशर बना रहा है।
2: And at this point, do you feel that Vladimir Putin is more responsible for the ongoing conflict in Ukraine?
3: Well, I don't want to comment on that because I'm trying to get it settled, and that doesn't make it easy.
1: अब देखना है कि ट्रंप सिर्फ हमदर्दी जताते हैं या रूस पर दबाव बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या पुतिन इस दबाव में आएंगे? 4 साल की जंग के बाद यूक्रेन को नेटो के सपने की हकीकत भी समझ आ चुकी है।
0: वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

खुलासा नंबर एक, दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती का जिम्मा संभालने वाले दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी गिनती करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। खुलासा नंबर दो, राम मंदिर के आरएमओ यानी रेडियो मॉनिटर ऑफिसर की भूमिका कटघरे में है। आरएमओ के कंधों पर ही सीसीटीवी से निगरानी का काम था। आरोप है चोरी के वक्त सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता था। बड़ी बात यह है कि 17 सालों से आरएमओ सीसीटीवी निगरानी का काम देख रहे थे और सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करते थे। खुलासा नंबर तीन, गेट पास बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले सोमेश आनंद एसआईटी के रडार पर हैं, क्योंकि बिना गेट पास के चढ़ावे की रकम या फिर चढ़ावे के जेवरात राम मंदिर से बाहर नहीं जा सकते थे। आरोप यही है कि सोमेश आनंद ने बिना चेकिंग के चढ़ावे की गाड़ी को मंदिर परिसर से बाहर जाने दिया। सवाल यही है, ऐसा क्यों किया गया। खुलासा नंबर चार, राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी को चढ़ावे की चोरी के पूरे खेल के बारे में पता था, बावजूद इसके थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की जांच में थाना प्रभारी की भूमिका भी शक के घेरे में है। तफ्तीश के बाद ही चढ़ावा चोरी कांड की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, लेकिन आरोपों में घिरे जिम्मेदार खुद को बेदाग बता रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कांड का खुलासा होने के बाद मंदिर में दान करने वाले राम भक्तों ने जिम्मेदारों पर सीधे सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा भी घट गया है। जांच के बीच अब मंदिर आने वाले राम भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आई है। पिछले कई महीनों से हर महीने औसतन 7 करोड़ रुपए के आसपास दान राशि मिल रही थी। पिछले एक पखवाड़े में ये आंकड़ा घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं कर्नाटक की एक श्रद्धालु का आरोप है कि राम मंदिर में कीमती हार दान किया था, लेकिन आज तक उसकी रसीद नहीं मिल पाई है। पता नहीं राम मंदिर में चढ़ाए हार का क्या हुआ। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार यही दावा कर रहा है कि दान में मिली राशि और उसकी गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के चलते राम भक्तों के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उस चढ़ावे को लेकर जो वो राम मंदिर में आस्था के नाम पर दान करते थे। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

दक्षिणी लेबनन के नबातियह में धुएं का गुबार और मौत की चीख, ये तस्वीरें गवाह हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर सिर्फ मौत का तांडव है। फ्रांस के वर्साय में हुए ऐतिहासिक समझौते के बावजूद इजरायली फाइटर जेट्स और ड्रोन्स लेबनन को दहला रहे हैं। दक्षिण लेबनन के नबातियह में इसराइल के ड्रोन ने एक चलती कार को निशाना बनाया। इस हमले में एक मोटरसाइकिल सवार समेत दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में इजरायली एयर स्ट्राइक्स में 16 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया हैरान है कि जब अमेरिका और ईरान युद्ध रोकने पर सहमत हैं, तो इसराइल क्यों नहीं रोक रहा। जवाब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद दिया है। नेतन्याहू का साफ कहना है कि इसराइल लेबनन के सुरक्षा क्षेत्र यानी सिक्योरिटी जोन से अपनी सेना टस से मस नहीं करेगा। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए वो खामोश नहीं बैठेंगे। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्ला भी पीछे नहीं है। पिछले 12 घंटों में हिजबुल्ला ने इजरायली ठिकानों पर ड्रोन्स, रॉकेट्स और आर्टिलरी से भीषण पलटवार किया है। अली अल ताहिर और कंतारा की पहाड़ियों पर हिजबुल्ला ने इजरायली सेना के 4 सैन्य वाहनों और टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। इस खूनी क्लैश में इसराइल के 4 सैनिकों की मौत की खबर है, जिससे तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसराइल के इन हमलों का सबसे बड़ा नुकसान उस शांति डील को हुआ है, जिसे पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से तैयार किया गया था। स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका ईरान की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक बैठक को ईरान ने अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के निर्देश पर ईरानी डेलीगेशन ने स्विट्जरलैंड जाने से मना कर दिया है। ईरान का कहना है कि जब तक लेबनन पर हमले नहीं रुकते, कोई बात नहीं होगी। यहां तक कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की ट्रिप भी अधर में लटक गई है। इस बीच व्हाइट हाउस में हड़कंप है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इसराइल के दक्षिण पंथी मंत्रियों को दो टूक चेतावनी दी है। वैंस ने कहा है कि जो लोग इस डील का विरोध

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली में पश्चिम बंग दिवस समारोह से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, पूछताछ में टिन्नू यादव और चार पुजारियों का गोलमोल बयान। बिहार के आरा एनकाउंटर पर सियासी बवाल के बाद सम्राट सरकार का फैसला, न्यायिक जांच के आदेश जारी, तेजस्वी ने मुठभेड़ को कहा फर्जी। महाराष्ट्र के परभणी में बड़ा हादसा, यशबाड़ी मारुति मंदिर परिसर में निर्माणाधीन मंडप की छत गिरने से 6 लोगों की मौत, पीएम और सीएम ने जताई संवेदना। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हॉर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप।

0: आयो तक पहुंचा देते हैं तो कुछ राजनीतिक परिदृश्य को बदल देते हैं। आज कहानी दल बदलू राजनीति की, जिससे सिर्फ पार्टियों का भविष्य नहीं बदला बल्कि देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित किया।
1: 1969 में जब कांग्रेस के सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी को ही निष्कासित कर दिया था कांग्रेस से, तो कांग्रेस ओ बनी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल और कांग्रेस आर बनी।
2: उन क्षत्रपों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने उस पार्टी को तोड़ा।
1: वर्चस्व की लड़ाई सामने आती है, उसमें फिर क्षेत्रीय जो राजनीति है वो सामने आती है। 1998 में ममता बनर्जी को कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाते हुए देखा और दूसरी ओर पीए संगमा और शरद पवार को एनसीपी का गठन करते हुए देखा।
2: हमारा जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य जो है, वो कहीं का नहीं रहेगा, तो उन्होंने अपने अपने रास्ते अपना लिए।
3: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है।
4: थाली में खाया, उसमें छेद किया,
5: थाली में खाया है ये लोगों ने, थाली में छेद करके चले गए।
0: आम आदमी पार्टी में उठे सवाल अभी थमे भी नहीं थे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस से बगावत के दावों ने सियासी पारा चढ़ा दिया और अब महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए नई चिंता खड़ी कर दी है। सवाल सिर्फ इन पार्टियों का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक प्रवृत्ति का है जो बार बार भारतीय राजनीति का चेहरा ही बदल देती है।
6: टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
5: ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा आप लंगे लगा है।
1: सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
7: ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है।
8: ह्यूमिलिटी, यू नो, ही नेवर टच।
9: तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की, इलेक्शन से पहले करना चाहिए था।
10: ये पार्टी टूट रही है, उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी।
11: विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया।
12: तो पूरा बेईमानी सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये पूरा बेईमानी एक एक वोटर के साथ भी है।
13: कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी।
14: उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है।
15: मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूँ।
16: आपको गाली इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने अपनी पार्टी के साथ, जिसने आपको सब कुछ दिया, आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, वो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे, वरना कोई नहीं पूछता आपको।
17: बस यूं समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति में तूफान आया है, तूफान, और वो भी बिना लहर के। और इस तूफान में नेता सियासत के सूखे हुए पत्ते की तरह उड़ रहे हैं। कौन कब किस पेड़ से टूटकर किस शाख पर जाकर फिट हो जाएगा, विधाता भी नहीं जानते। पहले आम आदमी पार्टी में टूट, फिर तृणमूल कांग्रेस में बगावत, और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर संकट के बादल।
5: संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है। दो दो बार, तीन तीन बार एंट्री बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी।
18: हाँ, वी वांट टू सी इंदिरा गांधी के टाइम से ज्योति बोसु तक, ममता बनर्जी तक जो आवाज उठाया था, दिल्ली नहीं देता है, सेंट्रल नहीं देता है, गरीब को कुछ पैसा नहीं मिलता है, 50 साल एक करके निकाल दिया।
17: भारतीय राजनीति में एक बार फिर दलों के भीतर उठती बगावतें सुर्खियों में। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों और विधायकों के अलग रास्ता पकड़ने के दावों के बीच महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज हो गई है।
19: देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता।
20: विकास साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं अभी तो कानून नंबर सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहां भी एक सुप्रीम कोर्ट पे केस जारी है, तो विशिष्ट गुट को किसी को मान्यता नहीं दी।
21: उद्धव जी ने कहा है कि जिसको जाना है वो तो चले ही जाएंगे, मैं कितना भी प्यार लुटाऊं, कितना भी उनको अपना तन मन धन दे दूं, वो चले ही जाएंगे। एकनाथ शिंदे भी चले गए, लेकिन हाँ समय बदलता है, वक्त आने पर दुनिया हर चीज फिर से घुमा देती है, तो आज आपका वक्त है, कल हमारा भी वक्त हो सकता है।
17: लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि जब भी किसी पार्टी के भीतर नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और सत्ता को लेकर संघर्ष बढ़ा है, तब तब बड़ी राजनीतिक पार्टियां टूटती रही। सबसे ज्यादा टूट का इतिहास कांग्रेस के नाम दर्ज है। 1969 में इंदिरा गांधी और संगठन के नेताओं के बीच संघर्ष ने कांग्रेस को दो हिस्सों में बांट दिया। 1977 में इमरजेंसी के बाद फिर पार्टी में बगावत हुई। आगे चलकर कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP, YSR कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दल निकले, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में बड़ी राजनीतिक ताकत हासिल की।
2: जब कांग्रेस की टूट हुई और इंदिरा गांधी जी ने अलग से बना ली पार्टी, तो उस समय तो वो खुद ही सत्ता का केंद्र थी और उनके समय जो सिंडिकेट थी वो बड़े दिग्गज नेता थे सेंट्रल लीडरशिप की, उनके खिलाफ उन्होंने बगावत की, लड़ाई लड़ी और कांग्रेस को तब भी पता था कि गांधी परिवार ही ध्रुव तारा है इस पार्टी का, तो इंदिरा गांधी के साथ जुड़ गए।
17: जनता दल का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। एक समय केंद्र की सत्ता पर काबिज जनता दल कुछ सालों में कई हिस्सों में बट गया। इसी बिखराव से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेकुलर जैसी पार्टियों का जन्म हुआ। आज कहानी में जानेंगे कि आखिर भारत की कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा टूट फूट देखी है। कांग्रेस से लेकर शिवसेना, NCP और अब TMC तक, आखिर पार्टियों के बिखरने की सबसे बड़ी वजह क्या रही है? क्या भारतीय राजनीति में अब बगावतें अपवाद नहीं बल्कि नया राजनीतिक कल्चर बनती जा रही है?

नमस्कार, मैं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। भारतीय राजनीति में सत्ता की लड़ाई सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि कई बार सबसे बड़ा संघर्ष पार्टी के भीतर ही शुरू हो जाता है। जब महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं, नेतृत्व पर सवाल उठ जाते हैं और भरोसे की दीवारें दरकने लगती हैं, तब राजनीतिक दलों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। कुछ फैसले नेताओं को नई

0: भारतीय राजनीति में कई बार विपक्ष से ज्यादा चुनौती अपने ही घर से आई, और जब बगावत पार्टी के भीतर से उठती है तो उसका असर सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सरकारें गिरती हैं, चुनाव चिन्ह बदलते हैं और पूरी की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल जाती है।
1: शिवसेना एक ऐसी पार्टी जिसकी पहचान बाला साहब ठाकरे और ठाकरे परिवार से जुड़ी रही, लेकिन विडंबना यह है कि इस पार्टी को सबसे बड़े झटके उसके विरोधियों ने नहीं बल्कि उसके अपने नेताओं ने दिए। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? छगन भुजबल से लेकर नारायण राणे, राज ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे तक क्यों पार्टी छोड़कर और तोड़कर चले गए? हर बगावत ने शिवसेना का चेहरा बदला और महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा दी। आज जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में फिर नाराजगी और टूट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो सवाल उठ रहा है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है?

0: जिस पार्टी की पहचान बाला साहब ठाकरे थे, जिस पार्टी का चेहरा ठाकरे परिवार था,
1: दिस इज माय मुंबई एंड वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू कीप इट क्लीन, दैट्स ऑल।
0: जिस पार्टी में कभी बाला साहब का एक इशारा ही अंतिम आदेश माना जाता था।
1: इंग्लिश, मराठी, तमिल, पंजाबी, भांगड़ा खेल सकता हूँ लेकिन बात नहीं कर सकता हूँ।
0: उसी शिवसेना का इतिहास बगावतों, विद्रोहों और टूट की कहानियों से भरा पड़ा है। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी एक बार फिर संकट में दिखाई दे रही है। कुछ सांसद बैठक से गायब हैं, कुछ नेताओं की शिंदे खेमे से नजदीकियों की चर्चा है और सवाल उठ रहा है, क्या शिवसेना में एक और बगावत होने वाली है?
2: संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है, हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, नेचुरल लोग है, 70-70 साल के लोग है, दो दो बार, तीन तीन बार एंट्री बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा।
0: लेकिन ये पहली बार नहीं है। शिवसेना की राजनीति में बगावत कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 दशकों में पार्टी कई बार टूटी, कई बड़े नेताओं ने विद्रोह किया और हर बार पार्टी का चेहरा बदल गया।

0: कहानी शुरू होती है 1991 से। बाला साहब ठाकरे का दौर था। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र तक शिवसेना का दबदबा बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान पार्टी के बड़े चेहरे छगन भुजबल ने बगावत कर दी। ये बाला साहब ठाकरे के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती थी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। नारायण राणे शिवसेना के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन जैसे जैसे उद्धव ठाकरे का कद बढ़ने लगा, राणे और नेतृत्व के बीच दूरियां भी बढ़ती गईं। राणे खुलकर नाराजगी जताने लगे, आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ लोगों का दबदबा बढ़ गया है। आखिरकार उन्होंने शिवसेना छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए।
1: शिवसेना में इतने साल आपने गुजारे, शिवसेना से आपको मुख्यमंत्री पद मिला, कांग्रेस में आपको लगा कि आपको मुख्यमंत्री पद मिलेगा, आपको वादा भी किया गया था, मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया। शिवसेना और कांग्रेस में आपको क्या फर्क लगता है?
2: फर्क तो काफी है, आइडियोलॉजी में है,
1: वादा पालने में है,
2: सब में काफी फर्क है, मगर दोनों में आइडियोलॉजी फर्क है तो बाकी सब में तो फर्क आ ही जाएगा। और शिवसेना खाली महाराष्ट्र के लिए छोटी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, 129 साल पुरानी पार्टी है, तो दोनों के बारे में तजुर्बे जो है अलग अलग हैं।
0: ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, बल्कि शिवसेना की ताकत में बड़ी सेंध थी। लेकिन 2006 में जो हुआ उसने महाराष्ट्र की राजनीति ही बदल दी। ये बगावत किसी बाहरी नेता ने नहीं बल्कि ठाकरे परिवार के भीतर से हुई। बाला साहब ठाकरे के भतीजे तेज तर्रार वक्ता, आक्रामक शैली और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता। एक समय राज ठाकरे को बाला साहब का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन जब पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में जाने लगी तो राज ठाकरे खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। नाराजगी बढ़ी और आखिरकार राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का जन्म हुआ।
3: सरल प्रश्न है कि राज ठाकरे ने घेतलेला निर्णय योग्य होता का अयोग्य होता हे फक्त बाळासाहेबने सांगा। अयोग्य होता तर तो माणूस अजून तिकडे का, आणि योग्य होता तर मग माझे दुसरे निर्णय कसे काय चुकले?
4: शिवसैनिकों को अपने धंधे, अपने बिजनेस, अपने कॉरपोरेशंस के लिए एक ताकत की जरूरत थी, सत्ता की शक्ति की जरूरत थी, तो वहां पर टूटी। पहले एकनाथ शिंदे साहब ने टूटा, आदित्य ठाकरे की वजह से वहां पर परिवारवाद महत्वपूर्ण रहा।
0: ये शिवसेना के इतिहास की सबसे चर्चित और सबसे भावनात्मक बगावत थी, क्योंकि पहली बार ठाकरे परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। बाला साहब के रहते हुए पार्टी हर संकट से निकलती रही, लेकिन 2012 में उनके निधन के बाद हालात बदल गए। उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली, शिवसेना सत्ता में भी पहुंची, लेकिन अंदरूनी मतभेद लगातार बढ़ते रहे। और फिर आया 2022, वो साल जिसने शिवसेना की पहचान ही बदल दी।
5: हम लोगों ने कौन सा दूसरा रास्ता अपनाया है? हम लोगों ने वही रास्ता अपनाया है जो पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति थी, अलायंस था। हम लोग चुनाव लड़े अलायंस में, और आज हमारा जो शिवसेना गठ है

0: लेजिस्लेटर पार्टी शिवसेना है और निश्चित रूप से हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक मजबूत सरकार यहां पर बना रहे, हम लोगों ने ऐसा कोई भी दूसरा गलत कदम नहीं उठाया है।
1: शिवसेना नाव चोरलं तरी ठाकरे नाव नाही चोरू शकत, त्याच्यामुळे एका गोष्टीत तर मी नक्कीच भाग्यवान आहे की मी बाळासाहेबांच्या आणि माच्या पोटी जन्माला आलो। ते भाग्य काही त्यांना मिळालेलं नाही आणि ते भाग्य त्यांना दिल्लीवाले काही देऊ शकत नाही।
2: 2019 में बीजेपी से अलग होकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी, लेकिन पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग इस फैसले से खुश नहीं था। इस नाराजगी का चेहरा बने एकनाथ शिंदे। जून 2022 में शिंदे ने बगावत का झंडा उठा लिया।
3: शिवसेना को तोड़ा एकनाथ शिंदे ने और सरकार बनाने के लिए, क्योंकि उस समय वो सरकार चल रही थी, उस सरकार को गिराया। यूबीटी जो उद्धव ठाकरे साहब है उनकी और कांग्रेस की जो सरकार चल रही थी उसको गिराया शरद पवार की पार्टी के साथ, और एकनाथ शिंदे ने अपना गुट बनाकर नई सरकार बना ली। लेकिन अब उसके बाद से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ाई नहीं लड़ पाई, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी नहीं लड़ पाए, और लगातार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी बहुत अच्छे तरह से प्रदर्शन नहीं हुआ, और लोगों को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे का जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो कमजोर होती जा रही है, और आदित्य ठाकरे भी उस तरह से नहीं संभाल पा रहे जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया, तो वो एक बड़ी वजह रही। और अब जब ये मौका आया कि जिस तरह से टूट हुई है, तो उनको लग रहा था कि अब उनका भविष्य किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है।
2: एक एक कर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ते गए, देखते ही देखते शिवसेना के ज्यादातर विधायक शिंदे के साथ चले गए, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, इसके बाद शुरू हुई असली लड़ाई। कौन असली शिवसेना, किसके पास है बाला साहेब की विरासत, मामला चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आखिरकार चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना और पार्टी का पारंपरिक चुनाव चिन्ह दे दिया। उद्धव ठाकरे को नई पहचान के साथ शिवसेना यूबीटी बनानी पड़ी।
4: केशव ठाकरे,
2: यानी जिस पार्टी को बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था वो आधिकारिक तौर पर दो हिस्सों में बट चुकी थी, लेकिन अब 2026 में एक बार फिर सियासी हलचल तेज है। शिवसेना का इतिहास बताता है कि इस पार्टी को सबसे ज्यादा चुनौती विपक्ष ने नहीं दी है, सबसे बड़े झटके पार्टी को उसके अपने नेताओं ने दिए हैं, और हर बगावत ने शिवसेना को बदला है। ये कैसी कहानी है जो बार बार दोहराई जाती रही है।
5: वक्त है छोटे से ब्रेक का, उजला ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कांग्रेस में दल बदलू राजनीति की क्या है कहानी। देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
7: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
8: Right field, and it will...
7: From the first pitch of the season to the stretch run.
8: And that's the ball game.
7: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
10: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.

0: शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
1: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
2: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
3: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
2: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी बाइक के साथ? आई चैलेंज यू बजीपा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पट खांड से और आप इतना कमा रहे, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 समिट के दौरान शांति समझौते के MOU पर साइन किए। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने पीस डील के MOU पर दस्तखत किए, लेकिन जिस वक्त MOU पर साइन हुए उस वक्त ईरानी राष्ट्रपति अकेले थे। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। डील पर दस्तखत हो गए, लेकिन अब शांति समझौते के MOU पर ईरान क्यों और कैसे राजी हुआ, इसका खुलासा ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई ने किया। पीस डील पर पहली बार मुज्तबा खामिनई ने बयान दिया है। ईरान अमेरिका शांति समझौते को लेकर मुज्तबा खामिनई ने 5 बड़ी बातें कही। नंबर 1, ईरान बात करेगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। नंबर 2, शांति समझौते के मसौदे से सहमत नहीं था। नंबर 3, ईरानी राष्ट्रपति के कहने पर मंजूरी दी। नंबर 4, ट्रंप शांति समझौते के लिए बहुत बेचैन थे। नंबर 5, अंतिम समझौता भी ईरान की शर्तों पर होगा। दरअसल शांति समझौते को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई के इस बयान के 3 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, अमेरिका के साथ पीस डील को लेकर ईरान में विरोध की आवाज को शांत करना। दूसरा, अमेरिका के साथ आगे की बातचीत के लिए जमीन तैयार करना। तीसरा, अगर अमेरिका के साथ हुआ शांति समझौता रद्द होता है तो ठीक रहा ईरान के राष्ट्रपति के सिर फोड़ना, क्योंकि ईरानी सेना और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति और नियत पर भरोसा नहीं है। मुज्तबा का बयान उस वक्त आया है जब शांति समझौते के बाद भी ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। मतलब यही है कि ट्रंप दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि डील अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की मजबूरी थी।
1: If they don't, then that's, you know, that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We have the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams, Steely Dan, Loggins & Messina, much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
3: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मार मार के यहाँ बिठाया हुआ।
2: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
4: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1 लाख रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1 लाख रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
2: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
5: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
2: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: कभी वामपंथ के मजबूत गढ़ को ढाकर सत्ता तक पहुंचने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने घर में सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। चुनावी हार के बाद से शुरू हुआ असंतोष खुली बगावत में बदल गया है। पार्टी के कई सांसद और विधायकों ने नेतृत्व पर सवाल उठाए और वरिष्ठ नेता भी बागी खेमे के साथ खड़े हो गए।

0: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे।
1: हम लोगों का जो सोच है, पार्टी का चलने का जो सोच है और जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का बनाया हुआ है उसके अंदर आके जाकर काम करेंगे तो जरूर मार्च होंगे।
2: भी हमको मदद मांगेगा, हम देगा मदद, वो हमको उसको मदद जरूर पर हम लेगा, एक साथ करेगा।
3: इनका यह अस्तित्व बन चुका है, इनकी हालत खराब हो चुकी है, इनको टीएमसी के घर से तो निकाल लिया बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी के दरवाजे में घुसने नहीं दिया।
4: जिस तृणमूल कांग्रेस ने कभी वामपंथ के 34 साल पुराने किले को ढहा दिया था, आज उसी पार्टी के भीतर बगावत की गूंज सुनाई दे रही है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या टीएमसी में ममता बनर्जी अब सिर्फ सलाहकार की भूमिका में होंगी? क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकलने वाली है?
5: इस तरह से आप अलग जुट लोकसभा के अंदर नहीं बना सकते, ये गैर संवैधानिक है।
6: थाली में खाया उसमें छेद किया।
4: पहले 19 सांसदों की चिट्ठी सामने आई और अब दावा किया जा रहा है कि 22 तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद और दिल्ली में टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा सुदीप बंदोपाध्याय भी अब बागी खेमे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। टीएमसी के भीतर शुरू हुई नाराजगी अब खुली लड़ाई में बदलती दिख रही है। बागी गुट अब संसद में अलग पहचान की मांग करने की तैयारी में है।
7: सात आठ दिन में ये पूरा दल जो है उसका हाथ से निकल ही गया और पूरा की पूरा निकल जाएगा। उसका प्रतीक चिन्ह जो है ये चुनाव सिंबल वो भी निकल जाएगा।
4: सबसे दिलचस्प बात यह है कि बागी नेता सीधे सीधे ममता बनर्जी को हटाने की बात नहीं कर रहे। बागी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी पार्टी की मार्गदर्शक बनी रहे, लेकिन संगठन और संसदीय दल की कमान नए नेतृत्व को सौंप दी जाए। यानी लड़ाई नेतृत्व की भूमिका और पार्टी के नियंत्रण को लेकर है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद से ही पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ने लगा है। पहले कुछ विधायकों ने नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला, फिर विधानसभा में अलग शक्ति केंद्र बनने की कोशिश शुरू हुई और अब सांसदों का बड़ा तबका भी खुलकर सामने आ गया है।
8: स्थिति देके आ गया, वो एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।
2: नया जो खेला शुरू हुआ है, हम ज्वाइंट गवर्नमेंट मीन्स हमारा डबल इंजन का सरकार एक साथ मिलके कांधा में कांधा मिला के काम करने चाहते
9: हैं। मिलके डेवलपमेंट के साथ ही रहेंगे तो बंगाल के कलकत्ता की उन्नति जरूर होगी।
10: यहाँ का जो माहौल था उसके खिलाफ जो शिकायत लेके हम लोग जा रहे हैं, हमारा डिमांड क्या होगा? डिमांड देश का अच्छा करना, देश के लिए काम करना।
4: सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि टीएमसी में बगावत हुई है या नहीं, सवाल ये है क्या ममता बनर्जी इस संकट से उबर पाएंगी? क्या पार्टी फिर एकजुट होगी या फिर शिवसेना और एनसीपी की तरह तृणमूल कांग्रेस भी एक बड़े विभाजन की कहानी लिखने जा रही है?

कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसने दशकों तक देश पर शासन किया, लेकिन सबसे ज्यादा बगावतें और टूट भी यही देखी गई। 140 साल के इतिहास में कांग्रेस सिर्फ चुनावी जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि विद्रोह, असहमति और नए राजनीतिक दलों के जन्म की कहानी है।

देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी और भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा टूट, बगावत और विद्रोह झेलने वाली पार्टी कांग्रेस। आज जब तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी या दूसरी पार्टियों में टूट की चर्चा होती है तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं कांग्रेस के इतिहास में दिखाई देती है।

0: भारतीय राजनीति में अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा बगावतें देखी हैं, तो वो है कांग्रेस। 1885 से लेकर 2025 तक कांग्रेस का इतिहास सिर्फ चुनावी जीत हार का इतिहास नहीं है, बल्कि बगावत, विद्रोह, टूट और नई राजनीतिक ताकतों के जन्म की कहानी भी है। कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1885 से, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1907 में पहली बार पार्टी के भीतर बड़ा वैचारिक संघर्ष सामने आया।
1: 1907 में नरम दल के नेता और गरम दल के नेताओं के बीच में विचारधारा को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें जो गरम दल के नेता थे जैसे लोकमान्य तिलक, वे उग्र तरीकों से भारत को स्वतंत्रता दिलवाना चाहते थे, लेकिन जो नरम दल के नेता थे जैसे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी बहुत शांतिपूर्ण और अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन तब विचारधारा के संघर्ष के आगे वर्चस्व की लड़ाई टिक नहीं पाती थी। तो होता यह था कि ये लोग लड़ते थे, लेकिन 1907 में भी जैसे विभाजन हुआ कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में, तो वो लखनऊ अधिवेशन में जाकर के एक हो गए।
0: 1939 में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी और संगठन के साथ उनका टकराव बढ़ता गया। आखिरकार बोस ने इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया। ये कांग्रेस के इतिहास की सबसे चर्चित वैचारिक बगावतों में से एक थी।
1: साबित करने के लिए मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया था। और यह हमने कांग्रेस के इतिहास में देखा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत ज्यादा तरजीह दी नहीं जाती। तो हुआ क्या कि इसके बाद गांधी जी नाराज हो गए, उन्होंने इसे अपना अपमान बताया, और इसके बाद जो कांग्रेस के बाकी के नेता थे उन्होंने कन्विंस किया सुभाष चंद्र बोस को, और फिर पंत जी को, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया।
0: आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन अंदरूनी असंतोष भी बढ़ रहा था। 1951 में आचार्य जेबी कृपलानी ने कांग्रेस छोड़कर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। 1950 से 1960 के दशक में कई राज्यों में कांग्रेस से असंतुष्ट नेताओं ने अलग अलग राजनीतिक दल बनाए। केरल कांग्रेस, ओडिशा जन कांग्रेस और भारतीय क्रांति दल जैसी पार्टियां इसी दौर में पैदा हुई। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक टूट 1969 में हुई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस संगठन आमने सामने आ गए। इंदिरा गांधी ने पार्टी लाइन से अलग जाकर वीवी गिरी का समर्थन किया, जबकि संगठन ने नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था। विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और दूसरी तरफ कामराज, मुरारजी देसाई और एस निजलिंगप्पा जैसे नेताओं की कांग्रेस को। यह सिर्फ संगठनात्मक विभाजन नहीं था, बल्कि कांग्रेस के भीतर सत्ता बनाम संगठन की लड़ाई थी। इंदिरा गांधी का कद सिर्फ जनता के बीच ही ज्यादा लोकप्रिय नहीं था, संगठन के बीच भी था, लिहाजा कांग्रेस आर मुख्य कांग्रेस बन गई।
1: 1969 में जब इंदिरा गांधी जी को निष्कासित कर दिया गया, इसके बाद कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी। 1977 में फिर लोकसभा चुनाव जब हुए तो इसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1978 में जो कांग्रेस आर थी उसको इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाया, यानी कि कांग्रेस इंदिरा। और इसके बाद से लगातार हमने देखा कि जिन प्रारंभिक मूल्यों पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिन वैचारिक मूल्यों पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे एक शिफ्ट लेते हुए इस पार्टी में फिर हमने एक परिवार को केंद्र में आते हुए देखा।
0: 1977 में इमरजेंसी की हार के बाद कांग्रेस में फिर भूचाल आया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का विरोध किया। जवाब में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई और यही कांग्रेस आई बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में स्थापित हुई। इस दौर में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी बदलकर पंजा हो गया। 1980 का दशक कांग्रेस के भीतर लगातार असंतोष का दशक रहा। 1990 का दशक कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। यही वो दौर था जब कांग्रेस से निकलने वाली पार्टियां आगे चलकर क्षेत्रीय राजनीति की बड़ी ताकत बन गईं।
1: अब जब हम इन क्षेत्रीय पार्टियों को देखते हैं तो एक तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ना होना, सभी नेताओं की बराबर स्तर पर बात को ना सुना जाना, ये कांग्रेस पार्टी में हम अमूमन देखते हैं। इसके अलावा उनके जो अपने रीजनल इंटरेस्ट्स थे, जब उनकी अनदेखी की गई, जैसे कि बंगाल में, जैसे कि महाराष्ट्र में, जैसे कि हम जाकर के तेलंगाना या आंध्रा में देखते हैं, तो फिर इन नेताओं को लगा कि हमारा एक बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट में बिठाए रखने का है या चुनाव जितवाने में है, तो फिर हम अपनी पार्टी क्यों ना बना लें। तो फिर एक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं वैचारिक संघर्ष का, वीजावी एक वर्चस्व की लड़ाई का, और अपनी अपने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको एक मुख्य पटल पर लाने का। तो यही कारण है कि ये तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं ये कांग्रेस से अलग हुए।
0: 1996 में माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई। 1997-98 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। बंगाल में कांग्रेस की कमजोर रणनीति और वामपंथियों के खिलाफ आक्रामक लड़ाई की जरूरत को ममता बनर्जी अलग पार्टी बनाने की वजह बता रही थी, लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद खुद संकट में है। फिर आया 1999, ये कांग्रेस के इतिहास की सबसे चर्चित बगावतों में से एक थी। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर ने खुलकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता माना और तीनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का जन्म हुआ और महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी कांग्रेस की बराबरी की ताकत नहीं, एक बड़ी ताकत बन गई। लेकिन कांग्रेस में बगावत हमेशा बरकरार रही। 2011 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़कर वाईएसआर कांग्रेस बनाई। उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन उनके मौत के बाद नेतृत्व को लेकर विवाद बढ़ गया। जगनमोहन रेड्डी ने अलग पार्टी बनाई और कुछ ही सालों में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का लगभग सफाया कर दिया। 2014 में नल्लारी किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ी। 2016 में अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाई। 2021 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस बनाई। उनका आरोप था कि पार्टी नेतृत्व राज्य की राजनीति को समझने में विफल रहा है। 2022 में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी। आजाद ने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए और बाद में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का गठन किया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस से निकलने वाली कई पार्टियां बाद में कांग्रेस के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस की जगह ले ली। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ने कांग्रेस का जनाधार खत्म कर दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस की बराबरी की शक्ति बन गई। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कई राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस के वोट बैंक पर खड़े हुए। यानी कांग्रेस का इतिहास सिर्फ एक राजनीतिक दल का इतिहास नहीं है, ये महत्वाकांक्षाओं, वैचारिक संघर्षों, नेतृत्व की लड़ाइयों और सत्ता के समीकरणों का इतिहास है। 140 साल की यात्रा में कांग्रेस जितनी बार टूटी उतनी बार भारतीय राजनीति का नक्शा भी बदला। और यही वजह है कि जब भी देश में किसी पार्टी में बगावत की चर्चा होती है तो सबसे पहले कांग्रेस का इतिहास याद आता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में टूट की सबसे लंबी कहानी अगर किसी पार्टी ने लिखी है तो वो कांग्रेस ही है।
2: एक दौर था जब जनता दल कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक विकल्प बनकर उभरा था। वीपी सिंह की अगुवाई में ये पार्टी केंद्र की सत्ता तक पहुंची, लेकिन सत्ता के शिखर पर पहुंचते ही भीतर की खींचतान शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि जनता दल का कुनबा लगातार बिखरता चला गया। कोई नेतृत्व से नाराज होकर अलग हो गया तो किसी ने क्षेत्रीय राजनीति की नई जमीन तलाश ली। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और जेडीएस जैसी कई बड़ी पार्टियां इसी बिखराव की कहानी से निकली।
0: भारतीय राजनीति में अगर किसी पार्टी के टूटने से सबसे ज्यादा नई पार्टियां पैदा हुई तो वो जनता दल था। एक समय देश की सत्ता पर काबिज जनता दल कुछ ही सालों में इतने हिस्सों में बट गया कि उससे निकली पार्टियों ने अलग अलग राज्यों की राजनीति का नक्शा बदल दिया। कहानी शुरू होती है 1988 से, जब पुरानी जनता पार्टी के अलग अलग धड़े लोकदल, कांग्रेस और लोक मोर्चा एक साथ आए और जनता दल का गठन हुआ। लक्ष्य था कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत राष्ट्रीय विकल्प खड़ा करना।
3: जनता दल की कहानी अलग ही है। जनता दल कौन है? जनता दल को समझना चाहिए, जब से जनता दल बना वो समाजवादियों का गुट है। हिंदुस्तान में दो तरह की विचारधारा रही, एक कांग्रेस की विचारधारा है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणपंथी विचारधारा, और इन दोनों के बीच में जो लोग हैं वो है समाजवादी लोग। समाजवादी लोग एक तो बड़ा कन्फ्यूज रहा है, शुरुआती दौर में वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए वो उन्होंने मजबूती की, लेकिन जब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे तब उनको बाद में समझ में आया कि कांग्रेस ही सबसे मजबूत है।
0: 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने शानदार प्रदर्शन किया और विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने।
4: विश्वनाथ प्रताप सिंह, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
5: सच्ची श्रद्धा और
0: लेकिन सत्ता मिलने के साथ ही पार्टी के भीतर नेतृत्व की लड़ाई भी शुरू हो गई। वीपी सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल जैसे दिग्गज नेताओं के बीच मतभेद लगातार बढ़ते रहे। आखिरकार 1990 में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसी उथल पुथल के बीच चंद्रशेखर लगभग 60 सांसदों को साथ लेकर अलग हो गए और समाजवादी जनता पार्टी का गठन कर दिया। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जनता दल का बिखराव थमने के बजाय और तेज हो गया। 1992 में चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पार्टी आगे चलकर एक बड़ी ताकत बन गई। 1994 में बिहार की राजनीति में भी विद्रोह हुआ। नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस समेत कई नेताओं ने लालू प्रसाद के नेतृत्व का विरोध करते हुए समता पार्टी का गठन कर दिया। फिर 1997 में चारा घोटाले के दबाव के बीच लालू प्रसाद यादव ने जनता दल छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी बना ली। 1999 में जनता दल को दो और बड़े झटके लगे। एचडी देवगौड़ा ने जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस बनाई, जबकि शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अस्तित्व में आया।
3: वहाँ बड़े बड़े लीडर थे, लालू यादव थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मधु लिमये थे, शरद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे। उनकी सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और उन महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ वो शत्रप भी थे अपने अपने इलाकों में। जैसे लालू यादव बिहार में थे, शरद यादव बिहार में मजबूत नेता थे, नीतीश कुमार जी वहां पर उनके साथ थे, और इधर मुलायम सिंह यादव थे। तो उन क्षत्रपों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने उस पार्टी को तोड़ा। विचारधारा के तौर पर देखें तो वो आज भी समाजवादी हैं, विचारधारा में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन उनको लगा कि जहां जहां पर वो सत्ता में हिस्सेदार हो सकते हैं, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, जिस कांग्रेस से लड़ाई लड़ी वहां लालू यादव भी कांग्रेस के साथ हुए, मुलायम सिंह जी भी कांग्रेस के साथ हुए, और नीतीश कुमार जी भी कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन अब उनको लगा कि कांग्रेस के साथ नहीं चल सकते, तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। लेकिन समाजवादी पार्टी और आरजेडी वो अब भी कांग्रेस के साथ इस सत्ता की लड़ाई को लड़ रहे। विचारधारा वैसे भी जनता दल का कोई मूल या कोर विषय नहीं रहा।
0: 2003 में समता पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया और नीतीश कुमार इस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। यानी जनता दल सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, बल्कि कई राजनीतिक दलों की जननी बन गई। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और जेडीएस जैसी पार्टियां आज भी भारतीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं। लेकिन इन सब की जड़ें उसी जनता दल में हैं, जो कभी देश की सत्ता का केंद्र था और फिर लगातार बगावतों का शिकार होकर इतिहास का हिस्सा बन गया।
2: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: समाजवादी पार्टी में टूट की सियासत अब महिलाओं के अपमान तक पहुंच चुकी है। पीडीए के कार्यक्रम में नजरअंदाज किए जाने पर एसपी सांसद रुचि वीरा भी अब भड़की नजर आ रही हैं।
1: लेकिन हमारे यहाँ एक नेता है जो महिला विरोधी में जान पड़ते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को मोहरा बनाकर मेरी जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया गया या जो मुझे मेरा अपमान करने की कोशिश की, तो मैं उसके बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगी।
0: रुचि वीरा के गुस्से की इसी चिंगारी को राजभर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक से अब हर कोई दूर है। पार्टी तो टूटेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के शिव चाचा हकीकत बनाएंगे।
1: जो राजभर जी हैं उनको मैं बताना ये चाहती हूँ, ना मेरी पार्टी में कोई महिलाओं के सम्मान में कमी है, ना मेरी पार्टी में कोई तोड़फोड़ है, ना कोई अंदरूनी कलह है। एक व्यक्ति सारी पार्टी का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
0: एनडीए के दल लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दम भर रहे हैं तो एसपी नेता इसे एक सियासी हथकंडा बता रहे हैं।
2: लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता।
3: कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे।
0: अब सवाल ये कि आखिर ये नटकलों का सच क्या है? क्या समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी और शिवसेना जैसा होने वाला है या फिर 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक सियासी हथकंडा साबित होगा? आज तक ब्यूरो।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोलकाता में योगासन करेंगे पीएम मोदी। आपकी बार थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, लगातार 6 दिन से जांच जारी। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा, 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा, एक दिन पहले मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हुर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज योग दिवस पर कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बनेगा रिकॉर्ड, 35 से 40 हजार लोग शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हावड़ा ब्रिज पर भव्य सजावट, शानदार रोशनी, लेजर शो और साउंड शो ने जीता दिन। आज अहमदाबाद में योग दिवस में हिस्सा लेंगे गृहमंत्री शाह, सुबह 7 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत। योग दिवस में झांसी में आज मुख्यमंत्री योगी करेंगे योग, लखनऊ के लोक भवन में सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। INS-7 वाहन में अंडर वाटर योग का अनोखा प्रदर्शन, भारतीय नौसेना का पानी के भीतर योग, दिखी अद्भुत फिटनेस। अमरावती के पुलिस कांस्टेबल ने पानी के भीतर रचा इतिहास, 11 फीट गहरे पानी में 1 घंटे तक स्थिर रहे प्रवीण आकरे। श्रीनगर की पोखरीबल झील में खिलाड़ियों ने फ्लोटिंग योगा का अभ्यास किया और प्रदर्शन दिखेगा आज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत में रूसी राजदूत ने अपने परिसर में योग सत्र का आयोजन किया, फिटनेस का संदेश दिया। दिल्ली के एम्स में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और जुम्बा सत्र का आयोजन, लोगों की उमड़ी भीड़। पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस पर पीएम मोदी बोले कि लग रहा है बंगाल बीड़ियों से आजाद हो गया है और टीएमसी के गड्ढे भरने का काम शुरू। बंगाल में घुसपैठियों पर टीएमसी को प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर घेरा, बोले कि संसाधनों पर घुसपैठी हावी थे, अब सीमा पर फेंसिंग का काम जारी है। मयूरभंज में पीएम मोदी ने ओडिशा में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बयान दिया, डबल इंजन की सरकार में ओडिशा का विकास, लोकतंत्र के विकास का चल रहा उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गृह जिले मयूरभंज में आयोजित किया गया विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम, पीएम मोदी ने आदिवासियों के विकास पर दिया जोर। मालदा के सुखदेवपुर इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे लोगों को रोका गया, बीएसएफ ने बांग्लादेशियों को घुसपैठ करने से रोका, बौखलाया बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। आज देशभर में नीट रीटेस्ट, 22 लाख से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की उम्मीद। नीट यूजी के लिए एनटीए पूरी तरह तैयार, 1,38,000 सीसीटीवी कैमरा और 51,000 जैमर के साथ परीक्षा। देश के पास 51 शहरों में 5,440 परीक्षा केंद्रों और विदेशों के 14 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा, अंग्रेजी समेत 12 भारतीय भाषाओं में एग्जाम। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस, अर्धसैनिक बल और वायुसेना भी शामिल, परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकारों जिला प्रशासन को भी सौंपी गई जिम्मेदारी। नीट की परीक्षा पहले राहुल गांधी बयान, उम्मीद है कि किसी बच्चे की उम्मीद न टूटे। अयोध्या में एसआईटी की 7वें दिन भी जांच जारी, चंपत राय के टिन्नू यादव की जिम्मेदारियों का खुलासा, टिन्नू के पास से देखरेख का सारा जिम्मा था। चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी एसआईटी कर रहे चरण पादुका, बहुमूल्य हार की तलाश, सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। राम मंदिर में दान राशि और चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों पर बीजेपी नेता विनय कटियार ने चंपत राय को बताया जिम्मेदार, कहा कि चंपत राय को तो पद से तत्काल बर्खास्त करना पड़ेगा। झांसी में सीएम योगी बोले कि यूपी में माफिया की टूटी कमर, मिट्टी में मिल गए हैं माफिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का बुंदेलखंड के ललितपुर जिले का दौरा, 1766 करोड़ की सौगात। कोल्हापुर में बोले गृहमंत्री अमित शाह कि अब शिवसेना का कोई गुट नहीं, महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही शिवसेना। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को चेतावनी दे, कहा कि मामला और न गरमाए, महायुति गठबंधन टूट है। उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसदों के बागी होने पर राज ठाकरे ने नैतिकता का उठाया सवाल, नेताओं के बार बार दल बदलने की आलोचना की। पूर्व कांग्रेस नेता पवन राजे ने बालकर मर्डर केस में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के भाई पद्म सिंह पाटिल समेत 8 आरोपी बरी, 2006 की मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पवन राजे और उनके ड्राइवर की गोली मारकर हत्या हो गई। महाराष्ट्र के परभणी में मारुति मंदिर में हादसा, छत गिरने से 6 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने और सीएम ने जताया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, स्वर्ण मंदिर में टेका माथा अरदास की। आज जेडीयू नेशनल काउंसिल की बैठक, बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद जेडीयू की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे नीतीश कुमार। बिहार के आरा में एनकाउंटर पर सियासी बवाल के बाद सम्राट सरकार का फैसला, न्यायिक जांच के आदेश जारी, एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव का बयान, पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया, कई बार जाति देखकर एनकाउंटर। बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी, 2027 अभ्यर्थी पास, यूपी की श्रद्धा पांडे ने टॉप किया। किसानों को मोदी सरकार की तरफ से स्वागत, पीएम मोदी ने जारी किया पीएम किसान की 23वीं किश्त, 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर। IAS दूनागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक होंगे नौसेना में शामिल, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तीनों युद्ध पोतों का कमिश्निंग। शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के जवानों से की मुलाकात, राजनाथ सिंह ने वायु सैनिकों के साथ स्नैक्स। जमुई में 581 बेटियां बनी बिहार पुलिस के सिपाही, पासिंग आउट परेड में दिखा बिहार की नवनियुक्त महिला पुलिस के जवानों का जोश।
मुंबई में सांसद सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में जुटे खास मेहमान, रेवती सुले के विवाह समारोह में शानदार रौनक दिखी। चेन्नई वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीती है। पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम पूरी 218 रन ही बना पाए, भारत ने 28.4 ओवर में 1 विकेट खोकर 224 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 102 रन बनाए, रोहित शर्मा ने खेली 79 रनों की पारी। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 23 रन देकर 5 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच भी गए। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्ला शाहिद ने 102 रन की पारी खेली, हालांकि पारी हुई बेकार, अजमतुल्ला उमर जैन ने 50 रन बनाए। एमपी के श्योपुर में शमशान भूमि पर कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर रखा शव, 4 घंटे तक सड़क पर लगाया जाम। यूपी के मऊ में ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, सड़क हादसे में महिला की मौत पर हंगामा। धौलपुर में 2 नाबालिग जुड़वा बहनों की मौत के मामले में पुलिस की जांच तेज, चंबल नदी में भी चलाया गया सर्च ऑपरेशन। लोहरदगा में दर्दनाक सड़क हादसे, ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार 2 सगी बहनों और भाई की मौत। 12 हाईवे 4 लेन पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराई कार, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर में सोशल मीडिया पर चाकू लहराने वाला बदमाश गिरफ्तार, वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई जारी। अकोला के राजू नगर में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, 5 गाड़ियां दमकल की पहुंची, आग बुझाई। जामनगर में फिर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, औद्योगिक क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला। ग्रेटर नोएडा में 2 दिन पहले ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर डंपर से तांडव मचाने वाला चालक गिरफ्तार, वीडियो हुआ था वायरल। पटना के बेऊर जेल में छापेमारी, जेल में अचानक छापेमारी से हड़कंप भी मचा। जोधपुर फायरिंग केस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की हिरासत में लिया, 6 की तलाश जारी। रेवाड़ी में युवकों ने महिला को सम्मोहित करके कुंडल निकलवा दिए, वारदात सीसीटीवी में कैद। फरीदकोट में अर्श डल्ला गैंग के 2 गुर्ग गिरफ्तार और 2 विदेशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस बरामद। हैदराबाद में व्यक्ति को कोबरा सांप के साथ खिलवाड़ करना पड़ा, भारी रेस्क्यू के दौरान सांप ने काट दिया, अस्पताल में मौत। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 10 लोग गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद। सीज फायर को लेकर बड़ा झटका लगा है ईरान ने, फिर से बंद किया होर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप। दक्षिणी लेबनान में नहीं दिख रहा है सीज फायर का कोई भी असर, शनिवार को इजरायली हवाई हमलों में 10 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। सीज फायर के बावजूद गजा में फिर से इजरायल ने जबरदस्त हमला किया, शनिवार को 2 बजे इसमें गजा पट्टी में एक अपार्टमेंट को टारगेट किया गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत। रूस ने एक बार फिर से गाइडेड मिसाइल से यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बमबारी की, रूसी हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, 1 की मौत। रूस यूक्रेन में आतंकवाद के जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, ट्रंप ने कहा कि युद्ध को खत्म करने की कोशिश चल रही है। ट्रंप मेलोनी के बीच में फोटो खिंचवाने के मामले में अब तूल पकड़ लिया, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी का अमेरिका का दौरा रद्द, ताजानी ने कहा कि पीएम का अपमान इटली का अपमान। बोलीविया में राजनीतिक आर्थिक संकट के बीच में राष्ट्रपति रोड्रिगो पास ने घोषित किया आपातकाल, राजधानी लापास समेत कई संवेदनशील इलाकों में सेना की अब तैनाती। ऑस्ट्रेलिया में H5N1 बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद सरकार अलर्ट पर, बर्ड फ्लू से निपटने की जांच भी तेज। वॉशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक रिफ्लेक्टिंग पूल को फिर से संवारा जाएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख में भीषण तूफान से जनजीवन प्रभावित, तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते नुकसान, 7 लोग घायल।

0: अब बात राम मंदिर की, जहां पर दान चोरी की जांच के बीच में अब आभूषणों के गायब होने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी की टीम कर रही है।
1: दान के पैसों के हेरफेर के बीच अब आभूषण की हेराफेरी का दावा भी किया जा रहा है।
2: ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए, तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: तो ये देखिए, रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के चार पुजारियों से पूछताछ की गई, जहां से ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है।
4: दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहां गया? क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया? तो अब वो एसआईटी उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये गुप्त दान था, इन सबका रिकॉर्ड कहां है?
1: श्रद्धालु परिवार का कहना है कि उन्हें रामलला पर हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह फोटो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: विवाद काल में अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डेडलाइन 29 जून की तय है।
5: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
6: चढ़ावा जो देते हैं हम पकड़ से निकाल के चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
7: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
8: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
9: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
10: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
11: आज हमारे राम आ गए हैं।
12: आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
10: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा, चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे। हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
13: गहना रुपया क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
14: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
15: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
10: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
16: 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
10: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला है समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
9: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बात

0: चढ़ावा विवाद निपटा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं। दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम है जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
1: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
2: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं।
3: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
4: अब आप शिवसेना की, जहां पार्टी में टूट के बीच असली शिवसेना साबित करने की होड़ जारी है। इस बीच शिंदे ने उद्धव गुट में आगे भी टूट के संकेत दिए हैं।
5: दो मंच, बाला साहेब की तस्वीरें और खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। उद्धव गुट में टूट के बीच मुंबई में एक बार फिर शिवसेना के दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट में सेंधमारी के बीच ऑपरेशन टाइगर 3.0 के संकेत दिए।
6: बाला साहेबांचे विचार, धर्म वीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
5: दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
6: अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
5: उधर बागियों को लेकर शिवसेना सख्त नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा। इसके पहले कल शिवसेना की रैली में उद्धव ने इमोशनल कार्ड के चलते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
7: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही।
5: उधर अमित शाह भी जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब शिवसेना में गुट पूरी तरह से खत्म हो गया है।
8: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
5: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है। ये न सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
4: पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है। एक और घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिख रही है। दूसरी ओर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
5: मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बने तनाव की ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बाड़ वाले हिस्से का फायदा उठाकर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजने की तैयारी है। जिस घुसपैठ का मुद्दा बनाकर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में आई, उस घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का भरोसा सरकार बंगाल की जनता को दे रही है।
8: बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है।

0: दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चून चून कर देश के बाहर निकालेंगे।
1: उधर कोलकाता एयरपोर्ट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से आ रहे अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथापाई हो गई।
2: मुझे आम दिखाना, मैं जब उसको पकड़ा मुझे आम दिखाया मार देने के लिए। अभिषेक बनर्जी को मार आया था, ये आदमी अभिषेक बनर्जी को मार आया था।
3: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था आम देकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए।
1: मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं।
4: मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
1: उधर पांडेश्वर में टीएमसी नेता अलाउद्दीन शेख पर गिरफ्तारी के दौरान अंडा फेंकने की तस्वीरें आई, जहां प्रदर्शनकारियों से कड़ी मशक्कत के बाद शेख को निकाला गया। पुलिस पर पथराव के एक पुराने मामले में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी रेजीना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ फालता में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर है, जहां वो योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करते नजर आएंगे। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल का दौरा है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से टीएमसी पर हमला किया।
6: पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया।
5: अब बात होने वाले नीट फे एग्जाम की, जहां पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच सरकार ने तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए पूरा जोर लगाया है।
1: देश भर के अलग अलग शहरों से आ रही मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि 21 जून को होने वाले नीट रे एग्जाम को बिना पेपर लीक के कराना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
7: जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा। कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए हैं।
1: तैयारियों को दुरुस्त करने की इन तस्वीरों के बीच नागपुर से आए एक मामले ने एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।
7: हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर अबू धाबी दुबई का सेंटर जो है वो अलॉट किया गया है अब्दुल्ला को। नागपुर का छात्र है, पिछले बार भी उसने नीट की परीक्षा दी थी, इस बार भी वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो अबू धाबी दुबई का उसमें सेंटर दिया गया था।
8: अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दिए। मेरा बच्चा कल से शॉक में है, बहुत रोया उसने।
1: राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। हालांकि मामले में एनटीए ने तुरंत गलती पर ध्यान देते हुए छात्र से बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
5: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: बस कोलकाता में योगासन करेंगे पीएम मोदी, आपकी बार थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, लगातार 6 दिन से जांच जारी। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा, 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा, एक दिन पहले मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हुर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप। अब बात राम मंदिर की, जहां पर दान चोरी की जांच के बीच में अब आभूषणों के गायब होने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी की टीम कर रही है।
1: दान के पैसों के हेरफेर के बीच अब आभूषण की हेराफेरी का दावा भी किया जा रहा है।
2: ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: तो ये देखिए, रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई, जहां से ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है।
4: दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहां गया, क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया। तो अब वो एसआईटी उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये गुप्त दान था, इन सबका रिकॉर्ड कहां है।
1: श्रद्धालु परिवार का कहना है कि उन्हें रामलला पर हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह फोटो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: विवाद काल में अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डेडलाइन 29 जून की तय है।
5: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
6: चढ़ावा जो देते हैं हम पकड़ से निकाल के चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
7: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
8: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
9: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
10: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
11: आज हमारे राम आ गए हैं।
12: आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
10: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
13: गहना रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
14: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
15: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
10: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
16: 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
10: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
17: कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
10: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राम लला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
18: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
17: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
19: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज तक से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जो कुछ आज तक को बताया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राम के नाम पर जो काम कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपा गया उसे पूरा करने में घनघोर लापरवाही बरती गई।
20: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
21: जी,
20: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है। और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है। SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु
21: जी,
20: अंगूठी
21: जी,
20: कड़ा
21: चेन,
20: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक वो, जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, यह है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थी और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
0: बात शिवसेना की, जहां पार्टी में टूट के बीच असली शिवसेना साबित करने की होड़ जारी है। इस बीच शिंदे ने उद्धव गुट में आगे भी टूट के संकेत दिए हैं।
2: दो मंच, बाला साहेब की तस्वीरें और खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। उद्धव गुट में टूट के बीच मुंबई में एक बार फिर शिवसेना के दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट में सेंधमारी के बीच ऑपरेशन टाइगर 3.0 के संकेत दिए।
3: बाला साहेबांचे विचार, धर्म वीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता ही क्या।
2: दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
3: अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
2: उधर बागियों को लेकर शिवसेना सख्त नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा। इसके पहले कल शिवसेना की रैली में उद्धव ने इमोशनल कार्ड के चलते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
22: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही।
2: उधर अमित शाह भी जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब शिवसेना में गुट पूरी तरह से खत्म हो गया है।
23: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
2: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है। ये न सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भगवंत मान की कथित वीडियो को लेकर अकाल तख्त सख्त है, जहां भगवंत मान के पेशी का वीडियो जारी किया गया, जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं।
24: सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी का वीडियो सार्वजनिक किया। वीडियो में मुख्यमंत्री और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के बीच कथित विवादित वीडियो को लेकर हुए सवाल जवाब सामने आए।
25: निजी ओ बंदा जी, मैं एदे बारे दस देना, ओ बंदा जी जेड़ा जगमन जगमन है कोई, ओ बंदा पहला भी ओ ड्रगी है जी, ओ मानसिक तौर ते ठीक नहीं, संगल लगदे ने जी, ओ इस तरह दियां पौंदा रहिंदा। उस तो पहला उन्हें मेरी कोई उसे कमरे दी कोई होर भी बना के भेजो सर, फोरेंसिक जांच कराने का मतलब नहीं, जो तुम कहने जी असी करा दें, पर नकली है जी, कोर्ट का ऑर्डर
26: है जी, उन्होंने
25: वो कहना ब्लैकमेल करता कि अं आर रिलीज कर देंगे।
27: जी अकाल
25: बिल्कुल
27: करो, जे झूठ हो सच हो तो
25: मेरा जी।
24: वीडियो में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके संबंध में प्रसारित की जा रही वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एआई से तैयार की गई है।
25: देख लो आजकल एआई है तो उसी तरह आप ही कह के सोशल मीडिया का पता नहीं की रवाज इसी डर की फोटो ना लाती हो आही कमरा आही फोटो जो भी वाली फोटो भी लाइक करते ने मजीठिए की फोटो भी बची लाई फिर उही कमरा और उन्होंने कमरापन की किया ये फड़िया जरा अपन नंगिया अखा ना फोरेंसिक तो बिना भी मैं दस देना जी वो होटल का कमरा जो इंटीरियर है होटल के कौन गुरु साहब की फोटो लगा
24: जथेदार ने सीएम से भिंडरांवाले और पंथ की मर्यादा को लेकर कई सवाल पूछे। अकाल तख्त सीएम मान को पंथ विरोधी और गुरु दोषी घोषित कर चुका है। ये फैसला जथेदार गड़गज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील से सुनाया था, जिसके बाद अब भगवंत मान की सफाई का ये वीडियो जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है। एक ओर घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिख रही है, दूसरी ओर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
2: मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बने तनाव की ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बाड़ वाले हिस्से का फायदा उठाकर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजने की तैयारी है। जिस घुसपैठ का मुद्दा बनाकर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में आई, उस घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का भरोसा सरकार बंगाल की जनता को दे रही है।
23: बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है, मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे।
2: उधर कोलकाता एयरपोर्ट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से आ रहे अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथापाई हो गई।
1: मुझे आम दिखाया, मैं जब उसको पकड़ा मुझे आम दिखाया मार देने के लिए। अभिषेक बनर्जी को मार खाया था ये आदमी, अभिषेक बनर्जी को मार खाया था।
4: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था आम देकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए।
2: मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं।
5: मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
2: उधर पांडेश्वर में टीएमसी नेता अलाउद्दीन शेख पर गिरफ्तारी के दौरान अंडा फेंकने की तस्वीरें आई, जहां प्रदर्शनकारियों से कड़ी मशक्कत के बाद शेख को निकाला गया। पुलिस पर पथराव के एक पुराने मामले में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी रेजीना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ फालता में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करते नजर आएंगे। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल का दौरा है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से टीएमसी पर हमला किया।
23: पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया।
6: संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया।
0: अब बात होने वाले नीट फे एग्जाम की, जहां पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच सरकार ने तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए पूरा जोर लगाया है।
2: देश भर के अलग अलग शहरों से आ रही मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि 21 जून को होने वाले नीट रे एग्जाम को बिना पेपर लीक के कराना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
7: जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा। कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए हैं।
2: तैयारियों को दुरुस्त करने की इन तस्वीरों के बीच नागपुर से आए एक मामले ने एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।
7: हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर आबू धाबी दुबई का सेंटर जो है वो अलॉट किया गया है अब्दुल्ला को। नागपुर का छात्र है, पिछले बार भी उसने नीट की परीक्षा दी थी, इस बार भी वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो आबू धाबी दुबई का उसमें सेंटर दिया गया था।
8: अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दी। मेरा बच्चा कल से शॉक में है, बहुत रोया उसने।
2: राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। हालांकि मामले में एनटीए ने तुरंत गलती पर ध्यान देते हुए छात्र से बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर शाहदरा रेलवे स्टेशन पर मामूली नोकझोंक में हिंसक रूप इसने धारण कर लिया। ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए विवाद ने एक शख्स की जान ले ली।
9: दिल्ली के शाहदरा स्टेशन में एक सीट को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट में एक शख्स की जान चली गई,
11: जहां पर एक आदमी जो जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसका विवाद कुछ लोगों से हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी जान चली गई। बताया ये जा रहा है कि करीब 5 से 6 लोगों ने उसे लात घूसों से इतना मारा कि वो यहीं पर बेहोश हो गया।
9: घटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर योग एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय हुई जब यात्री ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। यात्रियों के बीच भारी धक्का मुक्की शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अन्य यात्रियों ने पंकज पर लातों और घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान पंकज अचेत होकर गिर पड़ा।
11: मौके पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक सिपाही भी देखा गया, लेकिन जैसी ही घटना हुई वो सिपाही इसमें बीच बचाव करने की पहले कोशिश करता है, लेकिन लाश जो है, जो बॉडी है, वो यहीं पर कई देर तक पड़ी रहती है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और जब एक बार पुलिस यहां पहुंचती है तब उसके शरीर को यहां से उठा करके जीटीबी अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां अस्पताल में बोला जाता है कि उसकी मौत हो गई।
9: रेलवे पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की शिनाख्त में जुट चुकी है। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोलकाता में योगासन करेंगे पीएम मोदी। आपकी बार थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, लगातार 6 दिन से जांच जारी। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा, 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा, एक दिन पहले मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हुर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप। अब बात राम मंदिर की, जहां पर दान चोरी की जांच के बीच में अब आभूषणों के गायब होने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी की टीम कर रही है।
1: दान के पैसों के हेरफेर के बीच अब आभूषण की हेराफेरी का दावा भी किया जा रहा है।
2: ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: तो ये देखिए, रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव और टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई, जहां से ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है।
4: दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहां गया, क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया। तो अब वो एसआईटी उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये गुप्त दान था, इन सबका रिकॉर्ड कहां है।
1: श्रद्धालु परिवार का कहना है कि उन्हें रामलला पर हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह फोटो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: विवाद काल में अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डेडलाइन 29 जून की तय है।
5: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
6: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
7: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
8: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
9: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
10: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
11: आज हमारे राम आ गए हैं।
12: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
10: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
13: गहना रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
14: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
15: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
10: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
16: 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
10: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
17: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
10: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राम लला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
18: प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते में चलने वाले बहुत दुखी हैं।
17: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
19: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज तक से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जो कुछ आज तक को बताया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राम के नाम पर जो काम कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपा गया उसे पूरा करने में घनघोर लापरवाही बरती गई।
20: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है।
21: हाँ।
20: यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
21: जी,
20: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है। और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है। SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु, अंगूठी
21: जी,
20: कड़ा,
21: चेन,
20: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक वो, जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थी और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
0: बात शिवसेना की, जहां पार्टी में टूट के बीच असली शिवसेना साबित करने की होड़ जारी है। इस बीच शिंदे ने उद्धव गुट में आगे भी टूट के संकेत दिए हैं।
2: दो मंच, बाला साहेब की तस्वीरें और खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। उद्धव गुट में टूट के बीच मुंबई में एक बार फिर शिवसेना के दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट में सेंधमारी के बीच ऑपरेशन टाइगर 3.0 के संकेत दिए।
3: बाला साहेब विचार, धर्म वीरान विचार घेन अपन पुढ़ चलो है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखो होता है क्या।
2: दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
3: अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
2: उधर बागियों को लेकर शिवसेना सख्त नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा। इसके पहले कल शिवसेना की रैली में उद्धव ने इमोशनल कार्ड के चलते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
22: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही।
2: उधर अमित शाह भी जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब शिवसेना में गुट पूरी तरह से खत्म हो गया है।
23: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना

0: ये न सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
1: पंजाब में भगवंत मान की कथित वीडियो को लेकर अकाल तख्त सख्त है, जहां भगवंत मान के पेशे का वीडियो जारी किया गया जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं।
2: सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी का वीडियो सार्वजनिक किया। वीडियो में मुख्यमंत्री और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के बीच कथित विवादित वीडियो को लेकर हुए सवाल जवाब सामने आए।
3: ਉਹ ਡਰੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਰ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ
4: ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੋਣ ਦੇ
3: ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।
5: ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਲੈਣਾ ਦੱਸੋ
3: ਜੀ,
5: ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗੇ।
3: ਬਿਲਕੁਲ,
5: ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਧੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਕੰਧਾ
3: ਜੀ।
2: वीडियो में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके संबंध में प्रसारित की जा रही वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एआई से तैयार की गई है।
3: देख लो, आजकल एआई है तो सीधा आप ही कह के सोशल मीडिया का पता नहीं की बर्बाद, आज तक हर रोज इसी डर में की दी फोटो ना लाती हो, आही कमरा आही फोटो जो भी वाली फोटो भी लाइक करते रहे, ओदी की अदनो ਮਜੀਠੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬੱਚੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹੀ ਕਮਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲਾਪਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦੇ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦਾ।
2: ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੰਥ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੋ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ये फैसला जत्थेदार गड़गज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील से सुनाया था, जिसके बाद अब भगवंत मान की सफाई का ये वीडियो जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
1: पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है, एक ओर घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिख रही है, दूसरी ओर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
0: मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बने तनाव की ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बाड़ वाले हिस्से का फायदा उठाकर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजने की तैयारी है। जिस घुसपैठ का मुद्दा बनाकर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में आई, उस घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का भरोसा सरकार बंगाल की जनता को दे रही है।
6: बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है, मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे।
0: उधर कोलकाता एयरपोर्ट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से आ रहे अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथापाई हो गई।
7: मुझे आम दिखा था, मैं जब उसको पकड़ा मुझे आम दिखा मार देने के लिए, अभिषेक बनर्जी को मार आया था, ये आदमी अभिषेक बनर्जी को मार आया था,
8: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था हम देकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए।
0: मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं।
9: मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए, इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
0: उधर पांडेश्वर में टीएमसी नेता अलाउद्दीन शेख पर गिरफ्तारी के दौरान अंडा फेंकने की तस्वीरें आईं, जहां प्रदर्शनकारियों से कड़ी मशक्कत के बाद

0: शिविर को निकाला गया। पुलिस पर पथराव के एक पुराने मामले में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी रेजीना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ फालता में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के दो दिन के दौरे पर है, जहां वो योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करते नजर आएंगे। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल का दौरा है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से टीएमसी पर हमला किया।
2: पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया।
1: अब बात होने वाले नीट रे एग्जाम की, जहां पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच सरकार ने तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए पूरा जोर लगाया है।
0: देश भर के अलग अलग शहरों से आ रही मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि 21 जून को होने वाले नीट रे एग्जाम को बिना पेपर लीक के कराना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
3: जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा। कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए।
0: तैयारियों को दुरुस्त करने की इन तस्वीरों के बीच नागपुर से आए एक मामले ने एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।
4: हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर अबू धाबी दुबई का सेंटर जो है वो अलॉट किया गया है अब्दुल्ला को। नागपुर का छात्र है, पिछले बार भी उसने नीट की परीक्षा दी थी, इस बार भी वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो अबू धाबी दुबई का उसमें सेंटर दिया गया था।
5: अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दी। मेरा बच्चा कल से शॉक में है, बहुत रोया उसने।
0: राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। हालांकि मामले में एनटीए ने तुरंत गलती पर ध्यान देते हुए छात्र से बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: की बार थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, लगातार 6 दिन से जांच जारी। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा, 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा, एक दिन पहले मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हुर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप। अब बात राम मंदिर की, जहां पर दान चोरी की जांच के बीच में अब आभूषणों के गायब होने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी की टीम कर रही है।
1: दान के पैसों के हेरफेर के बीच अब आभूषण की हेराफेरी का दावा भी किया जा रहा है।
2: ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: तो ये देखिए रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: अब मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई, जहां से ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है।
4: दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहां गया, क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया? तो अब वो एसआईटी उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये गुप्त दान था, इन सबका रिकॉर्ड कहां है।
1: श्रद्धालु परिवार का कहना है कि उन्हें रामलला पर हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह फोटो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: विवाद काल में अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डेडलाइन 29 जून की तय है।
5: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
6: चढ़ावा जो देते हैं हम पकड़ से निकाल के चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
7: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
8: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
9: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
10: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
11: आज हमारे राम आ गए हैं।
12: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
10: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
13: गहना रुपया क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
14: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
15: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
10: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
16: 15 दिन और देख ले, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
10: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
17: कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
10: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राम लला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
18: प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
17: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ है, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
11: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज तक से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जो कुछ आज तक को बताया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राम के नाम पर जो काम कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपा गया उसे पूरा करने में घनघोर लापरवाही बरती गई।
19: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है।
20: हाँ।
19: यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
20: जी,
19: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है, और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है, SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु, अंगूठी
20: जी,
19: कड़ा,
20: चेन,
19: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक, वो जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थी और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
0: बात शिवसेना की, जहां पार्टी में टूट के बीच असली शिवसेना साबित करने की होड़ जारी है। इस बीच शिंदे ने उद्धव गुट में आगे भी टूट के संकेत दिए हैं।
2: दो मंच, बाला साहेब की तस्वीरें और खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। उद्धव गुट में टूट के बीच मुंबई में एक बार फिर शिवसेना के दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट में सेंधमारी के बीच ऑपरेशन टाइगर 3.0 के संकेत दिए।
21: बाला साहेब विचार, धर्म वीरान विचार घेन अपन पूरे चल लो है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
2: दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
21: अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
2: उधर बागियों को लेकर शिवसेना सख्त नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा। इसके पहले कल शिवसेना की रैली में उद्धव ने इमोशनल कार्ड के चलते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
22: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही।
2: उधर अमित शाह भी जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब शिवसेना में गुट पूरी तरह से खत्म हो गया है।
23: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
2: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है। ये न सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भगवंत मान की कथित वीडियो को लेकर अकाल तख्त सख्त है, जहां भगवंत मान के पेशे का वीडियो जारी किया गया, जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं।
24: सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी का वीडियो सार्वजनिक किया। वीडियो में मुख्यमंत्री और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के बीच कथित विवादित वीडियो को लेकर हुए सवाल जवाब सामने आए।
25: जी
26: जो
25: बंदा जी मैं बारे दस देना, वो बंदा जी जेड़ा जगमन जगमन है कोई, वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर से ठीक नहीं, संगल लगते ने जी, वो इस तरह दियां पाउंदा रहिंदा। उस तो पहला उन्हें मेरी कोई उसे कमरे दिया, कोई होर भी बना के भेज सर, फोरेंसिक जांच कराने का मतलब नहीं, जो तुम कहना जी असं करा दें, पर नकली है जी। वो कहना ब्लैकमेल करता कि असं आ रिलीज कर
26: देंगे
25: जी।
26: अकाल तख्त
25: बिल्कुल करो,
26: जे झूठ होया तो कोई गल नहीं, सच होया तो फिर मेरा
25: कंधे जी।
24: वीडियो में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके संबंध में प्रसारित की जा रही वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एआई से तैयार की गई है।
25: देख लो आजकल एआई है तो आप ही कह के सोशल मीडिया का पता नहीं की बर्बाद, अज तक हर रोज इसी डरने में की फोटो ना लाती हो, आही कमरा आही फोटो, सुबी वाली फोटो भी लाई करते ने मजीठिए की फोटो भी बची लाई करते नहीं, उही यही कमरा, और उन्होंने कमलापन की किया ये फड़िया जिहड़ा अपनी नंगिया अखा ना फोरेंसिक तो बिना भी मैं दस देना जी, वो होटल का कमरा जिहड़ा इंटीरियर है होटल, होटल दे विच कौन गुरु साहब की फोटो लगा।
24: जथेदार ने सीएम से भिंडरांवाले और पंथ की मर्यादा को लेकर कई सवाल पूछे। अकाल तख्त सीएम मान को पंथ विरोधी और गुरु दोषी घोषित कर चुका है। ये फैसला जथेदार गड़गज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील से सुनाया था, जिसके बाद अब भगवंत मान की सफाई का ये वीडियो जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है। एक ओर घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिख रही है, दूसरी ओर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
2: मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बने तनाव की ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बाड़ वाले हिस्से का फायदा उठाकर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजने की तैयारी है। जिस घुसपैठ का मुद्दा बनाकर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में आई, उस घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का भरोसा सरकार बंगाल की जनता को दे रही है।
23: बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है, मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे।
2: उधर कोलकाता एयरपोर्ट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से आ रहे अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथापाई हो गई।
1: मुझे आम दिखाना, मैं जब उसको पकड़ा मुझे आम दिखाया मार देने के लिए। अभिषेक बनर्जी को मार आया था ये आदमी, अभिषेक बनर्जी को मार आया था।
3: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था आम देकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए।
2: मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं।
4: मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
2: उधर पांडेश्वर में टीएमसी नेता अलाउद्दीन शेख पर गिरफ्तारी के दौरान अंडा फेंकने की तस्वीरें आई, जहां प्रदर्शनकारियों से कड़ी मशक्कत के बाद शेख को निकाला गया। पुलिस पर पथराव के एक पुराने मामले में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी रेजीना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ फालता में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करते नजर आएंगे। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल का दौरा है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से टीएमसी पर हमला किया।
23: पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया।
5: संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया, जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया।
0: अब बात होने वाले नीट फे एग्जाम की, जहां पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच सरकार ने तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए पूरा जोर लगाया है।
2: देश भर के अलग अलग शहरों से आ रही मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि 21 जून को होने वाले नीट रे एग्जाम को बिना पेपर लीक के कराना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
6: जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा, कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए।
2: तैयारियों को दुरुस्त करने की इन तस्वीरों के बीच नागपुर से आए एक मामले ने एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।
6: हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर अबू धाबी दुबई का सेंटर जो है वो अलॉट किया गया है अब्दुल्ला को। नागपुर का छात्र है, पिछले बार भी उसने नीट की परीक्षा दी थी, इस बार भी वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो अबू धाबी दुबई का उसमें सेंटर दिया गया था।
7: अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दी। मेरा बच्चा कल से शॉक में है, बहुत रोया उसने।
2: राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। हालांकि मामले में एनटीए ने तुरंत गलती पर ध्यान देते हुए छात्र से बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर शाहदरा रेलवे स्टेशन पर मामूली नोकझोंक में हिंसक रूप इसने धारण कर लिया। ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए विवाद ने एक शख्स की जान ले ली।
8: दिल्ली के शाहदरा स्टेशन में एक सीट को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट में एक शख्स की जान चली गई,
9: जहां पर एक आदमी जो जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसका विवाद कुछ लोगों से हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी जान चली गई। बताया ये जा रहा है कि करीब 5 से 6 लोगों ने उसे लात घूसों से इतना मारा कि वो यहीं पर बेहोश हो गया।
8: घटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर योग एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय हुई जब यात्री ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। यात्रियों के बीच भारी धक्का मुक्की शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अन्य यात्रियों ने पंकज पर लातों और घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान पंकज अचेत होकर गिर पड़ा।
9: मौके पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक सिपाही भी देखा गया, लेकिन जैसी ही घटना हुई वो सिपाही इसमें बीच बचाव करने की पहले कोशिश करता है, लेकिन लाश जो है, जो बॉडी है, वो यहीं पर कई देर तक पड़ी रहती है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और जब एक बार पुलिस यहां पहुंचती है तब उसके शरीर को यहां से उठा करके जीटीबी अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां अस्पताल में बोला जाता है कि उसकी मौत हो गई।
8: रेलवे पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की शिनाख्त में जुट चुकी है। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: योग दिवस कोलकाता में योगासन करेंगे पीएम मोदी। आपकी बार थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, लगातार 6 दिन से जांच जारी। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा, 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा, एक दिन पहले मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हुर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप। अब बात राम मंदिर की, जहां पर दान चोरी की जांच के बीच में अब आभूषणों के गायब होने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी की टीम कर रही है।
1: दान के पैसों के हेरफेर के बीच अब आभूषण की हेराफेरी का दावा भी किया जा रहा है।
2: ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: तो ये देखिए रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: अब मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई, जहां से ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है।
4: दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहां गया, क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया। तो अब वो एसआईटी उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये गुप्त दान था, इन सबका रिकॉर्ड कहां है।
1: श्रद्धालु परिवार का कहना है कि उन्हें रामलला पर हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह फोटो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: विवाद काल में अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डेडलाइन 29 जून की तय है।
5: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
6: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल के भी चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और एसएसपी।
7: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
8: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
9: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
10: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
11: आज हमारे राम आ गए हैं।
12: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
10: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
13: गहना रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
14: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
15: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
10: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
16: 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
10: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
17: कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
10: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राम लला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
18: प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
17: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
19: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज तक से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जो कुछ आज तक को बताया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राम के नाम पर जो काम कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपा गया उसे पूरा करने में घनघोर लापरवाही बरती गई।
20: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। हाँ। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
21: जी,
20: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है, और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है, SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु, अंगूठी
21: जी,
20: कड़ा,
21: चेन,
20: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक वो, जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थी और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
0: बात शिवसेना की, जहां पार्टी में टूट के बीच असली शिवसेना साबित करने की होड़ जारी है। इस बीच शिंदे ने उद्धव गुट में आगे भी टूट के संकेत दिए हैं।
2: दो मंच, बाला साहेब की तस्वीरें और खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। उद्धव गुट में टूट के बीच मुंबई में एक बार फिर शिवसेना के दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट में सेंधमारी के बीच ऑपरेशन टाइगर 3.0 के संकेत दिए।
3: बाला साहेब विचार, धर्म विरान विचार घेन अपन पूरे चल लो है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता ही क्या।
2: दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
3: अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
2: उधर बागियों को लेकर शिवसेना सख्त नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा। इसके पहले कल शिवसेना की रैली में उद्धव ने इमोशनल कार्ड के चलते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
22: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतार व्हायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही।
2: उधर अमित शाह भी जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब शिवसेना में गुट पूरी तरह से खत्म हो गया है।
23: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
2: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है। ये न सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भगवंत मान की कथित वीडियो को लेकर अकाल तख्त सख्त है, जहां भगवंत मान के पेशे का वीडियो जारी किया गया, जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं।
24: सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी का वीडियो सार्वजनिक किया। वीडियो में मुख्यमंत्री और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के बीच कथित विवादित वीडियो को लेकर हुए सवाल जवाब सामने आए।
25: जी ओ बंदा जी मैं बारे दस देना, ओ बंदा जी जेड़ा जगमन है कोई, ओ बंदा पहला भी ओ ड्रगी है जी, ओ मानसिक तौर से ठीक नहीं, संगल लगते ने जी, ओ इस तरह दियां पाउंदा रहिंदा। उस तो पहला उन्हें मेरी कोई ओसे कमरे दियाँ, कोई होर भी बना के भेजे सर, फोरेंसिक जांच कराने का मतलब नहीं, जो तुम कहना जी असं करा दें, पर नकली है जी।

0: ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸੋ
1: ਜੀ।
0: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ।
0: ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਧੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਕੰਮ ਖੜਾ
1: ਜੀ।
2: वीडियो में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके संबंध में प्रसारित की जा रही वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एआई से तैयार की गई है।
1: देख लो आजकल एआई है तो तुसी ता आप ही कह के सोशल मीडिया का पता नहीं की बर्बाद हस्ता हर रोज इसी डरदे में की दी फोटो ना लाती होवे आही कमरा आही फोटो सुबी वाली फोटो भी लाई करते ने ओ ओदी की अदनो ਮਜੀਠੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹੀ ਕਮਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲਾਪਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ ਹੋਟਲ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ
2: ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੰਥ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੋ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ये फैसला जत्थेदार गड़गज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील से सुनाया था जिसके बाद अब भगवंत मान की सफाई का ये वीडियो जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
3: पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है, एक और घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिख रही है, दूसरी ओर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
4: मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बने तनाव की ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बाड़ वाले हिस्से का फायदा उठाकर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजने की तैयारी है। जिस घुसपैठ का मुद्दा बनाकर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में आई, उस घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का भरोसा सरकार बंगाल की जनता को दे रही है।
5: बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है, मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे।
4: उधर कोलकाता एयरपोर्ट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से आ रहे अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथापाई हो गई।
6: मुझे आम दिखाना, मैं जब उसको पकड़ा मुझे आम दिखाया मार देने के लिए, अभिषेक बनर्जी को मार आया था, ये आदमी अभिषेक बनर्जी को मार आया था।
7: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था हम देकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए।
4: मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं।
8: मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
4: उधर पांडेश्वर में टीएमसी नेता अलाउद्दीन शेख पर गिरफ्तारी के दौरान अंडा फेंकने की तस्वीरें आईं, जहां प्रदर्शनकारियों से कड़ी मशक्कत के बाद शेख को निकाला गया। पुलिस पर पथराव के एक पुराने मामले में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी रेजीना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ फालता में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करते नजर आएंगे। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल का दौरा है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से टीएमसी पर हमला किया।
5: पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है

0: हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया।
1: अब बात होने वाले नीट फे एग्जाम की, जहां पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच सरकार ने तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए पूरा जोर लगाया है।
2: देश भर के अलग अलग शहरों से आ रही मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि 21 जून को होने वाले नीट रे एग्जाम को बिना पेपर लीक के कराना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
3: जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा। कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए हैं।
2: तैयारियों को दुरुस्त करने की इन तस्वीरों के बीच नागपुर से आए एक मामले ने एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।
4: हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर अबू धाबी दुबई का सेंटर जो है वो अलॉट किया गया है अब्दुल्ला को। नागपुर का छात्र है, पिछले बार भी उसने नीट की परीक्षा दी थी, इस बार भी वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो अबू धाबी दुबई का उसमें सेंटर दिया गया था।
5: अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दिए। मेरा बच्चा कल से शॉक में है, बहुत रोया उसने।
2: राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। हालांकि मामले में एनटीए ने तुरंत गलती पर ध्यान देते हुए छात्र से बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोलकाता में योगासन करेंगे पीएम मोदी। अब की बार थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, लगातार 6 दिन से जांच जारी। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा, 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा, एक दिन पहले मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हुर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप। अब बात राम मंदिर की, जहां पर दान चोरी की जांच के बीच में अब आभूषणों के गायब होने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी की टीम कर रही है।
1: दान के पैसों के हेरफेर के बीच अब आभूषण की हेराफेरी का दावा भी किया जा रहा है।
2: ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए, तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: तो ये देखिए, रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई, जहां से ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है।
4: दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहा गया, क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया। तो अब वो एसआईटी उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये गुप्त दान था, इन सबका रिकॉर्ड कहाँ है।
1: श्रद्धालु परिवार का कहना है कि उन्हें रामलला पर हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह फोटो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: विवाद काल में अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डेडलाइन 29 जून की तय है।
5: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
6: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल कर चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
7: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
8: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
9: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
10: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
11: आज हमारे राम आ गए हैं।
12: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
10: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
13: गहना रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
14: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
15: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
10: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
16: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
10: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला है, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
17: कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
10: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राम लला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद निपटा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
18: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
17: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
19: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज तक से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जो कुछ आज तक को बताया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राम के नाम पर जो काम कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपा गया उसे पूरा करने में घनघोर लापरवाही बरती गई।
20: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
21: जी,
20: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है। और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है। SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु
21: जी,
20: अंगूठी
21: जी,
20: कड़ा
21: चेन,
20: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक वो, जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थी और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं, वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
0: बात शिवसेना की, जहां पार्टी में टूट के बीच असली शिवसेना साबित करने की होड़ जारी है। इस बीच शिंदे ने उद्धव गुट में आगे भी टूट के संकेत दिए हैं।
2: दो मंच, बाला साहेब की तस्वीरें और खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। उद्धव गुट में टूट के बीच मुंबई में एक बार फिर शिवसेना के दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट में सेंधमारी के बीच ऑपरेशन टाइगर 3.0 के संकेत दिए।
3: बाला साहेब विचार धर्म विरान विचार घेन अपन पुढ़ चलो है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखो होता है क्या।
2: दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
3: अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
2: उधर बागियों को लेकर शिवसेना सख्त नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा। इसके पहले कल शिवसेना की रैली में उद्धव ने इमोशनल कार्ड के चलते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
22: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे, माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही।
2: उधर अमित शाह भी जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब शिवसेना में गुट पूरी तरह से खत्म हो गया है।
23: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
2: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है। ये न सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भगवंत मान की कथित वीडियो को लेकर अकाल तख्त सख्त है, जहां भगवंत मान के पेशे का वीडियो जारी किया गया, जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं।
24: सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी का वीडियो सार्वजनिक किया। वीडियो में मुख्यमंत्री और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के बीच कथित विवादित वीडियो को लेकर हुए सवाल जवाब सामने आए।
25: जी वो बंदा जेड़े मैं इहदे बारे दस देना, वो बंदा जी जेड़ा जगमन जगमन है कोई, वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं, संगल लगते ने जी, वो इस तरह दया पाँदा रहता है। उस तो पहला उन्हें मेरिया कोई उसे कमरे दिया, कोई होर भी बना के भेजे सर, फोरेंसिक जांच कराने का मतलब नहीं, जो तुम कहना जी असी करा दो पर नकली है। मैं
26: जो
25: कहना ब्लैकमेल करता सीगा कि असीं आ रिलीज कर
26: देंगे
25: जी, बिल्कुल करो
26: जे झूठ होया तो कोई गल नहीं, जे सच होया
25: जी।
24: वीडियो में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके संबंध में प्रसारित की जा रही वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एआई से तैयार की गई है।
25: देख लो आजकल एआई है तो सीधा आप ही कह के सोशल मीडिया का पता नहीं की बर्बाद, अस तक हर रोज इसी डर की फोटो ना लाती हो, आही कमरा आही फोटो सुबीर वाल की फोटो भी लाइक करते हैं, मजीठी की फोटो भी बची लाई फिर देनी, उही यही कमरा, और उन्होंने उन्होंने कमरापन की किया है, ये फड़िया जिहड़ा अपनी नंगी अखा ना फोरेंसिक तो बिना भी मैं दस देना जी, ਉਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦਾ?
24: जत्थेदार ने सीएम से भिंडरा वाले और पंथ की मर्यादा को लेकर कई सवाल पूछे। अकाल तख्त सीएम मान को पंथ विरोधी और गुरु दोषी घोषित कर चुका है। ये फैसला जत्थेदार गड़गज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील से सुनाया था, जिसके बाद अब भगवंत मान की सफाई का ये वीडियो जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है। एक ओर घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिख रही है, दूसरी ओर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
2: मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बने तनाव की ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बाड़ वाले हिस्से का फायदा उठाकर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजने की तैयारी है। जिस घुसपैठ का मुद्दा बनाकर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में आई, उस घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का भरोसा सरकार बंगाल की जनता को दे रही है।
23: बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है। मैं विश्वास दिलाकर जाता हूँ, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे।
2: उधर कोलकाता एयरपोर्ट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से आ रहे अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथापाई हो गई।
1: मुझे आम दिखा था, मैं जब उसको पकड़ा मुझे आम दिखा मार देने के लिए। अभिषेक बनर्जी को मारने आया था ये आदमी, अभिषेक बनर्जी को मारने आया था।
4: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था आम देकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए।
2: मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं।
5: मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
2: उधर पांडेश्वर में टीएमसी नेता अलाउद्दीन शेख पर गिरफ्तारी के दौरान अंडा फेंकने की तस्वीरें आई, जहां प्रदर्शनकारियों से कड़ी मशक्कत के बाद शेख को निकाला गया। पुलिस पर पथराव के एक पुराने मामले में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी रेजीना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ फालता में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करते नजर आएंगे। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल का दौरा है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से टीएमसी पर हमला किया।
23: पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ,
6: छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया।
0: अब बात होने वाले नीट फे एग्जाम की, जहां पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच सरकार ने तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए पूरा जोर लगाया है।
2: देश भर के अलग अलग शहरों से आ रही मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि 21 जून को होने वाले नीट रे एग्जाम को बिना पेपर लीक के कराना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
7: जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा, कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए।
2: तैयारियों को दुरुस्त करने की इन तस्वीरों के बीच नागपुर से आए एक मामले ने एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।
8: हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर आबू धाबी दुबई का सेंटर जो है वो अलॉट किया गया है अब्दुल्ला को। नागपुर का छात्र है, पिछले बार भी उसने नीट की परीक्षा दी थी, इस बार भी वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो आबू धाबी दुबई का उसमें सेंटर दिया गया था।
9: अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दिए। मेरा बच्चा कल से शॉक में है, बहुत रोया उसने।
2: राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। हालांकि मामले में एनटीए ने तुरंत गलती पर ध्यान देते हुए छात्र से बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर शाहदरा रेलवे स्टेशन पर मामूली नोकझोंक में हिंसक रूप इसने धारण कर लिया। ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए विवाद ने एक शख्स की जान ले ली।
11: दिल्ली के शाहदरा स्टेशन में एक सीट को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट में एक शख्स की जान चली गई,
12: जहां पर एक आदमी जो जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसका विवाद कुछ लोगों से हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी जान चली गई। बताया ये जा रहा है कि करीब 5 से 6 लोगों ने उसे लात घूसों से इतना मारा कि वो यहीं पर बेहोश हो गया।
11: घटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर योग एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय हुई जब यात्री ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। यात्रियों के बीच भारी धक्का मुक्की शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अन्य यात्रियों ने पंकज पर लातों और घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान पंकज अचेत होकर गिर पड़ा।
12: मौके पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक सिपाही भी देखा गया, लेकिन जैसी ही घटना हुई वो सिपाही इसमें बीच बचाव करने की पहले कोशिश करता है, लेकिन लाश जो है, जो बॉडी है, वो यहीं पर कई देर तक पड़ी रहती है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और जब एक बार पुलिस यहां पहुंचती है तब उसके शरीर को यहां से उठा करके जीटीबी अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां अस्पताल में बोला जाता है कि उसकी मौत हो गई।
11: रेलवे पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की शिनाख्त में जुट चुकी है। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: राष्ट्रीय योग दिवस कोलकाता में योगासन करेंगे पीएम मोदी। आपकी बार थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, लगातार 6 दिन से जांच जारी। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा, 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा, एक दिन पहले मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हुर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप। अब राम मंदिर की, जहां पर दान चोरी की जांच के बीच में अब आभूषणों के गायब होने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी की टीम कर रही है।
1: दान के पैसों के हेरफेर के बीच अब आभूषण की हेराफेरी का दावा भी किया जा रहा है।
2: ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए, तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: तो ये देखिए, रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव और टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई, जहां से ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है।
4: ऐसा दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहां गया, क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया। तो अब वो एसआईटी उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये गुप्त दान था, इन सबका रिकॉर्ड्स कहां है।
1: श्रद्धालु परिवार का कहना है कि उन्हें रामलला पर हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह फोटो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: विवाद काल में अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डेडलाइन 29 जून की तय है।
5: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
6: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल कर चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
7: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
8: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
9: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
10: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
11: आज हमारे राम आ गए हैं।
12: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
10: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे, आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
13: गहना रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
14: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
15: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया?
10: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
16: 15 दिन और देख ले, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
10: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
17: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
10: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राम लला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद निपटा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
18: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
17: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
19: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज तक से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जो कुछ आज तक को बताया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राम के नाम पर जो काम कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपा गया उसे पूरा करने में घनघोर लापरवाही बरती गई।
20: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है।
21: हाँ।
20: यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
21: जी,
20: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है। और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है। SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु
21: जी,
20: अंगूठी
21: जी,
20: कड़ा
21: चेन,
20: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक वो, जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थी और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
0: बात शिवसेना की, जहां पार्टी में टूट के बीच असली शिवसेना साबित करने की होड़ जारी है। इस बीच शिंदे ने उद्धव गुट में आगे भी टूट के संकेत दिए हैं।
2: दो मंच, बाला साहेब की तस्वीरें और खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। उद्धव गुट में टूट के बीच मुंबई में एक बार फिर शिवसेना के दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट में सेंधमारी के बीच ऑपरेशन टाइगर 3.0 के संकेत दिए।
21: बाला साहेबांचे विचार, धर्म वीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
2: दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
21: अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
2: उधर बागियों को लेकर शिवसेना सख्त नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा। इसके पहले कल शिवसेना की रैली में उद्धव ने इमोशनल कार्ड के चलते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
22: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे, माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही।
2: उधर अमित शाह भी जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब शिवसेना में गुट पूरी तरह से खत्म हो गया है।
23: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
2: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है। ये न सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भगवंत मान की कथित वीडियो को लेकर अकाल तख्त सख्त है, जहां भगवंत मान की पेशी का वीडियो जारी किया गया, जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं।
24: सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी का वीडियो सार्वजनिक किया। वीडियो में मुख्यमंत्री और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के बीच कथित विवादित वीडियो को लेकर हुए सवाल जवाब सामने आए।
25: जी ओ बंदा जिड़े मैं एदे बारे दस देना, ओ बंदा जी जिड़ा जगमन जगमन है कोई, ओ बंदा पहला भी ओ ड्रगी है जी, ओ मानसिक तौर ते ठीक नहीं, संगल लगदे ने जी, ओ इस तरह दियां पौंदा रहिंदा। उस तो पहला उन्हें मेरी कोई ओसे कमरे दिया, कोई होर भी बना के भेजे सर, फोरेंसिक जांच कराने का मतलब नहीं, जो तुम कहना जी असी करा दें, पर नकली है। मैं कंप्लीट है जो
26: कोर्ट का ऑर्डर है जी, उन्होंने इन्होंने प्राइवेसी होने के करके
25: उन्होंने हटाया, मैंने हटाया, वो कहना ब्लैकमेल करता सीगा कि असी यार रिलीज कर देंगे।
27: कोई नहीं, पर लंच जी तुसी सानू दो लाइनां दसो
25: जी,
27: अकाल तख्त साहब इस वीडियो की जांच कराओ।
25: बिल्कुल कराओ,
27: जे झूठ होया तो कोई गल नहीं, जे सच होया तो
25: मेरा जी।
24: वीडियो में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके संबंध में प्रसारित की जा रही वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एआई से तैयार की गई है।
25: देख लो आजकल एआई है तो उसी तरह आप ही कह के सोशल मीडिया पता नहीं की बर्बाद, अस तक हर रोज इसी डर की फोटो ना लाती हो, आही कमरा आही फोटो, सुबीर वाली फोटो भी लाई करते नहीं, मजीठिए की फोटो भी बच्ची लाई फिर देनी, उही यही कमरा, और उन्होंने कमलापन की किया, ये फड़िया जिहड़ा अपनी नंगी अखां नाल फोरेंसिक तो बिना भी मैं दस देना जी, वह होटल का कमरा जिहड़ा इंटीरियर है होटल, होटल दे विच कौन गुरु साहब की फोटो लाऊ।
24: जत्थेदार ने सीएम से भिंडरांवाले और पंथ की मर्यादा को लेकर कई सवाल पूछे। अकाल तख्त सीएम मान को पंथ विरोधी और गुरु दोषी घोषित कर चुका है। ये फैसला जत्थेदार गड़गज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील से सुनाया था, जिसके बाद अब भगवंत मान

0: पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है। एक ओर घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिख रही है, दूसरी ओर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
1: मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बने तनाव की ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बाड़ वाले हिस्से का फायदा उठाकर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजने की तैयारी है। जिस घुसपैठ का मुद्दा बनाकर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में आई, उस घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का भरोसा सरकार बंगाल की जनता को दे रही है।
2: बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है, मैं विश्वास दिलाकर जाता हूँ, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे।
1: उधर कोलकाता एयरपोर्ट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से आ रहे अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथापाई हो गई।
3: मुझे आम दिखाया, मैं जब उसको पकड़ा मुझे आम दिखाया मार देने के लिए। अभिषेक बनर्जी को मार आया था, ये आदमी अभिषेक बनर्जी को मारने आया था।
4: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था आम देकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए।
1: मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं।
5: मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
1: उधर पांडेश्वर में टीएमसी नेता अलाउद्दीन शेख पर गिरफ्तारी के दौरान अंडा फेंकने की तस्वीरें आईं, जहां प्रदर्शनकारियों से कड़ी मशक्कत के बाद शेख को निकाला गया। पुलिस पर पथराव के एक पुराने मामले में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी रेजीना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ फालता में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करते नजर आएंगे। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल का दौरा है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से टीएमसी पर हमला किया।
2: पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का।

0: आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया।
1: अब बात होने वाले नीट फे एग्जाम की, जहां पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच सरकार ने तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए पूरा जोर लगाया है।
2: देश भर के अलग अलग शहरों से आ रही मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि 21 जून को होने वाले नीट रे एग्जाम को बिना पेपर लीक के कराना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
3: जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा, कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए।
2: तैयारियों को दुरुस्त करने की इन तस्वीरों के बीच नागपुर से आए एक मामले ने एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।
4: हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर अबू धाबी दुबई का सेंटर जो है वो अलॉट किया गया है अब्दुल्ला को। नागपुर का छात्र है, पिछले बार भी उसने नीट की परीक्षा दी थी, इस बार भी वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो अबू धाबी दुबई का उसमें सेंटर दिया गया था।
5: अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दिए। मेरा बच्चा कल से शॉक में है, बहुत रोया उसने।
2: राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। हालांकि मामले में एनटीए ने तुरंत गलती पर ध्यान देते हुए छात्र से बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: बार थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, लगातार 6 दिन से जांच जारी। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा, 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा, एक दिन पहले मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हुर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप। अब बात राम मंदिर की, जहां पर दान चोरी की जांच के बीच में अब आभूषणों के गायब होने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी की टीम कर रही है।
1: दान के पैसों के हेरफेर के बीच अब आभूषण की हेराफेरी का दावा भी किया जा रहा है।
2: ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम, और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए, तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: तो ये देखिए, रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई, जहां से ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है।
4: दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहां गया, क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया। तो अब वो एसआईटी उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये गुप्त दान था, इन सबका रिकॉर्ड कहां है।
1: श्रद्धालु परिवार का कहना है कि उन्हें रामलला पर हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह फोटो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: विवाद काल में अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डेडलाइन 29 जून की तय है।
5: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
6: चढ़ावा जो देते हैं हम पकड़ से निकाल कर चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
7: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
8: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
9: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
10: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
11: आज हमारे राम आ गए।
12: आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
10: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
13: गहना रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
14: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
15: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
10: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
16: 15 दिन और देखने इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
10: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
17: कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
10: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राम लला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद निपटा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में ना मिलावट हो सकती है, ना भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
18: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
17: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
19: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज तक से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जो कुछ आज तक को बताया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राम के नाम पर जो काम कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपा गया उसे पूरा करने में घनघोर लापरवाही बरती गई।
20: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
21: जी,
20: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है। और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है। SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु
21: जी,
20: अंगूठी
21: जी,
20: कड़ा
21: चेन,
20: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक वो, जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थीं और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
0: बात शिवसेना की, जहां पार्टी में टूट के बीच असली शिवसेना साबित करने की होड़ जारी है। इस बीच शिंदे ने उद्धव गुट में आगे भी टूट के संकेत दिए हैं।
2: दो मंच, बाला साहेब की तस्वीरें और खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। उद्धव गुट में टूट के बीच मुंबई में एक बार फिर शिवसेना के दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट में सेंधमारी के बीच ऑपरेशन टाइगर 3.0 के संकेत दिए।
3: बाला साहेबांचे विचार, धर्म वीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता ही क्या।
2: दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
3: अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
2: उधर बागियों को लेकर शिवसेना सख्त नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा। इसके पहले कल शिवसेना की रैली में उद्धव ने इमोशनल कार्ड के चलते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
22: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही।
2: उधर अमित शाह भी जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब शिवसेना में गुट पूरी तरह से खत्म हो गया है।
23: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
2: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है। ये न सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भगवंत मान की कथित वीडियो को लेकर अकाल तख्त सख्त है, जहां भगवंत मान के पेशी का वीडियो जारी किया गया, जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं।
24: सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी का वीडियो सार्वजनिक किया। वीडियो में मुख्यमंत्री और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के बीच कथित विवादित वीडियो को लेकर हुए सवाल जवाब सामने आए।
25: जी
26: वो
25: बंदा जेडे मैं एदे बारे दस देना, वो बंदा जी जेड़ा जगमन है कोई, वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं, संगल लगते ने जी, वो इस तरह दियां पाउंदा रहिंदा जी। उस तो पहला उन्हें मेरी कोई ओसे कमरे दिया, कोई होर भी बना के भेजे सर, फोरेंसिक जांच कराने का मतलब नहीं, जो तुम कहने जी असी करा दो पर नकली है। मैं
26: जो
25: कहना ब्लैकमेल करता कि असं आ रिलीज कर
26: दें
25: जी, बिल्कुल करो
26: जे झूठ होया तो कोई गल नहीं, जे सच होया तो मेरा
25: जी।
24: वीडियो में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके संबंध में प्रसारित की जा रही वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एआई से तैयार की गई है।
25: देख लो आजकल एआई है तो सीधा आप ही कह के सोशल मीडिया का पता नहीं की बर्बाद, अज तक हर रोज इसी डर की फोटो ना लाती हो, आही कमरा आही फोटो, सुबीर वाल की फोटो भी लाई करते नहीं, मजीठिए की फोटो भी बिच लाई फिर देनी, उही यही कमरा, और उन्होंने उन्होंने कमलापन की किया है, ये फड़िया जिहड़ा अपनी नंगियां अखां नाल फोरेंसिक तो बिना भी मैं दस देना जी, वो होटल का कमरा जिहड़ा इंटीरियर है होटल, होटल दे विच कौन गुरु साहब की फोटो लगा।
24: जत्थेदार ने सीएम से भिंडरांवाले और पंथ की मर्यादा को लेकर कई सवाल पूछे। अकाल तख्त सीएम मान को पंथ विरोधी और गुरु दोषी घोषित कर चुका है। ये फैसला जत्थेदार गड़गज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील से सुनाया था, जिसके बाद अब भगवंत मान की सफाई का ये वीडियो जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है। एक ओर घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिख रही है, दूसरी ओर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
2: मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बने तनाव की ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बाड़ वाले हिस्से का फायदा उठाकर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजने की तैयारी है। जिस घुसपैठ का मुद्दा बनाकर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में आई, उस घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का भरोसा सरकार बंगाल की जनता को दे रही है।
23: बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है, मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे।
2: उधर कोलकाता एयरपोर्ट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से आ रहे अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथापाई हो गई।
1: मुझे आम दिखाया, मैं जब उसको पकड़ा मुझे आम दिखाया मार देने के लिए। अभिषेक बनर्जी को मार आया था ये आदमी, अभिषेक बनर्जी को मार आया था।
4: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था आम देकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए।
2: मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं।
5: मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
2: उधर पांडेश्वर में टीएमसी नेता अलाउद्दीन शेख पर गिरफ्तारी के दौरान अंडा फेंकने की तस्वीरें आई, जहां प्रदर्शनकारियों से कड़ी मशक्कत के बाद शेख को निकाला गया। पुलिस पर पथराव के एक पुराने मामले में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी रेजीना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ फालता में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करते नजर आएंगे। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल का दौरा है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से टीएमसी पर हमला किया।
23: पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया।
6: संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया।
0: अब बात होने वाले नीट फे एग्जाम की, जहां पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच सरकार ने तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए पूरा जोर लगाया है।
2: देश भर के अलग अलग शहरों से आ रही मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि 21 जून को होने वाले नीट रे एग्जाम को बिना पेपर लीक के कराना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
7: जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा, कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए हैं।
2: तैयारियों को दुरुस्त करने की इन तस्वीरों के बीच नागपुर से आए एक मामले ने एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।
8: हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर अबू धाबी दुबई का सेंटर जो है वो अलॉट किया गया है अब्दुल्ला को। नागपुर का छात्र है, पिछले बार भी उसने नीट की परीक्षा दी थी, इस बार भी वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो अबू धाबी दुबई का उसमें सेंटर दिया गया था।
9: अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दिए। मेरा बच्चा कल से शॉक में है, बहुत रोया उसने।
2: राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। हालांकि मामले में एनटीए ने तुरंत गलती पर ध्यान देते हुए छात्र से बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर शाहदरा रेलवे स्टेशन पर मामूली नोकझोंक में हिंसक रूप इसने धारण कर लिया। ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए विवाद ने एक शख्स की जान ले ली।
11: दिल्ली के शाहदरा स्टेशन में एक सीट को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट में एक शख्स की जान चली गई,
12: जहां पर एक आदमी जो जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था उसका विवाद कुछ लोगों से हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी जान चली गई। बताया ये जा रहा है कि करीब 5 से 6 लोगों ने उसे लात घूसों से इतना मारा कि वो यहीं पर बेहोश हो गया।
11: घटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर योग एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय हुई जब यात्री ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। यात्रियों के बीच भारी धक्का मुक्की शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अन्य यात्रियों ने पंकज पर लातों और घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान पंकज अचेत होकर गिर पड़ा।
12: मौके पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक सिपाही भी देखा गया, लेकिन जैसी ही घटना हुई वो सिपाही इसमें बीच बचाव करने की पहले कोशिश करता है, लेकिन लाश जो है, जो बॉडी है वो यहीं पर कई देर तक पड़ी रहती है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और जब एक बार पुलिस यहां पहुंचती है तब उसके शरीर को यहां से उठा करके जीटीबी अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां अस्पताल में बोला जाता है कि उसकी मौत हो गई।
11: रेलवे पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की शिनाख्त में जुट चुकी है। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: पल्स कोलकाता में योगासन करेंगे पीएम मोदी। आपकी बार थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, लगातार 6 दिन से जांच जारी। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा, 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा, एक दिन पहले मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हुर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप। अब आत राम मंदिर की, जहां पर दान चोरी की जांच के बीच में अब आभूषणों के गायब होने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी की टीम कर रही है।
1: दान के पैसों के हेरफेर के बीच अब आभूषण की हेराफेरी का दावा भी किया जा रहा है।
2: ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: तो ये देखिए, रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है। ये
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई, जहां से ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है।
4: दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहा गया, क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया। तो अब वो एसआईटी उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये गुप्त दान था, इन सबका रिकॉर्ड कहाँ है।
1: श्रद्धालु परिवार का कहना है कि उन्हें रामलला पर हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह फोटो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: विवाद काल में अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डेडलाइन 29 जून की तय है।
5: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
6: चढ़ावा जो देते हैं हम पकड़ से निकाल के चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
7: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
8: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दान है।
9: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
10: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
11: आज हमारे राम आ गए हैं।
12: आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
10: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया।
13: गहना रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
14: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
15: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया।
10: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
16: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
10: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
17: कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
10: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राम लला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में न मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
18: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
17: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
19: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज तक से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जो कुछ आज तक को बताया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राम के नाम पर जो काम कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपा गया उसे पूरा करने में घनघोर लापरवाही बरती गई।
20: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
21: जी,
20: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है, और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है, SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु
21: जी,
20: अंगूठी
21: जी,
20: कड़ा
21: चेन,
20: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक वो, जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थी और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
0: बात शिवसेना की, जहां पार्टी में टूट के बीच असली शिवसेना साबित करने की होड़ जारी है। इस बीच शिंदे ने उद्धव गुट में आगे भी टूट के संकेत दिए हैं।
2: दो मंच, बाला साहेब की तस्वीरें और खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। उद्धव गुट में टूट के बीच मुंबई में एक बार फिर शिवसेना के दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट में सेंधमारी के बीच ऑपरेशन टाइगर 3.0 के संकेत दिए।
3: बाला साहेब विचार धर्म विरान विचार घेन अपन पुढ़ चलो है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखो होता है क्या।
2: दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
3: अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
2: उधर बागियों को लेकर शिवसेना सख्त नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा। इसके पहले कल शिवसेना की रैली में उद्धव ने इमोशनल कार्ड के चलते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
22: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे, माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही।
2: उधर अमित शाह भी जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब शिवसेना में गुट पूरी तरह से खत्म हो गया है।
23: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
2: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है। ये न सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भगवंत मान की कथित वीडियो को लेकर अकाल तख्त सख्त है, जहां भगवंत मान के पेशे का वीडियो जारी किया गया, जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं।
24: सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी का वीडियो सार्वजनिक किया। वीडियो में मुख्यमंत्री और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के बीच कथित विवादित वीडियो को लेकर हुए सवाल जवाब सामने आए।
25: जी वो बंदा जेड़े मैं एदे बारे दस देना, वो बंदा जी जेड़ा जगमन जगमन है कोई, वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं, संगल लगते ने जी, वो इस तरह दया पाँदा रहता जी। उस तो पहला उन्हें मेरिया कोई उसे कमरे दिया, कोई होर भी बना के भेजे सर, फोरेंसिक जांच कराने का मतलब नहीं, जो तुम कहना जी असी करा दें पर नकली है। मैं
26: जो
25: कहना ब्लैकमेल करता कि असं आ रिलीज कर
26: दें
25: जी, बिल्कुल करो
26: जे झूठ होया तो कोई गल नहीं, जे सच होया
25: जी।
24: वीडियो में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके संबंध में प्रसारित की जा रही वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एआई से तैयार की गई है।
25: देख लो आजकल एआई है तो सीधा आप ही कह के सोशल मीडिया का पता नहीं की बर्बाद, अज तक हर रोज इसी डर की फोटो ना लाती हो, आही कमरा आही फोटो सुबीर वाल की फोटो भी लाइक करते नहीं, मजीठिए की फोटो भी बची लाई फिर देने, यही कमरा और उन्होंने उन्होंने कमरापन की किया है, ये फड़िया जिहड़ा अपनी नंगिया अखां नाल फोरेंसिक तो बिना भी मैं दस देना जी, वो होटल का कमरा जिहड़ा इंटीरियर है होटल, होटल दे विच कौन गुरु साहब की फोटो लगा।
24: जत्थेदार ने सीएम से भिंडरांवाले और पंथ की मर्यादा को लेकर कई सवाल पूछे। अकाल तख्त सीएम मान को पंथ विरोधी और गुरु दोषी घोषित कर चुका है। ये फैसला जत्थेदार गड़गज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील से सुनाया था, जिसके बाद अब भगवंत मान की सफाई का ये वीडियो जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है। एक ओर घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिख रही है, दूसरी ओर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
2: मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बने तनाव की ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बाड़ वाले हिस्से का फायदा उठाकर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजने की तैयारी है। जिस घुसपैठ का मुद्दा बनाकर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में आई, उस घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का भरोसा सरकार बंगाल की जनता को दे रही है।
23: बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है। मैं विश्वास दिलाकर जाता हूँ, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे।
2: उधर कोलकाता एयरपोर्ट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई।

0: ये आदमी अभिषेक बैनर्जी को मारने आया था।
1: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था हमलेकर अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए।
2: मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं।
3: मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
2: उधर पांडेश्वर में टीएमसी नेता अलाउद्दीन शेख पर गिरफ्तारी के दौरान अंडा फेंकने की तस्वीरें आई, जहां प्रदर्शनकारियों से कड़ी मशक्कत के बाद शेख को निकाला गया। पुलिस पर पथराव के एक पुराने मामले में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी रेजीना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ फालता में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर है, जहां वो योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करते नजर आएंगे। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल का दौरा है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से टीएमसी पर हमला किया।
5: पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया।
4: अब बात होने वाले नीट रे एग्जाम की, जहां पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच सरकार ने तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए पूरा जोर लगाया है।
2: देश भर के अलग अलग शहरों से आ रही मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि 21 जून को होने वाले नीट रे एग्जाम को बिना पेपर लीक के कराना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
6: जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा, कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए।
2: तैयारियों को दुरुस्त करने की इन तस्वीरों के बीच नागपुर से आए एक मामले ने एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।
6: हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर अबू धाबी दुबई का सेंटर जो है वो अलॉट किया गया है अब्दुल्ला को। नागपुर का छात्र है, पिछले बार भी उसने नीट की परीक्षा दी थी, इस बार भी वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो अबू धाबी दुबई का उसमें सेंटर दिया गया था।
7: अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दिए। मेरा बच्चा कल से शौक में है, बहुत रोया उसने।

0: राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। हालांकि मामले में एनटीए ने तुरंत गलती पर ध्यान देते हुए छात्र से बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: बस कोलकाता में योगासन करेंगे पीएम मोदी। आपकी बार थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। हुगली में पश्चिम बंग दिवस समारोह में से पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, कहा बेड़ियों से आजाद हो रहा है बंगाल, तृणमूल के गड्ढे भरने का काम शुरू। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा, चरण पादुका, बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाओं का रिकॉर्ड नहीं, लगातार 6 दिन से जांच जारी। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा, 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा, एक दिन पहले मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा। सीज फायर को लगा बड़ा झटका, ईरान ने फिर से बंद किया हुर्मुज का रास्ता, ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप। अब बात राम मंदिर की, जहां पर दान चोरी की जांच के बीच में अब आभूषणों के गायब होने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी की टीम कर रही है।
1: दान के पैसों के हेरफेर के बीच अब आभूषण की हेराफेरी का दावा भी किया जा रहा है।
2: ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए?
3: जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी।
2: तो क्या ये शिलाएं उस न्यू में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
1: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को भेंट किया गया बहुमूल्य हार और चरण का अभी तक एसआईटी को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 किलो चांदी की शिलाओं के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ज्वेलर एसोसिएशन ने राम मंदिर नींव में डालने के लिए ये शिलाएं दी थी।
3: तो ये देखिए, रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
2: दीपक आपने दिया था?
3: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
2: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
3: अब मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
1: मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से पूछताछ की गई, जहां से ईंट को बेंगलुरु में गलाने के लिए भेजने की बात सामने आई, लेकिन न ही इसे बेंगलुरु भेजने के सबूत मिले हैं और न ही कोई रसीद या रिकॉर्ड मिला है। आभूषणों की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने भी हार और चरण पादुका के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। अब एसआईटी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर रही है।
4: दावा किया गया है एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा कि उसकी तो हमने खुद पूजा की थी, वो आखिर कहां गया, क्या निर्माण के दौरान इधर उधर हो गया या जिम्मेदारी से नहीं रखा गया। तो अब वो एसआईटी उन सभी की जांच कर रही कि आखिर ये आभूषण, ये जो दान था, ये गुप्त दान था, इन सबका रिकॉर्ड्स कहां है।
1: श्रद्धालु परिवार का कहना है कि उन्हें रामलला पर हार धारण किए हुए फोटो उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह फोटो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: विवाद काल में अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डेडलाइन 29 जून की तय है।
5: सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी।
6: चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल कर चढ़ा के जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और ऐसे।
7: प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही माने मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं।
8: ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है।
9: प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
10: अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है।
11: आज हमारे राम आ गए।
12: आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो।
10: लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे, आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया?
13: गहना, रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना, तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना ये ठीक नहीं है।
14: अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं।
15: जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया?
10: इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है।
16: 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो, SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।
10: योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर इस पूरे विवाद के बीच किस तरह मोर्चा संभाला, समझिए। पहला संदेश, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, मतलब सांच को आंच नहीं आने देंगे, जांच से सब साफ कर देंगे। दूसरा, 15 दिन के भीतर सच सामने होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं इंतजार, तुरंत दोषी पहचाने जाएंगे, सजा भी होगी। तीसरा, विपक्ष का इतिहास याद दिलाकर उनके आरोपों का जवाब, ताकि हिंदू वोट पर विपक्ष को घेरने से रोका जा सके। चौथा, खुद राम मंदिर पहुंचकर चढ़ावा अर्पित किया, ताकि भक्तों के मन का संदेह दूर हो।
17: कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया SIT को उपलब्ध करवा दें, SIT को दे दें, SIT जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
10: राम मंदिर में प्रभु राम को जनता के चढ़ावे की चोरी वाले आरोपों की जांच के बीच उठते सियासी सवालों का जवाब देने सीधे अयोध्या के राम मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राम लला के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ वो काम करते हैं जिससे चढ़ावा विवाद में पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर किया जाए। श्री राम को अर्पित अपना गुप्त चढ़ावे वाला लिफाफा लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं, दान पेटी के पास पहुंचकर वो चढ़ावा उसमें डाल देते हैं। ये सब कुछ वो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के सामने ही करते हैं। ये योगी का वो कदम जिसके पीछे सीधा संदेश ये देना है कि श्री राम को अर्पण वाले भाव में ना मिलावट हो सकती है, ना भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी हो सकती है।
18: प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं।
17: देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं।
19: एक तरह की चेतावनी, एक तरह की ललकार। देखना है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या सचमुच दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सबकी नजरें इस जांच पर टिकी हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज तक से खास बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जो कुछ आज तक को बताया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राम के नाम पर जो काम कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपा गया उसे पूरा करने में घनघोर लापरवाही बरती गई।
20: मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से SOP है। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा, वो कपड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है
21: जी,
20: कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है। और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था, जो ट्रस्ट का SBI से एग्रीमेंट है। SBI ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु
21: जी,
20: अंगूठी
21: जी,
20: कड़ा
21: चेन,
20: बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक वो, जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचे, भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है, ये है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, क्वाइंस भी गिरते हैं और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थीं और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए, ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई, ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है।
0: बात शिवसेना की, जहां पार्टी में टूट के बीच असली शिवसेना साबित करने की होड़ जारी है। इस बीच शिंदे ने उद्धव गुट में आगे भी टूट के संकेत दिए हैं।
2: दो मंच, बाला साहेब की तस्वीरें और खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। उद्धव गुट में टूट के बीच मुंबई में एक बार फिर शिवसेना के दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट में सेंधमारी के बीच ऑपरेशन टाइगर 3.0 के संकेत दिए।
3: बाला साहेब विचार धर्म विरान विचार घेन अपन पुढ़ चल लो है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखो होता ही क्या।
2: दावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का पाला बदलने का है, जिसका असर पार्टी के स्थापना दिवस पर साफ दिखा।
3: अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला।
2: उधर बागियों को लेकर शिवसेना सख्त नजर आ रही है। पार्टी में बगावत की संभावना के बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर उद्धव के घर हुई बैठक में गैर मौजूद रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी की ओर से अयोग्यता की चेतावनी दी गई है। लोकसभा में पार्टी चीफ व्हिप अनिल देसाई ने सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा। इसके पहले कल शिवसेना की रैली में उद्धव ने इमोशनल कार्ड के चलते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
22: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही।
2: उधर अमित शाह भी जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब शिवसेना में गुट पूरी तरह से खत्म हो गया है।
23: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
2: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दावा जल्द सांसदों के उद्धव का साथ छोड़ने का है। ये न सिर्फ उद्धव के लिए चुनौती होगी बल्कि इससे विपक्ष की भी मुश्किल बढ़ेगी। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में भगवंत मान की कथित वीडियो को लेकर अकाल तख्त सख्त है, जहां भगवंत मान के पेशे का वीडियो जारी किया गया, जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं।
24: सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेशी का वीडियो सार्वजनिक किया। वीडियो में मुख्यमंत्री और जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के बीच कथित विवादित वीडियो को लेकर हुए सवाल जवाब सामने आए।
25: जी वो बंदा जी मैं दस देना, वो बंदा जी जेड़ा जगमन जगमन है कोई, वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं, संगल लगते नहीं जी, वो इस तरह दियां पाउंदा रहिंदा जी। उस तो पहला उन्हें मेरी कोई उसे कमरे दिया, कोई होर भी बना के भेजे सर, फोरेंसिक जांच कराने का मतलब नहीं, जो तुम कहने जी असि करा दो पर नकली है। मैं
26: जो
25: कोर्ट का ऑर्डर है उन्होंने मीन इन्होंने प्राइवेसी होने करके आना टाइम
26: मैं
25: बिल्कुल
26: तो मेरा
25: जी।
24: वीडियो में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके संबंध में प्रसारित की जा रही वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एआई से तैयार की गई है।
25: देख लो आजकल एआई है तो सीधा आप ही कह के सोशल मीडिया का पता नहीं की बर्बाद, अज तक हर रोज इसी डर की दी फोटो ना लाती हो गए, आही कमरा आही फोटो सुबीर वाल की फोटो भी लाइक करते ने, मजीठिए की फोटो भी बची लाइन फिर देनी, उही यही कमरा और उन्होंने कमलापन की किया, ये फड़िया जिहड़ा अपनी नंगिया अखा ना फोरेंसिक तो बिना भी मैं दस देना जी, वो होटल का कमरा जिहड़ा इंटीरियर है होटल, होटल दे विच कौन गुरु साहब की फोटो लगा।
24: जत्थेदार ने सीएम से भिंडरांवाले और पंथ की मर्यादा को लेकर कई सवाल पूछे। अकाल तख्त सीएम मान को पंथ विरोधी और गुरु दोषी घोषित कर चुका है। ये फैसला जत्थेदार गड़गज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील से सुनाया था, जिसके बाद अब भगवंत मान की सफाई का ये वीडियो जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है। एक ओर घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त दिख रही है, दूसरी ओर टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
2: मालदा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बने तनाव की ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बाड़ वाले हिस्से का फायदा उठाकर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजने की तैयारी है। जिस घुसपैठ का मुद्दा बनाकर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में आई, उस घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का भरोसा सरकार बंगाल की जनता को दे रही है।
23: बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है, मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे।
2: उधर कोलकाता एयरपोर्ट में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से आ रहे अभिषेक बनर्जी के स्वागत के लिए टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथापाई हो गई।
1: मुझे आम दिखा था, मैं जब उसको पकड़ा मुझे आम दिखा मार देने के लिए, अभिषेक बनर्जी को मार आया था, ये आदमी अभिषेक बनर्जी को मार आया था,
4: बीजेपी ने गुंडों को भेजा था आम देकर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए।
2: मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं।
5: मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए, इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए, सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
2: उधर पांडेश्वर में टीएमसी नेता अलाउद्दीन शेख पर गिरफ्तारी के दौरान अंडा फेंकने की तस्वीरें आई, जहां प्रदर्शनकारियों से कड़ी मशक्कत के बाद शेख को निकाला गया। पुलिस पर पथराव के एक पुराने मामले में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी रेजीना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ फालता में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रेड रोड पर योग करते नजर आएंगे। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल का दौरा है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से टीएमसी पर हमला किया।
23: पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे, यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया,
6: संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया।
0: अब बात होने वाले नीट फे एग्जाम की, जहां पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच सरकार ने तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए पूरा जोर लगाया है।
2: देश भर के अलग अलग शहरों से आ रही मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि 21 जून को होने वाले नीट रे एग्जाम को बिना पेपर लीक के कराना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
7: जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा। कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए।
2: तैयारियों को दुरुस्त करने की इन तस्वीरों के बीच नागपुर से आए एक मामले ने एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।
8: हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर आबू धाबी दुबई का सेंटर जो है वो अलॉट किया गया है अब्दुल्ला को। नागपुर का छात्र है, पिछले बार भी उसने नीट की परीक्षा दी थी, इस बार भी वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो आबू धाबी दुबई का उसमें सेंटर दिया गया था।
9: अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दिए। मेरा बच्चा कल से शॉक में है, बहुत रोया उसने।
2: राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। हालांकि मामले में एनटीए ने तुरंत गलती पर ध्यान देते हुए छात्र से बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर शाहदरा रेलवे स्टेशन पर मामूली नोकझोंक में हिंसक रूप इसने धारण कर लिया। ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए विवाद ने एक शख्स की जान ले ली।
11: दिल्ली के शाहदरा स्टेशन में एक सीट को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट में एक शख्स की जान चली गई।
12: जहां पर एक आदमी जो जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसका विवाद कुछ लोगों से हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी जान चली गई। बताया ये जा रहा है कि करीब 5 से 6 लोगों ने उसे लात घूसों से इतना मारा कि वो यहीं पर बेहोश हो गया।
11: घटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर योग एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय हुई जब यात्री ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। यात्रियों के बीच भारी धक्का मुक्की शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अन्य यात्रियों ने पंकज पर लातों और घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान पंकज अचेत होकर गिर पड़ा।
12: मौके पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक सिपाही भी देखा गया, लेकिन जैसी ही घटना हुई वो सिपाही इसमें बीच बचाव करने की पहले कोशिश करता है, लेकिन लाश जो है, जो बॉडी है, वो यहीं पर कई देर तक पड़ी रहती है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और जब एक बार पुलिस यहां पहुंचती है तब उसके शरीर को यहां से उठा करके जीटीबी अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां अस्पताल में बोला जाता है कि उसकी मौत हो गई।
11: रेलवे पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की शिनाख्त में जुट चुकी है। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: देश भर के अलग अलग शहरों से आ रही मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें गवाह हैं कि 21 जून को होने वाले नीट रे एग्जाम को बिना पेपर लीक के कराना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
7: जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा। कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए।
2: तैयारियों को दुरुस्त करने की इन तस्वीरों के बीच नागपुर से आए एक मामले ने एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए।
8: हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर आबू धाबी दुबई का सेंटर जो है वो अलॉट किया गया है अब्दुल्ला को। नागपुर का छात्र है, पिछले बार भी उसने नीट की परीक्षा दी थी, इस बार भी वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आया तो आबू धाबी दुबई का उसमें सेंटर दिया गया था।
9: अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दिए। मेरा बच्चा कल से शॉक में है, बहुत रोया उसने।
2: राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। हालांकि मामले में एनटीए ने तुरंत गलती पर ध्यान देते हुए छात्र से बात की और उसके सेंटर को बदल दिया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

आज दुनिया भर में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता में करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा आसन। अब की बार थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग।

बाबा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से बड़ा खुलासा। चरण पादुका बहुमूल्य हार और चांदी की ईंटों और शिलाएं का एक कई रिकॉर्ड नहीं, लगातार 6 दिन से जांच जारी। आज 22 लाख से ज्यादा छात्र फिर से देंगे नीट की परीक्षा। 5000 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त सुरक्षा। एक दिन पहले मॉकड्रिल से तैयारियों का जायजा। सीज फायर को लगा बड़ा झटका। ईरान ने फिर से बंद किया हॉर्मुज का रास्ता। ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका और इसराइल पर डील की शर्तें तोड़ने का आरोप।

के साथ पूजा पाराशर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बधाई। और मैं आज विजयवाड़ा में मौजूद हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम करने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं, क्योंकि विजयवाड़ा में मैं मौजूद हूं और यहां पर योग गुरु स्वामी रामदेव यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ये खूबसूरत तस्वीरें। एक तरफ कला नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन हो रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग एक साथ यहां पर जुटे हुए हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी खुद इस आयोजन में मौजूद है। तस्वीरों में देखिए आप, योग गुरु स्वामी रामदेव नजर आ रहे हैं। योग दिवस की अगर बात की जाए तो इसी संदेश को योग जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़ा है कि योग एक व्यायाम नहीं, एक जीवन जीने की संपूर्ण दिशा के रूप में भी देखा जाता है और प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, ये कार्यक्रम में विभिन्न योगासन होंगे। खुद योग गुरु स्वामी रामदेव ये योगासन करेंगे। वही मलखम यहां पर लगाया गया है, पारंपरिक कुश्ती यहां पर होगी और साथ ही योग चिकित्सा, षष्ठकर्म, कई तरह के योग खुद योग गुरु स्वामी रामदेव यहां पर करेंगे। और यहां पर भारी तादाद में लोग भी पहुंचे हुए हैं, हजारों से ज्यादा की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरे कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, नृत्य कला का प्रदर्शन भी किया जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं, योग का संदेश पूरे देश ही नहीं दुनिया तक पहुंच रहा है। ऐसे में इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि नियमित योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक संतुलन को, ऊर्जा और बेहतर जीवन शैली जीने का एक तरीका भी सिखाता है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस बार योग पहुंच रहा है हरिद्वार से हर द्वार तक। अब आप तस्वीरें देखिए, हजारों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद है। एक बड़ा सा एक स्टेडियम है ये, और इंदिरा गांधी स्टेडियम ये है और यहां पर पूरी तैयारी हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर में तस्वीरें वो भी सामने आएंगी जब कला का प्रदर्शन होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव यहां पर योग की शुरुआत करेंगे। अभी कुछ ही देर पहले योग गुरु स्वामी रामदेव यहां पर पहुंचे हैं और आपको मैं बता दूं कि एक तरफ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ये कार्यक्रम चल रहा है तो वहीं देश भर में अलग अलग जगहों पर योग का कार्यक्रम हो रहा है। और सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और वहीं देश की विभिन्न जगहों पर योग दिवस क्योंकि मनाया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर तेलंगाना की बात हो और विजयवाड़ा की भी बात हो, जहां पर मैं खुद मौजूद हूं, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जा रहा है। और बंगाल में ये योग दिवस सबसे बड़े आयोजन के साथ मनाया जाएगा, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आएंगे। रेड रोड पर हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे और इस कार्यक्रम में काफी लोग भाग भी लेंगे। ये कार्यक्रम 5 बजे से लगभग शुरू हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि योग का इतिहास भी बहुत पुराना है और सबसे पहले शुरुआत इसकी 2017 में हुई थी। इसके इतिहास को याद किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के सामने 2014 में इसका ऐलान किया था। और दुनिया में 21 जून 2015 पहला वो दिन था जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। साल का सबसे लंबा दिन भी ये माना जाता है।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने में योगा अभ्यास की धूम है। जमीन से लेकर जल तक, पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक, योगासन की ये तस्वीरें लोगों में योग की गौरवशाली प्राचीन भारतीय परंपरा के प्रति असीम उत्साह की झलक दिखला रही है। सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विदेशों के नागरिकों में भी योग की उत्सुकता साफ साफ नजर आ रही है। हर कोई 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि योग के महत्व और इसके फायदों को अब दुनिया समझने लगी है। यही कारण है कि जगह जगह जोर शोर से योग दिवस मनाने की शानदार तैयारियां नजर आईं। यह तो सभी जानते हैं कि योग तन की अच्छी सेहत और मानसिक शांति का आधार है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि आखिर योग का आधार क्या है, योग साधना का विकास कैसे हुआ और आखिर किस प्रकार इसका विस्तार हुआ है। इसके बारे में जानकारी भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलती है। हमारे वेद पुराणों, उपनिषदों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय सनातन परंपरा में परम आराध्य महादेव से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक के जीवन और कर्मों से योग का संदेश मिलता है। हम आपको आज योग की महिमा बताएंगे और इसके दर्शन के बारे में समझाएंगे। मानवीय चेतना के उत्थान और लक्ष्यों की प्राप्ति में योग किस तरह मददगार है, यह भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: और चलिए हमारे सहयोगी तापस हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे पश्चिम बंगाल से, आपको उनके पास लिए चलते हैं। तापस, तस्वीरें दिखाइएगा, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए, कैसा आयोजन हो रहा है?
2: जी देखिए, हजारों की तादाद में लोग आप पहुंचे हैं। हम इस समय रेड रोड के पास खड़े हैं और रेड रोड में कुछ ही देर में ये योगा शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री 6 बजे के कुछ बाद पहुंचने वाले हैं। यहाँ दिखाता हूँ आपको कि पूरा जो बंदोबस्त है, सिक्योरिटी बंदोबस्त चाक चौबंद किया गया है और ये पूरा इलाका जो है इस समय पुलिस ने घेर लिया है। दूसरे छोर पे अगर हम आपको दिखाएं कि यहाँ बच्चे और यहाँ पे बुजुर्ग बड़े तादाद में आप पहुंच रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं?
3: मैं यही फूलबगान
2: से आ रहे हैं।
3: मोदी जी बुलाए, आना ही पड़ेगा।
2: आज आज आज किस लिए आए हो यहाँ?
4: योगा करने के लिए।
2: योगा करने के लिए कितने बजे उठे हो आप?
4: 4 बजे।
2: 4 बजे क्या देखना है यहाँ?
4: योगा करना है।
2: योगा करने आए हैं आप? मोदी जी को देखना। आप लोग बताइए कि कहाँ से आए?
5: हम लोग सब प्रसाद एक्सोटिका से आए हैं, कॉम्प्लेक्स से आए हैं। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है आज के इवेंट के लिए, मोदी जी से मिलने के लिए।
6: हम लोग 2 बजे से उठे हुए हैं।
7: 2 बजे से उठे हुए
8: हम लोग जाने के लिए। इंटरनेशनल योगा डे, वी डू योगा एवरी डे। तो हम लोग,
2: लेकिन पश्चिम बंगाल में या कोलकाता में इस तरीके का इवेंट हमने पहले नहीं देखा।
9: इतना सब कुछ इवेंट इतना अच्छा रहा, वो देखने के लिए भी बहुत है।
10: पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसके हम लोग हिस्सा बन रहे हैं, तो ये अभिमान मतलब प्राउड की बात है।
2: वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा भी क्या लगता है कि लोगों में एक जागरूकता होना बहुत जरूरी था, जिसके लिए ये एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आ जाएगा?
11: और हम लोग मोदी जी के लिए, मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया हम लोग के, जो हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसे आए हैं यहाँ पे योगा करने।
2: कितने लोग आए साथ?
11: हम लोग
12: 22 वेरी गुड। हमको इसको सोनार बंगला बनाना है एकदम, और यह बहुत आशा है। अरेंजमेंट आर वेरी गुड, अमेजिंग एवरीथिंग।
13: हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस तरह का इवेंट हम लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम हम लोग ये कर रहे हैं। मतलब ऐसा हम लोग सोच नहीं सकते थे कि बंगाल में ऐसा होगा।
2: पैदल चलना पड़ा बहुत ज्यादा?
13: कोई दिक्कत नहीं है, पैदल चलना है तो क्या हुआ, अच्छा ही तो है।
2: तो आप समझ सकते हैं कि लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, और ये ज्यादा योगा से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि उत्सव है लोगों के लिए, और हर उम्र के लोग यहाँ पर आ पहुंचे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ आ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कतारों में लोग आते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एंट्री टाइम है, हम फिर किसी से बात करें, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग?
14: हम तो गोरिया से आ रहा है।
2: गोरिया से आ, किस तरीके से इतना जल्दी
7: आ, हमारा टाइम बोला 5 बजे आना, इसलिए
2: कैसे यहाँ तक कैसे
7: पहुँचा? यहाँ से तो बस से आया।
2: बस से आया। कोई मुश्किल समय?
14: नहीं, अभी तक कोई मुश्किल नहीं दिखाई पड़ा। बहुत अच्छा से आया, सुंदर व्यवस्था था। हेल्थ डिपार्टमेंट से बस दिया था, तो वो बस पकड़ के हम लोग रात 3:30 बजे रवाना हुआ। आते आते अभी ये टाइम हुआ। अच्छा, हेल्थ के लिए, योगा के लिए, मोदी जी के लिए हम लोग सब आया है।
2: मोदी जी को ज्वाइन करेंगे आप लोग?
14: कोशिश तो करूंगा, लेकिन लगता नहीं, प्रोटोकॉल का तरफ से हम लोग का थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, तो दूर से भी हम लोग मोदी जी के साथ रहूंगा।
2: ये इतिहास बनने जा रहे, इतिहास का साक्षी रहेंगे आप
14: जी। ये रिकॉर्ड बनेगा, आज यहाँ से लाखों का ऊपर आदमियाँ, बंगाली सब आ रहा है, जो लोग अच्छा हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोशिश करता है, वो लोग आज योगा, आसन, प्राणायाम यहाँ से एक साथ करेंगे। और सारा विश्व को यहाँ से संदेश भेजना चाहता हूँ, जे अच्छा शरीर, मन, समाज चाहिए तो नियमित योगा कीजिए। आज योगा का जे प्रदर्शन अभी हो रहा है, हमारा मोहन मोदी जी आज हमारा साथ है, तो इससे बड़ा पावना क्या है।
2: तो आप समझ सकते हैं पूजा, लोग यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, लोगों का ऐसी उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि शायद ही आपको लगेगा कि ये सुबह 5 बजे का एक मंजर हमें दिख रहा है। कतारों में लोग, हजारों के तादाद में लोग यहाँ सड़कों पर आए हैं, और पहली दफे पश्चिम बंगाल में इस तरीके का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। अमूमन हम 26 जनवरी
1: एक बार मैं भी तस्वीरें दिखा दूं विजयवाड़ा से, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर भी अब योग की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और आयोजन की शुरुआत हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव अब यहाँ पर योग की शुरुआत कर चुके हैं और लोग भी उनको धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। 5 बजे से यहाँ पर योग की शुरुआत हुई है, लगभग 7:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आयोजकों ने ये दावा किया कि बहुत ही बड़े स्तर पर यह आयोजन किया जा रहा है। लगभग कहने को तो यह है कि महाकुंभ जैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 100 से ज्यादा प्रकार के योग अभ्यास, प्राणायाम, और इस सब के लिए ड्रोन, बड़ी एलईडी स्क्रीन तक लगाई गई है ताकि दूर तक सभी लोग इसको देख चुके। और इस बार का संदेश है कि योग हरिद्वार से हर द्वार तक पहुंचाया जा सके। तो मेरे पीछे योग गुरु स्वामी रामदेव योग कर रहे हैं और 100 से ज्यादा आसन वो करेंगे और यहाँ पर लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं। तो योग दिवस कितने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है आप देख सकते हैं। मेरे पीछे एक एलईडी स्क्रीन भी लगी हुई है, सभी लोग इसमें दिख रहे हैं, ड्रोन की व्यवस्था है और यहाँ पर बड़े बड़े कैमरे भी लगाए गए हैं। तो योग गुरु ने यहाँ पर योग की शुरुआत कर दी है और मेरे सहयोगी तापस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार तापस के पास फिर से लिए चलती हूँ आपको। तापस, देखिए बहुत समय हो गया बंगाल में योग अब जाकर शुरू हुआ है, इतना समय क्यों लगा योग को पहुंचने में, और जो बंगाल के लोग हैं वो इस सबको अब किस तरीके से देख रहे हैं, क्या खुश है वो योग का उत्सव अब पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा हो पाया है।
2: जी देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो योग यहाँ पर हमेशा से काफी लोकप्रिय रहा है। ये था कि सरकारी तौर पर इस योग को मनाया उस लिहाज से नहीं जाता था, योगा दिवस को इस लिहाज से मनाया नहीं जाता था। ममता सरकार के 15 साल के शासन के दौरान योग जरूर होता था, लोग घरों में करते थे, लोग मिलकर करते थे, लेकिन अगर सड़कों की बात की जाए या फिर बड़े पैमाने पे योग दिवस को मनाने की बात की जाए तो वो नहीं किया जाता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जो एक आकृति बनाया गया है, माँ काली की एक मूर्ति रखी गई है, ये सारी चीजें बनाया गया है लोगों के बीच योग को लोकप्रिय करने के लिए। और पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर इस तरीके से बैनर्स, प्लैकर्ड्स, इन चीजों को रखा गया है। आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता, मंत्री सब एक के बाद एक योग दिवस में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। आम स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से पुख्ता रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के पुलिस अफसर, कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर रैंक के अफसर, सारे तमाम जो बड़े अफसर हैं सारे इस समय सड़कों पर हैं। रात को 2:30-3 बजे से लगातार वो पूरे इलाके को छान रहे और सिक्योरिटी को पुख्ता रखा गया। स्कूल के बच्चे जो हैं वो भारी तादाद में आए थे। मैं आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारी और स्कूल के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए सरकार की तरफ से आग्रह किया गया था। इसे मैंडेटरी नहीं किया गया था लेकिन आग्रह किया गया था। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा तादाद में जो बच्चे हैं वो योग दिवस में शामिल होने के लिए पहुंचे, वो भी क्यों नहीं प्रधानमंत्री को पास से देख सकते हैं। और ये एक ऐसी शुरुआत है जो आगे जाकर एक इतिहास बना सकती है। अब यहाँ देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे अभी एक के बाद एक आ रहे हैं। हम किसी से बात करते हैं, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं?
15: हम लोग कोलकाता के ही हैं, आर्ट ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करते हैं।
2: कितने बच्चा लोग आ रहे हैं आप लोग?
15: हम, मेरी वाइफ।
2: कहाँ से आ रहे हैं?
15: कोलकाता लेक टाउन।
2: लेक टाउन से आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं लेक टाउन इस इलाके से काफी दूर है, कम से कम 15 से 16 किलोमीटर का फासला होगा, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ जल्द से जल्द आकर पहुंच रहे हैं। और ये तमाम जगहों पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। मैं आपको आगे जाकर चित्रनगर दिखाऊं, यहाँ बड़े तादाद में जो स्कूल के बच्चे हैं वो अभी भी बैरिकेड्स में इंतजार कर रहे हैं कि उनका टर्न कब आएगा, तब वो बैरिकेड्स हटाकर वो इस रास्ते से सीधा पहुंचेंगे रेड रोड। और रेड रोड में नरेंद्र मोदी 6 बजे के बाद वो पहुंचेंगे और तकरीबन 1.5 घंटे वो वहां पर मौजूद रहेंगे। भारी तादाद में लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, आप हर उम्र के लोगों को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में इस तरह का चित्र,
1: क्या वहां पर अभी से योग की शुरुआत हो चुकी है? क्या बस इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, उससे पहले क्या लोग वहां पर योग शुरू कर चुके हैं?
2: जी देखिए, योग जो है वो अभी तक कतारों में लोग पहुंच रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग बैठ के योगा शुरू कर चुके हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर जो शुरुआत है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद शुरू किया जाएगा। मैं आपको फिर एक बार चित्र दिखाता हूं, भारी तादाद में लोग, हर उम्र के लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ हम बात करेंगे कुछ और लोगों से। आप लोग कहाँ से आ रहे
16: हैं?
2: कितने लोग आए आप लोग?
16: 50 लोग आए।
2: 50 लोग आए
16: जी।
2: कैसा लग रहा है कि योग को प्रमोट करने के लिए इतना बड़ा वो किया गया है?
16: बहुत अच्छा लग रहा है, प्रमोट करना चाहिए, ये हमारी निजी संस्कृति का अंश है। और ये विद्या जो है बहुत सनातन है, बहुत पुरातन है, और इसको हमेशा जागरूक रखना चाहिए, तो इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है।
2: तो आप देख सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन से भी आए हैं लोग, और काफी तादाद में जो पहल की गई थी, ये एक कैंपेन था केंद्र सरकार का, 12 साल मनाया जा रहा है, और केंद्र सरकार का ये कैंपेन रहा है, लोगों के पास आग्रह रहा है। ये सोशल मीडिया में, अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, सोशल मीडिया में एक वायरल फैला था। कल कई मेरे दोस्त ऐसे मुझे फोन कर रहे थे कि रेड रोड कैसे पहुंचना है, तपस हमें जाना है, जो शायद ही सुबह 8-9 बजे से पहले वो नींद से उठते थे, लेकिन उनमें ये जज्बा आ गया कि उन्हें सुबह उठना है और उन्हें योगा डे में शामिल होना है, उन्हें रेड रोड आना है। हालांकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी पासेस बहुत लिमिटेड थे, इसलिए ज्यादातर लोगों को दूर ही बैठना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कतारों में बच्चे, बुजुर्ग, सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो रास्ता आपका बैरिकेड किया हुआ है, ये रास्ता क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी मेन स्टेज की तरफ जा रहा है।

0: लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आपको ये बता दूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की आधिकारिक थीम इस बार योगा फॉर हेल्दी एजिंग है, यानी स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग। और ये थीम इस बात पर जोर देती है कि योग केवल फिटनेस का माध्यम नहीं है, बल्कि बढ़ती उम्र में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका भी माना जाता है। और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और आज 2026 में भी मनाया जा रहा है। और ये भारतीय परंपरा को एक वैश्विक पहचान दिलाने वाला ये दिन दुनिया के सबसे बड़े जो स्वास्थ्य का कारण है वो भी बन चुका है। करोड़ों लोग इस दिन योग अभ्यास करते हैं और इस दिन के बाद भी कोशिश करते हैं कि योग को हर दिन अपने जीवन में उतारा जाए और संकल्प लेते हैं हर दिन योग करने की। साल 2026 का योग दिवस कई मायनों में खास भी माना जा रहा है, क्योंकि बदलती जीवन शैली, बढ़ती उम्र के साथ योग कितना जरूरी है वो इस बार का संदेश दिया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए योग गुरु स्वामी रामदेव यहाँ पर योग कर रहे हैं। एक तरफ कला नृत्य का प्रदर्शन भी किया जा रहा है जिसके जरिए योग को समझाया जा रहा है। और मेरे पीछे योग गुरु स्वामी रामदेव योग कर रहे हैं। और कोलकाता एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको, तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, इस बार का जो थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, उसको लेकर एक बार बताइएगा ये थीम इस बार क्यों रखी गई है?
1: जी देखिए, भारत का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, कहीं ना कहीं वो जो वक्त से पहले उनका एक एजिंग, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्यों ना हो, मानसिक तनाव है, लोगों में अस्थिरता है, लोगों में स्थिरता की जो कमी है इसे दूर करने के लिए योग एकमात्र एक जरिया है कि लोग शांति में रह सकते हैं, पीसफुल माइंड पे रह सकते हैं और अपने जो ओवरऑल जो हेल्थ कंडीशन है उन्हें और भी बेहतर बना सकते हैं। इस वजह से ये अर्ली एजिंग को इस बार थीम बनाया गया है। और यहाँ पश्चिम भारत के जो पॉपुलेशन है, आपको पता है जनसंख्या एक यूथ जनसंख्या है, लेकिन यूथ में भी काफी सारे जो डिजीज है वो देखने को मिलता है। लोग हार्ट अटैक के शिकार होते हैं, लोगों में बहुत अस्थिरता होती है, बच्चों में खासकर जो 20 से 35 साल का जो एज ग्रुप है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो इसे कम करना है तो आपको योग करना पड़ेगा। योग करना इसलिए कि आप एक तरीके से आप अपना जो कॉन्शियस है, आप इनर कॉन्शियसनेस को भी आप बेहतर समझ सकते हैं, आप अपने आप को पूरी तरीके से एक नए तरीके से अपने आप को ढाल सकते हैं। जिस तरीके के रैट रेस, जिस तरीके से अलग अलग अपने कर्म क्षेत्र में लोग बिजी रहते हैं, लोग व्यस्त रहते हैं, लोगों को शायद ही वक्त मिलता है चैन से अपने परिवार के साथ वक्त बिताना हो, एक मैकेनिकल बन जाते हैं लोग। तो इस एक उम्र के लिहाज से जो उम्र का जो पैरामीटर्स होता है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है यूथ्स में, तो उसे ध्यान में रखते हुए इस बार इसे थीम रखा गया है। और योग पश्चिम बंगाल में अगर आप बात की जाए या भारतवर्ष में बहुत लोकप्रिय रहा है, ये चर्चा घरों में होती थी, लेकिन सार्वजनिक स्तर पर अगर योग को मनाया जाए, योग दिवस
2: के बच्चों का आप सहज योग कीजिए और एडवांस योग मेरे दाएं बाएं हमारी बेटियां कर रही है वो अभी, और इधर मलखंब पर भी शुरू करो जी योगेश जी, और रस्से पर भी, और राइट साइड में अब हम तो कर रहे हैं भुजंगा।
3: Get ready for drama because prime time is equal to kickoff time. Netherlands versus Sweden.

0: पूरा इंडिया
1: यहाँ पर आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव योग कर रहे हैं और कृष्णा नदी के तट से विजयवाड़ा से आज योग का संदेश दुनिया तक पहुंच रहा है। आयोजन का उद्देश्य योग का ये पहुंचाना है लोगों तक कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक संतुलन और बेहतर जीवन शैली के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और योग 2026 की आज शुरुआत हो चुकी है, योग हरिद्वार से हर द्वार तक पहुंच रहा है, यही योग गुरु स्वामी रामदेव का संदेश है। इस बार विजयवाड़ा में योग करने का कारण भी एक तरीके से ये माना जा रहा है कि अगर योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए तो स्वस्थ और सक्रिय जीवन की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं।

0: योग गुरु स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण इस बार विजयवाड़ा में योग कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आंध्र प्रदेश के भी यहाँ पर पहुंचेंगे और ये पूरा कार्यक्रम पतंजलि योगपीठ और साथ ही सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। 5 बजे योग कार्यक्रम की शुरुआत हुई जो कि लगभग 7:30 बजे तक चलेगा। एक बार फिर से मैं आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा देती हूँ। हजारों की संख्या में यहाँ पर योग कर रहे हैं लोग, स्वामी जी को एक एक कर फॉलो किया जा रहा है, योग को अपने जीवन में एक तरीके से उतारा जा रहा है। ये देखिए योग गुरु स्वामी रामदेव, 100 से ज्यादा यहाँ पर योग अभ्यास जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं उनको करा रहे हैं और व्यवस्था पूरी अच्छे से की गई है। मलखम है यहाँ पर, आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मलखम छोटे छोटे बच्चे मलखम पर चढ़कर योग कर रहे हैं। और साथ ही स्वामी रामदेव यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको योग अभ्यास करा रहे हैं। स्टेज पर आप देख सकते हैं कि आचार्य बालकृष्ण भी पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे अब और ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग कर रहे हैं। अगर हम योग दिवस के इतिहास को याद करें तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को संयुक्त राष्ट्र में 2014 में इसका ऐलान किया था और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था दिल्ली के राजपथ में। और दिल्ली से लेकर अब ये तय कर लिया गया और दिल्ली से लेकर अब बंगाल तक योग पहुंच गया है। और ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में योग को अपनाया गया है, लोग अपने जीवन में योग को अपना रहे हैं। 177 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और योग को स्वीकार किया जो कि एक बहुत बड़ी बात भी थी इस इतिहास में, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी भी दिवस को अब प्रस्ताव को मिला बहुत बड़ा ये समर्थन भी माना गया था क्योंकि बिना किसी मोटिव के इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, देश के मुख्य आयोजन दिल्ली के राजपथ में हुआ जहां पर 36,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ योग करने के लिए पहुंचे और कई देश के प्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी योग किया। और आज दिल्ली से जो योग शुरू हुआ था वो अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। एक बार फिर से आपको बंगाल लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, कितना समय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग कब तक वहां पहुंच जाएंगे और योग से तस्वीरें पीएम मोदी की योग करते हुए सामने आएंगी?
1: जी देखिए, ऑफिशियल जो टाइम है वो 6:25 का है, प्रधानमंत्री रोड पहुंचेंगे और उसके बाद औपचारिक तौर पर ये योग दिवस का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त वो रहेंगे और हजारों की तादाद में लोगों ने रजिस्टर किया है, और लेकिन दिख रहा है कि तकरीबन लाखों की तादाद में लोग जिस तरीके से अलग अलग सड़कों से वो रेड रोड की ओर पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं बच्चे काफी ज्यादा तादाद में। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं?
2: हम सोधपुर, सोधपुर एक साथ ईएलएम बैच हम लोग, ईएलएम कोलकाता।
1: अच्छा, कितने बच्चे आए आप लोग?
2: हम लोग अराउंड 30-35।
1: योग पहले क्या करते थे या अभी योग ज्यादा लोकप्रिय लग रहा है?
3: अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि स्कूल टाइम में हम लोग करते थे, बीच में छोड़ दिए थे, बट अभी बहुत मजा आ रहा है, एक्साइटेड है हम लोग।
1: तो इससे पहले कभी इस तरीके से योगा के कार्यक्रम?
3: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक्सपीरियंस एकदम नया है तो बहुत एक्साइटेड है हम लोग।
1: और ये योग कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए आपको लगता है, यंग जनरेशन के लिए आप जैसे?
4: हाँ, यंग जनरेशन को ये करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा शारीरिक संतुलन हमेशा कायम रहता है। हाँ,
1: तो आप लोग दोस्त लोग आए या फिर इंस्टीट्यूट से ऑर्गेनाइज किया गया?
4: सब इंस्टीट्यूट के लोग हैं।
1: कितने लोग आए?
4: टोटल 30।
1: कितने बजे चलना शुरू किया?
4: 4:30।
1: हाँ, आने में कोई दिक्कत
4: नहीं? नहीं,
1: तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ एक और जी बताए,
3: हर कॉलेज में ये वाला पार्ट होना चाहिए योग का और सबको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए बिकॉज अभी बहुत कोई नहीं करते हैं। तो
1: अभी पश्चिम बंगाल सरकार ये कह रही है कि वो शायद आने वाले दिनों में सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये मैंडेटरी करेंगे, क्या लगता है?
3: ऑफ कोर्स करना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ये पार्ट होना इंक्लूडेड, मैंडेटरी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, इनिशिएटिव अभी ले रहे हैं तो क्या कह सकते हैं।
1: तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे भी जागरूक बन रहे हैं, जो पहल सरकार की तरफ से लिया गया है कि लोगों में कॉन्शियसनेस आए कि योगा काफी महत्वपूर्ण है, बच्चे भी ये मानते हैं कि अगर मानसिक संतुलन बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं योग का एक बहुत बड़ा योगदान है और ये योगदान